عذاب کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबह तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं है जो एक वाज़ह किताब में लिखी हुई मौजूद न हो।

0: आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। इंसानी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए फलों का इस्तेमाल किया जाना बेहद जरूरी है। इन फलों में बेशुमार विटामिन्स और मादनी ज़रात होते हैं। बहुत से मादनी ज़रात भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ उसमें फाइबर होता है, पानी भी मिलता है। और ब्राज़ील की एक बहुत ही मशहूर जो कहावत है ये है कि एक दिन केले के बगैर गुजारने के मायने ये हैं कि आपने एक दिन सूरज नहीं देखा। अब केला यानी बनाना टेढ़ा होने की दलील भी सूरज के सफर से दी जाती है। और क्योंकि केले के दरख्त पर लगा केला यूं तो जमीन की तरफ बिल्कुल सीधा ही उगता है, लेकिन बनाना पर केले पर सूरज की रोशनी जिस तरफ से पड़ती है वो अपना रुख उसी जानिब कर लेता है। इस फल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं। उसमें प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन B6 पाए जाते हैं। अब इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन वो भी पाए जाते हैं। और इसमें हमारा जिस्म जिन्हें के खुद बनाता है, ये चॉकलेट में भी पाए जाते हैं और इनका ताल्लुक इंसानी मिजाज से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केला खाते हैं तो फिर आपका मूड भी बेहतर होता चला जाता है। मगर उसमें यह है कि कुछ अफराद को पके हुए केले पसंद हैं और कुछ अफराद को जो है वो कुछ जो नीम पके केले यानी कच्चे केले जो है वो भी पसंद होते हैं। बहरहाल इसमें ये देखा गया है कि जो कम पके हुए केले होते हैं उनमें या कुछ सब्जी माइल हैं तो उसमें 20 गुना ज्यादा जो रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है। और ये ऐसा स्टार्च है जिसे डिसॉल्व करने में हमारे जिस्म को ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा निज़ाम इंहज़ाम है उसको ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, यानी जो वो डाइजेशन कर रहा होता है उसमें कुछ मज़ाहमत हो जाती है और वो फिर बराह रास्त हमारी जो आंतें हैं उन तक पहुंच पाता है। इस फल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ये ग्लूकोज में तब्दील होने की रफ्तार सुस्त होती है, इसलिए इस जो सर्कुलेशन है हमारे ब्लड की उसमें ये आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता है। मगर इसी तरह जो पके हुए केले हैं उनमें मौजूद जो स्टार्च है वो शक्कर में तब्दील हो जाता है और इस

0: तरह से वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है उसकी, मगर बात ये है कि जो नीम पके हुए केले हैं वो अगर शुगर के मरीज खाते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम 100 ग्राम जो बनाना है देखें उसमें कि उसमें غذائی افادیت کیا ہے, और तो उसमें मैं आपको बताती चलूं कि पोटेशियम उसमें मौजूद है 400 मिलीग्राम, विटामिन बी उसमें मौजूद है 3 मिलीग्राम, विटामिन सी जो है वो मौजूद है 90 मिलीग्राम, और इस तरह जो मैंगनीज है वो उसमें 2.6 है, उसमें फाइबर 2.6 है, प्रोटीन जो है 1.1 ग्राम है, पानी इसमें मौजूद है 75% है वो, और इसके अलावा जो शुगर है वो 12.2 ग्राम इसमें मौजूद होती है। तो मतलब इसका ये है कि केला जो है आप ज़रूर खाइए, आप कुछ फल पसंद हैं उनमें से भी शामिल कर लीजिए। और इसकी एक और अहम बात कि ये दिल की बीमारियों से हमें तहफ़ुज़ भी देता है, और डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट्स जिन्हें टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो है उनके लिए केला खाना भी फायदेमंद है, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि वो अगर पके हुए केले की ना खाएं तो बेहतर है, बिल्कुल वही नीम पके हुए केले ज़रूर खाएं, क्योंकि सेहत आपके लिए बेहतरीन है, और सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक खूबसूरत जंगल में दो गहरे दोस्त रहा करते थे। उन दोनों का नाम अहमद और यूसुफ था। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल के रास्ते बहुत खतरनाक थे और दोनों दोस्तों को मालूम था कि यहाँ कई खतरनाक जानवर छुपे हुए हैं। एक दिन अहमद और यूसुफ दोनों जंगल की सैर करने को निकले। रास्ते में चलते हुए उन्होंने आपस में वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दूर तक चलने के बाद अचानक दोनों ने भारी कदमों की आवाज सुनी। जब उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई तो एक बड़ा सा भालू उनके करीब आ रहा था। अहमद और यूसुफ दोनों फौरन खौफजदा हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। ये जंगल बहुत ज्यादा घना था और वहां भालू का आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब वो दोनों इस सूरत हाल में फंस चुके थे। अहमद, जो कि थोड़ा ज्यादा डरपोक था, फौरन एक दरख्त की तरफ दौड़ने लगा और उसके ऊपर चढ़ गया। यूसुफ, जो कि ज्यादा समझदार था, उसने फौरन फैसला किया कि वो भालू के आगे खुद को मुर्दा दिखाएगा ताकि भालू उससे दूर हो जाए। उसने फौरन जमीन पर उल्टा लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस भी रोक ली। जब भालू यूसुफ के करीब आया तो उसने यूसुफ की तरफ एक नजर डाली और फिर उसके कान के करीब सूंघना शुरू कर दिया। यूसुफ का दिल डर से बहुत तेजी से दौड़ रहा था, मगर वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। भालू ने थोड़ी देर तक तो उसे सूंघा, फिर उसने यूसुफ को छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में वापस चला गया। उसके बाद अहमद दरख से नीचे उतरा और यूसुफ के पास आया। वो बहुत परेशान था और उसने पूछा, यूसुफ तुम ठीक हो ना? वो भालू तुम्हें क्या कह रहा था? यूसुफ मुस्कुराते हुए बोला, वो भालू कुछ खास नहीं कह रहा था मेरे दोस्त, उसने मुझे सूंघा और फिर बस इतना ही कहा कि झूठे दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अहमद ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, यूसुफ मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें छोड़कर दरख्त पर चढ़ गया। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया। यूसुफ ने उसकी बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं अहमद, मैं जानता हूँ कि तुम खौफजदा हो गए थे, मगर एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। अहमद ने इस बात पर गौर किया और दिल से फैसला किया कि वो हमेशा यूसुफ के साथ वफा करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे सूरत हाल कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। यूसुफ ने कहा, अहमद तुमने जो किया वो गलती थी, मगर उससे सीखो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों दोस्तों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस सबक को हमेशा याद रखेंगे। यूसुफ ने अहमद से कहा, याद रखो, एक सच्चा दोस्त हर मुश्किल में साथ रहता है, वो तुम्हारी मदद करता है चाहे हालात कैसे भी हों। इसके बाद अहमद और यूसुफ ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे चाहे कुछ भी हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर ये अहद किया कि वो एक दूसरे के वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को मुश्किल में अकेला छोड़कर भागेंगे नहीं। तो दोस्तों, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे को अकेला छोड़कर भागते नहीं हैं।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तस्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही कमाल की इकोनॉमिक टर्म को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके साथ, और ये टर्म है, ये PPP कहलाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी इज कॉल्ड PPP यानी PPP। ये एक ऐसा इकोनॉमिक टर्म है जिसे इकोनॉमिक थ्योरी के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है जो एक दो या ज्यादा मुल्कों के दरमियान करेंसी की बढ़त और उनकी खरीदने की ताकत का मुकाबला करता है। इसका मकसद ये समझाना है कि किस तरह से अलग अलग मुल्कों की करेंसी वैल्यूज को समझा जा सके, ताकि लोगों को ये पता चले कि कहाँ की करेंसी असल में ज्यादा या कम है, जब खरीदने की ताकत का हमें अंदाजा लगाना होता है, यानी जब परचेजिंग पावर इस कंट्री की बढ़ रही होती है। वैसे PPP का बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि अगर दो मुल्कों की करेंसी में खरीदने की ताकत बराबर है तो किसी भी गुड्स की प्राइस इन दोनों मुल्कों में बराबर होनी चाहिए। अगर ये प्राइसेस बराबर नहीं है तो लोग उस कंट्री से, उस मुल्क से खरीदना पसंद नहीं करते। वो उस मुल्क से खरीदना चाहते हैं जहां पर वो प्रोडक्ट सस्ता है, जिससे मांग और प्राइस का कोऑर्डिनेशन भी बना रहे। जी हाँ, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए समझते हैं कि एक कंट्री कतर और दूसरी कंट्री नेपाल, कतर और नेपाल का मुकाबला करते हैं, या चलिए कुछ और ही नाम दे देते हैं। एक कंट्री है मुल्क ए और दूसरी है मुल्क बी। मुल्क ए में एक कॉफी कप की प्राइस है $2, ठीक है। वहीं पर मुल्क बी में कॉफी कप की जो प्राइस है वो है 4 बांग्लादेशी टका। अब हम ये मान लें कि एक $1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50 बांग्लादेशी टका है, तो $2 की वैल्यू होगी 100 BDS यानी 100 बांग्लादेशी टका। इस हिसाब से मुल्क बी में कॉफी कप की प्राइस 4 बांग्लादेशी टका बहुत कम है, जबकि असल प्राइस PPP के मुताबिक 100 बांग्लादेशी टका होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि मुल्क बी की करेंसी यानी बांग्लादेशी टका यहाँ अंडरवैल्यूड है। तो PPP का इस्तेमाल करके कंट्रीज की इकोनॉमिक हेल्थ को कंपेयर किया जा सकता है। इससे ये समझ में आता है कि लोगों की खरीदने की ताकत असल में क्या है। वहीं पर जब GDP को कैलकुलेट किया जाता है तब भी PPP का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि अलग अलग मुल्कों की इकोनॉमी का असल कंपैरिजन क्या है। वहीं पर PPP इन्वेस्टर्स को मदद करते हैं कि वो समझ सके कि मुल्कों में इन्वेस्ट करना कैसा होगा। जहां करेंसीज अंडरवैल्यूड हैं, वहां इन्वेस्टर्स कम पैसों में ज्यादा माल खरीद सकते हैं। वहीं पर PPP का इस्तेमाल अलग मुल्कों के इन्फ्लेशन रेट्स को समझाने में भी यूजफुल होता है, ये जानने के लिए कि किसी मुल्क की करेंसी कितनी असरदार है, यानी इन्फ्लेशन भी उसी के मुताबिक होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक अहम कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक एनालिसिस में काम करता है। इसके जरिए कंट्रीज के दरमियान करेंसीज की असल वैल्यूज और खरीदने की ताकत का पता चलता है, जो कि ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित होते हैं। वेल, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं आज आपको कुछ हद तक PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में समझा पाई हूँ। वेल, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मेरी यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने कराम, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन नसीहतों को सुनते हैं जो हमारी जिंदगी को रहमत, मोहब्बत और सुकून से भर देती हैं। खानदानी जिंदगी इस्लाम की बुनियादों में से एक है। घर सुकून, मोहब्बत और तआवुन का गहवारा तब बनता है जब मियां बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार औरतों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छे बर्ताव की वसीयत की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी नसीहत कबूल करो, इस्तौसु बिन्निसा, औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर होता है, अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करने जाओगे तो तोड़ बैठोगे और अगर उसी तरह रहने दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी, लिहाजा औरतों के बारे में मेरी नसीहत कबूल करो। सामईन किराम, ये मिसाल औरत की फितरत और नरमी की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह समझाया कि औरत को सख्ती से नहीं बल्कि नरमी और बुर्दबारी से संभालना चाहिए। अगर हम उन्हें उनकी फितरत के मुताबिक बर्दाश्त करेंगे तो घरों में सुकून और मोहब्बत कायम रहेगी। ये थी आज की सुन्नत, औरतों के साथ ख्वातीन हजरात के साथ हुस्न सुलूक की वसीयत।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अमेरिका के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरी क्लासन कुछ ऐसा ही किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज के चौथे मैच में एट सेंचुरियंस सुपर स्पोर्ट पार्क। 2023 के आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने से कबल क्लासन की इस तूफानी और स्ट्रोक भरा 174 रन की इनिंग्स किसी भी बॉलर की नींद उड़ा देने में काफी है। कौन है ये क्लासन, कब हुआ इनका डेब्यू, आइए जानते हैं। 2018 के घरेलू सीरीज में इंडिया के खिलाफ इनका ओडीआई और टी20 डेब्यू हुआ था और बहुत पुरानी बात तो नहीं है। इनके बैटिंग के बारे में कहा जाता है कि कुछ हद तक महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग स्टाइल से मिलता जुलता है। He takes his game to the opponent's dressing room. इसका मतलब इनको चैलेंज करना खतरों से खाली नहीं। धोनी की बैटिंग याद कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। जहां ज्याती तौर पर देखें तो इस इनिंग्स को 1983 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के फॉर्मर कप्तान कपिल देव की 175 की बेहतरीन इनिंग से कंपेयर किया जाता है। क्लासन ने इस इनिंग्स के दौरान पांचवी विकेट के लिए डेविड मिलर के साथ 222 रन की एक मजबूत पार्टनरशिप में हिस्सा लिया। लेकिन फिलहाल तसव्वुर करें उस ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एडम जाम्पा की, क्लासन से बेरहमी से पीटने के बाद आई एम श्योर डिप्रेशन में जरूर चले गए थे। क्लासन सेंचुरी विच केम ऑफ 57 बॉल्स वाज द फोर्थ फास्टेस्ट फॉर साउथ अफ्रीका आफ्टर एबी डिविलियर्स, एडन मार्करम एंड मार्क बूशर। उन्हें ओडीआई ओवर्स के मॉडर्न क्रिकेट में सबसे ज्यादा तबाहकुन बल्लेबाजों में से एक समझा जाता है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लाइफ को इजी बनाने के लिए लाइफ हैक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आज का नंबर वन लाइफ हैक है, चीज को कैसे फ्रेश रखना है। यस, पता है ना आपको कि चीज को भी सांस लेनी होती है। वेल, क्लिंग फिल्म या फॉइल में लपेटने की बजाय अपनी चीज को वैक्स्ड या ग्रीस प्रूफ पेपर में लपेटो, इससे वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। और हाँ, इसके बाद एक डब्बे में जरूर रख देना, वरना आपका एंटायर जो फ्रिज है ना, वो महक उठेगा। वेल, इसी के साथ आज का दूसरा लाइफ हैक है, फल और सब्जियों के नीचे पेपर टॉल रखें। यस, फ्रिज में जो लूज फल या सब्जियां हम रखते हैं, उनके नीचे अगर हम पेपर टॉल बिछा देंगे तो ये सारा एक्स्ट्रा पानी सोक कर लेगा और आपकी सब्जियां और फल ज्यादा दिन तक ताजा रहेंगे।

0: छोटा सा स्टेप है लेकिन बड़ी बचत है सो जरूर ट्राई करना ओके फॉर मोर लाइफ हैक टिप्स स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
0: दिल से देसी
2: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना बात करनी ना तुझको सुनानी

0: Metaxagayam, Archipogayam, Metaxagayam, Archipogayam, Metaxagayam, Archipogayam, Metaxagayam.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum, listeners. Aap sun rahe hain Green Path, ek aisi journey jahan hum baat karte hain environment ki behtri, sustainable lifestyle aur Qatar ke vision 2030 ke goals ki roshni mein. Har roz ek nayi baat, ek nayi soch aur chote chote habits jo bana sakte hain ek bada world. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आज हम बात करेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में, ताकि हम पानी को ज्यादा वेस्ट ना करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आपके टैप से पानी लीक हो रहा है तो उसे जल्दी ठीक करें, ताकि वाटर वेस्ट ना हो। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर का यूज करते वक्त वाटर एफिशिएंट मॉडल्स का इस्तेमाल करें। अपने घर की रूफ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं, जो पानी को कलेक्ट कर सकता है। अपने शावर्स का टाइम कम करें, वाटर सेविंग शावर हेड्स का यूज करें। वाटर कंजर्वेशन से हम अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और पानी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो लिसनर्स, ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे। अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक याद रखिए, हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज। खुद भी बदलें, औरों को भी इंस्पायर करें। अल्लाह हाफिज।

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला जुमला ये है, मेरे पास वक्त नहीं है। कोई कहता है दफ्तर की मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, कोई कहता है कारोबार ने फुर्सत नहीं छोड़ी, कोई कहता है बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा हूं इसलिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हम अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि काम करते करते उन्हीं लोगों से दूर होते जा रहे हैं जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आज का मौजू इसी अहम सवाल के गिर्द घूमता है कि इस्लाम हमें काम और खानदान के दरमियान तवाजुन कैसे सिखाता है। समीर किराम, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कुरान में उम्मतन वसतन फरमाया, यानी ऐसी उम्मत जो हर मामले में एतदाल इख्तियार करती है। इस्लाम ने ये चाहता है कि इंसान दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में जा बैठे, और न ये चाहता है कि दुनिया की दौड़ में ऐसा गुम हो जाए कि सबको भूल जाए। इस्लाम कहता है जिंदगी के हर हक को उसका हक दो। सामने किराम, आज के दौर में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मजबूत खानदान है। हम जदीद इमारतें बना रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, लेकिन अगर घर टूट जाए तो मुआशरा भी ज्यादा देर तक सलामत नहीं रह सकता। इस्लाम हमें यह हकीकत पहले बता चुका है कि मुआशरे की बुनियाद खानदान है। अगर घर आबाद होंगे तो कौमें आबाद होंगी, और अगर घर बिखर जाएंगे तो मुआशरे भी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मियां बीवी के ताल्लुक को अपनी कुदरत की निशानी करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखती है। सबने कराम, मोहब्बत के बाद या मवद्दत के बाद यहाँ एक इस्तेला रहमत का भी है, क्योंकि मोहब्बत कभी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रहमत इंसान को हर हाल में एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हर नेमत के साथ

असलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ आपके साथ आपके आर जे महवश. और घड़ी में टाइम देखें तो उस वक्त हो गए 6:02. मेरा और आपका साथ रहने वाला है 9 बजे तक. और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू. हफ्ते का आगाज़ हो गया है और उम्मीद है कि अच्छी तरह से हुआ होगा आपके हफ्ते का आगाज़ और सब सेट होगा. अच्छी सी सुबह हो गई होगी और आप लोग बिल्कुल ताज़ा दम फील कर रहे होंगे, जबकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सैटरडे नाइट ना हम सब लोगों का यही होता है कि सैटरडे को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उठे थोड़ा सा लेट होते हैं ना, तो इस वजह से नींद नहीं आ रही होती. कल खुद मैं भी 12 बजे ही सोई हूँ, 12 बजे के बाद ही लेटी हूँ, फिर एक सुनते सुनते चीज़ सो गई लेकिन फिर भी नींद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह. तो मतलब कुछ घंटे भी अगर आपको नींद आ जाए, पिछले हफ्ते मुझे याद है कि नींद ही नहीं आ रही थी, किसी तरीके से नहीं आ रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो नींद तो आ गई जितने घंटे की भी हुई. और आजकल अच्छी चीज़ क्या है ना, आजकल अच्छी चीज़ ये है कि समर ब्रेक्स हैं तो वो बच्चों का स्कूल का आने जाने वाला सीन नहीं है, तो आप आराम से फिर भी नींद पूरी कर सकते हो. तो सिलसिला अच्छा चल रहा है और आप लोगों की भी डेफिनेटली ये जो वेकेशंस का आगाज़ हो चुका है समर ब्रेक का, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा. अच्छी वेकेशंस जा रही होंगी, प्रोडक्टिव होंगी और साथ में ये कि अच्छा अच्छा घर पे भी अच्छा माहौल होगा. तो खैर माँ बाप अक्सर मैंने देखा है कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं बच्चे जब घर पे होते हैं, लेकिन खैर आपका सीन ऐसा नहीं होगा मुझे उम्मीद है. जी क्या आज का मामला है? आज भाई 5 जुलाई, राइट? हाँ 5 जुलाई और इतवार का दिन है. हम एक दफ़ा फिर से आ गए. आपकी खैर खैरियत मैं पूछ चुकी हूँ और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं. उसके लिए आप 6662107 पे हमें कर सकेंगे मैसेज और साथ ही 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं खैरियत के बारे में और भी जो मैं सवाल आज आपसे करूँगी उसके बारे में. तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, ज़रूर मैसेज कीजिएगा. मैं रोज़ाना की तरह आपकी मुंतज़र हूँ यहाँ पर कि आप लोग कीजिए कॉल, मैसेजेस और शरीक होइए शो में.

Alright, और आ जाते हैं हम इस तरफ कि हमारी जो तहरीर होती है रोज़ की वो हम शामिल कर लें, फिर उसके बाद हम अस्कार सुनेंगे और फिर वापस आएंगे, आपको टॉपिक भी बताऊंगी और हमारे शो में वही अपडेट्स शामिल रहेंगी, सब कुछ होगा जो रोज़ाना की तरह होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी तहरीर की तरफ। अच्छा, ये जो है जिक्र जो आज का है वो ये है कि आप लोग जानते हैं ये तकरीबन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयात हैं और उनमें तकरीबन हर जगह अल्लाह ताला ने एक ख़ास अंदाज से गुफ्तगू इख्तियार किया हुआ है। मतलब आप देखें तो आपको कुरान में हर जगह पे ना मुख्तलिफ अंदाज़े बयां मिलेगा, मुख्तलिफ अंदाज़े एक तरह से गुफ्तगू मिलेगा कि अल्लाह ताला अलग अलग तरीके से हमसे मुखातिब करते हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहाँ ये अंदाज़ बदल जाता है और इस तब्दीली में दुआ का एक ऐसा रास पोशीदा है जो बंदे और रब के ताल्लुक़ को एक नई मतलब जहद दिखाता है, एक नई रोशनी में दिखाता है। जब भी सहाबा कराम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करते थे तो कुरान का ख़ास असलूब होता था। अल्लाह ताला जवाब बरहाए रास नहीं देते थे बल्कि पहले अपने नबी से फरमाते थे कि कुल, यानी जवाब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दिया जाता था। मसलन सदक़े के बारे में पूछते हैं तो फरमा दिया जाता है कि कह दीजिए जो ज़रूरत से ज़्यादा हो वो खर्च करो। जब चाँद के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि कह दीजिए कि ये लोगों के लिए वक्त मालूम करने का ज़रिया है। जब रूह के बारे में पूछते हैं तो फरमाया गया कि कह दीजिए रूह मेरे रब के हुक्म से है। यानी हर जगह आपको ये तरतीब मिलेगी, कुल, फिर उसके बाद जवाब। सवाल होगा सहाबा की

तरफ से, फिर कुल कहा जाएगा यानी कह दीजिए और फिर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जब हम सूरह बकरा की आयत नंबर 186 पे पहुंचते हैं, मैं आपको ये आयत का साथ साथ बताती भी चलूं कि कौन सी आयत है, मैंने आपके लिए निकाल के रखी है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये आयत नंबर 186 है जिसमें अल्लाह ताला मतलब कह रहे हैं, तर्जुमा जो उसका है, और ए नबी जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता दें कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, बस चाहिए कि वो भी मेरी बात माने और मुझ पे ईमान रखें ताकि वो हिदायत पाएं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पे हमें बहुत ही मतलब एक ऐसी चीज़ मिलती है कि जो अगर जिसके ऊपर हम गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ अल्लाह ताला ने बीच में जब ये बात करनी थी, दुआ के हवाले से बात करनी थी, तो अल्लाह ताला ने कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि कह दीजिए, बल्कि ख़ुद से एकदम मुखातिब हुए अपने बंदों से कि यहाँ कुल मौजूद ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं फरमाया कह दीजिए, बल्कि बराहे रास्त अपने बंदों से मुखातिब हुए और कहा फ़ानी करीब, तो उन्हें बता दें कि मैं अब तो बहुत ही करीब हूँ, फिर फरमाया कि मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारते हैं। तो गौर कीजिए कि ये नहीं फरमाया कि मैं सिर्फ कामिल इबादत गुजार की दुआ सुनता हूँ, मैं मुत्तकी की दुआ सुनता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ बहुत बड़े आलिम नेक और जो बहुत पाकबाज शख्स है उसकी दुआ कबूल करता हूँ, बस इतना फरमाया कि जो मुझे पुकारता है, यानी असल चीज़ जो है वो है पुकारना। हम में से अक्सर ये होता है कि हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी कहाँ सुनेगा, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, जब मैं 5 वक्त का पाबंद हो जाऊँगा तब दुआ करूँगा, जब मेरे गुनाह कम हो जाएंगे तब मेरे हाथ मैं उठाने के काबिल होऊंगा, तब अल्लाह से बात करूँगा, जब बेहतर इंसान बन जाऊँगा उस वक्त दुआ करूँगा, अभी मैं इस काबिल नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस आयत का जो पैगाम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि पहले मेरे पास पहुँचो, बिल्कुल कामिल हो जाओ, गुनाह छोड़ दो, कभी कोई गुनाह करना ही नहीं, मुत्तकी हो जाओ, कामिल बन जाओ, फिर मैं तुम्हें सुनूंगा, बल्कि फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, यानी अभी आप रास्ते में हैं, अभी तलाश में हैं, अभी कमज़ोर हैं, अभी टूटे हुए हैं, और उसी हालत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं करीब हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं। अगर किसी को हमेशा बंदों और अल्लाह के दरमियान वास्ता बनाया जा सकता था तो वो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। लेकिन दुआ वाली इस आयत में अल्लाह ताला ने इस वास्ते को भी हटा दिया ताकि हर बंदा ये जान ले कि अपने रब से बात करने के लिए उसे किसी सिफारिश, किसी मुतरजम या किसी ख़ास शख्सियत की ज़रूरत नहीं होती। अब ज़रा एक माँ के बारे में सोचिए, जब उसका बच्चा रोता है तो क्या वो चाहती है कि कोई दूसरा आके उसे खबर दे? हरगिज़ नहीं, वो ख़ुद अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहती है। तो अल्लाह ताला को तो कहा जाता है ना कि 70 माओं से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दुआ की आयत में हर ज़ाहरी फ़ासले को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे अपने बंदे की बराहे रास्त पुकार महबूब है। उसे हमारी सजी हुई इबादतों से ज़्यादा हमारे टूटे हुए दिल की जो आह है वो अजीज़ है। हमें हमारे जो आंसू होते हैं उसकी ज़बान भी हमारे रब सुनते हैं। उन्हें किसी किस्म की मुतरजम की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो दिलों के राज जानने वाले हैं। हमारे बेदाग माजी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मतलब अगर बंदा ये सोचे कि नहीं मेरी ज़िंदगी में मेरे माजी में तो बहुत गुनाह है तो फिर दिल को पाक करने की तो इब्तिदा होगी नहीं ना। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हिम्मत कि अपने रब से हम बात कर सकें। इसीलिए अगर आज हम में से किसी का दिल भी बोझल है, परेशान है, ख़ुद को अल्लाह से दूर महसूस करें तो खामोश ना रहिए बल्कि अपने रब से बात कीजिए। चाहे आपके पास अल्फाज कम हो, चाहे आँखों में आंसू हो, चाहे सिर्फ दिल ही दिल में पुकार रहे हो, क्योंकि कुरान में सिर्फ एक जगह अल्लाह ताला ने गुफ्तगू का मामूल बदल कर ये यकीन दिलाया है कि दुआ में आपके और आपके रब के दरमियान कोई फासला नहीं है। मानती करीब, बेशक मैं बहुत करीब हूँ। चलिए जी, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अस्कार की जानेब और उसके बाद वापस आते हैं, सुनते रहें FM 107 दिल से तेज़ी।

एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

जी राइट, वेलकम बैक. आप सुन रही हैं 107 FM. एक दफा फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ समर मॉर्निंग, और मेरा और आपका साथ रहना है 9 बजे तक, आप जानते हैं. खैर जी, आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है वेदर के क्या हाल चाल हैं. तो वेदर अपडेट कुछ यूँ है कि इस वक्त हो रहे हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे कम जो दर्जे हरारत है वो आज 31 ही रहना है, यानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक. यानी मतलब 45 में कह रही थी ना फील्स लाइक, लेकिन आज 45 तक है, तो फील्स लाइक आप समझ सकते हैं 50 तक भी जा सकता है. इसलिए आज आपने खसूसी तौर पे अपना ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना है, जिसकी मैं आपको थोड़ी देर के बाद हिदायत वगैरह भी देती हूँ. लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ, एयर क्वालिटी मॉडरेट है, ह्यूमिडिटी 31%, यानी कि काफ़ी हद तक ड्राई ही इन्वायरमेंट है, और इसके साथ ही जो आपका यूवी इंडेक्स है वो भी वीक है, वीकेस्ट लेवल के आज ही कहना चाहिए. तो भाई सिलसिला ये है कि आप लोगों ने ख्याल रखना है अपना गर्मी के मौसम में. अब ज़्यादा इस वक्त चूँकि गर्मी हो रही है, आज जब अभी से ये है हालात, तो फिर आगे जो है वो होगा ये कि ज़्यादा गर्मी का एहसास भी होगा, ज़्यादा प्यास वगैरह भी लगेगी. तो आपने इस वक्त अपना गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से जो थकान हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, डिहाइड्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है, तो उसको मद्देनज़र रखना है, ठीक है. और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप अगर अपना लें तो वो आपको काफ़ी हद तक महफूज रखती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आप ये जो है ना आपका सनग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में देखा भी नहीं जा रहा था बंदे से. उसके साथ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और आपने सुबह में ना, जैसे अभी नाश्ते की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने हैवी या फिर ऑयली नाश्ता उसको अवॉइड करना है. मतलब आप रात का बचाव अक्सर होता है, लोग सालन वगैरह खा लेते हैं या कुछ इस तरह की और चीज़, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए. आप नाश्ते में अंडा लीजिए और साथ में योगर्ट ले लीजिए, ओट्स खा लीजिए, या फिर आप होल व्हीट ब्रेड, जैसे भी हो सीजनल फ्रूट्स वगैरह शामिल कर सकते हैं, बनाना खा सकते हैं. मतलब ऐसी चीज़ लें जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक है, सुबह सुबह. तो मतलब हैवी और ऑयली नाश्ते से इस वक्त आपने गुरेज करना है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सुस्ती भी होती है, और इस मौसम में ये होगा कि आप अगर इस तरह का कुछ खाना खाएंगे मुर्गन, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है. पानी की भी ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है आपको. खैर इसके साथ ही कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सीजनल फ्रूट्स हैं, ख़ासतौर पे जो पानी वाले फल होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, आम आजकल अच्छे आए हुए हैं, वो आप इस्तेमाल करें. अंगूर, दीगर और जो दीगर जो हमारे इस वक्त सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप लीजिए, ताकि आपकी विटामिंस, मिनरल्स और पानी की अच्छी खासी मकदार वो फराहम करते हैं, वो पूरी हो सके और आपको डिहाइड्रेशन ना हो. साथ ही साथ खुराक में कोशिश कीजिए कि चिकन, फिश, एग्स, ये सारी चीज़ें हैं इस्तेमाल कीजिए. बस आपने ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा मुर्गन किस्म के खाने ना हो. चीज़ें सारी खाएं, मतलब आपको अपनी पूरी न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल रखना है, लेकिन हद से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है. और प्याज लगने का इंतज़ार ना करें. अक्सर ये होता है कि नहीं लग रही होती, वैसे मुझे तो कल से मैं नोट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा प्याज लग रही है, थोड़ी थोड़ी देर में लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं लग रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं है. आपने थोड़ी थोड़ी देर में वैसे ही अपने आप को खुद ही रिमाइंडर्स देने कि भाई पानी पीना है, पानी पीना है, ठीक है. तो पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें, पानी अपने पास रखें ज़रूर, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप पानी पिएं. और बॉडी टेम्परेचर आपका इससे जो ना थोड़ा अतदाल पे रहता है, आपको थकन और ख़ास तौर पे जो हेडेक है उसका इम्कान हो जाता है काफ़ी हद तक कम. अदरवाइज़ आपने नोट किया होगा कि गर्मियों के मौसम में बहुत सर में दर्द हो रहा होता है, समझ में भी नहीं आ रहा होता. उसका रीज़न ये होता है, हम समझ रहे होते हैं हमने तो अच्छा खासा पी लिया, प्याज भी नहीं लग रही थी जितनी रिक्वायरमेंट थी, हमने पी लिया, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त है ड्राई इन्वायरमेंट और फिर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें अचानक से ना आपको मतलब ये हो सकता है कि पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेट आप फील करें. तो ज़रूरी नहीं है कि दिनों का मामला हो, ये एक दिन में भी इस तरह से बिल्कुल आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं. तो इसलिए पानी आपने रखना है अपने पास लाजमी, वक्तन फवक्तन पीते रहना है, चाहे आपको प्यास लगे चाहे ना लगे. और जितने भी मेहनत के काम वाम हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निपटा लें, और या फिर आप कोशिश कीजिए कि ठंडे मौसम में शाम को मतलब जो है वो कीजिए, लेकिन मतलब शदीद किस्म की जो जिस वक्त धूप वूप हो उस वक्त बिल्कुल अवॉइड करें. तो आज ज़रा ज़्यादा मौसम ऐसा है कि जिसमें इम्कान है कि ज़्यादा गर्मी होगी, आज टेम्परेचर ज़्यादा आपको महसूस होगा, तो थोड़ा ज़रा ज़्यादा अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है. वेदर अपडेट के बाद आ जाते हैं हम, कि आज 5 जुलाई है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ.

तो 5 जुलाई को होता क्या गया है दुनिया में, ये अब आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आज यूएसए में मनाया जाता है नेशनल वर्कहोलिक्स डे। वर्कहोलिक्स डे, ये इस दिन का मकसद बेसिकली ये होता है उन लोगों को याद दिलाना जो कि हद से ज़्यादा काम करते हैं, हद से ज़्यादा काम करते करते करते अपनी सेहत, फैमिली और पर्सनल लाइफ तक को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए मनाया जाता है और इस बात पे जोर दिया जाता है कि काम ज़रूरी है लेकिन आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है उससे भी ज़्यादा वो अहम है। तो इस बात को समझे और इसमें ना एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको मुनासिब आराम, एक्सरसाइज, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, हॉबीज़ वगैरह अपनाना प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो वो लोग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ काम काम काम काम के ऊपर बिलीव रखते हैं, अच्छी बात है लेकिन मतलब इतना भी काम नहीं ना, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी आपने करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली लाइफ आपकी जितनी अच्छी होगी, आप जितना अपनी फैमिली के साथ उठेंगे बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो आप ज़हनी तौर पर ना हल्का फुल्का बंदा महसूस करता है, उसको अच्छा अच्छा फील होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये लाजमी करें। अच्छा, जो दूसरा दिन है ना वो है नेशनल एप्पल टर्न ओवर डे और ये भी यूएसए में मनाया जाता है। और बेसिकली फूड लवर्स के लिए आज नेशनल ये जो एप्पल टर्नओवर डे है ये क्यों मनाया जाता है, बेसिकली एप्पल टर्नओवर एक मशहूर पेस्ट्री होती है जिसके अंदर मीठे सेब, सिनेमन और कभी कभी मतलब जो है किशमिश विशमिश ये सब कुछ भी जो है ना फिल हुआ हुआ होता है। तो इस दिन बेकरीज और घरों में लोग इसको बनाकर या फिर ख़रीद कर इंजॉय करते हैं और ये दिन ट्रेडिशनल बेकिंग और होम मेड डेजर्ट्स की जो अहमियत है उनको उजागर करता है, राइट। तो ये है, फिर इसके अलावा आ जाता है एक और मज़े का दिन और वो है बेसिकली, ये मेरा ख्याल है ये हम सब लोगों की बड़ी फेवरेट बचपन में होती है, मैकेनिकल पेंसिल डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस फन ऑब्जर्वेंस का मकसद जो है ना मैकेनिकल पेंसिल की इनोवेशन और उसके प्रैक्टिकल फ़ायदों को अप्रिशिएट करना है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और स्टूडेंट जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैकेनिकल पेंसिल बहुत मकबूल है क्योंकि उन्हें बार बार शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती और ये साफ़ और प्रिसाइज राइटिंग ड्राइंग के लिए बेहतरीन होती है। तो इस दिन स्टेशनरी लवर्स अपनी पसंदीदा मैकेनिकल पेंसिल और क्रिएटिव राइटिंग या फिर स्केचिंग का भी इजहार करते हैं। तो ये दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है और बड़े मज़े की होती है, मतलब बचपन में हर बच्चे का मतलब अरमान होता है कि हमारे पास ये पेंसिल हो, अगर वो किसी दूसरे बच्चे के पास देख लेना तो उसको लाजमी चाहिए होती है। खैर जी, इसके अलावा एक और जो दिन है वो है नेशनल ग्रैहम क्रैकर डे, ये मनाया जाता है और ये हल्का फुल्का बिस्किट होता है जो स्नैक्स और आपको बताया कि डिज़र्ट्स ख़ास तौर पे जो चीज़ केक्स और इस तरह के जो और चीज़ें होती हैं ना उसमें बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इस फन फूड डे पर लोग मुख्तलिफ रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और फैमिली के साथ बेकिंग एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते हैं। तो ये मतलब आज का सीन था, मतलब खाने पीने से ज़्यादा रिलेटेड। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर और हम लेते हैं उनको ऑन एयर। क्या हो गया,

0: लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: Right, welcome back. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महावश और सीन कुछ ऐसे हैं कि मैंने आपसे सवाल ये किया है कि अगर आपकी लाइफ का होता एक थीम म्यूजिक, मतलब चल रहा है पीछे मुसलसल चल रहा है, ठीक है, तो वो थीम म्यूजिक किस तरह, उसकी क्या होती, मतलब उसकी ना, मतलब जॉनरा क्या होता, बहुत इमोशनल टाइप होता या फिर बहुत ही जो है ना काम सा पीछे पुरसकून सा एक चल रहा है, जैसे वो नहीं दरिया के बहती हुई आवाज़ होती है, ठीक है, और उसके साथ या फिर बहुत हैप्पी होता, जैसे भी नसीब ने कहा है कि हैप्पी मूड का होता, फिर वो एडवेंचरस हो सकता है, थ्रिल हो सकता है, कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का बहुत फास्ट म्यूज़िक हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा होता आपकी लाइफ में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको दे दिया जाए तो वो किस तरह का होगा, ये आपने मुझे बताना है। थोड़ा सा मुझे पता है डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मतलब ज़रा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि भाई क्या कहें, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, मुझे पता है अंदाज़ा है कि थोड़ा इसलिए मुश्किल भी हो रहा होगा और हो सकता है कि थोड़ी हमारे पास आज कॉल्स भी कम आए, लेकिन कोशिश करें, मतलब ऐसी फॉर फन आज ये जो शो होते हैं ना मॉर्निंग वाले, इसमें हम इस तरह के सवाल रखते हैं जिसमें आपको बहुत कोई दिमाग पे जोर ना डालना पड़े, सुबह सुबह बहुत फलसफे और बहुत इस तरह की चीज़ें ना हो बल्कि हल्की फुल्की सी चीज़ें हों, उनके हवाले से हम बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु। जावेद बाजवा
3: जी, कैसे हाल चाल हैं आपके? Happy Sunday.
4: Same to you और तमाम सामीन को, FM 107 की टीम को, पूरे कतर को, पूरी दुनिया को, RJ महविश खान की जानिब से Happy Sunday.
3: ये जरा जी, तो कैसा हुआ सुबह का आगाज?
4: सुबह का आगाज एज यूजुअल जैसे माशाल्लाह हमेशा होता है, जिक्र इलाही से, नई सांस, नई जिंदगी, वही इबादत और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे।
3: माशाल्लाह बहुत अच्छी रूटीन है, बहुत ज़बरदस्त। तो आप बताएं जावेद साहब कि कैसा, मतलब अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो कोई, मतलब पूरे वक्त, तो किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक लेंगे अपनी लाइफ के लिए?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये सोच, आपके सवाल के बाद जहाँ पर मेरा जहन क्लिक किया तो मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी जो है, पहले तो ये मुनस्सर है हर बंदे की अपनी तबीयत के ऊपर, किसकी चॉइस क्या है, उसके बाद किसको राहत मिलती है क्या सुन के, उसके बाद अगर आप देखिए कि जिंदगी भी एक तारों की तरह है, आप उसमें जुड़ी हुई है, कभी अलहदा होती है कभी जुड़ती है, इसका अपना एक साज है, जिंदगी का भी एक साज है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पसंद करता हूँ तो वो डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो हार्ट टचिंग है वो है वायलिन, बड़ी प्यारी आवाज उसकी,
3: और
4: ऐसे ऐसे मतलब उसकी धुन निकलती है कि इंसान के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब आपकी जैसे

0: रुख छेड़ रहे हैं वो।
1: सही बात है, मतलब बहुत अच्छा लगता है वाकई। और कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं, मुझे नाम तो उनके खैर याद नहीं है, लेकिन आप सुनो ना तो उसमें एक अलग ही कुछ आप दुनिया में चले जाते हो। वो इतना कोई मतलब लगता है बहुत डीप कहीं पे आपको ना छिड़ते हैं वो सुर जो भी होते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। आप देखिए बड़े बड़े जो मतलब यहाँ पर तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन आप यूरोप में या मतलब मैं जब मैं पाकिस्तान गया था वहां पर भी आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं और वो हल्का हल्का वो आपसे डिमांड करते हैं कि जी आपने गिटार सुनना है, आपने क्लासिकल म्यूजिक कुछ हम गाए आपके लिए, वॉयलिन सुनना है। आप यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, उसकी आवाज इतनी मीठी है कि वो लगता है कि बस हम तो कर नहीं पाते, वरना जॉब पे मैं एक साथ बंदा रखता यार बस बजाते रहे, थोड़ा रश करो चाय पियो फिर आ जाओ।
1: अच्छा इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मतलब ना एक जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ कि बहुत एक फास्ट म्यूजिक होता है वो बड़ा मतलब एक एक धीमे सुरों पे चलता रहता है, बहुत काम बहुत ही पीसफुल सा।
0: बात वही आगे हर देखिए कोई लोग हैं जिनको क्लासिकल पसंद है, कोई लोग हैं जिनको गिटार की धुन पसंद है।
1: अच्छा आपने खुद जावेद साहब क्योंकि आप तो गाते भी हैं तो आपने खुद कौन से इंस्ट्रूमेंट ट्राई किया है कि ये बजा के देखे?
0: मैं एक मुद्दत तक मैं ड्रम भी प्ले करता रहा, मैं फिर मैंने कॉन्गो भी किया है बेसिकली। मतलब पता नहीं सामिन क्या समझते होंगे भाई, मैं कोई पैदाशी फनकार नहीं हूँ, मेरी एक हॉबी है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं 6 आवाजों में गाता भी हूँ, 6 आवाजों में। तो उसके बाद मुख्तलिफ मतलब कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज है उसको अचीव किया जाए, सीखने में कोई कबाहत नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसके बाद आहिस्ता जब थोड़ी पहचान हुई तो फिर मैंने फोकस इसी पे किया। वो भी अब मैं हर प्रोग्राम में नहीं जाता, मतलब कोई अच्छा शो हो तो उसमें चला जाता हूँ, हर जगह नहीं जाता टाइम के हवाले से, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। मीटिंग भी अच्छी हमारी होती है, कई दफा दिल करता है लेकिन जा नहीं पाते, और कई दफा दिल नहीं करता जाना पड़ता है।
1: सही है सही है। चले तो मतलब आपने ड्रम बजाया हुआ है?
0: ड्रम भी है और वो जो कॉन्गो 3 pieces का होता है कॉन्गो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही सही।
0: उसकी भी बड़ी अच्छी आवाज है उसकी, मतलब वो प्ले करते हुए बड़ा अच्छा लगता है उसको भी। और ड्रम तो खैर अपनी जिस वक्त शादी थी मेरे भाई की तो हमने एक फंक्शन रखा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो भाई जो है उसकी मैं खुद ही ड्रम वहाँ प्ले कर रहा था।
1: अच्छा अच्छा सही सही।
0: हाँ
1: चलें गुड।
0: तो इसके साथ ही एक छोटा सा मैसेज मैं दूंगा, मैं परसों मतलब लकीली मेरी किस्मत के मैं जिस वक्त गाड़ी में आके बैठा तो नफीस भाई की कॉल आई हुई थी। मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए वही बात आ गई कि हम सब एक फैमिली की तरह, हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी हम कितनी मोहब्बतों से एक दूसरे को याद करते हैं। और रियलिटी जिंदगी की जो हकीकत की जो मोहब्बत है ना वो यही है कि आप किसी को जानते भी नहीं और आप किसी के बारे में जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं वो है तारीफ,
1: बिल्कुल
0: वो है अच्छापन, क्योंकि वो खुद इंसान बहुत अच्छा होता है। और मैं आपके रेडियो के तवसुत से पता नहीं इसके बाद मैं ऑन कर पाऊँ या किस वक्त करूँ। मैं नफीस
1: आप अंताक्षरी में नहीं आएंगे आज? अगर हो सके मौका लगे तो जरूर आइएगा।
0: अच्छा वो अगर कॉल आपकी उस वक्त बिजी हुई तो फिर मैं देखूंगा टाइमिंग 8:30 बजे आपने।
1: 8:30 बजे हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप पहले से बता दें तो हम आपको ले लेंगे, तो वो मजा आएगा मतलब अच्छा लगेगा सुनने में, अगर आज या हफ्ते में किसी दिन भी, क्योंकि पूरे हफ्ते यही रहेगा।
0: कितने मतलब अंताक्षरी में कितने लोग होंगे?
1: अंताक्षरी में हम ना मेरा जो इरादा है 2 रखूंगी और उसमें से जो गाता रहेगा मतलब जिसको मुश्किल नहीं होगी अगला गाना गाने में तो वो तो रहेगा साथ में, हो सकता है कि कोई एक बंदा आखिर तक रह जाए।
0: हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है।
1: हाँ और जो नहीं कर सकेगा तो वो फिर चला जाएगा।
0: डेफिनेटली मैं फिर 8:30 बजे मैं इंशाल्लाह मैं जरूर कॉल करता हूँ 8:30 बजे। और अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉल बिजी हुई तो मैं मैसेज करूँ?
1: हाँ हाँ बिल्कुल आप कर दीजिए, आप मुझे पहले से ही बता दीजिए तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको कॉल पे ले लूंगी।
0: ठीक हो गया इंशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया जावेद साहब, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी तो हमारे साथ जावेद साहब, और आज आप लोगों ने भी याद रखना है कि अभी तो खैर शुरुआत है लेकिन आज हम अंताक्षरी का सिलसिला करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। मुझे लगता है कि मज़ा आएगा, मतलब अच्छे अच्छे हमारे पास गाने वाले लोग मौजूद हैं। पहले सोच रही थी गाना, पहले हम लोग गवाते थे ना कि गाना गाना है आज, गाने का कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन फिर वही वाली चीज़ है कि पहले हो जाते थे आराम से वोट वगैरह का सिलसिला हो जाता था, वो थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब थोड़ा सा कुछ और ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि अंताक्षरी लोग इन्जॉय करेंगे, तो आज ज़रूर सुनिएगा भी, कोशिश भी कीजिएगा कि आप कॉल करें, जिन जिन लोगों को फ़ौरन फ़ौरन से गाने याद आ जाते हैं, जिन लोगों ने अंताक्षरी में बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो आप लोगों के लिए आज अच्छा सुनहरा मौका है और नबी साहब आपके लिए भी सुनहरा मौका है जी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कौन सा म्यूज़िक, कौन सा बैकग्राउंड म्यूज़िक आपकी लाइफ में अगर आपको मौका मिले तो आपके पीछे हल्का हल्का हल्का हल्का चलता रहेगा, हल्का हल्का भी हो सकता है, लाउड भी हो सकता है, बहुत फास्ट भी हो सकता है, एडवेंचरस भी हो सकता है, जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का वो हो सकता है, तो आप लोग हमें बताएं, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज अभी थोड़ी देर में मैं आपके शामिल करती हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
4: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं,
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
4: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है, यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

आरजे सफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे महविश खान के साथ।

मॉर्निंग टू वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजू भविष खान. और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ. सवाल मैं दोहराती चलूँ अपना कि आज मैंने आपसे पूछा है, अगर आपकी लाइफ का हो एक म्यूजिकल थीम, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आपकी जो जिंदगी में मुसलसल पीछे चल रहा हो, तो वो किस किस्म का होगा. ठीक है, ये आपने मुझे जवाब देना है. थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाले. हो सकता है उन लोगों के लिए मुश्किल हो ना, कभी सोचा ही ना हो. मतलब कौन सोचता है. मैं भी जब सोच रही थी, मेरे जहन में एक बड़ा मजे का म्यूजिक आया, तो आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद. खैर जी, हमारे पास है क्या, हमारे पास है आपके मैसेजेस. गुड मॉर्निंग कहते हैं. गुड मॉर्निंग मैम. रविंदर सिंह सिद्धू यूएई और दुबई से हैप्पी संडे भी कहते हैं. हैप्पी संडे रविंदर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कैसी हैं? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आप बताएं क्या चल रहा है इस वक्त. इसके साथ ही जी हमारे पास एक और मैसेज है, और ये है पाकिस्तान से, और इनका नाम है क्या, नाम देखती हूँ मैं, नाम इन्होंने लिखा है सरदार. सरदार का नाम मैसेज है, और सरदार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह बहुत प्यारा शो आपका, तकरीबन मैं हर रोज़ ही सुनता हूँ, कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलता है. और सरदार सऊदी अरब से गाने की फरमाइश भी करते हैं, अगर फुर्सत ली तो. बहुत पुराना गाना है, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर गाने के ये बोल हैं कि ये पिया कैसे मिलूं तुझसे मेरे पांव बड़ी जंजीर. ये कौन सा गाना है? अगर कोई फिल्म का नाम पता है, सिंगर का नाम पता है, तो ये बताइएगा, वरना अदरवाइज फिर मतलब मैंने तो कभी सुना हुआ भी नहीं है ये कि कौन सा गाना है. फिर भी मैं देख लेती हूँ कि कौन सा हो सकता है, थोड़ा सा सर्च अपने तौर पे कर लेती हूँ कि अगर मुझे समझ में आ जाता है, मिल जाता है, तो मैं ज़रूर चला दूँगी. और अगर नहीं मिल सका तो फिर तो माजरत है, क्या कर सकते हैं. मुझे लग रहा है कोई बहुत ही पुराना गाना है. हाँ, बहुत ही पुराना है. चलिए खैर, ट्राई करेंगे आपके लिए ज़रूर. ठीक है, चलिए जी, आप लोग भी हमें कर सकते हैं कॉल. मैसेजेस कॉल करने के लिए नंबर 443-443-77, और कॉल के अलावा मैसेज का नंबर है 666-22-107. सवाल आपसे यही है कि अगर आपकी जिंदगी का होता कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो कैसा होता, हैप्पी होता, इमोशनल होता, काम होता, या फिर एडवेंचरस होता, थ्रिलर होता, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेरे दिमाग में शायद ना आ रही हूँ. तो उदास उदास सा होता, बहुत उदास चल रहा होता, ऐसा हो भी हो सकता है. तो आपके जहन में क्या है, किस तरह का म्यूज़िक होता, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो नेचर है, उसके हिसाब से. जैसे जावेद साहब ने कहा कि मैं जो मुझे पसंद है वो वायलिन है, तो मुझे मेरा दिल चाहता है कि वो बजता रहे. तो आप भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बता सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मतलब फीलिंग्स के साथ ही एसोसिएट किया जाए. जब आप अपने तौर पे पियानो हो गया, गिटार हो गया, होता है ना लोगों को मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें पसंद होती हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है, हारमोनियम हो गया, कुछ भी हो सकता है. तो आप बताइए, कॉल कीजिए, और इसके साथ ही हमें मैसेज कीजिए, बताइए कि आप क्या प्रेफर करते, कि आपकी ज़िंदगी का किस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक होता.

0: नहीं। खैर अगर मैं अपने शो के हवाले से बात करूं ना, तो मुझे हमेशा ये होता है कि शो की नेचर किस तरह की। अगर तो शो का इस तरह है मामला कि एनर्जेटिक होना चाहिए, तो थोड़ा सा मतलब अगर एनर्जी वाला म्यूजिक होगा ना, तो आप खुद ब खुद एनर्जेटिक हो जाते हो। अगर आपके पीछे म्यूजिक ऐसा चल रहा है जो कि थोड़ा मतलब जो ना स्लो है, तो आप चाहते हुए भी ना वो वाली एनर्जी नहीं ला पाते, तो ये होता है। अच्छा, अभी जैसे वो कह रहे थे हमारे जो पहले कॉलर थे नसीम, कि हैप्पी हैप्पी रहेगा तो काम करने में आसानी होगी। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें मेरे मुझे तो खैर कोई आवाज़ चाहिए होती बेसिकली। अब मैं ये बात समझी हूँ, पहले ये होता था कि अगर तो मतलब कोई जैसे जो ज़माने में बहुत म्यूज़िक सुनती थी उस वक्त में, मैं आराम से भाई मतलब पढ़ाई के दौरान म्यूज़िक लगा हुआ हो, घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ बहुत ईजिली हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। खुशी खुशी खुशी खुशी पूरे घर में लहराते घूम रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं, तो ये वाला सीन होता है म्यूज़िक अगर आपके पीछे से कोई चल रहा हो। लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मेरी बहन की फ़ोन कॉल भी इसके लिए काफ़ी है, मतलब वो बोलती रहे तो मेरे फिर भी काम बड़े आराम से हो जाते हैं। और मुझे वो वाले ना, मैं ब्लूटूथ या फिर हैंड फ्री वगैरह यूज़ नहीं करती, बाकायदा मैं कान पर यूँ टिका के और उसके साथ अपनी दुनिया के सारे काम कर लेती हूँ। तो ये मतलब एक टैलेंट है भाई। तो मतलब कोई ना कोई आपके कान में आवाज़ पड़ी हो ना, आपका दिमाग बेसिकली कहीं और भी हो साथ में, तो आप बड़े आराम से अपने काम निपटा सकते हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि कहीं और भी कोई रेडियो सुनते हुए, जैसे अक्सर लोग इसलिए रेडियो सुन रहे होते हैं क्योंकि वो साथ में अपना काम जो है वो उनको फिर बोझ नहीं लग रहा होता, वो आराम से कर लेते हैं, ज़रा मतलब ईजी हो जाता है उनके लिए। तो क्या आपका शुमार भी ऐसे ही होता है? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ का होता कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक तो FM 107 होता है जो हर वक्त 24 घंटे बजता रहता है, और बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता भी है। तो खैर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आसान कर रही हूँ आपके लिए। तो आप लोग करिए मुझे कॉल कीजिए और साथ ही मुझे बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे कि क्या हो आपकी ज़िंदगी का बैकग्राउंड म्यूज़िक। मुझे लग रहा है बहुत टफ हो गया लोगों के लिए, लोग सोचे जा रहे हैं उनको जवाब नहीं मिल रहा कि क्या बताएं। खैर जी, हम आ जाते हैं अपने जो है एक चीज़ की तरफ। मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। भाई सबसे पहले ये कि अगर आप दिन भर का आगाज़ एक बेहतर प्लानिंग के साथ करें ना, तो ना सिर्फ ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है। वो किस तरह से? मतलब आपने पहले से सोचा हुआ हो कि कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि आपने निपटाने हैं। तो ये चंद बहुत ही आसान सी आदतें मैं आपको बता भी रही हूँ कि जो ख़ास तौर पर आपकी सुबह के वक्त को मुनज़्ज़म और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि काम शुरू करने से पहले ना अपनी 3 प्रायोरिटीज़ जो हैं वो तय करें। मतलब सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आज के सबसे जो 3 अहम काम हैं, इम्पॉर्टेंट काम हैं, वो क्या होंगे। जब आपकी ये तरजीहात सेट हो जाती है ना, तो फिर ये होता है कि आपकी तवज्जो क्लियर हो जाती है, आपको पता होता है कि कौन सा काम आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आप उसको पहले करते हैं तो वो इजीली हो जाता है। वो इम्तिहानात में भी कहा जाता है ना कि जो सबसे वो वाला सवाल जो इम्पॉर्टेंट भी है, जो आपको आता भी है, तो वो फिर आप पहले कर लीजिए। आप इस वक्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई कॉल क्योंकि मैंने होल्ड करवा दिया, तो इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: कमालुद्दीन बोल रहा हूँ।
0: सॉरी,
1: कमालुद्दीन
0: क्या हाल है भाई, क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम, आपकी क्या हाल है?
0: अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या चल रहा है, कैसी हुई सुबह आपकी?
1: सुबह तो डेली एक ही जैसी है।
0: एक ही जैसी है,
1: सही। मेरी डेली तो साफ सफाई करना है, गाड़ी साफ करना है, उसके बाद कभी ड्यूटी लगी तो। आज आपने बात छेड़ी म्यूजिक की, तो मेरा तो समझ लो कि 8 या 9 साल से ये कंटिन्यू है कि सुबह जो है 6 से 9 मैं रेडियो सुनता ही हूँ।
0: अच्छा,
1: कंटिन्यू वेद आए, शाम और नाजी है मैडम के बाद और लोग आते रहे, मॉर्निंग में तो सुबह कंटिन्यू है।
0: अच्छा,
1: 6 से 9
0: सही,
1: तो ये सब जो नहीं सुनता हूँ रेडियो।
0: तो मॉर्निंग में ही सुनने की वैसे खास वजह क्या है?
1: मॉर्निंग में सुनने की वजह खास ये है कि मैं काम करते रहता हूँ, साफ सफाई का काम है।
0: सही सही सही सही,
1: कंटिन्यू मेरा काम ही है और कंटिन्यू में सुनता भी हूँ।
0: हाँ हाँ सही। तो आपके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ तो वो FM 107 है।
1: उसके बाद अगर दूसरा कुछ काम रहा और उसके बाद कुछ सुनना रहा, तो मुझे सबसे अच्छी म्यूजिक लगती है उसकी हीरो मूवी की, जो बासुकी की म्यूजिक है वो सबसे अच्छी लगती
0: है। सही सही, तो वो अच्छी लगती है। सही हो गया,
1: वो अच्छी लगती है।
0: सही सही, गुड, जबरदस्त, मतलब अच्छी चॉइस है, अच्छी चॉइस है, जबरदस्त। और बताए कमालुद्दीन साहब,
1: आपको
0: सॉरी
1: अभी टाइम मिलता है? डेली मैं आपको सुनता हूँ, कभी टाइम मिलता है बात करने का, कभी नहीं मिलता।
0: हाँ हाँ सही, सही सही, गुड, जबरदस्त। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सुनते रहते हैं और आपका काम में आसानी हो जाती है। जैसे मैंने भी कहा ना, पहले एक वक्त था जब मैं भी मुसलसल रेडियो लगा के अपने सारे काम, मतलब म्यूजिक भी चल रहा है उसमें, आरजे के शोज भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो चलता रहता था और साथ में पढ़ाई भी हो जाती थी और दीगर जो और काम है वो भी वाकई मतलब बड़े आसानी के साथ हो जाते हैं। आपका मतलब ना ध्यान बटा रहता है तो आपको इतना ज्यादा वो फील नहीं होता। सॉरी,
1: म्यूजिक चलते रहे तो काम का पता नहीं चलता है।
0: हाँ, मतलब चाहे म्यूजिक सुन रहे हो चाहे किसी को सुन रहे हो, कोई बोल भी रहा हो ना तो काम आपके आराम से हो जाते हैं। सही हो गया। चलें जी कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो कमाल साहब का वही आंसर था जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई अक्सर ये होता है कि अगर आप रेडियो सुन रहे हो तो आपका काम भी इजीली हो जाता है, तो वो भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है आपके लिए। एक जिंगल सुनते हैं, एक मिनट का है, वापस आते हैं, कॉलर है हमारे साथ।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: Ready, right. 7:00 हो गए हैं 2 मिनट और हमारे साथ कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह.
1: जी रईस भाई, क्या हाल चाल हैं आपके?
2: आप ऐसे टॉपिक लेके आ जाती है कभी कभी कि लोग जैसे वो वोडाफोन और इसमें ओरिडो के उसमें कस्टमर केयर में पहले बड़े आसानी से लोगों का कॉल लग जाता था. तो उसको बस फटाफट लोग तंग करते थे, अरे ऐसे कैसे होगा, वो ऐसे कैसे होगा, ज्यादा सवाल. अब ऐसे घुमा घुमा के इतना ये करने के लिए इधर से दबाए, फिर घुमा के उधर से दबाए, उधर से दबाए, वो बेचारा परेशान होके कॉल रख देता था कि यार कहा ये कस्टमर केयर का. घुमाते घुमाते ये दबाते वो दबाते, जीरो दबाओ, स्टार दबाओ, करते करते
1: आज का सवाल मुश्किल हो गया क्या?
2: तो अब ऐसे कभी कभी हो जाता ना कि बंदे के दिमाग में नहीं आ रहा कि यार मैं बोलूंगा क्या. हो भी ऑन एयर लोगों के सामने बोलेंगे यार इसे कुछ भी नहीं आता है, बस ये बस ऐसे लगा लिया फोन इधर उधर की बातें करने के लिए. तो बेचारे ये भी थोड़ा सा मतलब कशमकश में पड़ जाते हैं कि यार बात करें क्या करें.
1: नहीं थोड़ा सा मतलब मजे का हो ना, मतलब मैंने जब मैं खुद भी सोचने वाला सवाल तो फिर मैंने सोचा मेरा क्या होगा.
2: मैं बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा टफ होना चाहिए लाइफ का और बातों के उसमें कि जो आदमी तो उसे कहीं ना कहीं से तो उसका निकलेगा बात का निकलेगा रास्ता और उस वही मुश्किल को फतेह करना ही जब फिर उसको आसानी के उस पर लेके जाता. भाई हर मुश्किल के बाद में तब आसानी आता है ना. ये जरूरी नहीं है कि मतलब हर चीज ऐसे आराम से परोस दिया जाए बैठ के, अंडे छील के रखे रहे फट से उसको उठा के खा लो तो फिर वो मजा नहीं है ना. फिर उसको आराम से पहले उसके ऊपर थोड़ा सा जद्दोजहद करो फिर मजा आता है सुनने का भी. और उसमें आदमी के अंदर ये रहता है कि यार देखो मेरे बाद ये बंदा क्या कहता है, उसकी क्या राय है, उसमें थोड़ा सा आदमी को मजबूर होना पड़ता है.
1: सही सही.
2: तो आपकी जो मूवी होती है थोड़ा सा मतलब ये रहती है कि लास्ट में स्टोरी का पता चलता है कि विलन कौन था, हीरो कौन था.
1: सही हो गया. तो आपने क्या सोचा रईस भाई? अभी मतलब आधा घंटा तो सोचा है आपने, क्या सोचा है?
2: भैया हम तो सोच रहे हैं कि बस वही पीछे लगा लो दंगल दंगल दंगल दंगल है नहीं मतलब. और ये वो देख लेंगे कि मतलब उन लोग के पीछे गाना चलते रहता है
1: वो जो आमिर खान वाला है.
2: हाँ आमिर खान वाला. और ये संजय दत्त के ऊपर एक मूवी बनी थी ना कि मतलब तू हर मुश्किल को करने पड़ता यार मतलब तू घबरा मतलब तू हर मुश्किल को मतलब ये करके तू चलते जा किसी के पीछे देख के और ये करके. क्योंकि मुश्किल में जिंदगी में हर टाइप का आपके लाइफ में आता है. ऐसा नहीं है कि आपके उसमें हमेशा खुशी और खुशी ही मिलेगा. कभी कभी आपके सामने टफ लाइफ आता है और आके बहुत टाइम तक आदमी को परेशान कर देता है. और परेशान करने के बाद आदमी को घबराना नहीं चाहिए. पीछे से उसको हिम्मत देने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई तू फतेह कर लेगा यार, तू मतलब चलते जा अपने कोशिश को जद्दोजहद को जारी रख. मतलब ये मत घबरा कि मतलब भाई रात है तो सुबेरा भी होगा. हाँ भाई हाँ है कि नहीं है.
1: बिल्कुल है, बिल्कुल
2: मैंने कोशिश किया है आपके बातों का थोड़ा सा मतलब निकालने के लिए. आदमी को घबराना नहीं चाहिए कि भाई मुश्किल आए तो बस हम इसी में घिरे रहेंगे. अल्लाह ताला वो धीरे धीरे धीरे फिर उसको आपके लिए सुबह भी होगा, आसानी भी आएगा. तो बंदे को अपना पॉजिटिव ये करके कोशिश करके चलते रहना चाहिए. और पीछे से वही है कि एक दंगल दंगल हिम्मत देने वाला ये चीज भी
1: है. ये अच्छा सोचा आपने दंगल का.
2: हाँ लड़ते रहते हैं और मतलब भाई उसमें आदमी का हार या जीत दो सिचुएशन होता है ना कि या तो हार जाना है मुझे या तो जीतना है. लेकिन आपको हारते के उससे मतलब अपने जहन में ना रखें वो. बिल्कुल मतलब लड़ते रहे उस जंग में कि मतलब भाई दो दो तरफ से लड़ रहे हैं तो कोई कोई ना कोई एक तो होना ही होना है. तो उससे उसको अपने दिल पे लेके जहन पे लेके मतलब आदमी को घबराना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. हाँ मेरा तो यही भाई आपके उस पर फिर यही भाई ये करूंगा.
1: दंगल दंगल कर हर मैदान फतेह, राइट. ये दोनों आपके पीछे बचते रहे और आपका जो है मुश्किलें आसान हो जाएंगी आपकी. सही है.
2: अरे भाई आप कप लेके आती तो हम भी कुछ कप लाके बीच में डाल देते कि मतलब.
1: सही. चले गुड है, गुड है.
2: आप फंसा रहे हो तो फिर हम बोले कि चलो हम भी थोड़ा सा ये करके अपने बात को रखे और भाइयों का भी.
1: चले जी रईस भाई, बहुत अच्छा लगा. अब आपके पीछे शोर बढ़ गया है तो हम आपसे बात करते हैं, ठीक है?
2: गाड़ी से मैं बाहर आ गया, थोड़ा मसला ये हुआ, उतरना था मुझे गाड़ी से।
1: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, चले जी कोई मसला नहीं है। अंताक्षरी सुनिएगा, भी हो सके तो पार्टिसिपेट भी कीजिएगा, ठीक है? चले दीजिए, चले ओके, वालेकुम सलाम। रई जी, तो हमारे साथ रईस भाई थे और उन्होंने बताया कि दंगल दंगल और पीछे अगर हर मैदान फतेह लगा हुआ हो तो इनके काम जो है वो आसानी के साथ हो जाएंगे। तो खैर, मुझे अंदाज़ा हो रहा है काफ़ी थोड़ा सा टफ हो गया है आज का सवाल, लेकिन देखिए मतलब होता है कहना, किसी भी मूवी को उठा के देख लें आप, बहुत ही क्लासिकल कुछ मूवीज़ आपको जो मिल रही होंगी ना, तो उसका आपको मूवी से ज़्यादा ना, वो आपको मूवी इसलिए अच्छी लगी होगी कि मूवी तो है लेकिन साथ ही साथ उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है ना उसके पीछे पीछे, तो वो उसकी असल जान होती है। अब जैसे देवदास देख लें आप, हम दिल दे चुके सनम देख लें, ठीक है? इसके अलावा दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, और इस तरह की बेशुमार मूवीज़ हैं जिसका जो फिल्म तो अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, लेकिन उसके साथ जो उसका बैकग्राउंड स्कोर था ना, उसने कोई एक सहर तारी कर दिया था लोगों के ऊपर, मतलब वो एक जकड़ लेता है इंसान को, तो ये वाला सीन होता है। तो अगर आपकी लाइफ का कोई हो बैकग्राउंड म्यूज़िक तो क्या होगा? हमारे साथ कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी सॉरी,
2: मैसेज तो डेली डालता हूँ, मैं फोन भी करता हूँ।
1: मैसेज तो डेली डालते हैं और फोन भी करते हैं, ठीक है? कौन है फिर हमारे साथ, नाम भी बता दीजिए।
2: नहीं बताऊंगा,
1: हाय अल्लाह, नहीं बताएंगे, आज पक्का तय कर लिया। वालेकुम आरिफ अंसारी, आरिफ अंसारी, आरिफ अंसारी, थोड़ा सा हिंट तो दिया करें ना, फिर बंदा समझेगा ना।
2: हिंट दे दिया ना मैंने।
1: हाँ बिल्कुल, तो मैं पहचान भी गई देखे। जी आरिफ, कैसे हाल चाल है, ठीक ठाक है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: मुझे आपका पता क्या अच्छा लगता है मैसेज में, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
2: लिखना चाहिए ना, फिर दोबारा मैं गाड़ी में होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ,
1: नहीं अच्छा करते हैं। और मुझे ये वाली लाइन अच्छी लगती है, मैं अच्छा हूँ, एक होता है मैं ठीक हूँ, नहीं आप कहते हैं मैं अच्छा हूँ, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। जी आरिफ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चुनेंगे भाई?
2: मैंने खुद कर लिया।
1: हाँ नहीं अच्छी बात है, अच्छी चीज है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या कौन सा थीम म्यूजिक, कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक चूज करेंगे अपने लिए?
2: मैंने तो अभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था क्यों, कभी लाइफ हमेशा मतलब अपने रास्ते से वो लेके जा रही है, अब एक थीम म्यूजिक तो सिलेक्ट नहीं कर सकता मैं। तो मैंने कभी तो सोचा नहीं है, पर कभी सैड होता हूँ तो सैड ठीक लगाना चाहिए,
1: ऐसे ही बस।
2: वैसे तो मैं ज्यादातर हंसते रहता हूँ, कोई काम का भी मतलब अपने आप में खुश रहना, कुछ अलग सा रहता है,
1: अभी जो समझ में आया वो यही समझ में आया कि हैप्पी हैप्पी वाला रहे, राइट?
2: हाँ, तो खुशी रहने का कोशिश करना चाहिए, दूसरा और बाकी तो कम आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्या दिलाना।
1: हाँ नहीं सही बात है वैसे, मतलब मोटिवेटेड बंदे को रखना चाहिए अपने आप को, तो आप ऐसा आपका कहने का मकसद है कि थोड़ा सा मोटिवेटेड कुछ सॉन्ग, कोई थीम म्यूजिक,
2: अपने आप को मोटिवेट करने का जो कुछ थीम म्यूजिक बनाओ
1: अपने। सही सही सही सही, तो वो चलना चाहिए, सही हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे आरिफ भाई?
2: और कुछ नहीं, हाजिरी लगाने आया था।
1: चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हाजिरी लगाने का और मैसेज करने का भी रोज आना, और अच्छा जवाब दिया आपने, ठीक है? चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, मिलते हैं फिर आपसे दोबारा, ठीक है? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रोही जी, तो उसके साथ ही मेरा ख्याल है हमें बढ़ना चाहिए एक म्यूजिकल ट्रैक की तरफ। तो अभी जो मैं गाना लगा रही हूँ, अभी जैसे आरिफ ने गाना कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए आपके इर्द गिर्द, कुछ मोटिवेटेड होना चाहिए, तो ये वाला गाना मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें भी एक मोटिवेशन है, तो यही वाला चलाते हैं। इनकी बात से मुझे याद आया कि चलो ये वाला गाना आपके लिए अभी लगाया जाए, तो आपके लिए लगाते हैं ये वाला सॉन्ग, इन्जॉय कीजिएगा। और थोड़ी देर में मैं आती हूँ, बेसिकली मैं थोड़ा सा लाइन अप कर रही हूँ, आपको

एक दफा फिर बताती चलूं कि सवाल मेरा है क्या, सवाल है ये कि अगर आपकी जिंदगी का हो कोई थीम म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो क्या होगा. ठीक है, आपने सोचना है, फिर उसके बाद हमें कॉल करनी है, मैसेज करनी है, करना है, और इसके साथ ही ये वाला सॉन्ग जो है वो इंजॉय कीजिए.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद। सुनिए हदीद टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

0: RJ Mehvish Khan ke saath sirf FM 107 par Dil Se Desi.
1: राइट वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे महवेश खान और मैं आ गई हूँ एक दफ़ा फिर से. और आपसे मैं शेयर कर रही थी कि किस तरह से आप अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था. जल्दी जल्दी से आ जाती हूँ उस पर कि सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है कि कौन से काम आपके ज़रूरी हैं. उसके बाद सुबह ही सुबह ना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मोबाइल नोटिफिकेशन ये वो सब ऑफ कर दिया करें. कोई ज़रूरी कॉल हो तो वही उठाएँ और फोकस करें अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है अपनी सुबह का आगाज़ करें. कोशिश कीजिए, जो बहुत अच्छी बात होती है कि कुछ लोग जो वॉक शॉक और ये सब कुछ सुबह सुबह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो करने से भी आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, प्रोडक्टिव गुजरता है. तो ये कीजिए. इसके साथ ही भाई जो आपके बड़े कामों को और छोटे कामों को थोड़ा सा तकसीम कर लीजिए. कोशिश कीजिए ये सारे के सारे काम अपने ऊपर ना रखें. अगर आपके घर पर कोई है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है तो उससे भी वो काम करवाएं. और अगर ऑफिस में भी आप गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों के काम लेके अपने ऊपर जो है ना डालिए, बल्कि अपने काम कीजिए पहले और उसके बाद फिर किसी दूसरे को हेल्प कीजिए. ठीक है? तो ये वैसे था नहीं, ये मैंने खुद ही ऐड कर दिया, क्योंकि बाज़ों का तो ऐसा होता है कि कुछ लोग आदी होते हैं दूसरों के काम अपने सर पे लेने के, और उनके अपने काम रह जाते हैं, वो दूसरों के काम करते चले जाते हैं, फिर आखिर में ये होता है कि उनको कहा जाता है उन्होंने कुछ किया ही नहीं. तो इसलिए ये भी ना किया करें. ठीक है? खैर, ये तो मजाक में लाइटर नोट पर मैंने बात की है, लेकिन ये कि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी चीज़ हो, एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वक्त से पहले काम कर लें. सीरियसली, मतलब मैं ये करती हूँ और मैं वाकई मतलब इस बात पे बड़ा मुतमईन रहती हूँ कि शुक्र है भाई कि पहले से जो है ना काम आपके हुए हुए होते हैं, तो आपको एन वक्त पे वो एक परेशानी और एक होता ना बेचैनी वो वाली चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता. खैर जी, आ जाते हैं कहाँ, आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ. और मेरे पास है अब्दुल रऊफ साहब का और कहते हैं माई फेवरेट बैकग्राउंड म्यूजिक जेम्स लास्ट. ओके, ये ओके, ठीक है, गुड, जबरदस्त. मेरा ख्याल

0: काफी फेमस भी है ये है ना अब्दुल रऊफ साहब अच्छा इसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक माइंड लूज योरसेल्फ एमिनम ओके वाओ जबरदस्त तो अज्जू का ये वाला है कि अज्जू जो है ये बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे सुनना चाहते हैं इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम हम हैं आपके साथ एफएम मिक्स साथ शहजादा सलीम क्या हाल चाल है कैसी हुई आपकी सुबह और इसके अलावा हैं रईस भाई दंगल दंगल वाला सॉन्ग जरूर लगाना ओके नहीं तो जरूर लगाना बापू सेहत के लिए ओके ठीक है मैं कोशिश करूंगी इसके साथ ही जी हमारे पास है मैसेज अस्सलाम वालेकुम मे द न्यू डे स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह और वन डे यू विल से या अल्लाह दिस इज व्हाट आई प्रेड फॉर अल्हम्दुलिल्लाह चलिए खूब सारी इमोजीज के साथ ये मैसेज आता है रोज विदाउट एनी नेम और सलाम माही मैम हैप्पी संडे मॉर्निंग वेरी नाइस योर शो एंड नाइस टॉपिक महंगी है तो कोहिनूर से भी अच्छा महंगी है तू कोहिनूर से भी खूबसूरत है तू हूर से भी दूर से देखते हैं चांद में दाग मगर बेदाग है तू दूर से भी ओए होए होए सुरजीत सुबह सुबह शायरी के साथ चलिए गुड थैंक यू सुरजीत थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और आप लोग भी मैसेज भी कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं हमें कॉल करने के लिए नंबर है 4434377 और मैसेज के लिए नंबर है हमारा मैसेज के लिए हाँ सही बता रही हूँ 6622107 मुझे लगा था गलत बता रही हूँ 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज वो भी बिल्कुल फ्री तो ज़रूर कीजिए और इसके साथ ही लेते हैं कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम
0: जी वालेकुम सलाम कौन बात कर रहे हैं
1: जी निमरान खान बोल
0: रहा अच्छा निमरान कैसे हैं भाई
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह
0: क्या चल रहा है
1: बहुत बार ट्राई करता हूँ मगर मेरा नंबर जल्दी आता नहीं मगर आज आ गया
0: चलें क्योंकि आज सवाल थोड़ा सा मुश्किल है ना कॉम्प्लिकेटेड है लोग सोच रहे हैं क्या बोले हम तो ये वाला सीन है
1: अब वो तो है मतलब क्या हर किसी के पीछे बैकग्राउंड में मैं तो बोलता हूँ एक अपने को ना एक टारगेट लेके चलना ही है कि हाँ यार ये तो सही है तो सबसे पहले एक भाई की बात मैंने सुना था ना वो दंगल और वो चल हर मैदान फतेह अपना भी कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ये एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके अपने को चलना है कि भाई हाँ अपने को करना ही है क्योंकि अपन घर परिवार सबसे दूर है और यहाँ आए हैं तो बस अपना है एक टारगेट है वो लेके चल रहे हैं और अच्छा है कि बैकग्राउंड में अपना कुछ ना कुछ एक चल रहा है मामला कि यहाँ अपने को एक पॉजिटिव ना एक दे रहे लाइक एनर्जी हाँ इससे अपने को आगे बढ़ना है क्या फॉरगिव नहीं अपना अपने को देना नहीं हार नहीं मानना है चलते रहना है ऐसा है और सुबह सुबह आपको सुनना है और मजा आता मतलब क्या अच्छा लगता है और पॉजिटिव क्योंकि मैं 8-10 साल पहले जब महावीर जी को सुन रहा था अभी जो सुन रहा हूँ ना मेरे को इतना मतलब चेंज आ गया आपके अंदर मुझे सुनते सुनते मतलब बहुत क्योंकि हम लोग साइलेंट लिसनर है बहुत पहले से मैडम आपको सुन रहा मतलब 2015-16 से हाँ वही जो गुड मॉर्निंग वाला शो आता था
0: लेकिन उस वक्त में एनर्जेटिक ज्यादा थी अब थोड़ा सा एनर्जी मेरी कम हो गई उसके मुकाबले में उस वक्त में एनर्जेटिक ज्यादा थी
1: बट मेरे को तो ऐसा नहीं लगा मेरे को तो ऐसा लगा कि अभी मतलब जो एनालाइज मैंने किया हो गया आपको लेके कि अभी मतलब इतना अच्छा इंटरेक्शन आपका हो रहा है पहले मतलब इतना नहीं होता था मगर आज ही अभी जो है ना अभी मतलब हर जो कोई भी आता है ओपनली अपनी बात करता है और आप भी बराबर से उसकी सुनते है समझते है बहुत बहुत अच्छा लगता है लिसनर लोग को सुनने भी अच्छा लगता है कि मतलब ये एक जो FM है सही में जो बोलती है एक फैमिली के जैसा बैकग्राउंड क्रिएट कर देता है हर लिसनर जो अपनी अपनी बात रखता है और आप जो सब बताते हर दिन एक नया टॉपिक लेके कभी कभी मौका मिलता है तो बात हो जाती है ना तो सुनते ही रहते उसमें भी अच्छा लगता है सुनने के लिए भी आपके साथ यही
0: है कितने जन
1: आए आरजे कितने सुने मगर आपकी एक बात अलग है आपको लेके बाजी बहुत अच्छा लगा
0: बहुत शुक्रिया निमरान
1: सुन रहे
0: बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा कोई बताएं वैसे कि कोई म्यूजिक कोई ऐसा कोई मूवी सुनी हो किसी का बहुत अच्छा लगा हो बैकग्राउंड म्यूजिक वो रहता हो आपके दिमाग में कुछ ऐसा है
1: नहीं एक पुराने मतलब थोड़ा सा हम भी 80 के मॉडल है तो हम लोग पीछे एक अनिल कपूर की एक पिक्चर नहीं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है वो वाला हिसाब से अपना चल रहा मामला कि मतलब हर दिन एक नया जंग ही है ऐसा है मतलब ठीक है घर परिवार से दूर है तो मतलब चल रहा है तो हम लोग वो गाने को मैं थोड़ा सादा मतलब अपने सामने एक रखता हूँ कि हाँ बस हर एक जंग हार के करना है लड़ना है आगे बढ़ना है ऐसा है बाकी तो बस चलते रहता है और कुछ भी नहीं
0: अनिल कपूर का एक दूसरा गाना निकाल के रखा हुआ है मैं चलाऊंगी वो मुझे काफी अच्छा लगता है वो भी जैसे अभी उन्होंने बात की थी ना मोटिवेटेड तो उस तरह का गाना अच्छा लगता है मुझे हैप्पी मूड का हाँ चलाऊंगी थोड़ी देर में और बताएं इमरान और कुछ कहना चाहेंगे
1: नहीं बस और कुछ भी नहीं बस पहले आप एक थोड़ा सा वो जो पाकिस्तानी ड्रामे को लेके रिव्यू देते थे बताते थे तो अब वो कुछ सीन नहीं आ रहा नहीं तो मैं आपके बहुत सारा रिव्यू के मतलब सजेशन से बहुत देखते थे अभी
0: मैं थर्सडे को कोशिश करूंगी. वैसे नहीं, वैसे लास्ट टाइम अभी मैं बता दूं आपको, अभी मैं लास्ट, क्योंकि कोई बहुत ही मजे की एपिसोड आ जाती है ना, फिर वो होता है रहा नहीं जा रहा होता, तो फिर मैं लाजमी जिक्र करती हूँ. तो अभी ना मुझे जो बड़ा ही मजे का लग रहा है, वैसे जंजीर इस वक्त बहुत वायरल हुआ है पाकिस्तान का, देखा देखा होगा ना आपने, बहुत वायरल हुआ है. उसके अलावा मुझे अच्छा लग रहा
1: था वो भी मैंने देखा.
0: कौन सा
1: आप देखे कि नहीं? क्या मुफासात करके एक ड्रामा था.
0: देखना पड़ेगा.
1: एपिसोड ही आए थे बट बहुत अच्छा लगा था वो, मैंने पूरा देखा. वो बहुत बेहतरीन सीरीज थी वो.
0: अच्छा नहीं मैंने देखा नहीं
1: मगर देखने.
0: अच्छा अच्छा. अभी एक और जो बहुत अच्छा चल रहा है ना, बहुत मजे का चल रहा है, वो है बस तेरा साथ हो.
1: अच्छा
0: हाँ, ये फरहान सईद का है, आप देखिएगा. जो सिंगर भी है ना फरहान सईद, जो जल के तो उनका है, तो आप जरूर देखिएगा, आपको बड़े मजे का लगेगा. जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगी ना, बहुत इंजॉय करेंगे. इन दिनों तो बहुत ही मजे का आ रहा है. अब कल आएगा मंडे को. वैसे बाकी भी कितनी एपिसोड्स आ चुकी हैं, अच्छी खासी आ चुकी हैं. आप लगा के देखिएगा, आपका मतलब आप एक के बाद एक. शुरू में शायद आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या यार, ये तो मतलब कहानी कुछ देखी हुई है. जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, बहुत मजे का चल रहा है. जो देखे ठीक है, जरूर देखिएगा निमरान. चले आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. रही जी, तो ड्रामों की ना बात ये होती है कि बेसिकली थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे याद दिला दिया करें, मैं बता दिया करूँगी आपको, क्योंकि मैं तो देख ही रही होती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू.
0: हम हैं आपके साथ. क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: आपने तो ये वाला जो है ना खुद ही एक जिंगल बनाया हुआ है. आपका मैसेज भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे जहन में ऐसे नहीं आता हम हैं आपके साथ, मेरे जहन में आता है हम हैं आपके साथ एफएम 107
2: जी. 107 की टीम के साथ है ना, यानी एक मैसेज मिल जाता है कि भाई ये लिस्टनर हमारे साथ है.
0: हाँ,
2: भाई है ना.
0: हाँ,
2: और
0: बिल्कुल.
2: और हम लोग तो जो हमारा जिस तरह का स्किल है, जिस तरह के हम लोग का जॉब है ना, स्पेशली तो ड्राइवर है ना, जितने भी ड्राइवर है उनका एक ही सहारा है कि एफएम 107 वो हमारे साथ होता है हमेशा. वो एक ही है, क्योंकि अकेले रहते हैं इधर उधर, और कभी हम लोग कोई साथ में रहा तो खैर किसने सुना तो ठीक है, अपने वाला नहीं सुना तो कोई मसला नहीं, लेकिन अकेले में बड़ा मतलब एक हम सफर एक हम साथी रहता है वो है एक से साथ. तो इसीलिए मैं उसको है ना एक अपना ये है मतलब इंट्रोडक्शन बना दिया हूँ कि हम आप
0: सही सही. अच्छा अच्छा, गुड है.
2: मैं ना मेरी गाड़ी को भी है ना, जो मेरा गाड़ी का भी रेडियो है ना, उसको भी मैं ना अपना ये वेलकम इसी तरह मैं करता हूँ. हाँ, वो भी ऑन हो जाता है तो उसको भी थोड़ा लगता है भाई आ गए.
0: सही है. वैसे ये भी कितनी मजे की चीज है ना, अगर सोचे हमारे पास जितनी चीजें मौजूद हैं उनके भी कोई इमोशंस होते, और काफी दिनों तक हमने किसी को छोड़ा होता, वो बेचारा बोर फील कर रहा होता या सोच रहा होता, मिस कर रहा होता हमें, कैसा लगता?
2: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, अभी हो रहा है ना, अभी तो इतनी मतलब हीट है ना, इतनी गर्म है ना, तो मैच वगैरह तो बिल्कुल बंद है, तो बेचारे वो बैठे ना एक जगह ना खड़े रहते, तो दिन में कम से कम चार बार उनको मैंने नजर मारता बेचारे यार खड़ा हुआ यार बेचारा
0: बेचारा कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा मुझे.
2: कब मेरे को लेके जाएगा और कब मैं थोड़ा सा ना खेलूंगा जाके ना. तो हर एक चीज में ना एक कुदरती भी है, हर एक इंसान में ना और एक दूसरे के उसके मिसल में एक दूसरे का है ना कहीं ना मोहब्बत और प्यार है, चाहे कोई भी चीज है. तो इस तरह से मतलब एक इंसानी एक मेरा अपना एक मतलब ये स्टाइल है, बाकी का तो नहीं पता.
0: सही. तो शहजादा ये बताएं कि भाई आपकी जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होता?
2: बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैं तो वही मतलब जितने जो ज्यादातर तो मैं पुराने गाने सुनता ना, तो गाने की रिलीज होती है और जो गाने जो पिक्चराइज होते हैं, जो गाने के सिंगर्स होते हैं, यानी वो गाना इतना इमोशनल उतना है ना कहीं जिंदगी से ना टच करते हुए निकलता है. और एक फैमिली से बहुत अच्छा एक गाना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो,
0: तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता.
2: हाँ हाँ हाँ, तो वो देखो सुनने में बड़ा मजा आता है, एक आदमी बेचारा फ्रूट बेचारा कोई दुखियारी भी रहेगा ना, अगर वो गाना सुन लेगा ना, उसके लिरिक्स सुन लेगा ना, तो वो अपने आप में ना बहुत उसको मोटिवेशन मिलता है और बहुत कुछ हाँ अच्छा लगता है, तो वो सारे टेंशन में ना दूर हो जाते हो ऐसे सब गाने से।
0: निकाल लिया मैंने आपके लिए अभी आगे एक गाना तो अभी चलना है, उसके बाद फिर चलाती हूँ। ठीक है, सही हो गया।
2: बाकी तो फ्राइडे भी अलहमदिल्ला वीकेंड अच्छा गया, यहाँ बड़ी मस्जिद में बगल में ये था मशहूरा था, तो उसमें काफी तादाद में लोग आए थे, तो हम असर के बाद से ही पार्टिसिपेट किए थे, मतलब सारे लोग जमात में सारे सब आए थे, फिर ईशा के बाद में उन्होंने खाना बड़ा अच्छा अरेंज किया था, तो खाने का भी इंतजाम था, तो दोस्त की बिरयानी रखी थी, तो बहुत मतलब अच्छा हुआ। और कुछ मशहूरे फिर डिवाइडेड हुआ कि नेक्स्ट वीक में कौन कहाँ जाने वाला है, कौन की जमात कहाँ जाएगी, इस सिलसिले में तरह से ना फ्राइडे वीकेंड चला गया।
0: सही सही, चले माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब काफी अच्छा प्रोडक्टिव, काफी अच्छा आपका वीकेंड रहा अल्हम्दुलिल्लाह। चले गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा शहजादा सलीम हमेशा की तरह बात करके। आज गेम में अंताक्षरी होना है, हाँ तो जरूर सुनना भी है और हो सके तो पार्टिसिपेट भी करना है। ठीक है, चले ठीक है शहजादा सलीम, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और गाना चलाती हूँ आपका थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। राइट, तो हम बढ़ रहे हैं इस गाने की तरफ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कहा ना वो वाला भी, तो इसमें भी मुझे एक मोटिवेशन लगती है, और सर मुझे अगर पर्सनली देखा जाए ना तो किशोर कुमार की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, अच्छे गाने होते हैं, हैप्पी मूड वाले गाने होते हैं उनके, इंजॉय करते हैं ये ट्रैक मिलके, और वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
4: आज ही राबता करें.
3: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: Absolute Cinema.
6: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.

विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: इन्होंने कहा है कि कतर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी हिफाजत और मुल्क की जो लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स हासिल करने के लिए सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है यूथ में एनवायरमेंटल अवेयरनेस पैदा करना। और उन्होंने कहा कि अगर आज की नस्ल को एनवायरमेंट की अहमियत समझाई और एम्पावर किया जाए तो मुस्तकबिल में ऐसी जनरेशन तैयार होगी जो फितरी वसाइल की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझेगी, यानी जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझेगी। और ये 2026 समर एनवायरमेंटल क्लब के तीसरे एडिशन की क्लोजिंग सेरेमनी में खिताब कर रहे थे जिसका थीम था गार्जियंस ऑफ द एनवायरमेंट। और दो हफ्तों तक चलने वाले इस प्रोग्राम में तकरीबन 11 से 17 साल की उम्र के 26 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जबकि मिनिस्ट्री के जो ऑफिशल्स और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी इस मौके पर मौजूद थे। तो यहाँ पे वर्कशॉप्स कराई गई, इसके साथ ही फील्ड विजिट्स कराए गए और स्टूडेंट्स ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कतर की नेचुरल हेरिटेज को महफूज रखने की कोशिशों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल की। उन्होंने जोर दिया कि इन्वायरमेंट की जो हिफाजत का सफ़र है इल्म और अवेयरनेस से शुरू होता है और फिर रोज़मर्रा की आदत और मुश्तरका जिम्मेदारी बन जाता है। उन्होंने साथ में स्टूडेंट्स के जज्बे और एक्टिव पार्टिसिपेशन को सराहा और कहा कि इससे वाज़े होता है कि कतर की नई नस्ल में इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है और वो मुल्की इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम, और प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स ने जो इन्वायरमेंटल फोटोग्राफी है, रिसाइकिलिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, मेरीन बायोडाइवर्सिटी, रेडिएशन का सेफ यूज़ और मेरीन

0: environmental protection aur Hubra breeding aur hazardous waste tracking par workshops aur field visits mein hissa liya aur jisse unhe environmental conservation ka practical tajruba mila. To bahut hi zabardast aur bahut zaruri hai, mujhe lagta hai duniya bhar mein har jagah bahut zyada zaruri hai. Aap agar dekhein waqai matlab inka kehna bilkul sahi hai ki Qatar ki jo nayi nasl hai unke andar ye jo ek rujhan hai wo badhta ja raha hai aur wo hame nazar bhi aa raha hota hai. Apne idhar dekhein safai se har jagah pe beaches dekh le har jagah, to ek to law ki jo ek sakti hai wo bhi hai aur uske sath hi sath har bande ka na matlab thoda sa educate kiya jaye, kuch cheezon ko samjhaya jaye to cheeze aapko apne idhar nazar aane lagti hain ki behtar hoti bhi. Abhi apne mulkon mein hum inhi baaton ke upar ro rahe hote hain ki cheeze sahi ho to jati hai. Hum dekh rahe hain kitni jagahon pe aisa hua hai na ki wo acche bazaar bana diye gaye, achhi sadak bana di gayi aur phir aap next day dekho to phir wahi kachra. To ye jo hai logon ke andar awareness paida karna bahut zyada zaruri hai. Fir ji aa jate hain message ki taraf. Taufeeq kehte hain Mavish Khan assalam alaikum. Taufeeq al fakra se walaikum salam, kya haal hai bhai, theek thaak hain? Aur uske saath hi ji assalam alaikum, kya haal hai ji Mavish bhai, Allah taala salamat rakhe, ameen summa ameen. Basharat Pardesi ka message hai. Basharat Pardesi, kya haal hai, humne to Pardesi hi laga liya apne naam ke saath. Aur iske saath hi assalam alaikum Mavish madam, hero movie ka song suna do lambi judai. Okay, hero movie ka bas koshish karti hu bhai. Theek hai, kaun hai वैसे ये है कमालुद्दीन शेख, चलिए कोशिश करती हूँ. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जी खादिम भाई, क्या हाल हैं आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत. आप सुनाए, आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसा चल रहा है सब?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी. दो मिनट क्या मौजू है वो तो
0: आज मौजू हमारा बड़ा मजे का है. वो ये है कि अगर तो आपकी लाइफ का एक होता बैकग्राउंड म्यूजिक तो वो किस तरह का होता? हैप्पी, इमोशनल, सैड, काम, एडवेंचरस, मिस्टीरियस?
1: ये तो आपने ऐसे वो अक्सर जब हम लोग सफर करते हैं ना एयरलाइन में कभी तो उसमें एक म्यूजिक चलती थी. और जब भी वो यानी एयरपोर्ट पे अभी टेकअप नहीं किया था, टेकअप से पहले एक हल्की सी म्यूजिक चलती थी. वो म्यूजिक बहुत अच्छा यानी कमाल की म्यूजिक थी. वो ना मुझे नेट पे मिलता है ना, मैंने बहुत ढूंढा हो
0: अच्छा
1: लेकिन नहीं मिला मुझे.
0: हाँ,
1: और एक और एक रशियन म्यूजिक है, अगर मुझे मिला फिर मैं आपको इंशाल्लाह इनबॉक्स में भेज दूंगा. वो बैकग्राउंड में इतना अच्छा लगता है कि बहुत प्यारा. वो अक्सर ये जो जंगल में ये परिंदे है ना उसके ऊपर भी उन लोगों ने वो एक वीडियोस बनाई हुई है और उसमें बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलती है. वो बहुत प्यारी म्यूजिक.
0: चलें भेजिएगा मुझे जरूर.
1: लेकिन मतलब ये कि जो हल्की म्यूजिक है यानी बिल्कुल मामूली,
0: एयरलाइंस में भी यूजुअली वही शुरू में हल्का हल्का हल्का सा म्यूजिक, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी होता है कुछ इस तरह का ना, वो कैंडल लाइट डिनर टाइप हो तो. हाँ, सही से समझ रही.
1: और वैसे भी मुझे ये 90s के गाने बहुत पसंद है. उसकी म्यूजिक जो है वो स्लो ट्रैक है, स्लो वाले है ना. तो हम लोग स्लो ट्रैक वाले लोग है, पैदल जाने वाले लोग है तो पैदल ही वो स्लो ट्रैक पसंद करते हैं. तो वही गाने और वही म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है.
0: सही, चले गुड, जबरदस्त, अच्छी चॉइस, मजेदार.
1: ओके, बहुत शुक्रिया.
0: चले हो तो भेजिएगा, ठीक है? चले जी, थैंक यू.
1: बिल्कुल,
0: ओके, थैंक यू खादिम भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. रही जी, तो हमारे साथ है खादिम भाई और उनका कहना है कि वो जो रशियन एक जो म्यूजिक एक तो उन्होंने बोला वो सुनते हैं कि कौन सा है, और साथ ही एयरलाइंस में जो चलता है तो हल्का हल्का सा मुझे आइडिया तो हो रहा है कि कौन किस तरह के म्यूजिक की बात करें. खैर जी, इसके साथ ही है मेरे पास मैसेज भी और आप लोगों के हैं, तो आप मैसेजेस कीजिए, कॉल कीजिए, हमें कॉल करके बताइए कि अगर आपकी ज़िंदगी का होता कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो वो किस तरह का होता, ठीक है? आपने ये मुझे बताना है और ज़रूर मुझे कॉल करके बताइए, और देखते हैं कि आप क्या कहते हैं. मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी कॉल का कि क्या आता है आपकी तरफ से. सही है, तो जल्दी से कॉल मिलाइए, फिर हमने थोड़ी देर बाद फिर जिंगल ब्रेक की तरफ जाना है. हमारा तीसरा घंटा शुरू हो जाएगा ना. हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन घंटे होते हैं तो तीसरा घंटा शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. तो अभी देखें कैलकुलेशंस, मैथ्स मतलब कितनी बुरी है मेरी, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि ये तीसरा घंटा शुरू होगा. खैर भाई, कॉल कीजिए, भाई कॉल कीजिए, जल्दी से शामिल होइए और आपसे हम शेयर कर लेते हैं एक और इतनी दिन में. मेरा ख्याल है न्यूज़ पर बाद में टाइम नहीं मिलता. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपलिटी के जनरल क्लीननेस डिपार्टमेंट ने नेशनल वेस्ट सेपरेशन एट सोर्स प्रोग्राम को अलरियान म्यूनसिपलिटी के मजीद जो रेजिडेंशियल इलाकों तक फैला दिया है, और इस कदम का मकसद जो है ना

वो कतर की सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को फरोग देना है। और ये जून 2026 के दौरान मिनिस्ट्री ने अल रियान के मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एरियाज में तकरीबन कोई 1117 ब्लू बिन्स रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए और इतने ही ग्रे बिन्स ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए तकसीम किए हैं। और जुलाई के दौरान भी डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगी ताकि तमाम टारगेट नेबरहुड को कवर किया जा सके। और इस नए फेज के बाद अल रियान में टोटल 16,127 ब्लू रिसाइकलिंग बिन्स तकसीम किए जा चुके हैं, जो कतर के सबसे बड़े म्यूनसिपल वेस्ट सेपरेशन इनिशिएटिव में से एक है। और ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कतर की इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद है लैंडफिल्स पर इन्हिसार कम करना और रिसाइकलिंग रेट बढ़ाना और रिसोर्सेज को का जो है वो बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना। और घर की सतह पर वेस्ट को अलग करने से रिसाइकलेबल जो मटेरियल है वो साफ रहता है और कंटामिनेशन कम होती है और रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो प्रोग्राम के मुताबिक ब्लू बिन्स जो हैं वो पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक पैकेजिंग, मेटल कंटेनर्स जैसे कि रिसाइकलेबल मटेरियल्स के लिए है। और जो जो ग्रे कलर की बिन्स है ना, वो हैं बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सही तरीके से अगर वेस्ट सेपरेशन हो जाए तो अथॉरिटीज़ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलेबल मटीरियल्स रिकवर कर सकती हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट को भी ज़्यादा एफिशेंटली प्रोसेस किया जा सकता है। प्रोग्राम जो 2026 का है इसको मुसलसल एक्सपेंड किया जा रहा है और इसमें मैं बता चुकी हूँ जैसे कि रिसाइकलिंग की जो बिन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इनिशिएटिव है ये भी। खैर इसके साथ ही मैंने देखा कि काफ़ी लोग अभी जो वो गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो ये लिटरली मतलब पहले तो वो लोग मीम्स बना रहे थे और उसमें कह रहे थे, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि ये जो बायोडिग्रेडेबल का बात हो रही है, जो वेस्ट वगैरह होता है जो हमारे घरों पर होता है, जैसे ये जो हमारे सब्जी जो फल इस तरह के जो छिलके के होते हैं ना या जो भी इस तरह का वेस्ट, तो वो क्या किया जा रहा है कि उस वेस्ट को मैंने देखा एक बैग में डाल के उसमें रखा जा रहा है और उससे जो उसका जो गैस उससे खारिज होती है उसको बकायदा बाकी कलेक्ट करके जो नहीं गैस की भी लोड शेडिंग हो रही होती है ना उससे लिटरली मतलब मजाक की बात नहीं करी मैं, मीम्स वगैरह की बात नहीं है, ये लिटरली लोग उसे जनरेट करें अपने घरों पे बनाने के लिए बाकायदा। वो बड़े बड़े उन्होंने अपने बैकयार्ड्स में रखे हुए बैग्स और देखिए हर चीज़ का इंसान सलूशन निकाल लेता है। जब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सोलर आ गए और अब ये वाला जो है ना सिलसिला आ गया, तो हर चीज़ का इंसान जो है वो कोई ना कोई सलूशन निकाल लेता है। और ये इसी वजह से बहुत सारे जो साइंस के जो बच्चों के दरमियान भी प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव वगैरह लिए जा रहे होते हैं ना कि कोई नई इन्वेंशन बताएं, इनोवेशंस लेकर आएँ, तो उसका ये भी वाकई मतलब लोगों के दिमाग चलते हैं भाई और एक से एक बढ़कर चीज़ लेकर आते हैं। खैर जी हम बढ़ते हैं, इसके साथ ही हो गया है जिंगल का टाइम, तो हम बढ़ते हैं जिंगल की तरफ।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: Right, welcome back.

बैक एक दफा फिर समर मॉर्निंग में 8:00 के 2 मिनट और मैं फिर आ गई हूँ और दम मैं कॉल का इंतजार कर रही हूँ जल्दी से आपकी कॉल आ जाए वरना फिर हम बढ़ेंगे म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. तो जल्दी देख लेते हैं पहले आपके मैसेजेस वगैरह भी चेक कर लेते हैं कुछ नया मैसेज है तो वो शामिल कर लूँ फिर उसके बाद हम चलेंगे. अगर तो नहीं आती है कॉल तो फिर हम गाने की तरफ चलेंगे. ओए होए ज़बरदस्त सॉन्ग मैम और ये कहना है सुरजीत का ही कौन सा वाला कौन सा अच्छा लगा आपको. शहजादा सलीम कहते हैं थैंक यू सो मच. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम. इसके साथ ही डी हार्ड बना के भेज दिया है हमारे उन्हीं भाई ने जो के सुनते हैं हमें पाकिस्तान से. और इसके साथ ही तौफीक का भी एक तस्वीर वाला मतलब जो है ना मैसेज आ गया है सुभानअल्लाह वो भी हमने ही आपने सुबह खैर कहा है. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक. और इसके साथ बढ़ते हैं भाई हम म्यूजिकल ट्रैक की तरफ. इंजॉय करते हैं ये वाला गाना वापस आते हैं थोड़ी देर में. इंजॉय कीजिएगा साथ रहें सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

राइट, वेलकम बैक. आप सुन रही हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावेश खान. और क्या बात है भाई, रेशमा की आवाज की जबरदस्त, मतलब कोई जवाब ही नहीं है. ये गाना आप सुन सकते हो, मुझे पता है अभी पूरा 6 मिनट का गाना था, आप आराम से पूरा सुनते, बल्कि 6 मिनट क्या 18 मिनट तक ये गाना सुन सकते हैं. लेकिन बस थोड़ा सा टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, लेकिन मैंने चला दिया. जैसे ही मुझे रिक्वेस्ट नजर आई ना, मैंने कहा ये वाला तो जरूर चलाना है, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है. रेशमा का एक और गाना है, वो मैं चलाऊंगी किसी दिन, वो मुझे और बहुत अच्छा लगता है. पहले तो मैं काफ़ी लगाया करती थी. खैर जी, हमको जुल्कर्णन भाई और जमाल भाई का नंबर मिल सकता है क्या? तौफीक भाई कह रहे अगर वो दोनों अलाउ कर देंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा. तो जमाल आप भी बताइए, और इसके साथ जुल्कर्णन भाई आप भी बताइए, आप दोनों का नंबर दिया जा सकता है तो मैं दे दूंगी. ठीक है. अच्छा जी, असमत अफरीदी का मैसेज है और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, वेलकम बैक एंड वेरी गुड टॉपिक. और ज़िंदगी में इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता ना, डिफरेंट मूड के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चेंज होता रहता है. तो अर्ली इन द मॉर्निंग सिर्फ नेचर का म्यूज़िक ही सुनता हूँ. बिल्कुल बुलबुल, अच्छा बिल्कुल मुझे लगा था बुलबुल पाख्ता, ओके कोयल, चिड़ियों का म्यूज़िक अपना दिन बना देता है. माशाल्लाह ज़बरदस्त वैसे ये आवाज़ें, इनको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता ना. मतलब ये वाली जो आवाज़ें होती हैं, और फिर दूसरा पानी की आवाज़, मतलब आप पानी की आवाज़ ना पूरे ज़िंदगी सुन सकते हो. पानी बहरा हो, कहीं पे आप शाहरुख से बहरा हो, समंदर की आवाज़, मतलब वाह वाह वाह ज़बरदस्त. इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं. अगर आप नोट करो ना, वैसे मतलब म्यूज़िक की जो इंस्पिरेशन होगी वो भी डेफिनेटली नेचर ही है, क्योंकि नेचर में म्यूज़िक मौजूद है. पानी का गिरना, फिर हवाओं का चलना, ये सारे जो है ना एक म्यूज़िक है जो कि, और ये वाला जो म्यूज़िक है ना आपको हमेशा फैसिनेट करता है. मतलब वैसे आप चाहे म्यूज़िक से बदल हो जाओ, ना सुनो. जैसे पहले मेरा भी सीन था कि बहुत सुनती थी, अब वो वाली जो चीज़ है ना अवॉइड करती हूँ कि ना इतना ज़्यादा हो. लेकिन फिर भी मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत एक काम सुकून ये आपको पहुंचाता है, और हमेशा ही अच्छा लगता है. चिड़ियों के बोलने से अच्छा कोई म्यूज़िक नहीं हो सकता. जी, एडवेंचर के लिए इंटरस्टेलर का जो मूवी का बैकग्राउंड है, जो कुछ आपको कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है लाइक दैट. और ज़िंदगी में मायूसी हो तो फिर ज़िंदगी गुलजार है का टाइटल, जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करता है. और अगर दिल दुखा हुआ हो, गम हो, तो फिर परीजात के बैकग्राउंड म्यूज़िक से कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता. और जो परीजात की पोइट्री भी उसमें शामिल हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है. तो गुड चॉइस हमारे उस्ताद सईद खादिम हुसैन साहब की, ग्रेट ज़बरदस्त. अच्छा मैं भी सुनाऊंगी. मैंने जब ये वाला सवाल सोचा ना, तो उसके साथ ही मेरे जहन में दो म्यूज़िक आए थे फ़ौरन से, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से वाले थे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और ये कौन है? ये हैं एस बंगश. क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं. और इसके साथ ही मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी. हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? होप गुड. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है. और इसके साथ ही सलाम मायेश बाजी बाजी कराची. अच्छा मायेश आपने गलती से लिख दिया, मुझे लग रहा है खलील भाई हैं ये. खलील भाई, आई मिस माय सिटी. खलील भाई आज आपका शहर याद आ रहा है, कहाँ है भाई खलील भाई, आज आपने कॉल नहीं की. इसके साथ ही शुक्रिया माही मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई. इसके साथ फयाज सैयद का मैसेज है, सलाम मैडम, क्या रुलाएंगी सुबह सुबह लंबी जुदाई? बस उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कहा चला देती हूँ, अच्छा तो लगता है ना. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, मावेश खान बहन ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब. और बहुत खूबसूरत आवाज़ है, सिंध की आवाज़ भेजी आपने. अच्छा मैं थोड़ी देर में सुनती हूँ. और इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं भाई, 4434377 पे कॉल कीजिए, शामिल हुई है कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई होता बैकग्राउंड म्यूज़िक. अभी देखें अस्मत आफरीदी ने कितनी सारी चॉइसेस दी हैं, ये हो तो ये हो तो वो, तो इस तरीके से कुछ तो आपके जहन में भी होगा ना. कोई तो म्यूज़िक, कोई तो होगा जो आपको अच्छा लगता होगा.

0: पॉइंट. तो इंतजार करिए मैं आपकी कॉल का कॉल आ जाए, वरना फिर हम ये करते हैं कि आपको कुछ एक न्यूज़ तो शेयर कर ही देते हैं आपसे, अपडेट जो मेरे पास मौजूद है. अच्छा, तो यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे कैस्पर्स्की के साइबर लिटरेसी प्रोजेक्ट उसमें लीड कर रही हैं एंड्री सिडेनको. इनके मुताबिक बच्चों को छोटी उम्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का जो एक जिम्मेदाराना इस्तेमाल सिखाना जो है वो उन्हें मुस्तकबिल की इनोवेशन इकोनॉमी के लिए तैयार कर रहा है. तो इसमें आप डेफिनेटली आप वाकिफ हैं इस बात से कि आजकल का सबसे बड़ा जो बच्चों का इशू है वो है हर वक्त लैपटॉप्स, हर वक्त मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके इर्द गिर्द रहना. लेकिन यहाँ पे एक बिल्कुल ही डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो हमें नज़र आया, वो ये कि इनका कहना है कि अगर बच्चों को शुरू से ही अगर आप ये इस्तेमाल करना सिखाएं तो ये इनोवेशन इकोनॉमी के लिए तैयार करता है. उन्होंने कहा कि जो बच्चे AI को रिस्पॉन्सिबल तरीके से सीखते हैं वो आगे चलकर टेक्नोलॉजी ड्राइविंग वर्कफोर्स का अहम हिस्सा बन सकते हैं और कतर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करेंगे. और इन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि बच्चों का AI और डिजिटल टूल्स में बढ़ता हुआ जो दिलचस्पी है वो फ्यूचर डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स तैयार करने का बेहतरीन मौका है. और कतर की मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर फोकस्ड एडवांस्ड डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए आइडियल माहौल फराहम करते हैं. उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज के जरिए बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स को ऑनलाइन रिस्क के बारे में बेहतर मालूम दे सकते हैं और इससे सेफर ऑनलाइन बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ को भी फ़रोग मिलेगा. तो ज़बरदस्त भाई, और बच्चों को वाकई मतलब वो यूज़ तो करना ही करना है उन्होंने, तो कुछ पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में उनको कहीं ना कहीं इंडल्ज कीजिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
1: आसिफ शाह.
0: आसिफ शाह, क्या हाल हैं भाई आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट है एकदम से. आप बताएं, अगर आपकी जिंदगी का होता कोई बैकग्राउंड म्यूजिक तो कौन सा होता?
1: मुझे तो अपना जो मेरा

0: भरपूर है वो।
1: बस जो भी है वही
0: है। सही हो गया, सही हो गया, तो वो अच्छा लगता है आपको। ठीक हो गया। और भाई और बताएं, और कुछ कहना चाहते हैं?
1: अपने तो कैफियत का कुछ पता ही नहीं है, कब बदलता है कब साड़ रहता है।
0: अच्छा, आपने कैफियत का वैसे किसी को भी नहीं पता होता। और उसमें आपने इतनी बड़ी सही बात की है कि कभी आपका कैसा मूड होता है कभी कैसा मूड होता है, तो एक तो नहीं रह सकता हमेशा।
1: तो हम एक घंटे में कभी साड़ होते हैं तो कभी खुश होते हैं।
0: अच्छा, ऐसा वाला सीन है, एक घंटे में ही?
1: घंटे में।
0: अच्छा, सही।
1: उधर से अगर कोई आया, कोई ये ऐसे साड़ वाली बात की तो हम साड़ हो जाते हैं।
0: हाय हाय।
1: उसी पल दूसरा आदमी आ गया, उसने कोई खुशी वाली खबर सुनाई तो डायरेक्टली खुश।
0: यानी इमोशंस जो है ना आपके अंदर बड़े कूट कूट के भरे हुए हैं, जैसे ही मतलब कोई भी आपको ट्रिगर करता है तो आप फौरन से उस इमोशन में चले जाते हैं, राइट?
1: तो दोनों 5 मिनट के बाद भूल भी जाते हैं ना।
0: सही, ये सीन है। चले, गुड।
1: वक्ती तौर पर बस हो गया, मिलाप हो गया उसके साथ, हाँ में हाँ कर दी बस। बाकी 5 मिनट के बाद मेरा अपना लाइफ है, चाहे खामोश रहूं या हंसू या गाना सुनूं या नजरों अपना ही है।
0: सही है, सही है, चले, गुड। लेकिन बैड नहीं है, मतलब बुरा नहीं है।
1: किसी को नाराज, किसी को तो नाराज नहीं कर सकते यार। वो ना, वो अभी इस टाइम में परेशान है तो उसके साथ हाँ यार हाँ में हाँ मिलाओ थोड़ा बस चेहरा। कोई गम के आसार ले आओ, वो समझे गहरा भाई ने हमदर्दी दिखाई। अगर कोई खुश है तो आप उनसे ज्यादा हंसो और उसको दिखाओ कि यार मैं भी बहुत खुश।
0: चलें भाई, गुड, अच्छी बात है। और बस बंदे को अपने तौर पे खुश रहना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा दूसरों की, हर किसी की जो भी उन्होंने बात की है उसमें बह नहीं जाना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन अच्छा,
1: आजकल हर किसी के दिल में एक दबला बजा रहता है कि उसमें क्या बजा दे, वो क्या सुनते हैं। कोई बस जाहिर ही, अगर कोई मतलब खुश रहता है तो उसके अंदर देखोगे तो उसमें हजारों ऐसे बातें होंगी कि वो आप ही को परेशान कर देगा, सुनने वाले नहीं वो।
0: सही।
1: जिंदगी जितनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से दूर होती जा रही है उतनी खराब होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है ना। ये हदीस है। ये हदीस है कि हम सोचते हैं कल का दिन अच्छा होगा, उधर हदीस मिलेगा है कि नहीं, जमाना जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दूर होता जाएगा उतना वो बदतर होता जाएगा।
0: ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे।
1: जैसे ये 5 लोग सीधे सादे लोग, अब हम मिसाल देते हैं कि यार पुराने लोगों का अच्छी जिंदगी, सादा सीधा सादा, बस जो मिला वो खाया, जो मतलब पहना बस वही उसके लिए सूट करता था, न ज्यादा ख्वाहिशात न ज्यादा वो ये जो आजकल हो रही है। अभी क्या क्या नहीं है, हर घर में हर जगह में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज और इतनी ज्यादा पैसा, गाड़ी बंगला हर चीज मौजूद है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यार बस पता नहीं क्यों परेशान हूँ कि परेशान हूँ।
0: ऐसा
1: ये है? वो वही हदीस है, ये वही हदीस है कि जमाना दूर होता जा रहा है, बस यही, बाकी कुछ नहीं है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा है भाई, बात आपकी बिल्कुल सही है। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा आगे और भी पता नहीं क्या कुछ होना है, लेकिन खैर अपने तौर पे हमने ये कोशिश करनी है कि अपने तौर पे जितना हम बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, अपने और मामलात के हिसाब से, तो अपने तौर पे कोशिश करें, बाकी तो जो होना है सो होना है। अच्छा, बीच में ना आपकी आवाज़ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा मौलाना तारिक जमील साहब को सुन रहे हैं। अभी बिल्कुल वो वाली ना एक तासुर आना शुरू हो गया था।
1: मैं सिर्फ अपने आप को सुनता हूँ हमेशा। अच्छा। मैं ज्यादातर खामोश
0: कुछ रिजेम्बलेंस है आपकी आवाज में, बीच में आप एकदम से बोले मुझे ऐसा लगा कि मौलाना तारिक जमील की आवाज सुनना शुरू कर दी है मैंने। अरे जी आसिफ भाई,
1: आइंदा 2 सालों में नहीं सुना।
0: चलो जी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात करते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है?
1: अभी तो हम गर्म हो गए बातों के लिए, बस तो
0: क्या। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। तो हमारे साथ आसिफ थे, और उसके साथ ही, अच्छा मैंने जब ये सवाल सोचा था ना, वैसे तो खैर वही वाली चीज़ है कि हर बंदा जो है ना हर वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें सोच रहा होता है, लेकिन मेरे जहन में उस वक्त ख्याल के वक्त में एकदम से जो मैंने अपना सोचा कि भाई लिस्टर से पूछना है, तो मेरे दिमाग में कौन सा जो है ना, मतलब मुझे

कौन सा म्यूजिक लगेगा, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया था उस वक्त ये, और मैंने सोचा था कि यही सुनाऊंगी आपको। पहचानते पिंक पैंथर, पिंक पैंथर का जो बहुत ही मशहूर एक हमेशा मतलब जो है ना आता था, यही रहता था हमेशा, तो मुझे ये पर्सनली खैर अच्छा लगता है। और पिंक पैंथर वो कैरेक्टर है जो मुझे कार्टून्स में देखा जाए तो टॉम एंड जेरी सबको ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मुझे शुरू से पिंक पैंथर बहुत अच्छा लगता था, और पिंक पैंथर था भी मेरे पास, मतलब रखा हुआ भी था, तो मुझे अच्छा लगता है पिंक पैंथर का म्यूज़िक भी। और वो दूसरा मेरे दिमाग में उस वक्त जो एकदम से आया था वो मिशन इम्पॉसिबल का था, तो ये उस वक्त की कैफियत थी जो एडवेंचरस। अगर देखा जाए तो खैर मेरी लाइफ वैसे काफ़ी एडवेंचरस है, मतलब मुझे मज़ा आता है एडवेंचर और कुछ ना कुछ हैपनिंग, और अगर ज़िंदगी में ना हो रहा हो तो फिर बोरियत होने लगती है, तो ये वाली जो चीज़ है वो शायद हैवी फितरतन भी है, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये वाले जो म्यूज़िक हैं वो जो एकदम से सोचने पर आया तो वो ये आया। वैसे अच्छे बहुत सारे लगते हैं। खैर इस वक्त रईस भाई की रिक्वेस्ट पर मैं गाना चला रही हूँ जो उन्होंने कहा था, तो इन्जॉय कीजिए ये वाला सॉन्ग। थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं, अंताक्षरी खेलेंगे।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग, आरजे महविश खान।

0: राइट, वेलकम बैक. आप सुन रही हैं समर मॉर्निंग और मैं आपके साथ आ गई हूँ एक दफ़ा फिर से. और अब हमारा वक्त हो गया है कि हम अंताक्षरी खेलेंगे. तो एक कॉलर तो हमारे साथ आ गए हैं, दूसरे कॉलर का हमें वेट है. जल्दी से कॉल कीजिए, जल्दी से कॉल करके अंताक्षरी में शामिल हो जाइए और इन्जॉय करेंगे आप डेफिनेटली. तो जल्दी से देखते हैं कि दूसरे कौन से कॉलर आते हैं. वैसे ही मैंने 30 का कहा था, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है. तो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी से कॉल कीजिए ताकि फिर मैं दोनों को एक साथ लेके फटाफट जो है अंताक्षरी खेलवाऊँ. प्लान ये है और मैं आपको थोड़ा सा बताती भी चलूँ कि होगा ये कि अंताक्षरी का, जैसे आपको पता है, एक के बाद एक गाना जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से अगले ने दूसरा, मतलब जो है वो गाना फौरन से गाना है. और अगर कोई, मैं थोड़ी देर गिनूंगी 5 या 10 तक, ठीक है, तो वो हम तय कर लेते हैं अभी. और अगर तो वो नहीं आप गा पाए तो फिर आप आउट हो जाएंगे, कोई एक बंदा आउट हो जाएगा और फिर उसकी जगह हम दूसरे बंदे को ले लेंगे. तो जल्दी से कॉल कीजिए भाई, मतलब कॉल कीजिए, शामिल हो जाइए. एक कॉलर हमारे साथ हैं, दूसरे कॉलर का हमें वेट है. जल्दी आ जाइए ताकि हम अपना अंताक्षरी का ये जो सिलसिला है शुरू करें, इन्जॉय करेंगे डेफिनेटली. तो लेकिन यही है कि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, तो बस जल्दी कीजिएगा ताकि हम अच्छे से खेल सकें. अच्छा जी, तौफीक हैं और उन्होंने ओके मुझे मैसेज किया हुआ है. इसके साथ ही अफरोज खान टकवा का है, गुड मॉर्निंग माई मैम, मेरा सॉन्ग अगर मिलता है टाइम तो बिल्कुल अभी तो मुझे भाई कॉल कीजिए, ताकि कॉल पे मेरे पास 2 कॉलर्स होने चाहिए तो उसके बाद ही हम ये सिलसिला शुरू कर सकते हैं. मैं कॉल का वेट कर रही हूँ, जैसे ही जिसका आता है फटाफट हम कॉल लेते हैं और फिर शुरू करते हैं. सही है, क्या हो गया है? अभी मैंने इतना अच्छा गाना लगाया था कर हर मैदान फतेह, मतलब मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को, लेकिन बंदों में हौसला नहीं है, क्या चक्कर है भाई? मतलब एक कॉलर हमें चाहिए भाई, अंताक्षरी शुरू करनी है, मज़ा आएगा डेफिनेटली, आप इन्जॉय करेंगे. और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुरों के बहुत पक्के हो, ये हो वो हो, बस कॉल कीजिए, शामिल हो जाइए. फिर हमारे साथ जो कॉलर है उनसे तो बात करें, उनको इंतज़ार करवा रहे हैं हम. जी अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: जी जावेद साहब, क्या हाल चाल है?
1: मैं खौफ से और डर से कितना टाइम का पाबंद.
0: हाँ बिल्कुल. अच्छा आपसे शुरुआत करते हैं, कॉलर आ गए हैं हमारे साथ दूसरे, ठीक है. तो पहला गाना आप अपनी पसंद का कोई भी सुनाएं, जहाँ पे एंड होगा वहाँ से हमारे दूसरे जो कॉलर हैं वो गाएंगे.
1: चले अच्छा, ये इसमें तो कोई मतलब शर्त नहीं है ना कि वो कोई पंजाबी है या उर्दू?
0: नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बस गाना होना चाहिए. तो हमारे साथ इस वक्त दोनों कॉलर्स मौजूद हैं, ठीक है. दूसरे कॉलर से भी हम बात कर लेते हैं. कौन? हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपने शोले देखी होगी, सलीम और जावेद.
0: हाँ शहजादा सलीम. अच्छा जावेद और सलीम दोनों आ गए.
1: सलीम जावेद.
0: सलीम जावेद आ गए. जबरदस्त, ग्रेट. तो

0: भाई हम जो है शुरू करते हैं, कौन पहला गाना गाएगा? जावेद साहब आप?
1: अच्छा पहले मैं बता दूं कि मुझे तो 99% है कि मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मुझे वैसे ही याद रहती है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। बहरहाल चले मैं जो भी सलीम भाई गाना चाहते हैं आप, चलिए नो प्रॉब्लम।
0: अच्छा सलीम भाई पहले गाएं, चलें जी सलीम भाई आप गाइए पहला गाना।
2: हमको हमी से चुरा लो,
0: गाएं गाएं
2: गा दिया ना, हमको हमी से चुरा लो।
0: नहीं नहीं गाना गाएं भाई, ऐसे नहीं मजा आएगा, गाना होना चाहिए। थोड़ा सा तो गाएं।
2: अच्छा अच्छा, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्तों से अपनी यादें छोड़ जाता है।
0: है अच्छा जी, है से जावेद साहब
1: ऐसे ये आता है आपको पता है, ये आएगा,
0: ये आएगा आखिर में बिल्कुल जी।
1: ये दुनिया ये महफिल।

0: हूँ ढूंढता हूँ नून एक तना से है ना नून होना
1: जी जी
0: नून होना नून जी
2: नून
0: नून
2: है ना नून करते प्यार तुमसे कर बैठे करना था इकरार मगर इनकार तुमसे कर बैठे
0: जी कर बैठे बैठे
1: ये
0: जी
1: ये शाम मस्तानी

0: जा।
1: क्या बात है, क्या बात है, ले जाए फिर ये,
0: फिर ये आ गया। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहते हैं तो कहता रहे, हम क्या तूफानों में गिरे, हम क्या करे वे
1: करे ना, तो फिर नून आए
0: करे आ गया मेरा हाल है
1: नून
2: करे
1: करे
2: ये,
1: हाँ।
2: ये
1: है आ जा
2: ये आता ना
1: हाँ ये
2: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली हो, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी।
1: हमारी ये फिर से

0: फिर से ये आ गया,
1: फिर से ये आ गया,
0: ये आ गया।
1: हाँ जल्दी से।
0: ये जो मोहब्बत है महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए
1: बदनाम।
2: मुझे तेरी मोह

0: किनारा मिल गया होता।
1: क्या बात है, मिल गया होता। अलिफ,
2: अलिफ आ गया।
1: हाँ हाँ, अलिफ आ गया। अब जल्दी जल्दी
2: हाँ, अलिफ अलिफ
1: वन टू
2: आजा तुझको पुकारे मेरे गीत तेरे हो मेरे मिथुआ।
1: शॉर्टेस्ट गाते हैं आप, मिथुआ फिर अलिफ।
0: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
1: अलिफ फिर से।
2: फिर से अलिफ आ गया
1: जी। फिर से अलिफ आ गया।
2: हम तो तेरे
1: अलिफ अलिफ अलिफ अलिफ अलिफ अलिफ अलिफ अलिफ चाहिए जी। जी एक
2: अलिफ अलिफ अलिफ एक हो गया।
1: दो अलिफ। तीन
2: कितने गिनने वाले? अलिफ अलिफ के कौन से गाने हो?
1: चार। हाँ बहुत सारे हैं, सोचे। पांच
2: पांच हो गए। चल
1: पांच हो गए। जबरदस्त। देखिए शायद सलीम आपने बहुत मजा करवाया है। थैंक यू जी। जी जी बिल्कुल। थैंक यू शहजाद सलीम, थैंक यू। तो अब जो है अगर कोई और आना चाहता है तो जल्दी से आ जाए। जावेद साहब जबरदस्त भाई, हम तो आपकी आवाज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन
3: है। ठीक नहीं है, मैं भी शायद ठीक नहीं मेरी आवाज़। नहीं, नहीं, नहीं
1: फिर भी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी भाई, बहुत अच्छी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: साथ के लाइक वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मजा आ रहा है जावेद साहब, हर दिन आया करें। जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, एक तरफ का घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला। इस तरफ वो सोच लिए होंगे, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। चलो
1: अलिफ अलिफ अलिफ अलिफ।
0: अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम।
2: मैंने छोटे छोटे गानों में भी किया है, मैंने दिल तुम्हें को दिया। अब दुनिया से अपना डरू, तुझसे मैं प्यार करूं। चलो नो
1: नून। जी नून। जी जी
3: अल्लाह खुश रखे। थैंक यू, थैंक यू।
1: नून नून।
0: ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते।
1: रिश्ते ये रईस भाई।
2: अब तो भैया
1: ये जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी, आखिर का हमारा वक्त रह गया है, जल्दी से ये एक
2: एक मिनट
1: दो तीन
2: कंफ्यूज बेकर जो तीन उठ के आप चलो भाई को।

0: चले राइस भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। चले जी, कोई और आना चाहता है तो जल्दी से आए। जावेद साहब सबको जो है बिल्कुल नॉकआउट कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर, तो जल्दी से जो भी आ सकता है फटाफट कॉल कीजिए, कॉल करके आप शामिल हो जाएं। 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ज़बरदस्त, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है, आज पहली दफ़ा है, और हम इसके थोड़े से और रूल्स भी सेट कर लेंगे, लेकिन बहुत इन्जॉय करें। कॉल जल्दी से जी। जावेद साहब आपने इन्जॉय किया?
1: मैं कह रहा हूँ कि मुझे आई रियली फील प्राउड, यू नो।
0: अच्छा, कॉलर आ गए हमारे साथ। जी जी, एक कॉलर आ गए, अब देखते हैं कि कितनी देर तक चलता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
2: हमजा।
0: चले जी, तो कहाँ पे खत्म हुआ था अभी? अच्छा, कौन सा?
2: मैं पहले कंफर्म कर दूं, मुझे इतने सारे गाने नहीं आते।
0: हाँ, लेकिन फिर भी
2: आई विल ट्राई माय बेस्ट।
0: हाँ हाँ, नहीं मसला नहीं है। तो ये पे खत्म हुआ था, ये पे खत्म हुआ था। हाँ,
2: ये से,
0: हाँ कोई सा भी गाना, ये से।
2: ये रास्ते, ये मौसम, नदी का किनारा,
0: चंचल हवा के अलिफ,
1: क्या हुआ?
0: अलिफ अलिफ
1: अलिफ।
2: और इस दिल में
0: क्या बात है?
2: रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है,
0: बहुत आला।
2: तेरा ही दर्द छुपा रखा है।
0: ये अगेन,
2: ये
0: जी,
2: ये जो हल्का हल्का सुरूर है,
0: बहुत
2: ये तेरी नजर का कसूर है, शराब पीना सिखा दिया।
0: हमसे जबरदस्त, सिखा दिया। फिर अलिफ,
1: फिर अलिफ
0: जी।
1: अच्छा, बीच में से भी गा सकते हैं?
0: हाँ, बस अब हमारा टाइम वैसे ओवर हो गया है, तो हमने क्योंकि 50 तक ही करना है। तो जावेद साहब बहुत तालियां, हमजा बहुत अच्छा लगा, आप अच्छा कर लेते हैं, आप ज़रूर आइंदा भी कॉल कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए। और जावेद साहब आपके लिए बतौर खास, और बाकी जितने लोगों ने भी इंक्लूडिंग हमजा, आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, तो आप सबके लिए तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और बहुत शुक्रिया, ऑफिस के वक्त में से आपने कॉल किया है, मैं समझ सकती हूँ बहुत मसरूफियत होगी इस वक्त। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रोहित जी तो हमारे साथ मौजूद है, भाई क्या गाए हैं, एक से बढ़कर एक गाने जावेद साहब ने। और इसी के साथ मैसेज की तरफ आ रही हूँ, यस मज़ा आ रहा है, हाँ हाँ, कोई ना कोई अच्छा सिंगर होना चाहिए लाइक जावेद साहब। ओके जी, और इसके साथ ही है मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम आरजे महवेश खान, कॉल कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। हाँ, ये अच्छा जावेद साहब ने किया था, बिल्कुल मैंने कर लिया आपको। और मैम जावेद साहब ज़बरदस्त, सुरजीत का मैसेज है इसके साथ ही, वही है नसीम कहते हैं बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, थैंक यू जी। और इसके साथ ही जी मुमताज़ अहमद कहते हैं कि जावेद साहब से ये गाना को बोलो, मेरे महबूब कयामत होगी। मुमताज़ अहमद, चले आप भी कल कॉल कीजिएगा, आप सब लोग कोशिश कीजिए, हर बंदा गा सकता है, मतलब गाना हर बंदे को आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना गा सकता हो। थैंक्स फॉर प्लेइंग, मज़ा आ गया भाई आज तो। लेकिन जो लास्ट वाला गाना था ना, वो ज़रूर लगाना, अभी मैं कोशिश कर सकती हूँ। और शहजादा सलीम कहते हैं जावेद साहब सुपर परफॉर्मेंस, शहजादा सलीम आपने भी वैसे बड़े मज़े मज़े के गाने गाए, जावेद साहब गुड। और गफरोज खान चकवा हैं इसके साथ, बहुत खूब जावेद साहब, ये नसीम का मैसेज है। जसविंदर सिंह कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम जी, जसविंदर सिंह काला दिल से देसी। थैंक यू जी आप सब लोगों के मैसेजेस के लिए, आपकी कॉल्स के लिए। और इसी के साथ मेरे अब जाने का भी वक्त हो गया है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अब आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला कल। तो ख्याल रखिए अपना, अपने से वाबस्ता लोगों का। और काफ़ी मैंने इन्जॉय किया आज, मज़ा आया, पहला दिन था उसके हिसाब से तो बहुत ही, खासतौर पर जावेद साहब की बात, मतलब जो आवाज़ है उसको सुन के तो दिन ही बन गया। चलिए जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल, और कल मुझे लगता है और अच्छा होगा, लोग तैयारी कर कर आएंगे तो और ज़्यादा हम इन्जॉय करेंगे। मेरी तरफ से फाइनली अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
1: FM 107
0: दिल से देसी।

और 553 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लुबनान की वजारत सेहत के पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर ने कल जारी बयान में कहा है कि 2 मार्च से जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में मजमूई हलाकतों की तादाद 4,303 तक पहुंच गई है, जबकि 12,202 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि लुबनान और इसराइल के दरमियान अमरीका की सालसी में एक फ्रेमवर्क माहदा तय पाया है, जिसमें सिक्योरिटी इंतजाम और जनूबी लुबनान में लुबनानी फ़ौज के दोबारा तैनाती का तस्वुर शामिल है। माहदे के तहत मुतासर इलाकों की तमीर नो, लुबनानी मीशत की बहाली, दोनों फरीकैन के दरमियान बराह रास्त रबता कारी के चैनल्स कायम करने और एतमाद साजी के इकदाम पर अमल दरामद होना था, ताकि देर पामन की राहमवार की जा सके। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल इस्तंबुल में मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन को मजीद फरोग देने के इम्कान के साथ साथ अहम इलाकाई और बैनुल अक्वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अनादोलो एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में गजा की जंग की सूरत हाल, शाम और अफगानिस्तान के हालात और ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी समेत मुख्तलिफ इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में तनाजात के हल के लिए सफारती रास्ता अपनाना ज़रूरी है और कशीदगी में इजाफे को रोका जाना चाहिए। मुलाकात के दौरान अनकरा और इस्लामाबाद के दरमियान दिफाई सनद, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और अस्करी तरबियत के शोबों में तावन बढ़ाने के मौाक़ों पर भी गौर किया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरिका हिकमत अमली, इलाकाई सलामती के फरोग, तिजारत के हुजम में इजाफे, बाहमी सरमायाकारी के फरोग और तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के शोबों में तआवुन को वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। इसी के साथ तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुश्तरिका कोशिशों को मजीद गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया है। इस्तंबुल में कल होने वाली दो तरफा मुलाकातों और वसी तर मुज़ाकरात के बाद मुश्तरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर अर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया बरादर मुमालिक के साथ बिलखसूस पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात में दो तरफा उमूर के साथ साथ इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अर्दोगान ने इस आज़म का इजहार किया कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ तवानाई, ट्रांसपोर्ट, अहम मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन को मजीद वसअत देने का ख्वाहां है। तुर्क सदर ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुर्किया कशीदगी में कमी और तनाजात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत करता है और इलाकाई मसाइल के हल का आगाज़ खित्ते के ममालिक से ही होना चाहिए, ताकि उनके पायदार और मुअस्सर नतायज हासिल किए जा सकें। मशरिक़ वुस्ता की सूरतेहाल पर बात करते हुए सदर अर्दोगान ने गजा की पट्टी, लुबनान और शाम पर इसराइली हमलों को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया। उन्होंने कहा कि जंगों की आदि इसराइली हकूमत को खित्ते को दोबारा कशीदगी और खून रेजी की दलदल में धकेलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि काबिज़ इसराइली जो अपनी सियासी वका को खित्ते में मुसलसल तनाजात से जोड़ता है, लुबनान और शाम को अमन से रहने नहीं दे रहा, जबकि गजा में नहते फ़लस्तीनियों पर गैर कानूनी और गैर इंसानी हमले मुसलसल जारी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया की हिमायत ने पाकिस्तान को ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले माहदे तक पहुँचने की कोशिशों में सालसी किरदार अदा करने में मदद दी और इस मिशन को इंतहाई मुश्किल करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत और वसी करने के लिए पुरअज़म है। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्तों में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और ये तारीखी यकजहती आइंदा भी जारी रहेगी। मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक शर्म शेख माहदे और अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों माहदों को नाकाम बनाने, उनसे इनहराफ करने या उनमें रुकावट डालने की किसी भी कोशिश को रोका जाना चाहिए। मिस्र के नए इंतजामी दारुल हकूमत में स्ट्रेटजिक कमांड हेडक्वार्टर की इफ्तताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर अस्सीसी ने कहा कि मिस्र ने

0: के लिए तंबीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी रहमत और आसानी का नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को बिला वजह मशक्कत में नहीं डाला। सहाबा नमाज में मौजूद होते तो अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनते तो नमाज मुख्तसर कर देते ताकि माँ परेशान न हो, और अगर कोई गलती करता तो उसे नरमी से समझाते। तो सामने कराम चलें कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास कोई जिम्मेदारी है तो उसे अमानत समझें, लोगों के साथ आसानी और नरमी का बर्ताव करें, गुस्से के बजाय हिकमत से काम लें, और हर मामले में अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त को अपना नमूना बनाएं। सामिन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है, और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी। याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतरी जिमनास्ट अहमद नबील अल दयानी के बारे में। अहमद नबील कतर के उभरते हुए इंटरनेशनल जिमनास्ट में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी की है। और छोटी सी उम्र से ही उन्हें आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स का शौक था और उन्होंने रोजाना सख्त ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्किल्स को निखारा। फ्लोर एक्सरसाइज, पैरल बार्स और वॉल जैसे इवेंट्स में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। जिमनास्टिक्स एक ऐसा खेल है जहां बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अहमियत रखते हैं और अहमद इन तमाम पहलुओं पर मुसलसल काम करते हैं। दोहा की जदीद ट्रेनिंग फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अहमद का मकसद सिर्फ फर्दी कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि कतर के लिए मेडल्स जीतना और नए खिलाड़ियों को इंस्पायर करना भी है। उनकी मेहनत और डिसिप्लिन ने साबित किया है कि लगातार प्रैक्टिस से मुश्किल रूटीन भी कामयाबी से मुकम्मल की जा सकती है। आने वाले सालों में उनसे मजीद बेहतरीन नतायज की उम्मीद की जा सकती है और वो कतर की जिमनास्टिक्स प्रोग्राम को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करने वाले हैं कि बालिग अफराद के लिए सेहतमंद स्नैक्स के बारे में। मसरूफ हमारी ज़िंदगी है और मसरूफ ज़िंदगी में अक्सर खाने के औकात के दरमियान भूख महसूस होती है और ऐसे वक्त में हम जल्दी से कोई भी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन अगर स्नैक्स का इंतखाब दानिशमंदी से किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि स्नैक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान काफ़ी वक्फा हो तो जिस्म को तवानाई की ज़रूरत महसूस होती है। सेहत पर जो स्नैक्स हैं ना सिर्फ हमारी भूख कम करते हैं बल्कि जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा भी फराहम करते हैं। फल बेहतरीन कुदरती स्नैक हैं, उनमें सेब, पियर्स, अमरूद, माल्टा और संतरा ग़िज़ाइयों से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बेहतर बनाते हैं। कम चिकनाई वाला दही प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है। अगर इसमें ताज़ा फल शामिल कर लिए जाएँ तो ये मज़ीद ग़िज़ाइयत बख्श हो जाता है। इसी तरह से बादाम, अखरोट और कैश्यू जो हैं वो दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। ये जिस्म को सेहत बख्श चिकनाई और प्रोटीन फ्राहम करते हैं। एक छोटी मुट्ठी भर जो नट्स हैं वो बेहतरीन स्नैक्स साबित हो सकते हैं। भुने हुए चने फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं। गैर सेहत बख्श जो चीज़ें हैं उनकी ख्वाहिश को भी कम करते हैं। बाज़ औक़ात हम प्यास को भूख समझ लेते हैं और दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी को मत भूलिए। लिसनर्स, सेहत बख्श हेल्दी स्नैक्स सिर्फ और सिर्फ भूख कम करने के लिए नहीं है बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। फल, दही, नट्स, भुने हुए चने जैसे इंतखाब को आप ज़्यादा तवानाई और बेहतर सेहत फराहम कर सकते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी,
3: आसान हो जाएगी।
2: सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। समईन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो अपनी इल्म, अदब और शायरी के जरिए दुनिया में मशहूर हुए। उनका नाम है उमर खय्याम।

0: جی ہاں، عمر خیام نہ صرف ایک عظیم شاعر تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں سائنس، میتھمیٹکس اور فلسفی کی دنیا میں بھی کافی نام روشن کیا۔ ان کی زندگی اور ان کے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم ان کی شاعری، علم اور ان کے نظریات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے ہر دور کے انسان کو اپنے کام سے متاثر کیا۔ آئیے سامعین، سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ارلی لائف اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ تو عمر خیام کا اصل نام غیاث الدین ابو الفت عمر بن ابراہیم خیام تھا۔ ان کی پیدائش سن 1048 میں نشاپور، جو آج کا ایران ہے، میں ہوئی تھی۔ نشاپور اس وقت علم اور فن کا ایک مشہور مرکز تھا۔ ان کی تعلیم کا سفر یہیں سے شروع ہوا اور انہوں نے اپنی تعلیم کافی مشہور عالموں سے لی۔ عمر خیام کا دماغ بہت ہی تیز تھا اور انہوں نے اپنی تعلیمات کو اس وقت کے علم و ہنر کے مرکز میں بھی آزمایا۔ ان کی زندگی میں علمی، فنی اور فلسفی رجحان کا کافی تعلق رہا۔ دوستوں، عمر خیام کی تعلیم میں فلسفی، لاجک اور میٹا فزکس جیسے ایڈوانس ٹاپکس بھی شامل تھے۔ عمر خیام کا تعلق اپنے شہر نشاپور سے بہت گہرا تھا اور وہاں کا علم و ہنر کافی بڑا تھا، جو ان کی سوچ اور کام کو نئی راہ دکھاتا رہا۔ نشاپور کافی وقت تک ایران کا علم و فن کا مرکز رہا، جہاں طلبہ اور فقراء کے درمیان علم کا اصلاح اور فروغ ہوتا رہا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ان کے ایجوکیشن اور سائنٹیفک پرسوئٹس پہ۔ سامعین، عمر خیام نے اپنے علم کو صرف فارسی اور عربک تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی علم و فن کے میدان میں کافی اہم کام کیے۔ انہوں نے اپنے علم کا سفر بغداد، بخارا اور سمرقند تک بھی جاری رکھا۔ یہ شہر اس وقت علم اور سبق دینے کے لیے مشہور تھے۔ عمر خیام نے میتھ اور سائنس کے کئی تھیوریز پر کام کیا۔ ان کا سب سے مشہور علم ان کا کام میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی پر تھا۔ انہوں نے اس وقت کے فیمس ایسٹرونومر ناصر الدین التوسی کے ساتھ مل کر ایک آبزرویشن سیٹ اپ کیا۔ یہ سیٹ اپ اپنی ایکیوریسی کے لیے مشہور ہوا۔ عمر خیام نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے ریسرچ پیپرز اور ایسے لکھے جو ان کی سائنٹیفک سوچ کا ثبوت ہیں۔ سامعین، انہوں نے اپنی زندگی کافی وقت ایسٹرونومی کو دی اور انہوں نے ایک ایسے کیلنڈر کی تحقیقات کی جو اس وقت کے جارجین کیلنڈر سے کافی بہتر تھا۔ ان کا کیلنڈر ایک بہت ہی ایکیوریٹ سسٹم تھا جو ایران اور افغانستان جیسے علاقوں میں آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے لوگوں کو ایسٹرونومی کا علم دیا اور انہیں سمجھایا کہ کس طرح سے ہم اپنے آس پاس کے سامان اور ستارے دیکھ کر وقت اور منظروں کو سمجھ سکتے ہیں۔
1: آپ سن رہے ہیں سائنٹسٹ ورلڈ سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
0: آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں عمر خیام ایز اے فلسفر۔ سامعین، عمر خیام صرف علم کے شوقین نہیں تھے بلکہ وہ ایک اہم فلسفر بھی تھے۔ ان کی فلسفی کافی گہری تھی اور ان کے نظریات نے انہیں اپنے زمانے سے کافی آگے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی سوچ کو رباعیت میں بیان کیا جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کی فلسفی میں سب سے زیادہ جو بات سمجھنے والی تھی وہ تھی فنیت، یعنی دنیا کی مایا۔ عمر خیام کی نظر میں دنیا صرف ایک بیکار چیز نہیں تھی جو انسان کے غم، خوشی اور تلاش کی وجہ سے رنگ بدلتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنی مایا اور دنیا کے دوسرے فسانے میں نہ فسانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقت کی راہ میں سب کچھ فانی ہے، ہم صرف اس راہ میں اپنی قسمت کا ہم سفر ہیں۔ उनका ये नजरियात इंसान को अपनी असली मंजिल की तरफ दावत देता है। खयाम के लिए जिंदगी का असल मकसद अपनी दोस्ती, अपनी मंजिल और अपनी हकीकत को समझना था। उन्होंने अपनी रुबायत में बहुत सी गहरी बातें लिखी जो आज भी हर इंसान के लिए एक दर्स हैं। आइए अब जानते हैं कि उमर खयाम की मैथमेटिक्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशंस रहीं। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा तरीका दिया जो उस वक्त के लिए काफी अहम था। उन्होंने मैथमेटिक्स को अपने टाइम के कॉन्टेम्पररी आइडियाज से काफी आगे ले जाकर एल्जेब्रिक थ्योरीज को एस्टेब्लिश किया। उनका काम आज भी मैथमेटिशियंस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। उन्होंने अपने काम में पॉलीनोमियल इक्वेशंस और ज्योमेट्रिक मेथड्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उमर खयाम की मैथमेटिक्स की किताबें अब भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने अलजेब्रा को सिर्फ एक थ्योरी तक नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक डिसिप्लिन बना दिया। समय उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बना लिया था कि सलजूक सुल्तान मलिक शाह ने उन्हें इस्फहान बुला लिया ताकि वो कैलेंडर की इसलाह के लिए जरूरी एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेशन कर सकें और इस मकसद के लिए एक ऑब्जर्वेटरी वहां बनाई गई और एक नया कैलेंडर तैयार किया गया जिसे जलाली कैलेंडर कहा गया। ये कैलेंडर 33 सालों में से 8 को लीप ईयर्स बनाने पर मबनी था और ये मौजूदा जॉर्जियन कैलेंडर से ज्यादा एक्यूरेट था और 1075 में मलिक शाह ने इसे अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, इस्फहान में उन्होंने एक्यूलिड की थ्योरी को पैरेलल्स और उनकी थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन पर भी बुनियादी तनकीद की। पहली बात के हवाले से उनके आइडियाज आखिरकार यूरोप तक पहुंचे जहां उन्होंने इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेलिस जो 1616 से 1703 तक जिंदा रहे पर असर डाला और दूसरी बात के हवाले से उन्होंने नंबर के तसव्वुर को वाज़े करते हुए ये जरूरी आइडिया दिया कि नंबर को मैग्नीट्यूड्स के रेशियो को शामिल करते हुए बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, उनके इस्फहान में गुजरे हुए साल बहुत प्रोडक्टिव थे लेकिन सन 1092 में उनके पैटर्न के इंतकाल के बाद सुल्तान की विडो उनके खिलाफ हो गई और इसके बाद उमर ने मक्का का सफर किया और फिर वो निशापुर वापस आए जहां उन्होंने तालीम दी और कोर्ट में एस्ट्रोलॉजर के तौर पर खिदमात की। फलसफा, फिक्र, तारीख, हिसाब, तिब और इल्मे फलकियत उनके वो हवाले हैं जो इस अजीम शख्स ने माहिराना तौर पर सीखे।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सर्वर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: आइए अब बिल्कुल खासम खास नजर डालते हैं उनकी रुबाइयत पर जिससे वो हमेशा के लिए जाने जाने लगे। बात करी जाए उमर खयाम के सबसे मशहूर काम उनकी रुबाइयत, तो रुबाइयत वो मुश्किल और गहरी शायरी थी जो उन्होंने अपने ख्यालात और जज्बात को अपने अंदाज में लिखी। उमर खयाम की रुबाइयत दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी शायरियों में से एक समझी जाती है। उनकी रुबाइयत में अपनी जिंदगी के इर्तिका, मुसारिफ और मुकद्दर का गुरूर ना होना एक आम थीम थी। उन्होंने हर सूरत में जिंदगी का असल मतलब और जो कुछ इंसान को चाहिए उसका जिक्र अपनी रुबाइयत में किया। आज भी उनकी रुबाइयत दुनिया के हर कोने में पढ़ाई और समझाई जाती है। उनकी सबसे मशहूर रुबाइयत ये है, हर रंग के प्याले में एक लम्हा है जो हमारी जिंदगी के रंग बदलता है। उन्होंने अपनी रुबाइयत में हर हालत में जिंदगी को जीने का तरीका दिया, चाहे वो खुशी हो, गम हो या जिंदगी का कोई और रंग हो। आइए सामीन अब एक नजर डालते हैं लेगेसी और उनके इन्फ्लुएंस पे। उमर खयाम का इल्म, उनकी शायरी और उनकी फिलॉसफी आज भी दुनिया भर में पढ़ने, समझने और उन पर रिसर्च करने का सबब है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसका असर सिर्फ उनके वक्त तक नहीं बल्कि आज के दौर में भी महसूस किया जाता है। उनकी रुबाइयत को 19वीं सदी में एडवर्ड फिट्ज़गेराल्ड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो उनकी शायरी को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने का सबब बना। कयाम की फिलॉसफी और उनकी शायरी काफी लोगों को इंस्पायर करती है और उनकी सोच को समझने की कोशिश आज भी चल रही है। उनका काम सिर्फ उनके जमाने तक नहीं था बल्कि उनका असर हर दौर और हर इल्म फन में महसूस किया गया। उनकी रुबाइयत, उनकी फिलॉसफी और उनके इल्म की राह दुनिया भर में इंसान को अपनी सोच को समझने की एक बेहतरीन नजर दे रही है। उमर की शोहरत मगरिब में उनकी रुबाइयत यानी चार मिसरात की मजमूए की वजह से है। चार मिसरात एक ऐसा शेर होता है जो चार लाइंस पर मसल्लस होता है, जो आम तौर पर आ या अबा काफिया से होता है और ये एक पैगाम के करीब होता है। उमर के अशार को बहुत कम तवज्जो मिली थी जब तक इन्होंने फिट्ज़गेराल्ड को इंस्पायर नहीं किया, जिन्होंने अपनी मशहूर किताब द रुबाइयत ऑफ उमर खय्याम लिखी, जिसमें कुछ अब मशहूर जुमले हैं जैसे अ लोफ ऑफ ब्रेड एंड थाओ, टेक द कैश एंड लेट द क्रेडिट गो, और द फ्लावर दैट वंस हैज ब्लाउन फॉरएवर डाइज। ये चार मिसरे हर बड़ी जुबान में तर्जुमा किए गए हैं और ये अक्सर यूरोपियन लोगों के पर्शियन शायरी के हवाले से सोचने का तर्ज बदलने का सबब बने हैं। समईन कुछ उलमा ने शक किया है कि क्या उमर ने वाकई शायरी लिखी थी। उनके मुअस्सर वक्त में उनके अशआर पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी और उनकी वफात के 200 साल बाद चंद चार मिसरात उनके नाम से सामने आए। फिर भी ये अशार ज्यादातर उन नजरियात के खिलाफ कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किए गए जो उमर के हवाले से माने जाते थे, जिससे कुछ उलेमा ने ये शक किया ये मिसरात शायद उमर के नाम से जोड़कर बनाए गए हैं क्योंकि उनकी इल्म की शोहरत थी।
1: आप सुन रहे हैं साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: हर एक उमर का क्वाड्रेंट अपने आप में मुकम्मल शेर है। फिट्ज़गेराल्ड ने इस ख्याल को सोचा कि इन रुबियात के एक सिलसिले को एक मुसलसल एलिगी में शामिल किया जाए जो कि एक इंटेलेक्चुअल इत्तेहाद और कंसिस्टेंसी रखता हो। फिट्ज़गेराल्ड की जर्रा और खूबसूरत पैराफ्रेजिंग ने उनके तर्जुमे को यादगार और मुख्तसर बना दिया। दोस्तों, फिट्ज़गेराल्ड और दूसरे लोगों के तर्जुमे किए हुए अशार एक ऐसे शख्स को दिखाते हैं जो गहरी सोच रखता है, जो हकीकत और अबादियत, जिंदगी की नापायदगी और अनिश्चितता और इंसान का इल्मी मजहब के साथ रिश्ता जैसे सवालों से परेशान है। मुसन्निफ खुदाई इसारत और आखिरत की मौजूदगी पे शक करता है, मजहबी यकीन का मजाक उड़ाता है और इंसान की कमजोरी और जहालत को गहराई से महसूस करता है। जब उसे अपनी उलझनों के जवाब नहीं मिलते तो वो अपनी वफादारी को इस हालत में दरियाफ्त कर लेता है कि वो मादी दुनिया की चंद छोटी खुशियों और हुस्न की पुरमस्ती का लुत्फ उठाए। दोस्तों, आज हमने जाना उमर खय्याम के इल्म, उनकी शायरी और उनकी फिलॉसफी के बारे में। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजारा और दुनिया को अपनी सोच से नई राह दिखाई। उनकी रुबाइयत ना सिर्फ उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है बल्कि ये हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी इल्म, उनकी सोच और उनकी पोइट्री आज भी दुनिया में पढ़ने, समझने और इंस्पायर करने का सबब है। उनका काम हमारी सोच को गहरा करता है और हमेशा अपने असर से रोशनी देता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो इसी के साथ हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
2: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ।

0: नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 11:01। आज सर्वर भाई नहीं मैं हूं, मैं मतलब सफा भाई, और आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड ऑन एफएम 107।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: तो भाई सफा के साथ सन एंड साउंड में आप सभी को ढेर सारी खुशामदीद। मैं आपको ये बताती चलूं कि भाई देखें, सबको छुट्टी की ज़रूरत होती है, तो हमने कहा सर्वर भाई अब हम छुट्टी से वापस आ गए हैं तो आप छुट्टी पर चले जाएं। साथियों आप लोगों के क्या हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और सर्वर भाई को याद कर रहे होंगे। हाँ हाँ मुझे पता है सर्वर भाई को सब मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं हाज़िर हो गई हूँ, तो मेरे साथ अब गुजारा हो जाए, है कि नहीं। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना सन एंड साउंड का ये वाला एपिसोड सफा के साथ, और भाई आप सभी को ढेर सारी खुशामदीद। और इस शो में हम करते ये हैं कि मस्ती करते हैं, मजा करते हैं, आपके साथ गेम्स खेलते हैं, आपके साथ कुछ मजे मजे की दिलचस्प बातें शेयर करते हैं, कुछ आपके ख्यालात भी हम इस प्रोग्राम में शेयर करते हैं, आपसे चंद सवाल पूछे जाते हैं रैंडम से, और उन पे ना आपके दिलचस्प नज़रियात लिए जाते हैं। तो साथियों पहले तो आप सभी को खुशामदीद, और मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई देखें हमारे इस शो में ना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि आप कॉलर हैं, तो भाई आपकी वजह से ये शो चलता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 इज़ द नंबर। क्या नंबर है कॉल करने का? 4434377 इज़ द नंबर टू

0: कॉलर चाहें तो हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं 666-22-107 पर। अच्छा भाई, इससे पहले कि माहौल गर्म हो, हम आपको ये बता देते हैं कि फिलहाल वेदर कैसा चल रहा है। भाई वेदर फॉरकास्ट की रिपोर्ट कहाँ चली गई? देखिए मैं आई हूँ 45 दिन की छुट्टी के बाद, ठीक है, तो जरा हाथ हौला रखना प्लीज। मामला ये है कि देखिए आप भी अगर 45 दिन की छुट्टी बाद आते हैं ना ऑफिस, तो सब कुछ भूला भाला सा होता है। ऐसा लगता है जैसे पहली दफा कोई स्टेप इन किया है, थोड़ा सा वेकेशन मोड में होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा होता है मामला, तो संभाल लेना पब्लिक, संभाल लेना, ठीक है। तो भाई सूरज चाचू की तरफ चलते हैं। देखें सूरज का जो वेट है ना, वो गर्मी में वो बहुत ज्यादा चल रहा है। वो तो मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जितने लोग बाहर ड्राइव कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी महसूस हो रहा होगा, लेकिन फिर भी चले इतलाए आम दे ही देती हूँ आपको, क्या याद करेंगे भाई। इस वक्त जो है ना टेम्परेचर हो रहा है तकरीबन मीटर ये बता रहा है चेक करके कि 44 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोहा ने एसी बंद कर लिया, माइक्रोवेव का बटन ऑन कर लिया है। अगर आपने बाहर कहीं गाड़ी खड़ी की है ना, और आप 2-3 मिनट के लिए कहीं दुकान वकान जाते हैं या एक्सपायर्ड कहीं पे भी जा रहे हैं गाड़ी खड़ी कर, तो जब वापस आप गाड़ी में आकर बैठे ना, तो एक दफ़ा अपनी सीट पर हाथ रख कर देख लेना कि वो इतनी काबिले बर्दाश्त गर्म है कि जिसके ऊपर आप फौरन बैठ सकें, ये वाला टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा भाई अगर हवाओं की बात की जाए तो देखें ये चल रही है वेस्ट से चल रही हैं, और अगर इनकी अगर आपको इनकी स्पीड के बारे में जानना है तो कोई ख़ास जानकर आपको कोई खुशी ना होगी, क्योंकि बड़ी हल्की पुल्की सी हवा चल रही है। यूँ समझ लें कि आपको अगर नंबर्स में बताया जाए तो भाई 10 किलोमीटर पर आर या 12 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हवा चल रही है, जो कि एवे की रफ्तार है। देखिए जिंदगी भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, बिल्कुल वैसी वाली रफ्तार है जैसे आप वेकेशन से वापस आते हैं ना, तो ऑफिस की काम की रफ्तार जैसी होती है, बिल्कुल वैसी वाली रफ्तार हवा की भी चल रही है भाई। और ह्यूमिडिटी के बारे में क्या ही बोला जाए, शुक्र है अभी तक ये सिर्फ 16% पर है, मतलब वो जो रोस्टिंग वाली होती है ना, जैसे हम चिकन खाते हैं रोस्टेड, अभी तक वो रोस्टिंग वाली ह्यूमिडिटी नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहा जा रहा है कि इस हफ्ते से शुरू होगी। तो भाई मेरी तरफ से यानी कि सफा की तरफ से कुछ टिप्स ले लें। टिप ऑफ द डे, बाहर निकलने का प्लान है आपका तो भाई सन ब्लॉक का डब्बा पूरा खाली कर लेना अपने ऊपर। हाँ वो जो सन ग्लासेस आपने इधर उधर फेंके हुए ना अपने, उनको जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, उनको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, वो आप यूवी रेस से बचाते हैं। हाँ और जो ये हमारा पानी की बोतल है ना, उनको तो भाई बेस्ट फ्रेंड समझ लें अपना, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसने इनसे दोस्ती खत्म की मतलब वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। और हाँ अगर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को हाथ लगाना हो ना, तो भाई पहले उसे रिस्पेक्ट दें, और वो रिस्पेक्ट ये है कि उसे कहीं छांव में खड़ा करें, मेहरबानी आपकी, क्योंकि वो स्टीयरिंग व्हील नहीं वो तवा बन चुका होगा। तो भाई ये तो थी हमारी वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट के बाद हम चलते हैं कहाँ पर, हम जा रहे हैं वेदर रिपोर्ट के बाद आपको ये बताने कि भाई आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज, और 443-443-77 इज द नंबर टू कॉल। और मेरा आज आप लोगों से ना एक सवाल है, देखिए बड़ा संगीन सा सवाल है, जरा कॉल आ रही है, कॉल अटेंड करने से पहले सवाल सुनने, थोड़ा मजे की कन्वर्सेशन हो जाएगी ना, फिर आपको सोचने का भी टाइम मिल जाएगा। सवाल पता है क्या चल रहा है मेरा, मेरे दिमाग में एक सवाल आया। दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो रैंडमली कुछ भी खा लेते हैं, और एक वो जिनकी बड़ी स्पेसिफिक सी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उनको हर चीज़ में एक मखसूस चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है। जैसे मेरा हिसाब ये कि मुझे ना नमक तेज़ बहुत पसंद है, मुझे खाने में नमक तेज़ पसंद है। अब वो भाई मुझे पूरी ज़िंदगी खिला दो आप तेज़ नमक, अगर कभी गलती से खाने में नमक तेज़ हो जाए ना तो वो मुझे खिला देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। अब ये है मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, तो मेरा जब मैं अपने पास से देखती हूँ लोगों को, तो मुझे अलग अलग मुख्तलिफ लोग नज़र आते हैं, किसी को मिर्चें ज़्यादा पसंद है, किसी को क्या ज़्यादा पसंद है, किसी को क्या ज़्यादा फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि चलो ये तो मिर्च मसाले हैं भाई, ये कौन से लोग हैं जिनको केचप पसंद होता है,
1: मुझे केचप पसंद नहीं है, मैं तो स्पेशल ऑर्डर देते हुए ना वो जाती हूँ ना मैं चाय वाय पीने बाहर सैंडविच वैंडविच खाने, तो मैं उनको स्पेशली कहती हूँ भाई केचप नहीं डालना, ना बाबा ना, केचप जो है ना वो खाने की तौहीन है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो आज मेरा आज का मुद्दा आप लोगों से ये है, टॉपिक ऑफ द डे मेरा ये चल रहा है। और मैं जब ये बात बोलती हूँ ना लोगों को कि भाई केचप नहीं, तो लोग मेरी तरफ मुड़कर देखते हैं, अरे भाई केचप नहीं नहीं नहीं चाहिए केचप। तो भाई मेरा जो है ना आज का मुद्दा ये है, एक थॉट है ठीक है, आपने मुझे ये बताना है, वुड यू रादर, आप कह लें कि जरा सोचें अगर आपको पूरा एक साल तक, पूरी जिंदगी नहीं एक साल तक भाई ठीक है, एक साल तक हर चीज पर केचप लगाकर खाना पड़े, चाहे वो बिरयानी हो, निहारी हो, भाई पिज्जा भी हो, आइसक्रीम भी खाओगे ना तो उसके अंदर भी केचप डालना पड़ेगा, या गुलाब जामुन भी खाओगे ठीक है उसके अंदर आपको केचप डालना पड़े, आप पूरी जिंदगी वो खाएंगे, जिंदगी सॉरी एक साल, पूरे एक साल आप वो खाएंगे, या तो फिर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि भाई जिंदगी भर के लिए नमक को गुड बाय कहना पड़े, मतलब फ्रेंच फ्राइज बिना नमक के, मतलब चिप्स बिना नमक के, मतलब अंडा बिल्कुल फीका सड़ा, बिल्कुल यू नमक नहीं उसके ऊपर, तो मुझे ये बताओ क्या करोगे, एक साल तक कैसे सरवाइव करोगे। तो बताएं आप किस मुसीबत को चूज करेंगे भाई, टीम वन है केचप हर चीज पर, टीम टू है नो सॉल्ट फॉर एवर। तो आपने करना यह है कि हमें कॉल करें 443-443-77 पर, या आप चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं भाई, किसने मना किया है, 666-22-107 नंबर है हमारा, याद तो होगा ही। और अगर ऐसी कोई अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन वाकई में आपने ट्राई की है ना, तो उसे शेयर जरूर करें मेरे साथ, एटलीस्ट मैसेज या कॉल पर, देखते हैं हमारे लिसनर्स ने क्या क्या एडवेंचरस चीजें जो हैं वो ट्राई की हुई हैं। अभी फिलहाल का जो मुद्दा है हमारा ये एक घंटे तक का, 12 बजे तक ना हम लोग इसी की वो बात करने वाले हैं कि वुड यू रादर प्रेफर एक साल तक के लिए कैचअप ऑन एवरीथिंग, या नो सॉल्ट फॉर एवर, टाटा बाय बाय कर दो, बिल्कुल बाय बाय, नहीं मैं नहीं खाऊंगा नमक नहीं खाऊंगा, क्या करोगे भाई। 443-443-77 हमारा नंबर है कॉलिंग का। और हाँ 12 बजे के बाद हम गेम खेलना शुरू करेंगे, बॉलीवुड का गेम, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी एक हुक और आपने मुझे बताना है गाने का नाम, प्लस प्लस प्लस गाने का नाम प्लस कि वो किस मूवी से है। ठीक है अभी तो फिलहाल कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ बादशाह कॉलर बिगौने को भी दिया, देखो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम गोविंदा फुल्लो, कैसे हो जी आप, ठीक हो?
2: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
1: हम तो बिल्कुल ठीक ठाक भाई, हम बिल्कुल मजे में, मजे ना लाइफ, 45 दिन की छुट्टी गुजारने के बाद भाई मेरे कौन कौन उदास होगा। देखिए हम जो है ना सच सच बता रहे, हम तो बड़े खुश हैं, ये बताएं
2: हम लोग का भी खुशी है, आप खुश रहो बस।
1: चलें भाई ये तो अच्छी बात हो गई, इंशाल्लाह अगली दफा साथ साथ सब छुट्टी लेंगे, सब छुट्टी साथ साथ ले लेंगे। अच्छा भाई हमारे साथ है कौन, कॉल पे कौन बात कर रहा है?
2: आरिफ अंसारी।
1: अरे भाई ये बताएं कि गर्मी का कैसा माहौल चल रहा है बाहर?
2: गर्मी मत ही पूछो, आप बाहर निकलो तो आपको मालूम हो जाएगा।
1: मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं तवा,
2: हाँ
1: वो जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, फ्राइंग पैन के ऊपर यूं करके बाहर फ्राइंग पैन रखा धूप में और उसके ऊपर अंडा फोड़ दिया,
2: तो हाँ वो ऑमलेट हो जा रहा है, वही हाल चल रहा है।
1: चलें भाई गुड हो गया, बस अब इसके अंदर करना ये कि पानी की बोतलों को ना अपने साथ रखें।
2: अच्छा पानी के बोतल को ज्यादा प्रीफर करना है,
1: हाँ जी बस यही करना है, हम और कुछ कर नहीं सकते ना, नेचर से लड़ थोड़ी सकते हैं। अच्छा आरिफ भाई एक बात तो बताएं, अंडे से याद आया कि अंडा बगैर नमक के कैसा लगेगा?
2: मैंने तो ट्राई नहीं किया, मेरे भाई ने एक बार वो बना दिया था, नमक भी नहीं डाला था और उसमें वो तेल का भी यूज नहीं किया था, वो गलती से वो भूल गया था, इसमें क्या किया था, मतलब बहुत पहले का बात कह रहा हूँ मैं।
1: उसके बाद क्या हुआ जिंदगी की, जिंदगी के साथ क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर उन्हें किचन में एंट्री नहीं दी गई होगी,
2: उसको ना खाना बनाने का, अभी तो वो अलग अच्छा खाना बनाता है, मैं पहले बनाता था अभी मेरे को नहीं आता है,
1: सही
2: पहले उसने भूल गया था, थोड़ा भूल जाता है,
1: सही
2: मालूम है

0: कैसा था कैसा नहीं था।
1: अच्छा आपको केचप पसंद है?
0: नहीं
1: केचप नहीं पसंद। अच्छा ये मेरी वाली कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अगर ये ऑप्शन दिया जाए केचप आपको पसंद नहीं है, नमक के बगैर आप खा नहीं सकते चीज, क्या करेंगे? क्या करेंगे?
0: कुछ बिना नमक के चीजें पसंद
1: करूंगा
0: पर केचप नहीं चाहिए।
1: ओ भाई, नमक के बगैर जिंदगी बहाल हो जाएगी, सोच लें। एक साल नो नमक।
0: अरे वेलकम सही हो जाएगा ना? तो
1: क्या सही हो जाएगा?
0: वैसे भी मैं भी नमक कड़ा खाता हूँ, ज्यादा खाता हूँ
1: बस। तो फिर हमने, अरे हमारे पास तो नमक की काने हैं, हम तो एक्स्ट्रा खाते हैं, तो हम तो जो है वो स्टोर करके रखा हुआ हमने, तो किसी को बताना नहीं।
0: कंपनी खाना देती है, मैं बोलता हूँ ना कि नमक क्यों कम डाल रहे हो, ज्यादा महंगा नहीं है नमक, बोलते हैं तुम्हारे लिए कैसे अकेला बना हुआ नमक वाला।
1: अच्छा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर नमक जो है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है, आपको पता है इतना कीमती है नमक।
0: टैक्स तो शायद हमारे यहाँ भी लगता है।
1: अच्छा आप लोग पास भी लगता है टैक्स नमक के ऊपर? मैंने ये पढ़ी थी रिसर्च, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि नमक इतना इतना वो कोई कीमती चीज है कि उसके ऊपर कुछ कंट्रीज टैक्स लगाती हैं।
0: हमारे यहाँ बाहर से एक्सपोर्ट होता है तो टैक्स तो लगता होगा ना।
1: सही सही सही। तो आप ये प्रेफर कर रहे हैं जिंदगी विदाउट सॉल्ट?
0: केचप पसंद ही नहीं है तो मेरा नमक के ही गुजारा कर लेंगे क्या?
1: बस आपका और मेरा दुख एक ही है फिर तो। नहीं हमें दुख नहीं होगा, हमने स्टोर किया हुआ है, आपने बहुत एक्स्ट्रा स्टोरेज किया हुआ है,
0: एक्स्ट्रा स्टोर है बॉडी में अंदर।
1: चलें भाई गुड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलर है, उनसे भी पूछते हैं कि वो उनके पास क्या स्टोरेज है, केचप का स्टोरेज है सोना के सॉल्ट का।
0: ओके
1: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
0: ओके आप भी ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए
1: बस। हां जी भाई, नमक के बगैर पानी पिएंगे। चलें जी
0: ओके, अल्लाह हाफिज।
1: चले भाई दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं। अच्छा कॉलर जितने आ रहे हैं उनको ये भी बता दूं मैं कि 12 बजे के बाद हम अपने बॉलीवुड के गेम को भी शुरू करेंगे, तो उसको भी ना भूलिएगा, उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अभी के लिए जो है हमारा सवाल ये चल रहा है, जिंदगी भर केचप खाओगे कि विदाउट सॉल्ट चलोगे, नमकीनियात की कमी ना हो जाए कहीं। अच्छा भाई देखते हैं कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सरवर
1: भाई, क्या खा लिए? एक मिनट हेलो। हाँ मैंने कल रान बना के खाई थी, हंटर बीफ।
2: फिर भी नहीं मैच
1: हुआ, गला खराब हो गया है। सरवर भाई की नकल मैं ना उतार सकती, सरवर भाई माशाल्लाह भारी भरकम आदमी है माशाल्लाह, उनकी जगह कोई ना ले सकता।
2: सरवर भाई ने कहा था कि कल से मेरी खाला आएंगी।
1: बताती हूँ मैं अभी इन्हें फोन करके, खाला बना दिया मुझे। अरे मैं तो
2: सबके साथ अपने अपने रिश्ते बना लिए, नादिया आप ही नानी है, आप खाला हो और कबीर भाई चाचू हैं।
1: शुक्र है मुझे पुप्पो ना बनाया, शुक्र है। पुप्पो का रिकॉर्ड बड़ा खराब होता है।
2: सही बात है ये तो।
1: देखिए मैं, मेरी बचत हो गई, खाला
2: घर चलाया,
1: खाला मेरी खाला बहुत अच्छी थी, तो मुझे अच्छी वाइब आ रही, मुझे अच्छी वाइब, मेरी माशाल्लाह से मेरी भी ना दो खालाएं अच्छी हैं, तो मुझे अच्छी वाइब आ रही है। अच्छा कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, आपकी तो मैं रील्स इतनी देखा हूँ, बाप रे भाई इतनी फनी रील्स होती है आपकी।
1: भाई हमने जो है ना देखे लोगों को हंस,
2: नहीं आपकी मतलब कोई सीरियस पर्सन हो, नहीं रील्स में लगता है कि हाँ चलो कोई है जो ऐसा हम लोग की तरह है फनी।
1: देखें जिंदगी में ना, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, जिंदगी में ना दो ही लोग कामयाब होते हैं, या तो किसी से वो इमोशनली सैड बन के अटैच हो जाए, या वो फन तरीके से अटैच हो जाए। तो हमें जो इजी वे लगा ना भाई, हम तो फन वे में अटैच होते हैं सबसे। तो भाई
2: बिल्कुल, आप तो इतनी सीरियस है कि कॉफी पी के भी आप सो सकती हो डायरेक्ट।
1: देखिए ये बात आपको कैसे पता चली? अरे
2: ये मैंने रील्स में देखा।
1: ओह माय गॉड, अरे हाँ याद आया मुझे, ये तो सीक्रेट था भाई, मुझे तो कोई किडनैप भी नहीं कर सकता, मसला तो सारा ही है।
2: मैं पहले आपका वो शो भी सुनता था जो सुपर किड्स आते थे ना, अमिता दीदी के साथ।
1: सही सही,
2: उसमें मैं डर से कॉल नहीं करता था क्योंकि उसमें तो अलाउड था ही नहीं।
1: नहीं उसमें
2: किसी बंदे ने कॉल किया था, आपने बोला नहीं अलाउ नहीं है, मैं बोला अरे
1: उसमें बड़ों की फेंटी लग जाती है, सब मुझे दादी अम्मा कहते हैं उसमें
2: जी।
1: अच्छा भाई हुसैन भाई एक बात तो बताएं, अब बाकी सारी बातें एक तरफ, ये बताएं कि फिलहाल तो कि आपको अगर पूरी जिंदगी केचप खाना पड़ जाए, ठीक है केचप हर चीज पे, बिरयानी पे केचप, ते नेहारी विच केचप, ते आलू पराठे विच केचप, ते आइसक्रीम विच भी केचप, खा लेंगे या आपको ये ऑप्शन दिया जाए, दो ऑप्शन है, या केचप खाओ पूरी जिंदगी हर चीज के साथ, या पूरी जिंदगी बगैर नमक के खाना खाओ।
2: ये तो वही वाली बात है ना सभा, अभी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, करे तो करे क्या।
1: हाँ, अब बताएं ये कुएं में गिरना है कि खाई में।
2: और मैं ठहरा फूटी आदमी, मुझे तो नमक के बगैर नहीं चलेगा।
1: नमक के, हाँ ये एक हकीकत बात है, जो खाने को पसंद, खाना पसंद करते हैं ना फूडी लोग जो होते हैं, नमक के बगैर गुजारा नहीं हो सकता हमारा। नहीं भाई,
2: क्योंकि लास्ट टच कुछ भी हो, नमक आप डालोगे तभी वो फ्लेवर खिल के आएगा।
1: ये भी एक बात है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब आप नमकीन चीज खाते हैं तो उसका दिल करता है मीठी चीज खा लूं, और फिर मीठी चीज खाते हैं तो दिल करता है नहीं नमकीन खा लेनी चाहिए।
2: मेरे साथ ऐसा ही है, मतलब जैसे बोलते हैं कि खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, तो मैं मीठा खाता हूँ फिर उसके बाद मैं कोई नमकीन खाता हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता।
1: ये मेरे साथ भी होता है, ये हम एक ग्रुप बन रहा है, हमारा ग्रुप बन रहा है हमारा ग्रुप।
2: तो बहुत लंबा बने ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, इंशाल्लाह आएंगे।
1: तो आप जो है चाह रहे हैं कि जिंदगी से केचप दूर हो जाए, कोई मसला नहीं है, सॉल्ट नहीं दूर होना चाहिए।
2: जी जी, सॉल्ट बिल्कुल दूर नहीं होना चाहिए, सॉल्ट एकदम करीब रहना चाहिए।
1: सॉल्ट सोच रहे, रिसर्च कहती है कि ब्लड प्रेशर के
2: चलेगा।
1: अरे भाई सोचें, नमक ना हो तो हमारी फेवरेट पानी पूरी का क्या होगा। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात हो गई, छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आ गया मुझे। पानी पूरी बगैर नमक के केचप डाल के खाएंगे, नहीं नहीं।
2: आते दिन आपने इतना सीरियस टॉपिक छेड़ दिया, नमक। अरे नमक
1: देखिए, ये वाकई में सीरियस टॉपिक है,
2: बहुत बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा बिना नमक।
1: मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, कदर करो नमक की कदर। ये जो ऐसे यूं करके छिड़क देते ना, ऐसे नहीं होता, कदर करो।
2: जी सही बात है, बिना नमक के तो गुजारा है नहीं।
1: अच्छा ये तो बताएं, आजकल जो है ये अपना फुटबॉल मैच वगैरह देख रहे हैं आप?
2: मैंने दो मैचेस देखे थे, उसके बाद मैं देख नहीं पाया काम के सिलसिले में। एक बार वही जब कतर का था और अर्जेंटीना और ब्राजील, ये तीन मैचेस देखे।
1: हुसैन भाई आपने ऐसे बोला कि उसके बाद में देख नहीं पाया, मुझे ऐसा लगा कि इतने बुरे लगे आपको वो मैचेस कि आपने कहा इसके बाद में देखूं।
2: नहीं नहीं, मैं देख नहीं पाया, वो काम के सिलसिले में हम लोग का है, सही रोड पे रहना इस वजह से।
1: अरे भाई अगर आपने कल के मैचेस देखे होते ना, मिड नाइट पे मैच हुए थे, तो वो भी बड़े जबरदस्त मैच थे। अच्छा आपकी कोई फेवरेट टीम चल रही है आजकल?
2: मेरी फेवरेट टीम वो है एम्बाप्पे वाली।
1: हाँ, फ्रांस की टीम
2: जी,
1: फ्रांसिया। ओह माय गॉड, कल का मैच जीती है फ्रांसिया। कल क्या कहूँ, ये अपना मैच ये देखो, ये फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छे बच्चे बन के चल रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। एम्बाप्पे ने खेला भी और इनको पता भी नहीं है। वाह,
2: मैं पूरे काम में,
1: वाह शैम्पी वाह, इतनी मोहब्बत प्लेयर से, इतनी मोहब्बत कि उसने बेचारे ने मैच खेला, मैच जितवाया और फिर उसको अच्छा कल मैच था।
2: आप शर्मिंदा कर रहे हो, अब मैं मैच देखूंगा आज कैसे भी करके।
1: मामला पता है क्या हुआ, मामला ये हुआ है, हमारे टाइम जोन जो है ना वो थोड़े से अलग हो गए, तो उनके पास जब मैचेस चल रहे हैं तो हमारे लिहाज से वो मैच हुआ था मिडनाइट 12, मतलब यूं कह लें हमारे पास जो है ना आज ही के दिन हुआ था, 12 बजे के बाद तो 5 की डेटा आती है। तो फ्रांस वर्सेस पेरुगुए का मैच हुआ था और वो बड़ा ही ड्रामेटिक सा मैच था, बहुत ड्रामेटिक मैच था, टफ कॉम्पिटिशन दिया था फ्रांस को, अच्छा खासा धोया एक दूसरे को उन्होंने।
2: किसके साथ हुआ था फ्रांसिया का
1: जी,
2: किसके साथ था?
1: फ्रांस वर्सेस पेरुगुए का मैच था।
2: ओह,
1: अब इनकी कंट्रीज के नाम इतने उलझे हुए हैं कि इनको सुलझाते सुलझाते उम्र गुजर जाएगी। तो मैच का कुछ सीन ये था कि फ्रांस ने एक गोल किया था और पेरुगुए ने जीरो गोल किया था, लेकिन मैच बहुत हार्ड टाइम दिया था उन्होंने, बहुत हार्ड टाइम दिया था फ्रांस को, वो एक गोल भी बहुत टफ वे में मिला था। तो इट वाज अ गुड मैच। आज का जो मैच है ना, आज का जो मैच ब्राजील वर्सेस, आपको पता है कौन सा है?
2: ब्राजील वर्सेस तो शायद नहीं, ये नहीं पता।
1: मेरी फेवरेट टीम का मैच आने वाला है आज का।
2: आपकी कौन सी फेवरेट टीम?
1: आगे बताऊंगी, अभी सब कुछ बता दूं। सब बता दूं, सब कुछ बता दूं?
2: नहीं नहीं, अभी बता देती तो मैं अभी से डिपोर्ट करना स्टार्ट होता
1: भाई,
2: क्योंकि भाई
1: मैं चाहती हूँ कि आप कोई रिसर्च करें आज के मैच के पीछे जो है वो

0: 12 बजे बता।
1: चलें ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज।
1: अरे भाई ये क्या चल पड़ा, नहीं नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था, मैंने कहा था देखो 45 दिन की छुट्टी के बाद आ रही हूँ तो हो जाता है, हो जाता है। अच्छा भाई देखें कल के मैच के बारे में आपको बता दूं, कल जो है वो दो मैचेस हुए थे फुटबॉल के, जो फुटबॉल में इंटरेस्ट लेने, असल मसला ये कि हम सबको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, खासतौर पर 2022 के बाद तो हम सबका इंटरेस्ट सुपर से भी ऊपर हो गया है फुटबॉल में, लेकिन कुछ टाइम जोन की वजह से कुछ लोग देख पा रहे हैं कुछ लोग नहीं देख पा रहे। मैंने तो मैचेस नहीं छोड़े, जो मेरे पसंद के मैचेस हैं उनके लिए तो मैं रात को भी जाग रही हूँ, मेरा ये हाल हुआ है। तो भाई मोरक्को वर्सेस कनाडा का मैच था एक तो, और एक था फ्रांस वर्सेस पेरुगे का, और कनाडा वर्सेस मोरक्को के मैच में मोरक्को ने किए हैं 3 गोल और मोरक्को जीत गया वो मैच, एंड इट वॉज एन ऑसम मैच। और भाई उसी के साथ साथ जो है वो पेरुगे वर्सेस फ्रांस का मैच था, फ्रांस ने उसके अंदर 1 गोल किया, और वो 1 गोल भी जो फ्रांस के टीम के चाहने वाले उनको पता है एम्बापे ने किया, और टीम मैच जीत गई। लेकिन फ्रांस का मैच बहुत टफ था भाई, मोरक्को का मैच भी बहुत आला था और फ्रांस का मैच भी बहुत आला था। मामला पता है क्या है, गेम में मामला ये होता है कि हमेशा हमेशा हमेशा अगर देखा जाए तो इट इज़ दी स्पोर्ट्समैनशिप विच मैटर्स। आप किस किस्म से गेम खेल रहे हो, किस किस्म का टफ टाइम दे रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर कि आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, लेकिन आप कितना टफ टाइम दे रहे हो एक अच्छी खासी टीम को। फ्रांस की टीम कोई हल्की टीम नहीं है, कनाडा की टीम भी कोई हल्की टीम नहीं थी, तो उसको कितना टफ टाइम दे रहे हो ये मैटर करता है भाई। अच्छा भाई गोभी दया भूलो, आप हमें कॉल कर सकते हो 4434377 पर, और बता सकते हो कि भाई पूरी जिंदगी अगर केचप खाना पड़े, दाल चावल आइसक्रीम चटनी सब हर चीज के साथ केचप, या दूसरा ऑप्शन ये है नो नमक एट ऑल। भाई मैं तो नमक के बगैर ना चल सकती, ना ना ना ना ना, ना। मुझसे ना हो पाएगा। देखते भाई हमारे साथ कॉल पे कौन है। 4434377 इज द नंबर टू कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कौन है हमारे साथ?
2: मैं मुदस्सर बात कर रहा हूँ।
1: मुदस्सर भाई ये बताएं कि वैसे पूछना तो हम सभी को पता है गर्मी के कैसे हाल चाल चल रहे हैं, दोस्ती चल रही है आपकी गर्मी के साथ?
2: गर्मी के साथ हमारी दोस्ती है बचपन से।
1: ये जबरदस्ती वाली दोस्ती नहीं होती, ये सर पर आ जाती है। ये हमारे फ्रेंड ग्रुप में ना एक जबरदस्ती वाला दोस्त होता था हमेशा, जो है बस मैं हर जगह साथ चलूं, तो ये गर्मी और हमारी जबरदस्ती की दोस्ती है।
2: गर्मी के साथ हमारी जबरदस्त दोस्ती है ना।
1: तो ये बताएं कि भाई, हाँ जी,
2: ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा एक रिश्तेदार था, वो दुबई चला गया था फर्स्ट टाइम।
1: सही।
2: फिर वहाँ पे गर्मी का मौसम था।
1: सही,
2: तो जब
1: सही।
2: वो जहाज से नीचे उतरा तो अपने खाला के बेटे को बोल रहा है, तो यहाँ पे तो बारिश का इम्कान लगती है, ज्यादा गर्मी है ना। वो उसको बोलता है ये बारिश का इम्कान नहीं है,
1: सहरा में
2: जहन्नम का आग है।
1: सहरा में आकर जो है ना वो ढूंढ रहे हैं बारिश।
2: ये गर्मी का भी आदत बन गया ना 10-12।
1: अच्छा, हम लोगों को वाकई में आदत हो गई है। अब मैं गई थी इस दफा छुट्टियों में गोरालैंड में, यूएसए की साइड पे गई थी मैं, मैच तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो लोग पिघल जाते हैं भाई। उनके पास 36 का टेम्परेचर हो तो उनके पास हीट स्ट्रोक की अलर्ट्स आना शुरू हो जाती है मोबाइल में
2: जी।
1: और हम माशाल्लाह लकड़दम पत्थरदम, हमने कहा हम चीते, क्या जरूरत है हमें, ऐसा लग रहा था कोई सुपर पावर है हमारे पास।
2: जी जी,
1: देखिए ये हमारे पास सुपर पावर है, इससे देखिए जिंदगी सिखा देती है, हम अच्छे चल रहे हैं, हम लकड़दम पत्थरदम लोग चल रहे हैं, हम नाजुक मिजाज नहीं चल रहे।
2: अभी तो वो कतर में भी 3-4 साल हो गया, वही गर्मी तो नहीं है
1: वैसी वाली गर्मी, वो जो नहीं वो अभी आएगी, टेंशन नहीं ले, अगस्त अभी आने दे।
2: खजूरें पकने का मौसम नहीं है, नहीं वो गर्मी नहीं है अभी, 3-4 साल हो रहा है कि वो सा गर्मी नहीं है।
1: तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े ना, कहे अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी नहीं
2: है। 2014 में क्या टफ गर्मी था, गर्मी का मौसम था, जब मैं जहाज से उतरा, जब हम बस की तरफ जा रहे थे तो मेरा शर्ट पूरा गीला हो गया था।
1: ये जो आप जब पहली दफा आते हैं ना तो हर किसी को लगती है गर्मी, पहली दफा जब आते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ साल गुजरते जाते हैं, फिर ये नहीं होता कि गर्मी कम हो जाती है, ये है कि हम लोग यूज्ड टू

0: जाते हैं उसकी।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है।
0: अच्छा ये तो बताएं मुदस्सर भाई, पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी केचप, सोचे आइसक्रीम और केचप कितना अच्छा लगेगा ना।
1: ओ, नमक के बगैर खाना खाना मुश्किल है, लेकिन खा सकता है, लेकिन केचप की आइसक्रीम के साथ ये तो बहुत मुश्किल काम है।
0: मुदस्सर भाई देखिए, फ्रेंच फ्राइज बगैर नमक के कैसे लगेंगे?
1: वो भी खा सकता है।
0: खा सकते हैं, मुझसे ना हजम होगा।
1: हाँ नहीं मैं खा सकता हूँ, लेकिन आइसक्रीम पे केचप डालना तो फिर, या गुलाब जामुन पे केचप डालना फिर, ये तो बहुत मुश्किल होगा।
0: बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, मैं आपको बता रही हूँ। नमक से देखिए,
1: कॉम्बिनेशन नहीं है। नमक नमक के बगैर के देखो कितना लोग बगैर नमक के रोटी खाता है।
0: हाँ देखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है इससे।
1: जी तो कोई ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि वो नमक केचप के साथ आइसक्रीम खाता है।
0: सरवर भाई को खिलाएंगे, सरवर भाई वापस आएंगे ना, फिर सरवर भाई,
1: सरवर भाई तो खिलाते खिलाते आप भी सरवर भाई की तरह है ना। सरवर भाई भी खाने पे बात शुरू करता था
0: और खाने में खत्म करता था। तो आज हमारी बात भी खाने में शुरू हुई है। देखें खाना नेमत है, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लोग डिफरेंट चीजें ट्राई करें जिंदगी में।
1: लेकिन ये केचप वाला नहीं ट्राई कर
0: सकते। तो आप उस टीम में जो कह रहे हैं कि भाई नमक के बगैर जिंदगी चल जाएगी, लेकिन केचप के साथ नहीं चलेगी।
1: नहीं केचप केचप हमें पसंद है,
0: लेकिन इतना भी नहीं है।
1: हाँ लेकिन किन चीजों में जरूरत है तो ऑन में पसंद है, वो गुलाब जामुन में आइसक्रीम में कैसे केचप खाएंगे,
0: ये भी एक बात है, सोचने वाली बात है। गुलाब जामुन, अरे कभी ट्राई कर देखिएगा, हिम्मत कीजिएगा, हिम्मत करके फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं भी ट्राई कर लूंगी।
1: तो तुम नहीं ट्राई करोगे ना, मालूम है। आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने ट्राई किया है।
0: चले कोशिश आपसे शुरू करेंगे, कोशिश करवाएंगे आपको कि आप फिर हमें रिव्यू दीजिएगा, फिर हम हिम्मत करेंगे आपको देखकर।
1: तो मैं तो ठीक है, मैं तो करूंगा, लेकिन आप कैसे करोगे? तो फिर आप ऐसा करें ना, आप वीडियो बनाओ, वीडियो फिर अपना पेज शेयर करो। ठीक है,
0: फिर देखेंगे।
1: सफन ऐसा किया है,
0: चले फिर देखते हैं मेरे ग्रुप में कितने लोग आएंगे। केचप, मुझे तो केचप पसंद ही नहीं है। अरे मैं तो भूल गई बातों में, मुझे तो केचप ही नहीं पसंद।
1: मैं इसलिए तुमको बोल रहा था ना कि आप नहीं करोगे ना। मैं तो केचप ही नहीं पसंद, क्योंकि आपने आपने स्टार्टिंग में बोला
0: मैं तो केचप ही नहीं खाती। देखा मैं तो
1: खाती नहीं हूँ, नमक जितना ज्यादा होगा वो मुश्किल नहीं है।
0: मैंने अपने आप को पहले ही दूर कर लिया इस चीज से, इस चैलेंज से अपने आप को पहले निकाल लिया।
1: बोला था कि आप नहीं करोगे ना वो केचप वाला।
0: चले मैं कोई बात नहीं, आपको हम बगैर सॉल्ट के, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप नमक भी खाएं, केचप भी खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन आपने कहा कि अगर जिंदगी में ऐसा चैलेंज हो, क्योंकि डर के आगे जीत है, तो विदाउट सॉल्ट। चले भाई
1: नहीं, वो तो चैलेंज तो कबूल कर सकता है ना, चैलेंज में तो हर आदमी तो कुछ करता है ना,
0: चैलेंज
1: सकता है ना। हाँ
0: साल भर के लिए चैलेंज बड़ा मुश्किल काम है।
1: मुश्किल काम तो मैं मजा आता है ना, जो मुश्किल काम होता है, आसान काम तो हर कोई
0: डर के आगे जीत है।
1: हाँ डर के आगे जीत
0: है,
1: सही है।
0: चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज। तो भाई नमक और केचप की जंग में हम भूल ही गए, हमने ब्रेक लेना था, मैं भी तो कुछ खाऊं पीऊं। तो भाई नहीं अभी नहीं खाऊ पीऊंगी, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपसे गपशप करते हैं, और रेडी रहे हमारे बॉलीवुड के चैलेंज के लिए भी। फिलहाल के लिए आपसे सवाल ये है साथियों कि आप बताएं जरा कि जिंदगी भर केचप खाना पड़े हर चीज के साथ, जरा सोचो, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, कोई और मीठा शीठा उसके साथ भी केचप डाल के खा रहे हो, आय हाय हाय हाय हाय, या भाई नमक के बगैर जिंदगी गुजारना, मुझसे नमक के बगैर ना हो पाएगा। No, I cannot think. तो जब तक मैं कुछ और सोचूं, क्योंकि अभी नमक जाने की बात हो रही है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। फिलहाल तो मैं काम करती हूँ कि एक ब्रेक पे चलती हूँ, ठीक है? ये क्या है भाई, माशूका कौन सा? अच्छा जी, किसकी है ये माशूका? आप ही सुन लें भाई, ये सुनते रहे FM 107 पर, सन एंड साउंड विद सफा, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: भाई पहले प्यार का तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे नमक ना मिले तो भाई मेरा भी यही हाल होता है कि मैं ठहरी रही और जमीन चलने लगी, चकरा जाती हूँ मैं नमक के बगैर।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: तो भाई दोस्तों साथियों वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। और भाई हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी भर नो नमक या फिर हाल ये है कि उसके बरक्स आपको ये कहा जाए कि हर चीज़ में केचप मिला के खाओ, हर चीज़ में केचप। आइसक्रीम खा रहे हो तो केचप, गुलाब जामुन खा रहे हो केचप, गोलगप्पे खा रहे हो केचप। चलो गोलगप्पे में फिर भी शायद बर्दाश्त है, नमकीन चीज़ है। रसमलाई खा रहे हो तो केचप, ओ नो नो नो नो नो नो नो। तो भाई आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। मुद्दा बहुत ही संगीन चल रहा है, देखें ये बहुत सीरियस बात है। सीरियस बात चल रही है। 4434377 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर। और भाई देखें थोड़ा बहुत आपको मैचेस के बारे में बता देती हूँ, जो फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, महामुकाबला चल रहा है जो। अच्छा हम सबको फुटबॉल का शौक है, हम सबको जो ना चस लगा दी है फुटबॉल की, कतर ने हाई स्टैंडर्ड कर दिए हम सबके। तो भाई मामला ये चल रहा है कि जो लोग अपडेटेड नहीं रह पा रहे वो कुछ मैचेस इसलिए भी मिस कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम जोन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है हमारा। तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट मैच जो हुआ है वो पेरेग्वे और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांस ने एक गोल किया। और नेक्स्ट मैच जो होना है ना अभी, जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे ऐसा लगता था कि CR7 के बाद ऐसा कोई प्लेयर नहीं आएगा जिसके ऊपर मैं कहूँगी कि भाई नज़रें मेरी इसी के ऊपर टिकी हैं, प्लेयर है तो यही है, वरना तो अगली 10 सदी तक कोई प्लेयर नहीं आने वाला। और CR7 के बाद मुझे ऐसा लगता था ख़त्म, देर इज़ नो प्लेयर एनी मोर। लेकिन नॉर्वे का एक प्लेयर है, अभी जब आज जो तकरीबन 11 बजे के करीब मुकाबला होगा, रात को 11 बजे के करीब, तो वो ब्राज़ील और नॉर्वे का मुकाबला होगा। भाई ये वो मुकाबला है जिसको आप कह लें कि लोगों की नींदें उड़ा दी हैं इस मुकाबले ने, क्योंकि ब्राज़ील, हमें पता है कि ब्राज़ील इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील में फुटबॉल इज़ नॉट जस्ट फुटबॉल, इट इज़ लाइफ। और नॉर्वे के जो प्लेयर है ना आजकल, जो बहुत हाईलाइट पे चल रहे हैं, जिन्होंने दिल जीत लिया लोगों का, दिल निकाल लिया, यूं फुटबॉल की जगह दिल ले लो भाई, वो चल रहे हैं हैलैंड। तो भाई मुझे देखना है इनका मुकाबला, क्योंकि जब ये खेलता है ना बंदा तो भाई मैच जबरदस्त हो जाता है, सुपर से भी ऊपर। इसी के साथ हमारा एक मुद्दा आज का ये चल रहा है कि भाई आप मुझे बताएं कि आपको जिंदगी भर अगर सॉल्ट के बगैर खाना खाना पड़े तो आप वो चूज करेंगे, या आपको अगर कहा जाए कि भाई केचप हर चीज में डाल के खाओ, नारी बिरयानी ये वो फलाना ढमाका आइसक्रीम, तो क्या करोगे बताओ, क्या चूज करोगे, कुआं के खाई केचप किनो सॉल्ट। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: मैम मेरा नाम हमजा है।
0: हमजा भाई आपकी जो आवाज है ना वो फुल रेडियो वाली है, मतलब आपसे ना वो
2: दिल तो बहुत है रेडियो में आने के लिए, बट ये है कि मुझे प्रोसीजर का नहीं पता, मैं सरव भाई से बात करनी थी, बट
0: देखें आपकी आवाज वो वाली है
2: तो प्रोसीजर करेंगे
0: कि वो मुझे ना वो मूवी हेरा फेरी वाली मूवी याद आ गई मुझे, उसके अंदर वो फोन करके ना वो कहते हैं कबीरा स्पीकिंग, बिल्कुल वो वाली आवाज है आपकी, कबीरा स्पीकिंग, मतलब सामने वाला डर जाए कि भाई मुझे बता दो कितनी पेटी कहाँ देनी है। तो भाई हमजा भाई
2: टॉपिक ही ऐसा छेड़ा हुआ,
0: तो ये बताएं कि टॉपिक से
2: मेरा तो दिल कर रहा था मैं आपको कॉल करके बोलूं आई एम कॉलिंग अबाउट फ्रॉम फूड अथॉरिटी।
0: अच्छा ये बताएं आपको अगर
2: क्या जुल्म कर रही हैं ये लोगों पर, नमक के बगैर तो चलो जिंदगी बसर हो सकती है।
0: मैं चाहती हूँ कि आप लोग एडवेंचरस बने, बोरिंग हो गई है सबकी जिंदगी, और ज्यादा एडवेंचर करें और ज्यादा जिंदगी को जिए, खुल कर जिए।
2: मौत को गले लगाने को एडवेंचर नहीं कहते हैं सिस्टर।
0: अरे भाई मार्केट में ग्रीन चिली की आइसक्रीम आ सकती है तो केचप क्यों नहीं खाया जा सकता आइसक्रीम के साथ, मुझे बता दें।
2: मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि ग्रीन चिली की आइसक्रीम आ सकती है, और मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा कि कोका कोला के अंदर वनीला आइसक्रीम डाल के खा रहे हैं लोग।
0: अब देखिए अब फिर आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं भी तो फिर उसी दुनिया का हिस्सा हूँ ना जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, जो ना कमाल धमाल कर
2: मोल लेने को खड़ा हूँ मैं, उनसे भी दुश्मनी मोल लेने को खड़ा हूँ। आप यकीन करें मेरा बस नहीं चलता, मैं उनको गिरबान से पकड़ के बोलूँ हाँ भाई क्या कर रहा हूँ।
0: नहीं आपको मतलब देखें, आपको नहीं लगता जिंदगी में कुछ तूफानी करना चाहिए?
2: तूफानी मैं
0: नमक के बगैर आपने बहुत कुछ। हाँ तो भाई कराची वाले तो अपने भाई निकले ना आप, तो फिर
2: वो फिर आए आपको तूफानी बताते हैं कि जना बिरयानी में मिर्चें कैसे खाई जाती हैं और कोरमे में मिर्चें कैसे खाई जाती हैं।
0: देखिए मैं खुद कराची की हूँ तो चैलेंज हो जाएगा फिर, ये तो फिर चैलेंज हो जाएगा भाई।
2: ये तो ये खुला चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हूँ मैं।
0: चलिए भाई
2: ऐसे चैलेंज आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन ये ज्यादा ना करें कि केचप वाला और ये नमक वाला। नमक तो चलो फिर भी कुछ वजुहत ऐसे हो जाती है इंसान की जिंदगी में कि छोड़ना पड़ जाता है।
0: नमक के बगैर आपने बहुत कुछ खाया होगा, अब केचप के साथ भी खाकर देखें।
2: प्लीज प्लीज
0: ये ना हो पाएगा
2: नमक टेस्ट सोचाएं।
0: तो मतलब आप कहेंगे कि बिल्कुल भी मतलब मैं नमक के बगैर गुजारा कर लूंगा, लेकिन ये केचप वाली बात मुझसे हजम ना होगी।
2: हाँ
0: पेट में तूफान मच जाएगा।
2: बगैर तो चीजें खाई हैं मैंने, क्योंकि जो मेरी वालदा है वो तो शुगर पेशेंट है एक तवील अरसे से,
0: अल्लाह ताला सेहत दे।
2: उन्होंने जो है आमीन, उन्होंने जो ना जो एक्सपेरिमेंट खुद अपने पे करने होते थे ना, तो मैं घर का बड़ा बेटा हूँ
0: तो बस ये होता
2: है। बेटा बैठ ही जरा,
0: एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा बस।
2: तो वो जो है उनके साथ एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए हैं, बट ये वाला नहीं किया जो आप बता रही हैं।
0: देखें ये वाला जो है ना, आप खुद ट्राई करके देखें, आप कहें कि मैंने देखिए मैं एडवेंचरस बनना हूं।
2: आज आपने शो का ना पूरा पासा पलट के रख दिया है, कहां हमारे भाई सर्वर भाई खाने पीने के मामले में, भाई ले आओ ये भी ले आओ ये भी ले आओ।
0: अरे बटर चिकन अब आप देखिएगा मैं एक नई रील बनाऊंगी, मैंने सोचा सर्वर भाई को वापस आने दें। सर भाई की सजा ये होगी छुट्टी पे जाने की कि सर भाई
2: सर्वर भाई की नहीं है हमारी सजा है।
0: सर भाई को वीडियो बनाएंगे, सर भाई आपको आइसक्रीम के साथ केचप कैसा लगा? नहीं गुलाब जामुन के साथ केचप, गुलाब जामुन
2: वो वाली कहानी है कि अक्सर ना हम अपने दोस्तों को छेड़ते हैं कि जिनकी शादी वगैरह नहीं हो रही होती है इस तरह ना, तो हम बोलते हैं दोस्त यारों को यार तो अपने वालिद से या वालदा से बात करा, अम्मी से मैं खुद बात करूंगा और मैं खुद बताऊंगा कि इसको शादी की कितनी जरूरत है। तो वो वाली कहानी आपने उनके साथ करनी है, आप बोलेंगे अपने फैमिली मेंबर से किसी से बात कराओ उनको मैं बताऊंगी कि आपको केचप खाना कितना जरूरी है।
0: अच्छा मजे की बात है हम गलत बंदे के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वर भाई ना माशाल्लाह माशाल्लाह लाख हुआ था लवला, सर्वर भाई सब हजम कर जाते हैं, लक्कर दम पत्थर दम आदमी है अपना, मतलब वो बिल्कुल अपने भाई बिल्कुल सेट है वो।
2: मुझे मुझे मालूम है मैं खाने पीने के मामले में मैं भी आपका भाई हूँ, बट ज्यादती नहीं करते बहन वो।
0: अच्छा चले आप बताएं आप क्या प्रेफर करेंगे, नो सॉल्ट एट ऑल या केचप के साथ एवरीथिंग?
2: नहीं मरने से बेहतर कुछ पल जीना तो सही है।
0: बगैर नमक के जी लूंगा?
2: बगैर नमक के जी लेंगे, मुश्किल नहीं है।
0: मेरे साथ मसला है ना, मैं बगैर नमक के नहीं जी सकती और मैं हैरान हो गई थी लोग बगैर नमक के कैसे जी लेंगे।
2: आपको आपको दो दिन केचप के साथ चीजें खानी पड़े, आपने बोला मैं बगैर नमक के खाऊंगी।
0: नमक की चाह में तो हम
2: नमक के बगैर खाऊंगी,
0: नमक की चाह में तो हम केवड़ा माइन तक चले गए।
2: हकीकत बात है।
0: तो भाई चले आपको हम आपको इस कैटेगरी में डाल दुख के साथ, आप एडवेंचरस ना निकले दुख हुआ।
2: मुझे कतर में 5 साल हो रहे हैं
0: माशाल्लाह,
2: मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं, बहुत कुछ खाया पिया और इनफैक्टली अभी तक मैंने जो हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चलता है ना कि स्पेशली फ्रेंच फ्राइज के साथ आपको केचप मिलता है,
0: सही सही
2: यहाँ पे बहुत सारी चीजों के साथ मिलता है, लेकिन मैंने अभी तक केचप ट्राई नहीं किया।
0: केचप आपको पसंद नहीं? बिल्कुल भी नहीं पसंद?
2: नहीं नॉर्मली खा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि किसी चीज में नखरे करूँ, लेकिन ये है कि इधर आके
0: प्रेफर नहीं है मतलब नहीं किया।
2: हाँ ये पता नहीं जिंदगी चल सकती है,
0: ये उम्र का तकाजा है मेरे ख्याल से। बचपन में हमें बड़ा पसंद था।
2: हमारी उम्र कितनी होगी?
0: मेरे भाई हमारे हम भी तो किसी के बच्चे हैं। हम भी तो किसी के बच्चे
2: वैसे ही बच्चा
0: बच्चे
2: I'm just 28 sister.
0: देखिए मेरी उम्र भी 25 से ऊपर नहीं जाती, वो उधर आकर ना ब्लॉक लग गया है। अब वो आईडी पे कितनी है ये तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है। अब जो मुझसे कोई पूछता है 25 साल, इससे ज्यादा नहीं।
2: तो खैर है आपके साथ कहीं होना, अल्लाह पाक अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो
0: नमक खाने का नतीजा,
2: अम्मा गई एक डॉक्टर के पास, अम्मा गई तो उनका कोई ऑपरेट वगैरह था या उनको मेरे ख्याल से उसी का इंजेक्शन दे रहा था। डॉक्टर ने पूछा माँ जी उम्र बताएं,
0: सही।
2: अम्मा ने बोला 18 साल। डॉक्टर बोलता है माँ जी बेहोशी का इंजेक्शन देना होता है, डोज जो है उम्र के लिहाज से दी जाती है, तो आप मेहरबानी करें उम्र ठीक बताएं। अम्मा ने बोला पुत्र एंज कर 20 साल देख ला। वो उसने फिर बोला मेहरबानी करें
0: हम
2: इतना नहीं दे सकते। अम्मा ने आखिर आखिरी तक फाइनल 24 साल इस सुबह में उत्ते मेनू मार चढ़, मैं मर जाऊंगी, मैं उत्ते को उम्र नहीं दसनी।
0: ये हमारे साथ जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम कहते हैं आईडी कार्ड देख ले हमें याद नहीं है। हम अपने मुंह से कुछ ना बोलेंगे। देखिए कहा यह जाता है कि औरतों से उनकी उम्र और आदमियों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, तो भाई इसी को इसी नोट पर जो है
2: बहुत बड़ी लॉजिक है,
0: इसी नोट पर जो है ना हम अपनी इस कॉल को बाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना वो डेयर डेविल बनकर कभी कभी। अच्छा आपको पता है सरवर भाई ने भी एक दफा एक चैलेंज किया था, आइसक्रीम उसके साथ खाई थी, सर फ्रेंच फ्राइज के साथ, कभी वो ट्राई किया आपने? मैंने कहा ना सरवर भाई तो लकड़दम पत्थरदम है,
2: ऐसी मुश्किलें तो करते रहते हैं, लेकिन वो चलो समझ में आ जाती है। अब चावलों के ऊपर जो है वो मीठा डाल के खाने, ये चलो समझ में आ जाता है, वो केचप के साथ कोई जवाब नहीं बनता ना बहन।
0: देखें जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक बुराई नहीं करेंगे, ठीक है? पहले ट्राई करेंगे फिर बुराई करेंगे,
2: ना बुराई करेंगे।
0: देखें डर के आगे जीत है, वो जीत खड़ी है दरवाजे के उस पार और दरवाजे के इस पार आप खड़े, तो आपने अब करना ये है कि आपने ये दरवाजा क्रॉस करना है।
2: मैंने जीत मिलना ही नहीं।
0: देखिए आपने दरवाजे के उस पार जाना है और कल आपने वापस से फिर कॉल करनी है हमें, ठीक है?
2: कॉल तो मैं आपको लाजमी करूंगा, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह तौबा ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा, ना जिंदगी भर कभी किसी को कहूंगा कि आप करो।
0: चलिए फिर कल का जो सवाल होगा फिर उसके ऊपर भी आप तफ्सीर कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है?
2: इंशाल्लाह।
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। साथियों मुद्दा बड़ा गर्मा गर्म चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे को गर्मा गर्म मुद्दे को थोड़ा सा बंद करने का टाइम आ गया। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कॉल्स आ रही हैं अभी भी। अच्छा इतना बता दूं कि इस ब्रेक के बाद से हम चलेंगे बॉलीवुड धमाका की तरफ, यानी के अपने गेम सेक्शन की तरफ, और मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है। देखो अपने अपने जंग लगे हुए बॉलीवुड की स्किल्स को पॉलिश कर लो। मेरे को चाहिए चमचमाता हुआ वो हीरा जो गेम जीत सके, यानी कि मैं सुनाऊंगी एक हुक और आपने दो चीजें दसनी है मैनू, गोभी दया फूल लो, दो चीजें। क्या? गाने का नाम, टाइटल ऑफ द सॉन्ग, और फिर ये बताना है कि किस मूवी से है, केड़ी मूवी से है ये। फिलहाल तो ब्रेक लो ना, ब्रेक लो जरा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: तो भाई FM 107 की घड़ी में सक बज रहे हैं 12:05 और मैं हूं सफा, आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं भाई? देखें नया शो है तो टाइम तो लगेगा। सन एंड साउंड सुन रहे हो भाई, सन एंड साउंड सुन रहे हो, मुझे याद कराओ ना। 45 दिन की छुट्टी में मैं गई थी, आप गए थे, कैसे भूल गए? चले भाई मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं, इससे पहले कि हम अपनी बॉलीवुड की गेम की तरफ चलें। मैसेजेस में हमारे पास कौन है भाई? हुसैन भाई हैं, क्या कह रहे हैं? लगता है आपने कैचअप वालों के साथ डील कर ली है, जज्बाती जबरदस्ती सबको कैचअप खिला रही है। देखिए ये राज है, एंडोर्समेंट कैचअप की एंडोर्समेंट। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा फिर क्या लिख रहे हैं आगे? ब्रेकिंग न्यूज, आरजे सफा ने छुट्टी से आते ही नमक को किया बैन और कर दिया कैचअप को, नहीं हाँ, और कर दिया कैचअप का बढ़ावा, मासूम लोग हो रहे बेहोश। ओ माय गॉड, वो कौन सा वो क्रिमिनल शो आता था ना बचपन में हम देखते थे, उसकी न्यूज रिपोर्ट बना दी इन्होंने। अच्छा भाई कौन है हमारे साथ? और ये कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूवी हम दिल, मैं यहाँ पे नमक की बात कर रही हूँ, कैचअप की बात कर रही हूँ, ये भाई अलग ही डायमेंशन में चल रहे हैं। कौन से भाई हैं ये भाई? ये अरे भाई आप अलग ही डायमेंशन में चल रहे हैं, हम कैचअप की बात कर रहे हैं, गानों की बात कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद खान हमारे साथ, कौन है? नहीं यूसुफ खान है, ठीक है। अच्छा भाई यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं? वेलकम बैक फ्रॉम वेकेशन, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी ऑन एयर, सुन के अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा आजकल ना थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है, तो थोड़े दिनों बाद बेहतर हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी फैंस आपको बहुत मिस कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई कैसी रहीं छुट्टियाँ? होप वेल। छुट्टियाँ बहुत अच्छी रहीं, हाँ जी छुट्टियाँ बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बात है जब इंसान अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजारता है, क्वालिटी टाइम गुजारता है, फिर वो कहीं पे भी हो, दुनिया किसी भी कोने में हो, तो वो वक्त अच्छा ही गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा आप यकीन नहीं करेंगी, मेरा भतीजा है यहाँ, वो नमक पूरा नेम ना बराबर की खाता है, सभी डिशेस में एग का ऑमलेट बिना सॉल्ट के ही खाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं ये लोग? और हाँ मैं सॉल्ट के बिना कुछ भी खा नहीं सकता, कुछ एक्स्ट्रा ही खाता हूँ मेरी तरह। अच्छा लेकिन अभी बीपी की वजह से थोड़ा कम कर दिया है। देखें अच्छी बात है, वैसे तो ऑन अ सीरियस नोट अच्छी बात है, लेकिन कौन है ये लोग जो नमक नहीं खाते? और दूसरा ऑप्शन तो मेरे लिए अप्लाई ही नहीं होता, मैं केचप खाता ही नहीं। अच्छा भाई मैं भी नहीं खाती, पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं क्या बात है, बचपन में केचप इतना अच्छा लगता था और अब केचप को देखकर ही ना कोई और सामने वाला भी खा रहा हो ना, तो मैं सामने वाले को ऐसे घूर कर देखती हूँ जैसे उसने कोई मेरी मुर्गी खा ली हो। मुझे कोई और खाता हुआ भी अच्छा नहीं लगता केचप, पता नहीं क्या मसला है। आपका जवाब क्या है बता दीजिएगा यूसुफ खान भाई। मुझे भी केचप ना कोई खाता हुआ अच्छा लगता है ना खुद तो भूल जाए, मेरी उनसे भी दुश्मनी है जो खा रहे होते हैं बेचारे मासूम। अच्छा भाई ये कौन है हमारे साथ? एक और भाई जुड़ गए हैं, कोई तो है ये। अच्छा तौफीक भाई क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम तौफीक भाई, कैसे हैं? वाकरा से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौफीक भाई आपने जवाब ना दिया, कैचअप पूरी ज़िंदगी खाना पसंद करेंगे हर चीज़ के साथ या ज़िंदगी भर नो नमक एट ऑल? अच्छा नमक की जहाँ मैं इतनी एंडोर्समेंट करी कि मुझे नमक बहुत पसंद है, पता नहीं है। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ना इंसान की बॉडी ऐसी बनाई है कि वो चीज़ों को जब उसकी बॉडी में कमी होने लगती है ना किसी चीज़ की, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन की कमी होने लगेगी तो वो खुद क्रेव करेगा प्रोटीन के लिए, गोश्त खाने के लिए, चिकन खाने के लिए। वैसे ही जब किसी इंसान को डेफिशिएंसी होती है ना, डिहाइड्रेशन होती है या ऐसी कोई डेफिशिएंसी होती है कि नमकीनियात की कमी हो जाए, तो वो नमक खाने की तरफ दौड़ता है। तो ये होता है कुदरती तौर पर, जिस चीज़ की आपकी बॉडी को कमी हो रही होती है वो इंसान उसकी तरफ दौड़ता है. नमक के बारे में अगर मैं कुछ चंद बातें बताऊँ ना आपको, इट्स नॉट दैट आई एम एंडोर्सिंग सॉल्ट, लेकिन एक ऐसी आपकी मालूमात के लिए बता देती हूँ कि ये सॉल्ट नाम की चीज़ है ना भाई, ये मम्मी से भी ज़्यादा पुरानी है. हजारों साल पहले लोग सॉल्ट को इतनी वैल्यू दिया करते थे कि इसे वाइट गोल्ड के नाम से पुकारा जाता था. इसे कहा जाता था वाइट गोल्ड. वो जो रोमन सोल्जर्स थे ना, उनकी सैलरी, लिटरली सैलरी तक उनकी जो है ना वो नमक में दी जाती थी. मजाक नहीं कर रही, आप देख लीजिएगा. और हाँ, ये जो सॉल्ट है ना हमारा, ये हमारे लिए इतनी कोई सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है चीज़, ये हमारे नर्व्स और मसल्स को ठीक ठाक चलाने में काम आती है, बहुत ज़रूरी होती है. ये हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है. अगर आप इसे एक्सेस में ना खाएं, हर चीज़ की ज़्यादती तो बुरी है ना, चाहे फिर वो सॉल्ट क्यों ना हो. और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सॉल्ट ओशन में, समंदर इतना सॉल्टी है कि अगर पूरी दुनिया का जो आपके ना लैंड है, जो ज़मीन है, वो मेल्ट भी हो जाए ना, तो हम फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई नमक नहीं मिल रहा. नमक हमें फिर भी मिलेगा. तो भाई नमक डेंजरस तब है जब आप उसे टेस्ट से ज़्यादा खा लें. वैसे तो मैं नमक ज़्यादा खाती हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नमक ज़्यादा खाते हैं. ऑन अ सीरियस नोट, इट इज़ अ डेंजरस थिंग. मैं कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की, मुझे नहीं पता कब होगा वो, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही हूँ. तो आप भी कोशिश करें. और वैसे भी केचप भी अगर खाएंगे तो केचप में भी नमक ही डलता है. डिगरा गोभी दें फुल्लो, कैसे बनेगा केचप बगैर नमक के, ये सोचा क्या? चले भाई गोभी दें फुल्लो, अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं अपने बॉलीवुड ट्रिविया की तरफ. क्या कहते हो जाए बॉलीवुड बॉलीवुड खेल लें, दो दो हाथ हो जाए. चलो भाई बॉलीवुड बॉलीवुड खेलते हैं, क्या कहते हो? तो भाई अब मैं आपके साथ गेम शुरू करने वाली हूँ और गेम में होगा ये बड़ा ही, हम कह लें कि आसान सा मामला है. आपको 10 सेकंड का एक क्लिप सुनाया जाएगा, ठीक है? क्या होगा वो जरा ध्यान से सुन लें. ये होगा गाने का हुक, बॉलीवुड के एक गाने का हुक होगा. आपने उसे गौर से सुनना है और आपने बताना है कि ये कौन सी मूवी का है और इसका टाइटल नेम क्या है, ठीक है? टाइटल नेम और मूवी. आज के लिए मैंने बहुत आसान रखी भाई, बहुत आसान रखी, क्योंकि गेम स्टार्ट हो रही है ना, अभी समझने में थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को. तो आपने अगर बॉलीवुड ट्रिविया में हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, या चाहें तो मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूँगी. अगर आप गेम खेलना चाह रहे हैं तो 6622107 पे आप मुझे मैसेज भेजें, आई वॉन्ट टू प्ले द गेम, मैं आपको इंशाल्लाह कॉल कर लूँगी. और भाई क्या कहते हैं, गेम शुरू की जाए. सिंपल सा रूल है. अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि आपने जो है वो मैक्सिमम देखते हैं कि आप विद इन कितना के ले जाए, 40 सेकंड्स के अंदर आप मुझे कितने गानों का बता देते हैं, ठीक है? विद इन 40 सेकंड्स, ओके. चले मैं, कहाँ गया हमारा टाइमर? ये रहा टाइमर और ये रहे हमारे कॉलर, देखते हैं हमारे कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
2: पहले तो ये कि माजरत, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा भाई, आपके जो पेशेंस लेवल है ना उसको सलाम है. पहले तो सलूट है भाई, पहले तो सलूट है पेशेंस लेवल को.
3: अभी मैंने शिकायत बाकी
2: है. अभी शिकायत बाकी है, देखिए हमने पहली माजरत कर ली तो शिकायत किस चीज की भाई?
3: शिकायत तो बाकी है.
2: अच्छा शिकायत है. अच्छा पहले तो नाम बताए ना, शिकायत करने वाले का नाम भी तो हो ना.
3: शिकायत के अंदर ही नाम है मेरा.
2: क्या है क्या है क्या है?
3: मैं महफिल में अकेले ही मायूस बैठा था.

0: मायूस बैठे थे?
1: फिर मैं अकेले ही मायूस बैठा था, आपके आने से बाहर आया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: आपका उम्र कम है लेकिन तजर्बा बहुत ज्यादा है। आपका उम्र कम है लेकिन तजर्बा बहुत ज्यादा है। ए थोड़ा सा वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कोई दादी अम्मा बैठी।
0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें मैंने बाकी सारी चीजें छोड़ दी, ये जो आपने बोला ना आपकी उम्र कम है, बस इसी के ऊपर मेरा ध्यान गया और बाकी आगे पीछे दाएं बाएं मुझे कुछ नजर ना आया। मैं बस वो उम्र कम की लाल बत्ती के पीछे भाग पड़ी। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्लैपिंग हो जाए, तालियां।
1: दादी अम्मा,
0: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपका नाम मिस कर गई।
1: कोई बात नहीं, याद आ जाएगा।
0: जरा फिर से दोहराए नाम आपने, एक एक लय में आपने नाम बताया था अपना, लेकिन वो लय मुझसे छूट गई कहीं, और मुझे याद है मैं दादी माँ कौन कहता था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा प्रॉपरली।
1: इसलिए तो मैं कहा कि आपके बातों से इतना लगता है जैसे उम्र तो कम है लेकिन आपके बातों से ऐसा लगता है कोई दादी अम्मा है।
0: नहीं नहीं, देखिए मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, ये बहुत कीमती बाल सफेद है मेरे।
1: अभी तो बाल सफेद क्या है।
0: अच्छा नाम तो बता दे, नाम नाम
1: नाम। नसीम।
0: नसीम भाई कैसे
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है।
0: नसीम भाई ये बताएं, केचप खाना पसंद है आपको या नमक?
1: नहीं केचप तो मैं खा लेता हूँ, नमक भी खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
0: तो अगर आपसे बोला जाए पूरी जिंदगी नमक नहीं खाएंगे या पूरी जिंदगी हर चीज के साथ केचप खाएंगे, तो क्या प्रेफर करेंगे, क्या क्या चूज करेंगे?
1: नमक नहीं खाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है।
0: तो फिर नमक
1: केचप के बगैर तो चल जाएगा, लेकिन नमक के बगैर कैसे चलेगा?
0: तो मतलब पूरी जिंदगी केचप के साथ गुलाब जामुन खा लेंगे?
1: केचप के साथ मतलब नमक भी जरूरी है और केचप, पूरी जिंदगी एक पर तो लोग डिपेंड नहीं हो सकता है, वो भी बगैर नमक का वैसा नहीं हो सकता।
0: चले भाई आप भी उसी टीम में आ गए, नमक के बगैर गुजारा नहीं होगा हमारा। अच्छा भाई ये बताएं हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे?
1: तो नहीं, मैं नहीं खेल सकता इसको।
0: क्यों नहीं
1: खेल सकते?
0: ट्राई तो करें, सिर्फ नाम ही बताना है।
1: ये दादी अम्मा मेरे को नहीं मालूम है।
0: ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, ट्राई तो करेंगे या वो भी नहीं करेंगे, हार मान लेंगे ट्राई के बगैर ही।
1: हार तो नहीं, लेकिन ये गाने के बारे में मेरे को नहीं मालूम है ज्यादा।
0: अरे भाई चले कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट कॉलर के साथ बात करते हैं।
1: ठीक है
0: चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। तो भाई साथियों जिस जिसको बॉलीवुड ट्रिविया खेलना है वो हमें कॉल करे, 4434377 इज द नंबर, और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम, मैं हुसैन बात कर रहा हूँ। बताइएगा मुझे,
2: हुसैन बात कर रहा हूँ।
0: अरे हुसैन भाई वापस से मुलाकात हुई क्या हमारी?
2: बिल्कुल मैं आ गया हूँ, अपने साथ गेम होने वाला है मेरे साथ।
0: मेरे साथ मोगेम्बो के साथ गेम होने वाला है
2: जी।
0: अच्छा भाई ये मोगेम्बो देखते हैं कितना होशियार है बॉलीवुड ट्रिविया में।
2: चले
0: अच्छा आपको आपको क्या लगता है, आप अपने आप को पहले स्कोर कितना देंगे?
2: डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, मतलब
0: नहीं देखिए पहला दिन है तो पहला दिन ना हमने हाथ हौला रखा है तो हमने कहा सब तो चले देखते हैं 40 सेकंड के अंदर ना आपने कितने गेस कर लेने हैं। ठीक है
2: चले ठीक है।
0: चले भाई टाइम स्टार्ट होता है आपका, ये वाला साउंड तो बंद करूं मैं। हाँ जी अब आएगी आवाज क्लियर, और ध्यान से सुनिएगा आपके 40 सेकंड स्टार्ट होते हैं। आपने क्या बताना है मुझे, बताएं बताएं।
2: सॉन्ग के नेम
0: और
2: सिंगर के नेम।
0: ना ना ना सिंगर का नहीं, मूवी का नाम, मूवी का नाम और सॉन्ग का टाइटल। ठीक है चले जी, 1 2 3 गो।
2: ये तो खाली म्यूजिक है।
0: हाँ ना तो हुक है ना, म्यूजिक म्यूजिक से आपने मुझे सॉन्ग का नाम बताना है। एक दफा फिर से सुने
2: जी।
0: बहुत मशहूर गाना है ये। चलिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, फरहान अख्तर, याद करें याद करें।
2: फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग,
0: क्या चीज
2: भाग मिल्खा भाग,
0: क्या क्या क्या क्या,
2: फरहान अख्तर की मूवी है ना भाग मिल्खा भाग?
0: ना ना ना ना, भाग मिल्खा भाग का नहीं है, फरहान अख्तर की एक और जो है ना वो, और भाई इस गाने को जो गाया है ना,
2: मिलेगी दोबारा,
0: इस गाने को जो गाया है ना वो फरहान अख्तर ने गाया है। वैसे तो आपका टाइम जो है वो अप हो गया। क्या किया, इतना इजी गाना था, इतना इजी। किस किस को याद आ रहा है, मैं नेक्स्ट कॉलर को पूछूं कि नेक्स्ट कॉलर को याद आ रहा है ये गाना, किसी को, किसी की याददाश्त में बज हो रहा है तो इतना तो। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और कल फिर तैयारी कर कराएंगे, जिम विम जाए, जॉगर शॉगर पहने, भागे दौड़े।
2: मैं तो अभी जा रहा हूँ यूपीएस के जैसा एग्जाम जैसा तैयारी करूंगा मैं।
0: ये चीज, इसे कहते हैं चैंपियन। चैंपियन का काम ही होता है कि वो तैयारी करता है। चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज।
0: तो भाई साथियों, मेरा और आपका मामला इस वक्त ये चल रहा है कि मैं आपको सुनाऊंगी गाने का हुक, गाना नहीं सुनाऊंगी मैं आपको, गाना सुना दूंगी तो फिर क्या ही बचा, म्यूजिक सुनाऊंगी भाई, इंस्ट्रूमेंटल, और आपने उसके अंदर से देखकर मुझे सुनकर बताना है कि ये मूवी कौन सी है और ये जो हमारा ट्रैक का नाम है वो कौन सा है। अरे कॉल आ रही थी, कहाँ चली गई, दो कॉल आई थी मैंने उठाई तो सही, कहाँ गई। अच्छा अगर मुझे कोई दो कॉलर मिल जाएंगे ना एक साथ तो फिर आप लोगों का मैच भी हो सकता है साथ में। वैसे दो कॉल आई थी मैंने, दोनों उठाई थी, पता नहीं कहाँ गई दोनों को। अच्छा एक कॉलर हमारे पास आ गए, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, सवाजी क्या हाल है?
0: बिल्कुल वैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह
3: पहले था, हाँ जी वर्ल्ड कप के टाइम में था
0: ये, हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना।
3: कैसा चला, कैसे चला यार आपका छुट्टी, कैसा पाकिस्तान, कैसा था?
0: पाकिस्तान नहीं गए हम इस दफा छुट्टी में, इस दफा हम वर्ल्ड कप के लिए कहीं और चले गए थे, जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ चले गए थे आप इस दफा हम।
3: माशाल्लाह लाइफ देखा
0: लेकिन भाई 100 बातों की एक बात, अपना कतर, अपना कतर है, आधी दुनिया एक तरफ, अपना कतर एक तरफ भाई। नहीं
3: नहीं नहीं, कराची के बदल कोई नहीं होता है, जो कराची में घुस गया कोई निकलेगा।
0: अच्छा वो कराची का अपना मजा तो, अपना कराची का तो वो तो एक अलग अपना मजा है, लेकिन वो एक होता है ना
3: तो सही है
0: वो, हम जब
3: कतर का तुम्हारा बहुत मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कतर में कोई आया नहीं निकलने का कभी, वो जाने का दिल
0: वो
3: नहीं,
0: जो कतर में जो आप कह लेना बस उसको बयान नहीं, वर्ड्स नहीं है, और खास तौर पे जो वर्ल्ड कप का जो मजा कतर ने दुनिया को जो चस्का लगा दिया ना वो कहीं नहीं मिल सकता, अब कहीं नहीं
3: मिल सकता। सही बात सही भैया, तो मैं एक्सेप्ट कर, ये यानी परफेक्ट सही आपकी, यानी मैं एग्री करता हूँ आपने सही पहचाना।
0: कतर में तो नजर आ रहा था हमारा वर्ल्ड कप हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि नाम बता दें भाई जल्दी से, देखें 45 दिन की गुम हुई याददाश्त है ये।
3: नहीं मुश्किल है, मेरा नाम अब्बास है, पहले से मैं आपसे बात किया था वर्ल्ड कप के।
0: नहीं अब्बास भाई मुझे आवाज से सब याद है, मुझे ये भी याद आ रहा है कि आप कौन है, लेकिन मैं जो ना वो शॉर्ट टर्म वो गजनी था ना, गजनी वो वाला हाल हो गया मेरा 45 दिन वो गोल्ड फिश वाला हाल है मेरा।
3: नहीं माशाल्लाह तुम्हारा बच्चों का प्रोग्राम अच्छा सूट करता है, अच्छी अच्छी बात बच्चों का प्रोग्राम है ना,
0: वो बच्चों वाला प्रोग्राम भी वापस आएगा इंशाल्लाह, आएंगे आएंगे आएंगे मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे। अभी तो फिलहाल जो है ना ये वाला प्रोग्राम है।
3: अच्छा आप फुटबॉल का शौकीन है?
0: फुटबॉल भाई देखें जो शौकीन ना भी हो ना वो कतर में आता है ना तो वो शौकीन बन जाता है, अभी तो नेक्स्ट पता है क्या आ रहा है आपको, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल भी आने वाला है, एक तो फुटबॉल का चैंपियनशिप हुआ ना यहाँ पर 2022, अब पास पास बास्केटबॉल भी आने वाला है, फिर बास्केटबॉल के लिए भी हम ऐसे पागल हो जाएंगे फिर।
3: हॉकी नहीं आता है लेकिन इधर,
0: हॉकी क्या पता इंशाल्लाह अगले आने वाले वक्तों में आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह
3: इंशाल्लाह।
0: अच्छा भाई अब्बास भाई ये बताएं ये बॉलीवुड के बारे में क्या ख्याल है, गेम शेम हो जाए?
3: अगर मुश्किल नहीं पाकिस्तानी बॉलीवुड बन रहेगा ना इंडिया का भी
0: चले।

0: आपको क्या पसंद आएगा, केचप या नमक? नो नमक?
1: नहीं नमक तो समझो खाना सही, बगैर नमक में कुछ फायदा, लेकिन मेरे को ज्यादा नमक पसंद नहीं।
0: लेकिन हम कराची वाले हैं, हम रहते ही समंदर के पास है, हम चलते ही नमक पर हैं।
1: नहीं नहीं ये तो आप कराची में हैं सही?
0: मैं खुद कराची से बिलोंग करती हूँ भाई।
1: सही?
0: हाँ हाँ। अरे अब क्या घर का पता बता दूं, एड्रेस दे दूं? देखिए हम पूरे पाकिस्तान से हैं, हमारे
1: लियारी में
0: आप ठीक है, हम जो है वो डिफेंस वाली साइड पर हैं, तो चले पास पास हैं, पास पास हम समंदर के पास रहने वाले लोग हैं, समंदर के पास, वहाँ मिट्टी खोदते हैं तो समंदर निकल आता है। चले भाई बॉलीवुड की गेम की तरफ चलते हैं, ठीक है?
1: ठीक है ओके।
0: चलो जी ये अभी आपका 40 सेकंड के अंदर आपने मुझे बताना है, ठीक है? जितने भी आप बता सके। ओके 1 2 3 और आपका टाइम स्टार्ट ये।
1: याद नहीं आ रहा है।
0: अरे भाई ना करें, ये याद नहीं आ रहा। कौन है ये लोग? अच्छा एक और दफा सुनाती हूँ, एक और दफा सुने, गौर से सुने, ठीक है?
1: पठान फिल्म का नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, शाहरुख खान है, काजोल है।
1: लेकिन कुछ कुछ
0: नहीं नहीं नहीं मैं कहां सर मारूं, दीवार ला दो मुझे, दीवार ला दो, दीवार ला दो मुझे। अब्बास भाई लुटिया डिबो दी, खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया, बस जिंदगी बस खत्म, दोस्ती खत्म मेरी और आपकी। हमारे बचपन की मूवी है ये, इसके बगैर तो शाहरुख खान निकलता ना। चले फिर अब हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, कल फिर से एक दफा ट्राई कीजिए, क्या पता कल आपको कोई गाना याद आ जाए, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओ भाई मैंने तो ऐसे कोई गाने निकाले ही नहीं, मैंने तो कहा पहला दिन है, बिल्कुल बच्चों वाले गाने निकालो, तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहाँ है वो दीवार जिसके ऊपर अपना सर मार सकूं। चलो भाई देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: नदीम।
0: नदीम भाई कैसे हैं
2: आप? सही कैसे हैं, आपकी छुट्टियां कैसी रही?
0: अल्लाह का शुक्र है, देखें छुट्टियां तो होती, छुट्टियां तो अच्छी ही होती है ना नदीम भाई?
2: छुट्टियाँ तो अच्छी होती हैं, मैंने कब कहा, लेकिन गर्मियों की छुट्टियाँ,
0: गर्मी की छुट्टियाँ,
2: गर्मी।
0: देखिए हमारा मामला पता क्या था, हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पे हमें जैकेट पहननी पड़ रही थी।
2: तो आज चले गए नहीं क्या?
0: स्वाद नहीं गए थे, हमने सोचा न्यूयॉर्क का चक्कर मार कर आते हैं, तो हमने चलो न्यूयॉर्क का चक्कर मार कर आए, यूएसए गए थे तो वहाँ पे तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मौसम भाई, नायग्रा फॉल्स की साइड पे जाएं तो वहाँ पे तो बहुत खूबसूरत भाई, बहुत, और वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे स्वात या मरी वगैरह की साइड पर आ गए।
2: मैं इमेजिन कर सकता हूँ,
0: तो वो ब्यूटी एग्जैक्टली वो वैसी थी, ब्यूटी में भी वैसा ही था, मौसम में भी बिल्कुल वैसा ही था। तो गर्मी तो हमने,
2: कैसी रही आपकी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। ये बताएं कि बॉलीवुड ट्रिविया खेलने को तैयार हैं?
2: थोड़ा थोड़ा खेल लूंगा।
0: देखिए मैंने बच्चों वाले गाने निकाल के रखे बिल्कुल यूं, ये अगर अच्छा। मुझे कोई एक एक एक प्लेयर
2: शायद गाने वगैरह, वैसे मैं मूवी वगैरह नहीं देखता हूँ ज्यादा।
0: अरे भाई ये वो वाले हैं, ये वो वाले हैं जो आपने कभी अपने बचपन में या जवानी में देखे ही होंगे।
2: अच्छा
0: अब तो सबने देखनी बंद कर दी है मूवी, अब तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया, ये वो सब उसके मसरूफ हो गए, लेकिन ये वो वाले जो, ये पता होंगे भाई, ये पता होंगे। चलिए ट्राई करते हैं।
2: वो ट्राई तो अभी एक मिनट रुकिए, ये बताइए पहले आप नमकीन ज्यादा पसंद करती है या
0: नमकीन? नमकीन देखिए नमकीन, ये जो नमकीन की दुनिया है ना
2: पाकिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान में बिल्कुल आप नजदीक है ना नमक के, इसलिए नमकीन।
0: हाँ हाँ

0: आपको पता है दिस एक एक बहुत वियर्ड चीज मैं आपको बताती हूँ. मैं केवड़ा माइन गई थी पाकिस्तान में, लोगों को बताऊंगा. केवड़ा माइन गई थी मैं, वहां से स्पेशली एक डेकोरेशन पीस लेकर आई जो कि एक पॉट था उसके अंदर पत्थर पत्थर थे, वो डेकोरेशन के लिए था नमक का.
1: ठीक ठीक है.
0: लेकिन कुछ अरसे तक उसके पत्थर उठा के मैं खाती रही हूँ. मेरे घर वालों का नाम बताइएगा बस. मुझे नमक इतना पसंद है, मुझे नमक इतना पसंद है कि मैं छुप छुप के वो नमक के पत्थर खाते. घर वाले सोच रहे हैं कि भाई इसके पत्थर कहाँ गए.
1: मुझे तो वाकई में बिल्कुल भी पसंद नहीं है.
0: नमक नहीं पसंद आपको? अरे भाई, अरे भाई,
1: आप तो मुझसे ये कहेंगे बॉयल दाल खा लो, मैं खा लूंगा शौक से, लेकिन उसमें नमक पड़ा होगा मुझे पसंद नहीं आएगा.
0: देखें तो फिर केचप चलेगा आपके साथ?
1: मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है अब तक.
0: केचप, केचप खा लेंगे आप हर चीज में? केचप,
1: केचप हर चीज में तो नहीं चलेगा केचप, लेकिन हाँ नमक नहीं चलेगा.
0: नहीं ना, देखिए सिनेरियो यही था ना हमारा कि या तो फिर पूरी, या तो फिर पूरे साल या पूरी लाइफ टाइम के लिए नो नमक एट ऑल, या तो फिर हर चीज में केचप ही केचप, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो गोलगप्पा हो, चाहे वो रसमलाई हो, केचप. फालूदे के ऊपर सोचे, फालूदे के ऊपर सोचे केचप डाला हुआ. आहा, केचप वाला फालूदा.
1: फालूदा सही बता रहे हैं. आइसक्रीम, केचप वाली आइसक्रीम.
0: हाँ, केचप वाली आइसक्रीम खा लेंगे.
1: हॉट ऑफ रेड आइए तो डबल डबल स्वाद आएगा. एक आइस पता ही नहीं चलेगा कि केचप का
0: स्टंट है. स्टंट स्टंट स्टंट होगा ये.
1: सब में केचप का ही स्वाद आएगा.
0: जी बिल्कुल, केचप के फैन हो जाएंगे फिर सब.
1: अच्छा ये बताइए, आज आपने सरव भाई को कहाँ भेज दिया?
0: सरव भाई, मैंने कहा सरव भाई मैं छुट्टी गुजार करा गई, अब आपकी बारी, जाओ जी सिमरन जी ले अपनी जिंदगी.
1: वो सिमरन
0: है. भारी भरकम सिमरन. बहुत वजनी सिमरन है हमारी वो.
1: नहीं, बहुत नहीं, वाकई में मैं तो इस बात को कहता हूँ सरव भाई से भी, सभी लोगों से, कवि भाई वगैरह से, कि माशाल्लाह जितनी अच्छी टीम 107 की है ना, वो बाकी तो सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक है, एमएससी है या कुछ भी है, लेकिन जो मजा आपके प्रोग्राम सुनने में आता है वो आखिर में किसी के भी प्रोग्राम सुनने में आता है.
0: चलें भाई, जज़ाकअल्लाह, आपने तारीफ कर दी.
1: यानी कि दोहा के अंदर सबसे ज्यादा अगर सुनने वाला जो कोई भी रेडियो है तो 107.
0: ये बहुत बड़ी बात है भाई, और मैं, मुझे अब इसके साथ दो और सेंटेंसेस जोड़ने पड़ेंगे. देखें जितने लोग सुन रहे हैं, हमने कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करवाई है, इनको 5 रियाल नहीं दिए हमने. एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए गए, नहीं बात बोलने के.
1: नहीं नहीं नहीं,
0: चलें नदीम भाई गेम की तरफ चलते हैं क्योंकि बाकी कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं. ठीक है,
1: ठीक ठीक है.
0: चलिए जी, आपको दिए जाएंगे 40 सेकंड और आपको ये ही हुक दे देते हैं. चलें जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. नहीं नहीं नहीं, सुने सुने सुने, एक दफा फिर सुने.
1: कुछ कुछ होता है?
0: नहीं, कुछ कुछ होता नहीं है. शाहरुख खान और काजोल जो है वो सिर्फ कुछ कुछ होता है में नहीं आए थे. एक और दफा सुन लें ध्यान से, कौन है वो चीता जो मुझे बता दे. अरे भाई, इस मूवी की वजह से तो शाहरुख खान और काजोल इतने मशहूर हुए थे. नहीं
1: नहीं, समझ में नहीं आ रहा मैं.
0: अरे भाई, आपका टाइम भी अप हो गया है.
1: सॉरी मैम,
0: 40 सेकंड.
1: जब हम आप लोगों से बात करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कोई.
0: अब जब आप फोन रखेंगे ना तो आपको याद आएगा, देखना.
1: बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली. अरे मुझे आपके फोन करने से पहले याद था, आपसे बात हुई, भूल गया.
0: चले, अब दूसरे कॉलर को हम चांस देते हैं और कल आप फिर से एक दफा कोशिश कीजिएगा, आइएगा मैदान में उतरिएगा. चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अरे भाई, मुझे कोई तो चीता मिल जाए जो इसका बता दे. भाई कोई एक तो बता दो, इतना सुनते हो बॉलीवुड को, इतने चैनल्स पे सुनते हो और फिर कह रहे हो कि इसका नहीं पता. क्या हो गया पब्लिक, क्या हो गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: जी खुर्रम बोल रहा हूँ.
0: खुर्रम भाई, कैसे हाल चाल है?
2: जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए.
0: खुर्रम भाई, हम ना ढूंढ रहे हैं एक, क्या कहते हैं, एक हीरा ढूंढ रहे हैं. हीरा?

0: जी
1: तो क्या वो हीरे आप बन सकते हैं प्लीज, क्योंकि मैं अभी तक कितने एक दो तीन तीन लोगों से तो मैं बात कर चुकी हूँ, वो मुझे नहीं बता पा रहे कि ये गाना कौन सा है और ये मूवी कौन सी है।
0: ठीक है आप बताइए मैं देखता हूँ।
1: चलिए जी जरा सुनिएगा ध्यान से और मुझे बताइएगा, हम आपको दे रहे हैं 40 सेकंड का टाइम, ठीक है। विद इन 40 सेकंड्स आप जितने गाने गेस कर सकते हैं वो करें और आपने मुझे बताना है गाने का नाम और मूवी का नाम, ठीक है। चलिए जी 1 2 3 एंड गो। याद आया कुछ?
0: जी गानों का तो याद आ गया मुझे।
1: गाना बताएं कौन सा था, कौन सा था?
0: तुझे देखा तो जाना सुना।
1: ओ भाई पहला बंदा मिला मुझे, शुक्र है। चले अब मूवी का नाम बता दें।
0: मूवी का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा इसका कौन सी है, लेकिन शाहरुख खान और काजल आई थिंक।
1: शाहरुख खान और काजल हैं, मैंने भी बता दिया था शुरू में, लेकिन कौन सी मूवी थी? गिटार बजाता हुआ अरे भाई वाह भाई वाह, फाइनली किसी के लिए तालियां बजाने का मौका मिला मुझे, फाइनली वाह वाह वाह वाह, चैंपियन हो गए आपको।
0: जी जी थैंक यू।
1: आपको मिलता है एक वाटर कूलर फ्री, बस मसला ये है कि वाटर कूलर कहाँ है हमें नहीं पता अभी फिलहाल,
0: एड्रेस में सेंड कर देता हूँ, डिलीवर करा दीजिए।
1: चलें ठीक है फिर, ठीक है गर्मियां वैसी बात है, वाटर कूलर साथ लेकर घूमिएगा। चले एटलीस्ट मुझे, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू विन द गेम।
0: आपका कराची से आप?
1: मैं देखिए मैं अगर अपनी हिस्ट्री बताना शुरू करूंगी तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं गुजरावाला से भी हूँ, मैं कराची से भी हूँ पंजाब भी अपना, सिंध भी अपना।
0: अच्छा नहीं मैं भी कराची से हूँ, इसलिए कह रहा था।
1: मैं मेरी पेरेंट्स की साइड जो है वो कराची से ही है।
0: ठीक हो गया।
1: चलिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा खुरम भाई, अल्लाह हाफिज। चलो जी ये गाना तो दरियाफ्त हो गया, जैसे कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था ना, वैसे किसी ने ये गाना ढूंढ लिया, शुक्र है किसी एक ने तो जवाब दिया। अब भाई नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, सब मैडम क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है?
1: देखें जब कोई मैडम बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं स्कूल की कोई टीचर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं कोई 60-70 साल की आंटी हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं आंटी हूँ, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, अभी इतना एज गैप, बड़ों के लिए जो है ना वो मैडम वाला रसूख आ जाता है।
2: आप बता दें क्या बोले।
1: नहीं भाई खैर है खैर है, इट्स ओके।
2: तो बताएं कैसी रही आपकी छुट्टियां और घर सब खैरियत?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला की जात का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आप बताएं मेरे भाई कौन बात कर रहा है?
2: जी मैं अदील बात कर रहा हूँ।
1: अदील भाई मेरा जो ना शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला लॉस वाला सीन हुआ है, तो मैं सबसे नाम पूछ रही हूँ जिनको जिनकी आवाज पहचानती हूँ उनसे भी पूछ रही हूँ। अच्छा भाई ये बताएं कि हमारे साथ आप खेलेंगे बॉलीवुड ट्रिविया का गेम?
2: जी जी
1: चलें जी देखते हैं, पहले विनर तो हमें मिल गए, पहले आपको दिए जाएंगे 40 सेकंड, उन 40 सेकंड के अंदर आपकी मर्जी आप कितने सॉन्ग्स बता सके, और आपने बताना है गाने का टाइटल नेम प्लस आपने बताना है मूवी का नाम।
2: गाने का टाइटल तो चलो कोशिश करता हूँ, लेकिन मूवी का नेम तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
1: हो जाएगा कोई बात नहीं चले जी 40 सेकंड मिलेंगे आपको, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये वाला तो इजी होना चाहिए।

0: हाँ,
1: और ये ठीक है, गाना आपने बिल्कुल सही बताया. मूवी का नाम क्या है?
0: हाँ, शाहरुख खान थे मैं भी इसमें.
1: हाँ, शाहरुख खान थे.
0: और
1: मूवी का नाम, मूवी का नाम,
0: मूवी तो मैं नहीं इतनी

0: नाम और नाम मूवी का और गाने का दोनों का बताना था ना.
1: अच्छा अच्छा चलें
0: चलें ठीक है.
1: और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था नमक और कैचअप वाला, उसमें तो मैं भी नमक ही अच्छा लगेगा, कैचअप तो नहीं कोई खाएगा इससे ना.
0: अच्छा मजे की बात ये कैचअप भी ना नमक के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता.
1: नहीं नहीं कैचअप अब देखे ना, अब लोधे में कैचअप डाल रही है, गुल्ले पे डाल रही है.
0: देखें ये इसे कहते हैं और बड़ी सोच रखें, बड़ी सोच, मैं बड़ा हूँगा, बड़ा होकर बड़े काम करूंगा जो किसी ने नहीं किए होंगे. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाऊंगा. तो देखें ये काम किसी ने नहीं किए, हम बड़े बड़े काम करेंगे. ये बाकी काम तो सभी करते हैं, चीनी के साथ आइसक्रीम, चॉकलेट के साथ आइसक्रीम, तो गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब नॉर्मली खाते हैं.
1: ये गांव वाली साइड में ना वो गुड़ वाले चावल जो होते हैं ना मीठे, उसके ऊपर दही डाल के खाते हैं. फिर उसके बाद किसी शादी पे चले जाएं, आइसक्रीम में बोतल डाल के वो पी रहे होते हैं, वो जी भी उन्होंने वो सिस्टम निकाला हुआ है.
0: भाई मैंने किसी को देखा था पंजाब साइड पर, क्योंकि मैं दोनों ही जगह, मैं असल में बेसिकली खुद कराची की हूँ, तो मुझे आई एम अ फूडी पर्सन. और मैं चली गई पंजाब और वहां पे जो मैंने तबाही देखी ना, सॉरी भाई, मैंने गाजर के हलवे के ऊपर लोगों को दही डालकर खाते हुए देखा है, तो मेरी तो आंखें बाहर निकल आई कि क्या हो रहा है. तो लोग कुछ भी खाते हैं, मतलब लाहौर में मुझे याद है एक आइसक्रीम निकली थी, इसका मैंने जिक्र किया था, चिली आइसक्रीम.
1: जी जी,
0: तो वो भी लाहौर में ही याद हुई थी. तो मतलब लोग केचप के साथ अगर लाहौर में,
1: ये जो है ना, ये बात है ना, अक्सर आपको पता है शादी ब्याह जो है ना वो गाँव से लोग ज्यादातर बिलोंग करते हैं लाहौर में. लाहौरिये जो है ना रहती बहुत कम है, ठीक है, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो गांव सूटेबल हो. तो ये गांव वाली साइड वाले जो लोग होते हैं ना ये ही करते हैं ऐसे काम जो है ना.
0: आदिल भाई लाहौर को डिफेंड करते हुए, और ये जो है ना ये वाइट बॉल हो गई आदिल भाई. आदिल भाई चले
1: ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ.
0: ये जो लाहौर वाला टॉपिक है ना, इसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे. इसको पूरा पूरा शो चाहिए, एक इस टॉपिक को पूरा एक शो चाहिए. आदिल भाई जस्टिफाई ना हो पाएगा.
1: जी जी,
0: कराची वालों के साथ लाहौर वालों को बिठा दें, 36 काकड़ा हो जाता है. तो फिर वो एक पूरा शो चाहिए इसको, किसी दिन एंजॉय करेंगे इस चीज को भी.
1: जी जी इंशाल्लाह.
0: चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.
1: सरवर भाई ठीक है? बहुत
0: सरवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सरवर भाई बिल्कुल खैर आफियत से. बस जैसे मोबाइल को रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, सरवर भाई भी रिचार्ज मोड पे गए हुए, छुट्टियों पे गए हुए.
1: हाँ जी, नहीं बता के गए थे लास्ट टाइम ना, उन्होंने 15 अगस्त को आना मे भी कह रहे थे.
0: इंशाल्लाह. चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.
1: ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.
0: भाई तबाही मचाइए नमक ने और केचप ने जिंदगी बहाल. मतलब लोगों को ये मसला नहीं कि हम नमक के बगैर जी लेंगे, लोगों को मसला ये कि केचप के साथ कैसे जिएंगे. चलिए एक और कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु.
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं वही बोल रहा हूँ जो एक बार आपसे बात हुई थी लास्ट समर में, जो आपके बहुत सारे दोस्तों ने कर्जे लेके रखे हुए थे और आप पैसा कैसे उसे निकाला जाए, वो आइडिया मैंने दिया.
0: अच्छा देखिए एक टॉपिक याद है मुझे, लेकिन मैं जो ना गजनी हूँ पूरा, तो
2: मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ ना. मेरा नाम रईस है.
0: हाँ रईस भाई याद आ गया, रईस भाई याद आ गए. हाँ जी रईस भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है.
0: रईस भाई तो फिर आपने कितने दोस्तों से पैसे निकलवा लिए?
2: मैंने तो आपको टिप्स दिया था ना कि मैं खुद उनके सामने मजबूर हो जाता हूँ कि भाई मेरे को जाना है.
0: और मैं तो कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ जिस दोस्त ने आपके पैसे नहीं दिए ना उसके साथ एक काम करना, उसको जाकर केचप वाले गुलाब जामुन खिला देना. गुलाब जामुन के ऊपर कहना भाई मेरी तरफ से ट्रीट है, ट्रीट है, खूब अच्छा खासा ना उसको वो पूरा समझा बुझा कर, हाँ मेरी तरफ से ट्रीट है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और उसकी जितना भी वो खाना ऑर्डर करे ना उस सब के ऊपर केचप फेर देना और कहना लो खाओ। अच्छा ये बताएं भाई, हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे आप?
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैं कितनी बार कॉल का ट्राई करता था लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था।
0: चले भाई, चले भाई हम जो हैं वो आपके साथ गेम शुरू करते हैं। आपको दिए जाएंगे 40 सेकंड, ठीक है? और 40 सेकंड के अंदर आपने ये करना है कि मुझे जल्दी जल्दी आपने मूवी का नाम भी बताना है और आपने मुझे गाने का नाम भी बताना है, ठीक है?
2: इंशाल्लाह।
0: चलिए 1 2 3 योर 40 सेकंड स्टार्ट नाउ।

0: कुछ याद आया आपको या पूरा गाना
1: मुझे
0: सुना
1: लगा
0: था
1: आप जिससे मुझे लगा आप वही गाना सुनाएंगे जो अभी से पहले चल रही थी जो एक भाई ने मूवी का नाम
0: ले उन्होंने तो ले लिया ना नाम उन्होंने तो बता दिया अच्छा चले ये वाला आप आपसे ऐसे शुरू कर लेते हैं कि आपको ये वाला बता रहा था तो आपको ये बता दें
1: अजनबी
0: हाँ ठीक है कौन सी मूवी का है
1: परदेश मूवी
0: अरे भाई ये क्या कर दिया परदेश मूवी नहीं है ये इतना खोज तलाश करके फिर गलत बोल दिया रईस भाई क्या किया की कर देता है रईस भाई की कर देता है
1: परदेश है ना ये जो एक मूवी है जो एक गांव में शाहरुख खान रहता है वहां पे पूरा उस गांव का आई थिंक लाइट का प्रॉब्लम रहता
0: नहीं,
1: है
0: नहीं वो तो वो जो आप बोल रहे हैं वो तो वो थी मूवी स्वदीज स्वदीज थी वो और वो ये मूवी नहीं है अरे भाई इस मूवी के अंदर गाना था शाहरुख खान ने ट्रेन पे उछल उछल के गाना गाया था इसके अंदर जिसके बाद शाहरुख खान को बैक इंजरी हो गई थी जिसकी वो आज तक उसका प्रॉब्लम है शाहरुख खान को
1: मिया वाला बोल रहे हैं आप
0: हाँ जी किस मूवी में था वो चलें भाई ना हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा सबको जंग लग गया है सबको जंग लग गया है मैं बता रही हूँ कोई बॉलीवुड फैन नहीं मिल रहा मुझे
1: नहीं तो वो चल छैया छैया वाला गाना तो परदेश का ही था ना
0: नहीं ना परदेश मूवी किसकी थी उसके अंदर हीरोइन कौन थी
1: अच्छा ये सॉरी स्वदेश स्वदेश मैंने गलत बोल दिया स्वदेश
0: नहीं स्वदेश मूवी का भी नहीं है स्वदेश दूसरी वाली थी चले आप एक काम करें आप खोज तलाश करें इसकी कि गाना कौन सा है ठीक है मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलती हूँ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कल फिर कॉल कीजिएगा ठीक है ओके जी अल्लाह हाफिज रईस भाई अरे भाई मैंने तो इतना सिंपल क्या हो गया कहाँ चले गए सब कहाँ गए सब कहाँ गए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم
0: الحمد لله زين تمام مية مية
2: مية مية معكم علي وجداد
0: yes brother how are you
2: fine how are you
0: الحمد لله الحمد لله زين تمام so you الحمد لله
2: شنو البرنامج
0: برنامج هاي في بوليوود تريفيا
2: زين قولي
0: okay you tell me songs name song name and movie name okay
2: okay
0: you have 40 seconds As much as you can tell me, ठीक है, okay?
2: Okay.
0: Okay, let's start. 1, 2. Where did it go? And 1 minute. I will start with this one. Okay. This one for you. 40 seconds. Start now. Which song is this?
2: هذا موفي هذا امير خان
0: يس موفي نيم
2: موفي نيم يعني ما ادري بس اغنيه فهلا نشا فهلا خما
0: اوكي اوكي اوكي اوكي اي جيف يو 1 بوينت فور ات اوكي سو نيكست نيكست وان نيكست وان نيكست وان از ويتش وان اوكي نيكست وان از ذس وان Oh no! Sorry, sorry, sorry, sorry. This one, next one is this one. Sorry, sorry, sorry.
2: Okay,
0: next one, this one. This one. Any idea?
2: This. Maybe Basha Basu.
0: Yes, but which one?
2: Doom 2 or Doom 1
0: it you are very right it is from Doom 2
2: okay Ritik Roshan
0: yes but which song you know the song name
2: wallah no I just know this
0: it's okay you every question has 2 points so you okay. guess them right so you get 2 marks you were supposed to get 4 but you got 2 only but it's okay nice good because you are the highest scorer
2: Okay.
0: Today nobody tell me anything.
2: Thank you.
0: So you are good. You like Bollywood.
2: Okay.
0: Okay, bye bye.
2: What's your name?
0: My name's Safa.
2: Safa, huh?
0: Yes.
2: Where is
0: server?
2: Maybe?
0: Server. Huh? Server is on leave. Holiday.
2: And Nazia?
0: Nazia is on other show.
2: Okay. So, salam for Saif al-Rahman.
0: Inshallah, inshallah.
2: That's my old dost. You understand for me, Ali Wajdan?
0: Yes, I will tell him. Inshallah.
2: Okay, thank you.
0: Okay,
2: thank
0: bye-bye.
2: Thank you.
0: चले भाई ये चीज तो अच्छी हो गई एक मार्क था देखें हर हमारे जो है ना गाने के दो पॉइंट थे एक पॉइंट था नाम का और एक मतलब सॉन्ग नेम का और एक पॉइंट था मूवी नेम का तो इन्होंने दो पॉइंट तो कर लिए दो अलग-अलग बताए लेकिन कर लिए तो भाई देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे पास टाइम भी हमारे पास शॉर्ट रह गया है और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू कैसे हैं सब
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई बात कर रहे हैं
3: जी जी जी
0: यूसुफ भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं
3: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाइए कैसी हैं कैसी
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है ये बताएं यूसुफ भाई कि नमक ज्यादा खा लिया था कि केचप
3: मुझे केचप पसंद नहीं मैं केचप नहीं खाता हूं नमक थोड़ा ज्यादा खाता अभी कम कर दिया थोड़ा प्रेशर की वजह
0: अरे भाई अल्लाह ताला आपको सेहत दे और ये बताएं कि क्या करेंगे जिंदगी भर केचप का साथ रखेंगे या नो नमक
3: दोनों भी नहीं
0: इनका अपने मैं थर्ड डायमेंशन में रहता हूँ मुझे दोनों नहीं चाहिए जाओ क्या करना
3: मैसेज किया था शायद मैसेजेस नहीं देख रहे हैं
0: नहीं मैसेज किया था मैंने आपका मैसेज पढ़ा था मैंने आपको मैसेज पढ़ा था
3: आज में था हां हां नहीं मैं ये जो बॉली ट्रेवल शुरू हुआ तब से मैं कॉल कर रहा हूं मतलब स्टार्टिंग से अभी तक इतना एंगेज पर 10 बार हो गया शायद मेरे साथ में
0: अरे हां कितनी ज्यादा हुआ है मैंने ये जो मेरे पेपरों का पलंदा है ना इसके नीचे फोन चला गया था सॉरी भाई गलती से मिस्टेक हो गई
3: जी जी
0: अच्छा भाई चलें फिर हमारे साथ बॉलीवुड घूमने को तैयार हैं
3: जी जी अल्फा
0: चलें भाई यू विल ट्राई तो हम आपसे ये वाला पूछते हैं आपको दिए जाएंगे 40 सेकंड और 40 सेकंड देखें हर सॉन्ग का ना अपना दो पॉइंट है एक पॉइंट है किस चीज का मूवी नेम का और एक पॉइंट है गाने के नाम का तो देखते हैं आप कितने पॉइंट ले लेते हैं ठीक है और 40 सेकंड स्टार्ट्स 1 2 3 नाउ ये कुछ याद आया आपको
3: नहीं याद आ रहा कैन यू प्ले अगेन
0: ये बहुत ही अच्छी मूवी थी
3: कोई हिंट मिल सकता है
0: हिंट मिल सकता है इस गाने को गाया है फरहान अख्तर ने जरा एक दफा फिर सुने गौर से
3: हाँ रॉक स्टार फिल्म का है
0: रॉक स्टार फिल्म का है वेरी गुड हो गया भाई वेरी गुड हो गया वैसे रॉक स्टार नहीं है लेकिन रॉक स्टार दूसरी थी लेकिन इस मूवी के अंदर रॉक ही आता है रॉक ऑन है इस मूवी का नाम
3: फरहान अख्तर की रॉक हाँ
0: जी चलें भाई आपको हम दे ही देते हैं एक पॉइंट तो आपका बनता है भाई तालियां तालियां क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ है सबको एक पॉइंट नहीं मैं कर गया
3: वो जब से शुरू से जो गाने प्लेयर हैं मेरे को पूरे पता थे दीदी अजय का जो धूम का हुआ मैंने दिल से का जो था दिल से का अजनबी तू ही बता वो भी पूरे पूरे जो मैं फर्स्ट तक ट्राई कर रहा हूँ ना तब से बता था अभी मेरी बारी के टाइम आपने इतना मुश्किल प्ले कर लिया
0: अरे भाई ये इतना इजी था मैंने सारे के सारे इजी निकाले थे कि मैंने कहा था आज आज पहला दिन है तो हौला हाथ रखेंगे हम

0: आपके ऊपर. चलिए इंशाल्लाह कल फिर कॉल कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपसे कल फिर बात होगी और फिर कल इंशाल्लाह अच्छा वाला स्कोर होगा. और
1: थैंक यू
0: ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. तो साथियों भाई मेरे जाने का टाइम आ गया और मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि भाई लस्सी शस्सी पियो, मैंगो लस्सी पियो. मैंगो लस्सी करना सिर्फ ये है, एक गिलास दूध का लो, दो चमचे तीन चमचे दही के लो, शक्कर डालनी है डालो, लेकिन मैंगो जो काटो ना वो ठंडा होना चाहिए, उसको ब्लेंडर में डालो, जू जू घुमाओ और लस्सी बनेगी. खूब मज़ेदार पिस्ता बादाम डाल के उसको पी जाओ, क्योंकि भाई गर्मियों का मौसम है. तो भाई गर्मी सिर्फ आपको ही नहीं लगती, आपको जाते जाते ये बता दूं साथियों कि गर्मी फ्रांस तक पहुंची हुई होती है, यानी कि फ्रांस में जो लंबा चौड़ा सा एफिल टावर खड़ा हुआ है ना, वो भी गर्मी की वजह से एक्सपेंड हो जाता है. आपको पता है कि एफिल टावर कभी कभी लोगों को एक साइड पे बेंड हुआ हुआ नजर आता है. वो पता है क्यों होता है? क्योंकि जब सूरज की रोशनी एफिल टावर पर एक साइड पर पड़ती है ना, तो जिस साइड पर सूरज की रोशनी पड़ी होती है वहां से एक्सपेंड हो जाता है, और जिस साइड पे नहीं पड़ी होती वो वैसा ही रहता है. तो जब आपसे दूर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है टिल्ट हुआ हुआ है. तो भाई सिर्फ सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर ही सूरज के साथ साथ नहीं घूमता, एफिल टावर भी घूमता है और इंसान भी घूमते हैं, सूरज से बचने के लिए शेड में जा रहे होते हैं. तो सिर्फ आप ही नहीं है जिसको गर्मी ने पकड़ा है. ये जो एफिल टावर है यहां तक भी गर्मी पहुंचती है. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहें, और भाई मुझे दें इजाजत, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी. और हाँ भाई, हाँ एक और चीज़, पानी का ढेर सारा ख्याल रखें, और अगर हो सके तो ओनली वन पिंच ऑफ सॉल्ट एंड वन पिंच ऑफ शुगर डालकर पानी कंज्यूम करें, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है एक बॉटल के अंदर. स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ. मेरी तरफ से साइनिंग आउट, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी. चलो भाई. हाँ जी, सुनिधि चौहान के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको. अच्छी लगती है मुझे इनकी आवाज भी, बहुत अच्छी लगती है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है. तो भाई सफा साइनिंग आउट फ्रॉम कहाँ से, साइनिंग आउट सन एंड साउंड से.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। हां जी, टाइम फॉर टाइम चेक। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 1:00 हो रहे हैं एग्जैक्ट 2 मिनट।
2: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: हां जी हबीबी, स्पोर्ट्स अपडेट अब सारी आपको यहां FM 107 पे मिलेगी। और अमीन भाई, क्या है छुट्टी भर? तो मेरा काम है यार स्पोर्ट्स की दुनिया से, आपने को इतनी तो नहीं जितनी अमीन भाई, लेकिन है अच्छी खासी है यार। तो नए जमाने के नए लड़कों की और क्रिकेट की, फुटबॉल की, सारी अपने का नॉलेज अब भरी पड़ी है। तो अपन बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शो, जहाँ पर मैं चाहता था यार पहले कि मुझे स्पोर्ट्स की चीज़ मिल जाए, मुझे स्पोर्ट्स की खबरें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। नहीं, कितना सही है कि खेल भी देखो, उसकी फिर थोड़ी सी नॉलेज हो और उसके बाद हम पूरी डिटेल में बात भी करें। तो 1:00 से लेकर 1:30 तक मैं आपके साथ इस शो में रहूँगा, जिसका नाम है समर स्पोर्ट्स। और समर स्पोर्ट्स में यानी कि गर्मियों में क्या कुछ चल रहा है गेम में, क्या चीज़ें आगे बढ़ रही, जैसे फीफा चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मेक्सिको से लेकर इंग्लैंड तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, और फिर यूएसए और कनाडा ने मिलकर ये जो फीफा कराया है इसमें तो लाजवाब मज़ा तो आ रहा है, मेक्सिको में मज़ा तो जो है वो आ ही रहा है। तो अब जो चीज़ें हैं, जो डिटेल है, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। लेकिन हर बार एक चीज़ अमीन भाई करते थे और वो ये थी कि एक सवाल, जिस सवाल से शो शुरू होता था, तो उसी सवाल से मैं भी शो जो है शुरू करूंगा। और इन दिनों यानी कि कुछ 2-4 दिन से ऐसा घमासान हुआ है फुटबॉल की दुनिया में, फीफा में, कि लोगों की खुशी जाहिर करना रुक ही नहीं रही है। और हर रोज़ रात को 11 बजे के बाद ये खुशी आपको कॉर्निश, सूक वाकेफ, लुसेल बोलेवार्ड या फिर आपको मतार कदीम में देखने को मिल जाएगी। और ये क्या कुछ है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सवाल, जिस सवाल को करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब इसका पता होना चाहिए। और सवाल जो है

बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि अगर आपने मैच देखा हो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट का, जिस दिन से उथल पुथल जो है वो शुरू हुई है, राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 32, इन सब के लिए जो गेम हो रहा है वो लाजवाब है। तो सवाल बहुत आसान है, एक चेंज जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया था जब पेनल्टी शूट आउट हुआ वर्सेस इजिप्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए सैटरडे नाइट को, है ना। तो आज है संडे और सैटरडे नाइट कल नहीं, परसों वाली रात 12 बजे के बाद सैटरडे नाइट को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट का मैच था और एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ। एक चेंज किया था जब पेनल्टी शूट आउट हुआ, एक चेंज था, सिंपल चेंज था, और ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा था, उनके कोच को लग रहा था ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चेंज होगा, इस चेंज की वजह से ऑस्ट्रेलियन जो टीम है वो जीत जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो चेंज किया उसकी वजह से एक्चुअली में इजिप्ट को फायदा मिला और उस फायदे में इजिप्ट जीत गई, वो मैच इजिप्ट जीत गई। और फिर इसके बाद आप कॉर्निश ले लें, इसके बाद आप बाकी लोकेशन देख लें, हर जगह इजिप्ट का माहौल था यार, माहौल था। इवन कतर में अगर आप देखें कॉर्निश की रोड जो है वो बंद थी और वो फैंस के लिए, जो मुझे लग रहा था शायद, क्योंकि कोई ऐसी खास डिटेल तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा है कि जो मैच है वो मैच की वजह से या उनके फैन की वजह से ये मैच जो है हुआ और फिर रोक दिया गया है कुछ वक्त के लिए कि भाई आइए फैन मज़े करिए। मुझे ऐसी खास डिटेल तो नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा ही लगा। वेल साथ ही साथ एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है वो ये कि ये मैच इजिप्ट जो है जीत गया और ऑस्ट्रेलिया को उसने हरा दिया। गोलकीपर ने, दोनों ने, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया हो या इजिप्ट हो, दोनों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, एक एक के साथ ड्रॉ रहा। फिर इजिप्ट ऑस्ट्रेलिया का जब पेनल्टी शूट आउट हुआ, इजिप्ट ने 4 गोल मारे ताबड़तोड़, 4 गोल, और एक भी गोल उनका गोलकीपर यानी कि ऑस्ट्रेलिया का गोलकीपर नहीं रोक पाया, एक भी गोल। और माइंड यू, ये जो गोलकीपर था, ये गोलकीपर असल में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड था। अब बताइए फीफा वर्ल्ड कप राउंड 32 में, जो कि दलाज के स्टेडियम में हुआ, 3 जुलाई को यह हिस्टोरिक विक्ट्री इजिप्ट की हुई, तो एक गलती या एक चेंज ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इजिप्ट आसानी से जीत गया। हालांकि काफी बातें जो है मैंने इसी दौरान बता दी हैं, जिनको पता है उनको पता है, वो आसानी से जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे मैसेज करना है, 6622107। जल्दी से मैसेज करिए और एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे कि आज कौन कौन सा मैच है और कल के दिन भी क्या कुछ हुआ है। FM 107 पे सारी डिटेल यहां मिलेगी आपको, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार। आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: जी, समर स्पोर्ट्स में एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 1:14 और समर स्पोर्ट्स यानी कि गर्मी में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, कहाँ क्या कुछ चल रहा है, सारी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर टेस्ट क्रिकेट और बाकी क्रिकेट के बारे में भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज जो मैच है वो सबसे बड़ा मैच है और ये होने वाला है मेक्सिको में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे का जो मैच है इसमें एक यूनिक बात है। आज फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 में ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे का मैच, और नॉर्वे उन कुछ बहुत कम कंट्रीज में से है जो वर्ल्ड फुटबॉल में अनबीटन रही है हिस्टोरिकली ब्राज़ील के अगेंस्ट, यानी कि ब्राज़ील ने आज तक वर्ल्ड फुटबॉल में नॉर्वे को नहीं हराया, लेकिन नॉर्वे ने हराया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को है आज कि क्या ब्राज़ील आज नॉर्वे को हरा पाएगी। माइंड यू, ब्राज़ील बहुत बड़ी टीम है, बहुत ही लाजवाब टीम है, एक से बढ़कर एक स्टार है इसमें, और लेकिन नॉर्वे भी कोई हल्की थोड़ी है। अगर 16 यानी कि राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है तो खतरनाक ये टीम है। तो ब्राजील वर्सेस नॉर्वे ये आज देखने को मिलेगा और इसकी जो टाइमिंग है उसके बारे में आप लिख लीजिए, शाम को 4 बजे से ये जो है मैच शुरू होगा और ये मैच होगा मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में। उसके अलावा मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड का भी मैच है, शाम को 8 बजे से शुरू होगा 6 PM लोकल टाइम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और वेन्यू जो है इसका ये है मेक्सिको सिटी स्टाडियो अज़्टेका। नाम भी बड़ा लाजवाब होता है मेक्सिको का और मेक्सिको के लोग तो मुझे बहुत लाजवाब लगते थे जब 2022 में यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ तो मज़ा आया था। लेकिन मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड की जो मैच है इसमें सुनने को मिल रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं वगैरह होंगी, वेदर अच्छा नहीं है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फीफा ने ये कन्फर्म किया है कि लेट नाइट स्लॉट जो है वो अवेलेबल है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो वेदर का कोई ऐसा मसला आने को या देखने को नहीं मिलेगा। मेक्सिको वर्सेज इंग्लैंड का मैच पूरी तरह से ज़रूर होगा। और अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका के बारे में। ये मैच हो रहा है और ये मैच भी क्या लाजवाब चल रहा है भाई साहब। मैं अच्छा क्या होता है ना, कभी कभार थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो आया करती हैं, उन क्लिप्स को देखते हुए पता चल जाता है कि भाई ये जो श्रीलंका की टीम है ये बहुत स्ट्रांग हो गई है। लेकिन वेस्ट इंडीज भी कहीं पीछे नहीं है, उनकी टीम एक बार फिर से उभर के आ रही है। ऐसा लग रहा पुराने जमाने के बॉलर एक बार फिर से आ गए, तेज रफ्तार अच्छी खासी बाउंस के साथ। श्रीलंका ने लेकिन मैसिव टोटल दिया है वेस्ट इंडीज को और ये दूसरा मेन्स टेस्ट है और तीसरा दिन है, श्रीलंका ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है और 549 यानी कि 549 रन स्कोर किया है 9 विकेट के नुकसान पे और ब्रिलियंट मेडन टेस्ट सेंचुरी बनाई है, 188 रन बनाया है ओपनर लाहिरू उदारा ने। वेस्ट इंडीज को बहुत ही ज़्यादा अभी होता है ना कि अरे पहाड़ चढ़ना है भाई साहब अभी, और चढ़ना भी नहीं है चलना है, चलते हुए चढ़ना है, तो अभी बहुत टाइम आपको लगेगा और बहुत थकान होने वाली है। यही वेस्ट इंडीज़ के साथ होने वाला है। दूसरा दिन है, 491 रन उनको बनाना है और बहुत दूर है, माइलस्टोन मतलब एक तरह से रख दिया है श्रीलंका ने। अगर हम बात करें टोटल कितने ओवर में 549 रन बनाए, तो श्रीलंका ने 139.3 ओवर में 549 रन बनाए, 188 रन लाहिरू उदारा ने बनाया, सोनल दिनोशा ने बनाया 92 और कामिंदु मेंदिस ने बनाया 84.84। जो टॉप बोलर्स थे शमार जोसेफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आग उगलते हुए नजर आए थे, 98 रन पर 2 विकेट इन्होंने लिए देकर, और जेडन सीलिस इन्होंने भी 98 रन देकर 2 विकेट लिए। वेस्ट इंडीज की फर्स्ट इनिंग 58/1 है और अभी 400 से कहीं ज्यादा रन जो है इनको बनाना है। बैटिंग पे जॉन कैम्बल हैं 31 रन और केविन हॉग हैं 6 रन पर। आसिता फर्नांडो जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं उन्होंने 1 विकेट ले लिया है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। वेस्ट इंडीज ऑल दो इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से ऊपर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सेकंड टेस्ट में ये 1-1 हो जाएगा और 2 ही टेस्ट खेले जा रहे हैं। फिर उसके बाद T20 सीरीज की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज 2-1 से जीत गई थी, ODI में श्रीलंका 1-0 से जीत गई थी, क्योंकि सेकेंड ODI में कोई रिजल्ट नहीं था, मैच अबेंडेंड हो गया था। पहला जो ODI था उसमें श्रीलंका 41 रन से जीत गया, सेकेंड अबेंडेंड हो गया और तीसरा भी बगैर किसी एक बॉल को फेंके हुए ये मुकम्मल हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमने ली FM 107 पे वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के मैच के लिए और फिर हमने फुटबॉल के बारे में भी बात कर ली। अब एक और मैच है यार, ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है ये कौन सा मैच है? ये है वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप के बारे में अपन बात ना करें ऐसे कैसे हो सकता है। ये वर्ल्ड कप मैच भी बड़ा लाजवाब होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये जो दो टीम है ना, एक तो राइवलरी इन दोनों टीमों की है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी थी ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी राइवलरी है। तो ये जो दो टीम है, ये दो टीम आमने सामने भिड़ने वाली है FM 107 पे। जरा अपडेट ले लेते हैं इनके बारे में भी।

0: सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: क्रिकेट का ये क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा और यूनिक इवेंट है ये। ये पहली बार हो रहा है कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक स्टेडियम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड यानी कि लंदन में खेला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि मेंस में ऑस्ट्रेलिया और जब इंग्लैंड का मैच होता है एशेज कितना ज़्यादा फेमस है, तो जब विमेंस का मैच हो तो भी ऐसे ही होना चाहिए। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल, बड़े बड़े यूएसए के चैनल जो हैं आज इसे कवर करने वाले हैं। लोकल टाइम 3:30 बजे से ये शुरू होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। और एक और यूनिक बात है जो बहुत कम होता है ऐसा, जो मैच देखने वाले लोग हैं इस मैच की सारी टिकट्स उन्होंने खरीद ली हैं। इस मैच की सारी टिकट्स बहुत पहले ही बिक चुकी हैं, सोल्ड आउट हो चुकी हैं, स्टेडियम फुल होगा, जो विमेंस क्रिकेट की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को भी दिखाता है। और ये ग्रेटेस्ट राइवलरी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एशेज का फ्लेवर है। क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी सबसे पुरानी और इंटेंस है। वर्ल्ड कप फाइनल में इनका आमना सामना, मैच का एक्साइटमेंट डबल होने वाला है। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन के बारे में तो बात करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, और इंग्लैंड अपने होम क्राउड के सामने उन्हें हराकर ट्रॉफी जीतना ये भी आसान नहीं होगा। तो इंग्लैंड भी उतनी ही मजबूत है। ग्लोबल मीडिया कवरेज होगा आज, तो मतलब यूएसए भी, यूएसए की जो बड़े चैनल्स हैं वो भी इसे आज कवर करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, और क्या कुछ होगा ये आज पता चल ही जाएगा। वेल, शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था और ये सवाल बड़ा ही आसान था। सवाल सिंपल सा कि इजिप्ट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो सैटरडे की शाम रात को हुआ, यानी कि परसों ऐसा समझिए कि वो फ्राइडे रात को 12 बजे के बाद, वैसे तो कल हो गया लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ फ्राइडे, तो आसान लफ्जों में फ्राइडे रात 12 बजे के बाद जो मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट का, ऐसी क्या गलती करी थी, ऐसा क्या चेंज किया था ऑस्ट्रेलिया ने जिसके वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम हार भी गई, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, और ये मिस्टेक क्या थी। वेल, एक जवाब बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा था कि शायद ये आसान होगा लेकिन ये एक्चुअली में मुश्किल है। अजमल भाई इकलौते हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, क्या बात है अजमल भाई। अजमल भाई ने बताया है कि उन्होंने कीपर यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कीपर चेंज कर दिया था, और ऐसा करना बहुत ही अजीब है क्योंकि हमारे क्रिकेट में ना एक कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा जब ड्रॉ होता है ना, एक एक से ड्रॉ हो जाता है मैच, कि एक एक से कह रहा हूँ मैं फुटबॉल दिमाग में, जब क्रिकेट में मैच ड्रॉ हो जाता है, कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, जिसने सबसे ज़्यादा रन उस मैच में बनाए हैं ना, उसको भेजो, और उसकी बॉडी वार्म अप होती है क्योंकि उसको बॉल भी अच्छा दिख रहा है, उसने उस मैच में स्कोर भी किया है, उसको पिच का भी आइडिया है। आपने कभी देखा है कि हार्दिक पांड्या ऊपर चला गया हो ओपनिंग पेयर में और जबकि मैच ड्रॉ रहा हो? नहीं हुआ ना। आपने लेकिन ये ज़रूर देखा होगा कि केएल राहुल गए हों, जो कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं, केएल राहुल गए हों, और क्योंकि केएल राहुल भी कभी कभार बहुत ही तगड़ा खेलते हैं, और रोहित शर्मा, ये दो जाते हैं क्योंकि ये हिटर भी अच्छे हैं, ओपनर पेयर भी हैं, और फिर थोड़ा लेट खेलते हैं। लेकिन बहुत रेयर आपने देखा होगा, मुझे लगता है बहुत कम ही देखा होगा कि ड्रॉ होने के बाद विराट कोहली गए, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्रीज पे, और उनका उनका बैटिंग स्टाइल हिटिंग का है भी नहीं, अनलेस के अगर वो आईपीएल खेल रहे हैं ऑब्वियसली, आईपीएल में तो वो ताबड़तोड़ खेलते हैं। लेकिन पहली बॉल से मारने का हिसाब जो है ना, वो ऐसे प्लेयर्स के पास होता है जो थोड़ा पुरानी बॉल से खेलते हैं, लेकिन उनको ओपनिंग में नहीं भेजा जाता तब जब मैच ड्रॉ हुआ हो। मिसाल के तौर पे हार्दिक को ओपनिंग में नहीं भेजा जाता जब मैच ड्रॉ हुआ हो कि जाओ तुम दो ओपन करो, तो ऐसे ही फुटबॉल में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कोचेस के दिमाग में क्या चला कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, माना कि बहुत ही टैलेंटेड बंदा था वो, तो एक्सपीरियंस कीपर को लेकर आए, और जो कीपर खेल रहा था पूरे मैच में, जिसकी बॉडी वार्म अप थी, उस कीपर को हटा दिया इजिप्ट के मैच में, और फिर जो बैठा हुआ कीपर था उसको लाकर खड़ा कर दिया कि ये सारे के सारे गोल रोक लेगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड है। और गेस व्हाट, क्या हुआ कि एक भी गोल ऑस्ट्रेलिया के उस एक्सपीरियंस्ड कीपर ने नहीं रोका।

यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। ये था आज का समर स्पोर्ट्स। और आप किस स्पोर्ट के बारे में सुनना चाहते हैं? अगर आपको टेनिस पसंद है तो उसकी भी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको खो खो कबड्डी पसंद है तो वो भी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जो सबसे मेन, क्योंकि वक्त जो है बड़ा मुख्तसर सा होता है, तो मेन जितने भी खेल चल रहे हैं, जैसे कि फीफा चल रहा है, अभी फीफा की अपडेट आपको 19 तारीख तक मिलती रहेगी। फिर क्रिकेट के जितने भी अपडेट हैं वो भी आपको मिलती रहेगी। इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है उसकी अपडेट तो वैसे आपको कल मिल ही गई होगी। ऑब्वियसली इंडिया जो है वो हार गई, अच्छा खासा स्कोर किया उसके बाद भी वो हार गई, तो इतना बेहतरीन या इतना स्ट्रॉन्ग उनका हिसाब किताब नहीं था। खैर कोई बात नहीं, इसकी अपडेट भी आपको वक्त वक्त पे मिलती रहेगी। लेकिन आज कुछ ज़रूरी बातें हमने करी, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस श्रीलंका की क्रिकेट के बारे में बात करी, और उसके अलावा आज जो मैच होने वाला है फुटबॉल का, फीफा वर्ल्ड कप राउंड 16 का, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड का मैच, ये सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिली FM 107 पे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे परसों इसी शो में दोपहर 1 बजे, और आज आपसे मुलाकात होगी शाम 4 बजे The Request शो में। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Time Check. अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 1:31, यानी इट्स टाइम फॉर।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: तो हाँ जी, हफ्ते का नया दिन शुरू हो चुका है, क्या हाल चाल है। मतलब ये कि सुबह का वक्त जा चुका है, अब आफ्टरनून का टाइम है। आई एम वेरी सर्टेन कि आप सब थोड़ा सेटल हो चुके होंगे और अब ये सही वक्त है जहां पर आपको मिलने वाला है हफ्ते के पहले दिन का एक नया नवेला चैलेंज। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, कैसा गुजरा आपका वीकेंड। हाँ, आई एम वेरी सर्टेन गर्मी बहुत तेज़ है लेकिन आपने फिर भी जो हमारे कतर में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका मज़ा लिया होगा। तो हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया। 666-22-107 इज़ आर नंबर, 666-22-107 अपने नाम के साथ हमसे ज़रूर शेयर करें और फिर मैं भी बताऊँगी आगे कि हमने क्या क्या किया। बट फिलहाल के लिए चैलेंज लेने का टाइम आने वाला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आज आप कहाँ पर फंसने वाले हैं? आज आप होंगे एकदम नीले नीले आसमान के नीचे और नीले नीले समुंदर के ऊपर। एक घोस्ट शिप में आज आपकी एंट्री होने वाली है। तो इमेजिन कीजिए अगर आप वहाँ फंस जाएंगे और कोई हेल्प का साधन नहीं होगा तो फिर कैसे कैसे एस्केप करेंगे। बी प्रिपेयर, ठीक है। चाहे आप करक एंजॉय करें, जूसेस एंजॉय करें, कुछ लंच करना है तो कर ले, कुछ भी करना है करें, बिकॉज इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपके दिमाग को आपको फुल ऑन दौड़ाना पड़ेगा। सो इफ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज, बस आ जाओ और हमारे रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा लो, बने रहो हमारे साथ। 666-22-107 ये नंबर याद कर लो क्योंकि इसी के जरिए आपका मेरा जो रब्ता है वो कायम रहने वाला है। और फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक, एंजॉय द ब्यूटीफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एफएम 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: So yes, my desi audience, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है on FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता एंड इट्स टाइम फॉर आज के एस्केप रूम की सिचुएशन। उफ, बड़ी कमाल की है। देखिए, वीकेंड आपने फुल ऑन एंजॉय किया और आप उसके बाद रात में गहरी नींद में सोए। भाई, नींद में बड़े खूबसूरत सपने आपको आ रहे थे और सडनली कुछ ब्रेक हुआ, ठीक है? और जब ब्रेक हुआ आपकी आंखें खुली एकदम से कि क्या हुआ, तो आपने अपने आप को देखा एक बड़े ही से ग्रैंड बॉल रूम में। चारों तरफ 1920s का वही लग्जरी ओशन लाइनर का माहौल। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और एक आवाज आपको कहती है कि वेलकम टू द घोस्ट शिप ऑफ द सरगासो सी। सरगासो सी, इसका नाम कभी सुना है आपने? ये दुनिया का एक लौता समुंदर है, द ओनली सी जहां पर कोस्ट और शोर लाइन दोनों ही नहीं है, ठीक है? अब यहां पर आप एक शिप के अंदर हैं।

माहौल बड़ा खूबसूरत है, पार्टी का माहौल है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अब आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। मेज पर लजीज खाना लगा हुआ है, पर पूरे जहाज में एक शख्स खाने वाला नहीं है। आपने थोड़ी सी अपनी हिम्मत को बटोरा। बाहर आप देखने के लिए गए तो आपने देखा कि बहुत ही घना कोहरा, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप नमक का स्वाद चख सकते हैं। आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं डेविल्स ट्रायंगल के बीच, जहां पर जितने भी कंपसेस है ना, जो कि हमें रास्ता दिखाते हैं, वो पूरे क्रेजी हो चुके हैं। कोई भी सुई कहीं थम नहीं रही। और अगर हमें यहां से निकलना है तो इंजन स्टार्ट करना होगा, जो कि भाई बंद है। तो आपको कैप्टन का मास्टर लॉग ढूंढना होगा। जहाज ऐसे करा रहा है, इट्स लाइक ऐसे, मतलब आवाजें निकाल रहा है जैसे उसमें जान हो। तभी आप वापस डिनर टेबल की तरफ गए। आप बैठे, आपने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए। एंड यू सॉ कि डिनर प्लेट के नीचे एक गीला सा कागज और उस पर क्लू नंबर 1 लिखा हुआ है। देखिए, ध्यान से सुनिए क्लू नंबर 1 क्या है। मैं एक ऐसा समुंदर हूं जिसका कोई किनारा नहीं। मैं सी वीड से बना एक सुनहरा रेगिस्तान हूं, जहां जहाज हमेशा की नींद सोने आते हैं। मेरा नाम वही है जो समुंदर की उलझी हुई घास का है। सोचिए जनाब, इसका जवाब मैंने आज के एपिसोड के, आज की सिचुएशन की शुरुआत में दिया है। इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। ये कौन सा सी है, कौन सा समुंदर है, क्या नाम क्या है इसका? फिर से क्लू नंबर 1 दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं एक ऐसा समुंदर हूँ जिसका कोई किनारा नहीं। मैं सीवीड से बना एक सुनहरा रेगिस्तान हूँ, जहाँ जहाज हमेशा की नींद सोने आते हैं। मेरा नाम वही है जो समुंदर की उलझी हुई घास का होता है। कमॉन, टेल द नेम, उस समुंदर का नाम बताइए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और इस क्लू नंबर 1 को सॉल्व करके लेवल 1 पार कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपके जवाब मुझे जल्द से जल्द और सही मिल जाए। और अभी थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि हम फंस गए घोस्ट शिप में। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: हाँ जी, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम में आज आप कैद है एक घोस्ट शिप पर जो कि सरगासो सी पर है।

हाँ अभी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है ये शिप आपका। ये कैसे सी में आज आप फंस गए हैं जिसकी ना तो कोई कोस्ट लाइन है ना शोर लाइन है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, जब आप गहरी नींद में थे आपकी आंख खुली तो आपके सामने एक ग्रैंड बॉल रूम है और चारों तरफ 1920s का वही लग्जरी ओशन लाइनर है, माहौल बड़ा खूबसूरत है। और आप जब आप होश में आए, मतलब आंखें खुली और आपने ये सब देखा, तो आपको समझ नहीं आया आप कहाँ हैं। जवाब आपको मिल ही गया कि आप एक घोस्ट शिप पर हैं और यहाँ लजीज खाना है, पार्टी का माहौल है, लेकिन एक भी शख्स नहीं है। आपको डर भी लग रहा है, आपने बाहर जाके देखने की कोशिश की तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा क्योंकि घना कोहरा है। नमक का स्वाद हवा में है, आप समझ नहीं रहे हैं। अब आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं डेविल्स ट्रायंगल के बीच जहां कंपस काम नहीं करते। अब यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है भाई, हमको इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, कैप्टन का मास्टर लॉक ढूंढना पड़ेगा, ये सब काम करने हैं। तो इन्हीं सब को करने के लिए सबसे पहला क्लू आपको मिला कि चलो इसका जवाब दो और आगे बढ़ो। तो पहला क्लू था कि मैं एक ऐसा समुंदर हूं जिसका कोई किनारा नहीं, मैं सीवीड से बना एक सुनहरा रेगिस्तान हूं जहां जहाज हमेशा की नींद सोने आते हैं। मेरा नाम वही है जो समुंदर की उलझी हुई घास का है। ओहो, बड़ा ही खौफनाक समुंदर है, इसका नाम क्या हो सकता है। अच्छा, हमारे लिसनर्स अलग अलग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने बरमूडा ट्रायंगल लिखा है, किसी ने, ज़्यादातर लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल लिखा है, किसी ने ग्रेवयार्ड लिख दिया है ओके, और कुछ लोगों ने सरगासो सी लिखा है। देखिए, मैंने जब आपसे ये क्लू पूछा था तो कहा था कि इसका जवाब हमारे एपिसोड की सिचुएशन की शुरुआत में आपको मिल जाएगा, एंड द राइट आंसर इज सरगासो सी। भाई जोरदार तालियां उन सबके लिए जिन्होंने ये सही जवाब दिया है। देखिए, एक ऐसा समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, ना कोई कोस्ट है, ना कोई शोर लाइन। मैं आपको कह रही थी पर आपने ध्यान नहीं दिया कोई नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कभी कभी चैलेंज ऐसे होने भी चाहिए। तो जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम हैं अली, रिजवान अख्तर, मोहम्मद यूसुफ खान एंड फातिमा यूसुफ। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। वेल, जैसे ही आपने सही जवाब दिया आप भागते हुए ब्रिज पर पहुंचे, पर व्हील अभी लॉक्ड है, आप कुछ और कर नहीं पा रहे। कोने में एक पुराना रेडियो रखा हुआ है जो कि अजीब सी शॉर्ट एंड लॉन्ग बीप्स निकाल रहा है। अब उसके बगल में एक कागज है, आपने उसे उठाया और वहां पर आपका क्लू नंबर टू लिखा हुआ है। देखिए, आज थोड़ा सा टेक्निकल है हमारा जो एपिसोड, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा। हमारे कुछ लिसनर्स कह रहे हैं कि क्या हम इंटरनेट पे चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बेशक कीजिए, जवाब ढूंढिए, कैसे भी आपको मौका दिया जा रहा है। सो क्लू नंबर टू इज, मेरी कोई वॉइस नहीं है, मतलब कोई आवाज़ नहीं है, पर मैं डॉट्स और डैशेस में बात करता हूँ। ओके, मैं तारों यानी वायर्स से पैदा हुआ और डूबते हुए लोगों की पुकार मुझ में बसी है। इस खुफिया जुबान, सीक्रेट लैंग्वेज का नाम क्या है? कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट इट। इस वक्त हम एक शिप पर हैं, ठीक है। मेरी कोई वॉइस नहीं है पर मैं डॉट्स और डैशेस में बात करता हूँ। ऐसी कौन सी सीक्रेट लैंग्वेज है जहाँ पर डॉट्स और डैशेस का इस्तेमाल होता है? कम ऑन, थिंक थिंक थिंक एंड थिंक, थोड़ा सोचिए क्या सही जवाब हो सकता है। मेरी कोई वॉइस नहीं पर मैं डॉट्स और डैशेस में बात करता हूँ। मैं तारों यानी कि वायर्स से पैदा हुआ और डूबते हुए लोगों की पुकार मुझ में बसी हुई है। इस खुफिया जुबान का नाम क्या है? आपको बताना है 6622107 पर, 6622107 पर। कम ऑन, यू हैव टू गिव द राइट आंसर। आप कर सकते हैं, अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए और इस सेकंड लेवल को पार कीजिए। डिफिकल्ट हो रहा है बट आई कैन सी कि हमारे लिसनर्स सही जवाब देना शुरू कर चुके हैं। कुछ हमारे लिसनर्स एकदम कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार जैसे सुन तो लो, ध्यान से सुनो, आई एम सर्टन कि आप सही जवाब दोगे।
मेरी कोई वॉइस नहीं है पर मैं डॉट्स और डैशेस में बात करता हूँ। मैं तारों यानी कि वायर्स से पैदा हुआ और डूबते हुए लोगों की पुकार मुझ में बसी है। इस खुफिया जुबान का नाम बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि वक्त भागे जा रहा है और हमें इस सरगैसो सी से बाहर निकलना है। फिलहाल सोचने के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक, तो सोचिए समझिए और वापस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज कर लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी फरमीता। इस वक्त हमारे सूटे हुए दोपहर के 2:02, मेक अ विश ताकि आज आप इस सरगासोसी पर जो घोस्ट चिप है उससे बाहर निकल सके।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: सो यस माय देसी ऑडियंस, आर यू रेडी चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए? वेल, सरगासो सी में आज आप अटक गए हैं। घोस्ट शिप है जहाँ पर बिल्कुल पार्टी का माहौल है, डाइनिंग टेबल पर बड़ा ही लजीज खाना सजा है, लेकिन एक भी बंदा उस शिप में दिखाई नहीं दे रहा सिवाय आपके। आपको अब इस जगह से एस्केप करना है। अब दिक्कत ये है कि शिप चल नहीं रही है, बंद है, अब उसका इंजन स्टार्ट करना है, कैप्टन का मास्टर लॉक ढूंढना है, मतलब काम बहुत ज़्यादा है आपको, और ये काम तभी पूरे होंगे जब आप 3 क्लूज को सॉल्व करेंगे। पहले क्लू का आप सही जवाब दे चुके हैं, दैट वाज सरगासो सी। सेकंड क्लू आपको मिला वो ये था कि मेरी कोई वॉइस नहीं पर मैं डॉट्स और डैशेस में बात करता हूँ, मैं तारों यानी वायर्स से पैदा हुआ हूँ और डूबते हुए लोगों की पुकार मुझ में बसी है। भाई एक खुफिया जुबान है ये, और इसका नाम हमें गैस करना था कि इसका नाम क्या है। तो हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं कि इट्स अ मशीन, कुछ ने लिखा इट्स अ मैप, किसी ने हिस्ट्री तक लिख दिया है। वेल, सही जवाब इज मोर्स कोड। यस, उन्होंने भी सही जवाब दिया है, पीट थपथपाल भाई, सही जवाब इज मोर्स कोड। एक ऐसी भाषा जो डॉट्स और डैशेस से बनी हुई है। हाँ जी, तो जिन्होंने सही जवाब दिया उनके नाम है अली, रिजवान, जैद, मोहम्मद बशारत, और कौन है, फातिमा यूसुफ है, और महफूज है। हाँ जी, यही हमारे लिसनर्स हैं जो सही जवाब दे पाए हैं। लगता है आज चैलेंज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन कोई नहीं, हर एक चैलेंज को सॉल्व के बाद हम कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, है कि नहीं? और कुछ नया सीखा हमने, देखो मोर्स कोड जिन्हें नहीं पता था। अब जैसे ही आपने क्लू नंबर 2 सॉल्व किया, रेडियो से एक आखिरी सीक्वेंस निकलता है, 3 डॉट्स 3 डैशेस 3 डॉट्स, ठीक है? और इंजन को फिर से जिंदा करने के लिए बस अब हमको आखिरी क्लू को सुलझाना है। अब रास्ता आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्या करें? चलें, आप इंजन के पास पहुंचे हैं, वहां पर आपको क्लू नंबर 3 दिख गया है। अब क्लू नंबर 3 क्या है इस पर आपको गौर

और फरमाना पड़ेगा. इट्स द सिंपलेस्ट क्लू एवर. और अगर आपने इसे सॉल्व किया तो लेवल 3 पार कर लेंगे, आप सीधा एग्जिट कर पाएंगे आज की इस खौफनाक सिचुएशन से. तो क्लू नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. मैं वो 3 लेटर्स का वर्ड हूँ जो हर डूबते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद होता है. जब कोई मुसीबत में होता है तो मुझसे बड़ा कोई सिग्नल नहीं होता. ताइए मैं क्या हूँ, एक बार फिर से दोहराती हूँ. मैं वो 3 लेटर्स का वर्ड हूँ जो हर डूबते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद होता है. जब कोई मुसीबत में होता है तो मुझसे बड़ा कोई सिग्नल नहीं होता. बताइए मैं क्या हूँ. और ऑप्शंस हैं आपके लिए एंड ENDED, हेल्प HELP, SOS. यस, अब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कीजिए और सही जवाब दीजिए क्लू नंबर 3 को सुलझाइए. ठीक है, और अभी के लिए थोड़ा सा आपके मूड को भी हम रिलैक्स करते हैं अच्छे अच्छे म्यूजिक के साथ. एज वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग अरिजीत की आवाज में, झूमे जो पठान. लेट्स एंजॉय. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। जनाब सिचुएशन गंभीर होती जा रही है। देखिए आज हम एक घोस्ट शिप में कैद हो गए, सरगासो सी, एक ऐसा समंदर जिसकी ना तो कोस्ट है ना शोर लाइंस हैं, और अब हमें यहाँ से निकलना है। दिक्कत की बात यह है कि जिस शिप में हम कैद है वो शिप का इंजन ही बंद है, भाई इंजन चालू होगा तो कहीं तो पहुँचेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको 3 लेवल्स को पार करना है और आखिरी लेवल आपका एस्केप होगा जिसके लिए आपको क्लूज मिले। सो नंबर 1 क्लू आपने सुलझाया जिसका सही जवाब था सरगासो सी, दूसरा क्लू भी आपने सॉल्व किया दैट वाज मोर्स कोड, और तीसरा क्लू यहाँ पर आके हमारी गाड़ी अटकी हुई है। मैं वो 3 लेटर्स का वर्ड हूँ जो हर डूबते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद होता है। गौर फरमाइए, क्लू नंबर 3 फिर से दोहरा रही हूँ स्पेशली जो हमारे लिसनर्स जिन्होंने मिस कर दिया है। मैं वो 3 लेटर्स का वर्ड हूँ जो हर डूबते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद होता है। जब कोई मुसीबत में होता है ना तो मुझसे बड़ा कोई सिग्नल नहीं होता, बताइए मैं क्या हूँ। और आपको मैंने ऑप्शंस भी दिए, मतलब इससे ज़्यादा इजी क्या करूँ। ऑप्शंस मैंने आपको दिए END दैट इज एंड, HELP दैट इज हेल्प, SOS यानी सेव आवर सोल्स। कम ऑन टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। 666-22-107 इज आर नंबर, 666-22-107 इस पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। ये आखिरी क्लू हमें सॉल्व करना ही है, इससे ज़्यादा सिंपल क्लू कोई नहीं हो सकता। एंड आई कैन सी हमारे व्हाट्सएप स्क्रीन पर जवाब आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ जवाब डिफरेंट भी आ रहे हैं। देखिए मैं अब इसके आगे

आगे कुछ नहीं कहने वाली हूँ. मैं एक बार फिर से आपके क्लू नंबर 3 आपके लिए दोहराऊंगी एंड यू हैव टू लिसन टू इट केयरफुली. मैं वो 3 लेटर्स का वर्ड हूँ जो हर डूबते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद है. जब कोई मुसीबत में होता है तो मुझसे बड़ा सिग्नल कोई नहीं होता, बताइए मैं क्या हूँ. एंड ऑप्शंस आर एंड हेल्प इन SOS. नाउ टेल मी द राइट आंसर. 666-22107 पर अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए और इस आखिरी लेवल को पार कीजिए. क्लू नंबर 3 वी नीड टू सॉल्व ताकि इस घोस्ट शिप का इंजन स्टार्ट हो और हम आज एस्केप कर पाए. ये बताओ एस्केप करना है कि नहीं करना? करना है ना, तो जल्दी से जवाब दे दो. और अभी के लिए मैं आपको सोचने के लिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक दे देती हूँ. सभी प्राग हार्डी संधू का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन है भाई. एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखे।
1: वेलकम वेलकम वेलकम एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है जहां पर हमें दिमाग के घोड़े बड़ी जोरों से दौड़ाने थे और क्लू नंबर 3 को सॉल्व करना था। देखिए आज एक बेहद खूबसूरत लेकिन एक घोस्ट शिप में हम कैद हो गए जहां पर पार्टी का माहौल है लेकिन एक भी शख्स नहीं है। ये पार्टी किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, लेकिन हम इसे एंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे। अब शिप हर घना कोहरा था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिप का इंजन बंद, मतलब करे तो बंदा करे क्या। दूर दूर तक कोई भी नहीं हमारी मदद करने के लिए सिवाय हमारा दिमाग। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए 3 क्लूज का सही जवाब हमें देना था। पहला क्लू हमने सॉल्व किया, द राइट आंसर वाज सर गैसोसी। सेकंड का मॉर्स कोड और थर्ड क्लू ये ही हमें सुलझाना था। अभी थर्ड क्लू था हमारे लिए कि मैं वो 3 लेटर्स का वर्ड हूँ जो हर डूबते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद होता है। जब कोई मुसीबत में होता है तो मुझसे बड़ा कोई सिग्नल नहीं होता, बताओ मैं क्या हूँ। और ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए कि एंड हेल्प एंड SOS, ठीक है। और हमारे कुछ लिसनर्स ने इन ऑप्शंस के अलावा भी कुछ जवाब दे दिए। वैसे वक्त भागते जा रहा है तो हम स्ट्रेटली सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे। अब अगर आपने कहा सेव आर सोल्स SOS तो बिल्कुल सही कहा। और इसके कहते ही इंजन स्टार्ट हो गया। भाई सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजा दी जाए हमारे उन सारे लिसनर्स ने जिन्होंने सही जवाब दिए। और सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम है अली, फातिमा यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, हिशाम, महफूज, एहसान, इशाक, इकरम, नासिर और मोहम्मद बशारत अकबर। बात है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि सही जवाब दिया जैसे ही आपने। इस घोस्ट शिप का इंजन स्टार्ट हो गया। और यस, अब आप की शिप चल दी और आप सीधा जिंदा लोगों की दुनिया में वापस आ गए। हाँ, ये जो डेविल्स ट्रायंगल था उसे आपने पार कर लिया है। सो कंग्रेचुलेशंस, मुबारका मुबारका। वेल, जो भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ थे और जो सही जवाब नहीं दे पाए, देखिए कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है। एस्केप रूम में बस दिमाग लगाना है और ये जानना है कि किस चीज़ से हम बच सकते हैं और अगर कौन सा जवाब देंगे तो हम हर एक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे लिसनर्स ने प्रूफ कर दिया कि भाई दिमाग से बड़ी ताकत और कोई नहीं। घोस्ट शिप से अब आप बाहर निकल के असलियत में, असली दुनिया में आ चुके हैं। नाउ फीलिंग वाओ, कैसा लग रहा है। हाँ, भले इस वक्त हमारे मेरी टाइम हीरो कौन है, आज के हमारे मेरी टाइम हीरो कौन हो सकते हैं? और उनका नाम है महफूज। भाई मुबारका मुबारका, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, आज आप हमारे मेरी टाइम हीरो बन चुके हैं और कमाल कर दिया आपने एस्केप रूम की सिचुएशन।

से बाहर निकल कर प्रूव कर दिया कि दिमाग से बड़ी ताकत इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है. क्यों सही कहा ना? वेल, कल की सिचुएशन बड़ी कमाल की हो सकती है. कल सब कुछ

जाइए अपनी आरजे मीता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिए, और अभी के लिए कहना तो बनता है हमें राई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। भाई रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि विशाल डाडलानी, सुनिधि चौहान आ चुके हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: 2030.
1: Welcome to our segment called Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया.
0: One step to 2030.
1: आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कल्चर मीट्स टेक्नोलॉजी. देखिए, हर सोसाइटी की ना अपनी पहचान होती है, उसकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस. लेकिन जब टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही हो तो एक फियर भी आ जाता है. क्या हम अपने कल्चर्स को खो रहे हैं या ये ट्रेडिशंस धुंधले पड़ रहे हैं? आज इस टॉपिक के थ्रू हम कोशिश करेंगे इस बैलेंस के बारे में बात करें. क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे फ्यूचर के साथ जोड़ भी तो सकते हैं? देखिए, आजकल

0: विजिट करने की जगह नहीं है, अब वहां एआई और वर्चुअल रियलिटी यूज होती है, जहां आप हिस्ट्री को फील कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप एक ट्रेडिशनल कतरी विलेज को वीआर के जरिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक पावरफुल तरीका है कल्चर को जिंदा रखने का। अरबिक लैंग्वेज भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। डिजिटल टूल्स और एआई एप्स के जरिए लैंग्वेजेस को या लैंग्वेज को प्रिजर्व और प्रमोट किया जा रहा है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा है। यूथ का रोल यहाँ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नौजवान सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने कल्चर को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, चाहे इंस्टा के थ्रू हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो। कल्चरल स्टोरीज एक नया ट्रेंड बन रही हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो और कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाए तो आइडेंटिटी वीक हो सकती है। इसीलिए तो बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे कतर जैसे मुल्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस मुल्क की खूबसूरती ये है, यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्न कस्टम्स को साथ में एक साथ एम्बेड करके लेकर चलना जाता है। ये टॉपिक हमारे यहाँ इस मुल्क के हवाले से और भी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी। देखिए, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन दिखा सकते हैं आज और कल का, एक ट्रेडिशनल लाइफ और एक डिजिटल लाइफ, या फिर एक यंग क्रिएटर को हाईलाइट किया जा सकता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए कल्चर को प्रमोट कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल है डिजिटल म्यूजियम्स, एआई स्टोरी टेलिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी एग्जीबिशंस जो लोगों को एंगेज करती हैं। एंड मैसेज, आई थिंक एंड मैसेज क्लियर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हाँ टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। अगर सही यूज हो तो ये कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है, उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं या अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बनाएं, क्योंकि अगर पहचान ही मिट जाएगी, खो जाएगी, तो ऐसे में हमारा फ्यूचर शायद अंधेरे में हो, है ना। चलिए जी, अभी उजाले की तरफ आ जाते हैं, मेरा मतलब है जाने की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपसे ले रही हूँ यहाँ पर इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए एफएम 107। और हाँ, शकीब अहमद और नाजिया हम दोनों को दुआ में भी याद रखिए। अपना ख्याल रखिए, 107 के साथ जुड़े रहिए, कहते हुए दिल से दी सी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक को बहुत अहमियत दी गई है। एक अच्छा पड़ोसी वो होता है जो दूसरों के सुकून का ख्याल रखता है और हर मुमकिन मदद करता है। आज की जिंदगी में लोग अपने पड़ोसियों को मुश्किल से जानते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रखें। छोटी छोटी बातें जैसे सलाम करना, ख्याल रखना या किसी मुश्किल में मदद करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। आज का अमल ये है कि अपने पड़ोसी से अच्छे तरीके से मिले, उनका हाल पूछे या किसी भी छोटी सी चीज में उनकी मदद करें। ये रवैया सोसाइटी में सुकून और भरोसा पैदा करता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कल्चर मीट्स टेक्नोलॉजी। देखिए, हर सोसाइटी की ना अपनी पहचान होती है, उसकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस। लेकिन जब टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही हो तो एक फियर भी आ जाता है। क्या हम अपने कल्चर्स को खो रहे हैं या ये ट्रेडिशंस धुंधले पड़ रहे हैं? आज इस टॉपिक के थ्रू हम कोशिश करेंगे इस बैलेंस के बारे में बात करें। क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे फ्यूचर के साथ जोड़ भी तो सकते हैं? देखिए, आजकल म्यूजियम्स सिर्फ विजिट करने की जगह नहीं है, अब वहाँ AI और वर्चुअल रियलिटी यूज होती है, जहाँ आप हिस्ट्री को फील कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप एक ट्रेडिशनल कतरी विलेज को VR के जरिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक पावरफुल तरीका है कल्चर को जिंदा रखने का। अरबिक लैंग्वेज भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। डिजिटल टूल्स और AI एप्स के जरिए लैंग्वेजेस को या लैंग्वेज को प्रिजर्व और प्रमोट किया जा रहा है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा है। यूथ का रोल यहाँ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नौजवान सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने कल्चर को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, फिर चाहे इंस्टा के थ्रू हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो। कल्चरल स्टोरीज एक नया ट्रेंड बन रही हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो और कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाए तो आइडेंटिटी वीक हो सकती है। इसीलिए तो बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे कतर जैसे मुल्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस मुल्क की खूबसूरती ये है, यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्न कस्टम्स को साथ में एक साथ एम्बेड करके लेकर चलना जाता है। ये टॉपिक हमारे यहाँ इस मुल्क के हवाले से और भी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी। देखिए, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन दिखा सकते हैं आज और कल का, एक ट्रेडिशनल लाइफ और एक डिजिटल लाइफ, या फिर एक यंग क्रिएटर को हाईलाइट किया जा सकता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए कल्चर को प्रमोट कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल है डिजिटल म्यूजियम्स, AI स्टोरी टेलिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी एग्जीबिशंस जो लोगों को एंगेज करती हैं। एंड मैसेज क्लियर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। अगर सही यूज हो तो ये कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है, उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं या अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बना रहे हैं? इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बनाएं, क्योंकि अगर पहचान ही मिट जाएगी, खो जाएगी, तो तो ऐसे में हमारा फ्यूचर शायद अंधेरे में हो, है ना? चलिए जी, अभी उजाले की तरफ आ जाते हैं, मेरा मतलब है जाने की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपसे ले रही हूँ यहाँ पर इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107, और हाँ, शकीब अहमद और नाजिया हम दोनों को दुआ में भी याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, 107 के साथ जुड़े रहिए, कहते हुए दिल से डीसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से डीसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
4: की। एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
5: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: FM 107 Time Check.
1: भाई ऐसा क्यों लग रहा है अपन कल के शो में भी आए थे? कल थे ना यार? नहीं थे कि थे? अच्छा आज थे कि मैं याद ही नहीं आ रहा यार. टाइम अभी तो 4:00, अच्छा 1:00 भी तो आए थे अपन. फिलहाल 4:01 हो रहा है.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से.

0: Desi. या हबीबी दिल से देसी एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और बेहतरीन से गाने को लेकर आपके समक्ष सामने हाजिर हो गया हूँ। वेल एक तो ये है कि बेहतरीन से गाने कि बेहतरीन से गाने आप, अरे वो तो रिक्वेस्ट हम करते हैं, तो उम्मीद पूरी है कि आप अच्छे गाने की रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो इसी उम्मीद में बैठे होते हैं कि आप अच्छे गाने की रिक्वेस्ट करेंगे। अब वो वाले एक होते हैं रोतड़ू वाले गाने के, वाला प्ले कर दो साहिल पे खड़े हो चले जाना, तुम्हें क्या गम, तुम चले जाना समय आएगा। तो भाई साहब ऐसे गाने मत करो कि दिल दुख जाए। बाकी और सुनाइए क्या हाल चाल है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये वीकेंड है या दूसरा, मुझे लग रहा मंडे है आज, लेकिन संडे है। कल छुट्टी थी फजील, होश में आओ भाई, आज 1 बजे शो किया है तो एकदम बेहोश में हो गए हो। चलो तो दोस्तों थीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एफएम 107 पे। आज की थीम क्या है? 4 से 5 द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आप अपने मर्जी के गाने सुन सकते हैं। अपनी प्लेलिस्ट से एक बेहतरीन सा गाना पिक करिए और मुझे दे मारिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 पे, 666-22107 पे खींच के दे दो भाई साहब और अपन यहाँ पर प्ले कर देंगे। अब तैयारी तो मैंने कर ली है। मोबाइल किधर है? किधर मोबाइल? तुमको भी वेंटिलेटर पे तो नहीं चढ़ाया गया है मोबाइल?
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: है नहीं है, है है, जिंदा है, जिंदा है, नया वाला जिंदा रहता है भाई, नया वाला बेहोश नहीं होता। नए वाले को ना ऐसे पटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। नया वाला अगर 10% पे है तो पटको तो 10 पे ही रहता है भाई साहब। पुराना वाला लेकिन वो भाई वो विंटेज मोबाइल था। वो वाला था ना ये जैसे हमारे इधर क्लासिक कार का एग्जीबिशन होता है, तो किसी दिन अगर मोबाइल का एग्जीबिशन लगा क्लासिक मोबाइल का एग्जीबिशन, तो अपन लोग वो वाले मोबाइल को लेकर जाएंगे वहां पे। उसके अंदर एक अलग ही क्वालिटी थी, उसको 2 बार टैप करो 10 से 20% चार्ज हो जाता था। एक भाई ने तो कहा था भाई 10 बार करके 100% चार्ज क्यों नहीं कर ली थी। क्या स्मार्ट लोग हैं भाई। तो अपन तैयार बैठे लें, गाने आपके प्ले करने को बैठे हैं। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पे। आज की थीम है कॉम्पोजिशन की, म्यूजिकल, बेस्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का जो भी गाना होगा वो अपन यहां पर प्ले करेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि कौन सा गाना आप मुझसे प्ले करवाना चाहते हैं। तो आज बहुत वाइड एंगल पे खुला हुआ है, लेकिन कोशिश करिए कि 2010 के बाद का गाना हो। 2010 से पहले फिर पुराना हो जाता है यार। नहीं, ये नौजवान जो लड़के सुन रहे हैं हम लोगों को, उनके लिए होता है यार, ये हो जाता है ना फिर। तुम मत सो जाना भाई कार चलाते चलाते। तो ये है, बाकी हिशाम भाई का मैसेज है, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम। होलारा होलारा स्टार, ये कौन सा गाना है? हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड बस, अब तो वो दिन आ गया कि बस कट रही है ना, तो बस चल रही है। बाकी ये हुलारा यार थोड़ा और डिटेल में लिखते यार, ये कोई गाना है? हुलारा लिख दिया और कहा कि देखो। अच्छा, जे स्टार का एक गाना है हुलारा, एंड आई डोंट नो अबाउट द कॉम्पोजिशन, बट आई विल प्ले दिस क्योंकि जे स्टार है ऑब्वियसली। ये किस भाई ने रिक्वेस्ट की है सलाम करते हुए? वालेकुम अस्सलाम। महफूज भाई ने अपनी रिक्वेस्ट महफूज कराते हुए सबसे गाना पहले प्ले करवाने की रिक्वेस्ट डाल दी है, तो अपन ये गाना प्ले करेंगे। और हुसैन साहब क्या कहते हैं? जय हो से शुरुआत कर दो ए आर रहमान वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? तो जय हो गाना मुझे देखना पड़ेगा, रेडी मूवी का ट्रैक था ये, किस नहीं जय हो मूवी का ट्रैक था ये, हाँ मुझे देखना पड़ेगा। आ जा जिंदा शामी आने की तरह, यही था। हाँ, ये इसकी कॉम्पोजिशन भी अच्छी है। तो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में जो गाना आपको तड़कता भड़कता लाजवाब लगा हो, उस गाने की रिक्वेस्ट आप हमसे कर सकते हैं। एक और मूवी की रिक्वेस्ट, आई मीन गाने की रिक्वेस्ट आई है, और ये है ए खुदा गिर गया मर्डर मूवी का ये ट्रैक। यार ये तो क्या ब्यूटीफुल ट्रैक है। एक तो कॉम्पोजिशन तो है ही लाजवाब, ऊपर से गाना भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये गाना भी अपन प्ले करेंगे किस भाई की रिक्वेस्ट पे? मोहम्मद बिलाल की रिक्वेस्ट पे। तो 3 गाने अपन लॉक कर चुके हैं। बिलाल का 3रे नंबर पे गाना आएगा, 2रे नंबर पे गाना आएगा हुसैन भाई का जय हो, और हुलारा आ रहा है जे स्टार का सबसे पहले महफूज भाई का, ठीक है।

एंजॉय करें इन तीन गानों को एफएम 107 पे, वापस आकर फिर हम देखेंगे आपके गाने कौन से हैं। आज का थीम म्यूजिकल, बेस्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के जो भी गाने हैं वो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

0: को लग रहा होगा ये गाना केके ने गाया होगा, किसी बेहतरीन सिंगर ने गाया होगा, लेकिन ये गाना किसने गाया ये किसी को याद नहीं, लेकिन ये गाना जरूर याद है। मिथुन, क्षितिज तरे और सामे ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से निभाया FM 107 पे। ये गाना आपने सुना, वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: और बाकी अगले सॉन्ग की तरफ आ जाते हैं, और ये दो सॉन्ग भी बड़े ही लाजवाब हैं। और एक गाना मैंने प्ले नहीं किया, हुसैन जी मुझे पता है जय हो, एक्चुअली वो यहाँ पर होकर भी नहीं है, ऑडियो जो है उसकी मिसिंग है, और मे बी कोई रीज़न होता है इस वजह से वो ऑडियो जो है वो मिसिंग है। वेल नो वरीज हुसैन भाई, आप दूसरा कोई गाना जो है वो प्ले करवा सकते हैं, आपके अगर लिस्ट में है। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, बाकी लोगों के बारे में बात हो रही है, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो दोस्तों आज द रिक्वेस्ट शो का जो थीम है वो है बेस्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है? तो वो आप मुझसे प्ले करवा सकते हैं अच्छी कॉम्पोजिशन वाले कोई भी गाने। अब देखिए इसमें कैच है कि आपको जो अच्छी कॉम्पोजिशन लग रही है जरूरी थोड़ी वो हमें भी लगती हो, या जो हमें लगती जरूरी नहीं वो आपको भी लगती हो। तो अगर आप मुझसे कोई भी गाना कहेंगे तो वो मैं प्ले करूँगा, बशर्ते कॉम्पोजिशन एकदम ही लारा लप्पा ना हो एकदम ही हो ना कि जी जी जी जी, एक वो वाला ना हो कि सजे सैया तो खूब ही कमाते हैं से, तो वो वाला कॉम्पोजिशन ना हो बस। बाकी जो आप कहेंगे अपन जो है यहाँ पर प्ले कर देंगे। 4:19, बाकी दो सॉन्ग कौन से हैं? पहला है यूसुफ साहब का, और यूसुफ भाई ने कहा है चल घर चलें मेरे हमदम फ्रॉम द मूवी मलंग, जो कि सच में बहुत अच्छा है। और फिर रावण का गाना सुनना चाहते हैं भरे नैना, और इसे रिक्वेस्ट किया है अहमद ने। तो ये दो गाने बैक टू बैक आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और लोगों के जो रिक्वेस्ट हैं वो भी हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। तो पहला गाना चल घर चलें बाय अरिजीत सिंह, दूसरा विशाल ददलानी शेखर रावजियानी की बेस्ट कॉम्पोजिशन के साथ भरे नैना फ्रॉम द मूवी मलंग, रिक्वेस्टेड बाय अहमद। फिर एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज प्ले ए बेखबर जहे जहे मूवी। ये कौन सी मूवी है भाई, कब आई और कब गई पता भी नहीं चला, जहर मूवी तो नहीं ए बेखबर डालकर देख लेता हूं पहले मैं भाई, ये मैं बड़ा बेखबर हूं इस मूवी से। जहर जहर है भाई, 2004 की मूवी है, केके ने गाया है ए बेखबर। ओके लेट मी चेक एंड देन आई विल प्ले। फिलहाल अरिजीत सिंह का और भरे नैना ये गाना जो रिक्वेस्ट किया है अहमद ने और यूसुफ ने वो सुने, और फिर बाकी लोगों की रिक्वेस्ट धीरे धीरे एक करके है जी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: दिल से देसी हाल है हबीबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे फजील के साथ हैं आप। 4:29 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अब बैक टू बैक तीन और गाने मैं लेकर आ गया हूँ। पहले तो है ये गाना तन उल्ले, ये वही वाला है, आई डोंट नो ये कहा है सलाम, नहीं वो पहले का है क्या, वो वाला, हाँ ऊपर वाला पहले का है। लेकिन इनका नाम है अबू सिद्रा, इनने कहा है तन उल्ले, फिल्म जयवीरू, सिंगर उमर इनायत, म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी। अगर बप्पी है तो गाना तो अच्छा होगा। ठीक है, तो तन उल्ले सबसे पहले गाना आ रहा है और ये है अबू सिद्रा की रिक्वेस्ट पे। और फिर है दूसरे नंबर का गाना और ये है यस जहर लिखा है, जहर मूवी का ट्रैक ए बेखबर दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है कर हर मैदान फतह, इसका भी कॉम्पोजिशन, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इसका अच्छा है। हुसैन भाई ने इस गाने की रिक्वेस्ट करी है, संजू मूवी का ट्रैक और हर मैदान फतह, संजू का लगा दो प्लीज, मुझे मोटिवेशन चाहिए। अरे क्या बात है, किस लिए मोटिवेशन चाहिए भाई, कंपनी का फायदा करने के लिए आपको रखा गया था, आपने नुकसान कर दिया, अब आपको मोटिवेशन चाहिए इसलिए तो नहीं, जो अच्छा होना चाहिए तो उल्टा और बुरा हो गया, ऐसे तो नहीं, किस बात के लिए। अगर चाहिए तो अच्छी बात है, ले लो भाई, इस गाने से अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कि फजील को तो मोटिवेट करना नहीं आता, एक दिन एक को किया है, उल्टा और रो रहा है वो, कह रहे भाई इसने मोटिवेट कर दिया, अब और मोटिवेशन चाहिए डबल इंटू टू। फिलहाल दो गाने जो है वो आ रहे हैं और ये जो गाने हैं, सॉरी तीन गाने हैं बैक टू बैक, हुसैन के हैं, अबू सिद्रा के हैं और फिर फहीम भाई के हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आप लोगों की यहाँ लगातार प्ले करी जा रही है, 666-22-107 पे रिक्वेस्ट करिए, बाकी उमर इनायत की आवाज में। That's right. Pump it up.

विक्रम की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पर। कोई भी गाना जब हिट हो जाए तो उसके बेहतरीन कॉम्पोजिशन को भी उतना ही प्रेज करिए जितना आपने गाने को प्रेज किया या फिर करेंगे।

0: ये इन फ्यूचर।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: तो चलिए वक्त आ गया है पहचान कौन गेम का। पहचान कौन में होता क्या है वो आपको आज पता चल जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी लोगों को पता है क्योंकि आज हमने बेस्ट म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया था और कुछ आज ऐसी ही कॉम्पोजिशन मैं प्ले करूंगा और आपको गाने का नाम बताना है और इतना आसान हो जाएगा आपको कॉम्पोजिशन क्या होती है समझना कि आप किसी भी गाने को सुनने के बाद कहेंगे यारे इसकी कॉम्पोजिशन अच्छी। चार लोगों के बीच बैठ कर अरे म्यूजिकल कॉम्पोजिशन देख रहे हैं आप, आहा लाजवाब है। तो आपका ऐसा ऑरा जो है ना वो बढ़ जाएगा, भौगाल सोसाइटी में चार लोगों के बीच बढ़ जाएगा, अरे भाई म्यूजिक की पहचान रखते हैं फलाना साहब, तो ऐसा लोगों के बीच हो जाएगा। तो सबसे पहला जो म्यूजिक या म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का गाना आ रहा है जिसमें आपको पहचानना है गाने का नाम, वो है ये।

अब देखो ये तो इतना ज्यादा आसान है कि हर शख्स को पता होना चाहिए. मतलब अगर ये वाला नहीं पता है तो बस समय आ गया है, अब आप दादा के फेज में एंटर कर चुके हैं. अगर वो ये गाना ये म्यूजिक नहीं समझ में आया तो अब वो वक्त आ गया है कि वो चारपाई जिसको आप बिछाएं अंधेरे में, है ना, जैसे गांव में होता है, और नीचे से मच्छर काटे और आप लाठी लेके हमेशा सोते हो. सुबह आपको बंदर अगर दिख जाए तो आप उसको दौड़ा लें, क्रिकेट खेलने वाले लड़के दिख जाए उसको दौड़ा लें. आप उस फेज में जा चुके हैं और आप अपने ही पोते पोतियों को दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये कौन है. अगर आपको ये गाना नहीं पता है तो आप ये करिए फिर, क्योंकि फिर मतलब नहीं है ना, आपका आपकी याददाश्त जा चुकी. मेरा मतलब ये है, अगर ये आसान म्यूजिकल कॉम्पोजिशन गाने का नाम नहीं बता पाए तो फिर तो कुछ गड़बड़ है भाई. ये मेरा मतलब सारा ये है. बाकी कैसर साहब ने बिल्कुल सही पहचाना, यूसुफ भाई ने सबसे पहले बिल्कुल सही पहचाना है, हुसैन साहब ने सही पहचाना है, और एक और ये सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नाहिद इनका नाम है, इन्होंने भी बिल्कुल सही पहचाना है. और एक बार फिर से हो जाए. अब ये गाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुआ था, लोगों ने इसे बड़े चाव से सुना, और आज भी ये गाना हमारे शाम के शो में चलता है.

दिलों का ये गाना है, हमें इकबाल साहब ने भी इसे बिल्कुल सही पहचाना है, सलाम किया है गुलाम शरीफ खान ने, वालेकुम अस्सलाम हबीबी, और उसके अलावा महफूज ने भी बिल्कुल सही पहचाना, बहुत ही उम्दा, अच्छा है ये तो फिर सही है, आप लोग दादा बनने के लिए अभी क्वालिफाई नहीं करते हैं। बाकी दूसरा गाना थोड़ा पुराना है, बट इसकी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी है कि मे बी आपको गाने का नाम पता चल जाए, ठीक है। अभिजीत और सौम्य ने इसे गाया है, ये गाना सुनिए।

बताइए इस गाने का नाम क्या है। FM 107 पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662217। बड़ा आसान तरीका, पहले लोग ना नंबर सेव किया करते थे, तब नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के भी व्हाट्सएप पे अपना ही नंबर सेव कर लें और उस व्हाट्सएप पे ये नंबर डालेंगे तो नंबर का लिंक बन जाता है, उसी पर क्लिक करें ऑटोमेटिक व्हाट्सएप जो है वो खुल जाता है, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो नंबर है 6662217। हिशाम भाई पहले वाले में कहाँ थे यार, हिशाम ने सही पहचाना है और सबसे पहले यूसुफ भाई ने पहचाना, फिर हुसैन ने भी बिल्कुल सही लिखा है, उसके बाद इसरार साहब ने, क्या बात है, कैसर साहब ने भी सही जवाब दिया है, उसके बाद एक और ये मैसेज लाजवाब, बहुत शुक्रिया। तो ये गाना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी धूम का ट्रैक अपन तेरा, ये गाना बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। और इस गाने में सपना देखता हुआ वो चोपड़ा आदित्य चोपड़ा, उसे कौन भूल सकता है, कि किसी को भी देख लेते थे भाई, तो अपनी बाइक पे पीछे दुल्हन बना लिया।

करते थे। उसके अलावा हाय का मैसेज है, किस भाई का नाम तो नहीं लिखा है लेकिन हाय का मैसेज है, ओके हाय। तीसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये पहचान कौन का गेम, जहां पर कॉम्पोजिशन आज मैं म्यूजिकल कॉम्पोजिशन प्ले कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और आपको गाने का नाम बताना। और ये तीसरा है, 101% लोगों को पता होगा ये जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आज भी लोग इसे बड़े शौक से सुनते हैं। और मैं, क्योंकि आज जो थीम थी वो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन की थी, और मुझे बड़ा कह सकते हैं ताज्जुब है इस बात का कि आपने इस गाने को मुझसे प्ले करने की रिक्वेस्ट नहीं करी है। तो अब मैं ये म्यूजिकल या कहें ये कॉम्पोजिशन जो है वो प्ले तो कर रहा हूँ। अगर कोई है जिसको गाने का नाम पता है और अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहे तो रिक्वेस्ट कर दे, मैं ये गाना लाजमी प्ले करूँगा। और मुझे ये भी पता है कि आप पक्का 100% इस गाने को मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। नंबर है 666-22107। इस म्यूजिक को सुनिए और जवाब बताइए इस गाने का नाम क्या है।

हाँ जी बताओ, अब ये गाने का नाम क्या है ये आपको बताना है। मैसेज की तरफ सलाम है फीफोर रहमान का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, मैं आपको पिछले एक साल से सुन रहा हूँ। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, नाम बता देते यार छुपे रुस्तम निकले आप नाम अभी भी नहीं बता रहे। फिर ये बताया है फैजल ने, बिल्कुल सही जवाब, ये जो आखिरी मैंने म्यूज़िक प्ले किया है एक ऑडियो है, मैं सुन सकता नहीं हूँ अभी। फिर यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही जवाब बताया है। दानिश ने कहा है चल छैया छैया, ओके बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। फिर है सलाम गुलजार साहब का, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सही, प्लीज़ प्ले फुल। कैसर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आरके ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया और साथ ही हमें करेक्ट भी किया, सॉरी उदय चोपड़ा हैं वो, आदित्य चोपड़ा ने, जिनके जो दुल्हन बना लेते थे बाइक पे बैठा लेते थे गुलाम शरीफ ने बिल्कुल सही पहचाना है, म्यूजिक एक बार फिर हो जाए। ओके साथ ही मोहम्मद बिलाल ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, जरतश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, और उसके बाद हिशाम ने सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। हामिद ने नाम बताया है कि जो पिछले साल से सुन रहे हैं। ओके हामिद साहब सुनते रहा करिए और कनेक्ट रहा करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। गुलजार साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया और फैयाज सैयद ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, अमेजिंग जानी, बहुत शुक्रिया खान साहब, ये नाम लिखा है इन्होंने अपने प्रोफाइल पे। गाने का नाम क्या है, दानिश ने भी सही जवाब दिया है।

तो ये गाना प्ले कर सकता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट होनी चाहिए ना, अगर किसी की भी रिक्वेस्ट है वो मुझसे कह सकता है तो मैं प्ले कर दूंगा। देखा मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मुझे ये गाने एक्चुअली में प्ले करना था, मैंने बस जानबूझ के आप लोगों से पूछ ली क्योंकि ये गाना इतना अच्छा है, मुझे पता था एक यस आएगा और दानिश भाई का आ गया। नाउ आई विल प्ले दिस सॉन्ग। ये गाना बहुत ही लाजवाब है और बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं और ऑडियो में मैं जिन्होंने ऑडियो भेजा मैं ऑडियो पे ही रिप्लाई कर दूंगा पर्सनल। फैजल ने भी ये रिक्वेस्ट किया है सेम सॉन्ग। फिर ये ऑडियो किसका है, हिदायत खान का है, हिदायत भाई मैं आपको रिप्लाई करता हूँ जल्दी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम 4 बजे, पहले तो 1 बजे होगी दोपहर को स्पोर्ट्स समर स्पोर्ट्स में और फिर शाम 4 बजे। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: एवरीबॉडी इन द क्लास पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। कई सालों पहले बच्चों प्लीज सिट डाउन। कई सालों पहले एक बहुत महान आरजे हुआ करते थे, ठीक है। उनका नाम था दोहा वाला कबीर। उनकी म्यूजिक कुछ इस तरह थी। मैं आपको प्लीज यार पीछे पराठे मत खाओ मेरी क्लास में। मैं बता नहीं नहीं नहीं नहीं अब्बा से साइन करा के लेके आना तुम।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं।

sabahçı reaksiyon. Hadi selamun aleyküm. मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज जरा भाई साहब लट लगे तैयार है हम किसी ने भी किधर भी जाने नहीं देंगे गाड़ी की वॉल्यूम अगले दो घंटे तक गिरनी नीचे बिल्कुल भी ठीक है भाई साहब और हो गया है मुझे देखो एक मैसेज आया मेरे पास यूसुफ भैया कह रहे हैं कि वीकेंड कैसा गया भाई वीकेंड बहुत ही बढ़िया गया एकदम बूमबाट मेरे साथ पता क्या हुआ है होता नहीं कि आप कुछ सीरीज कुछ मूवी खत्म कर लेते हैं फिर आपको लगता है अरे मेरे जीवन में अब क्या बचा है मैं क्या करूं वो मेरे साथ गेमिंग में हो गया एक बहुत बड़ा गेम खत्म करने के बाद अब मैं बैठा हुआ हूं समझ नहीं आ रहा क्या खेले आदमी क्या क्या करे मैंने पता एक क्रिंज कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया है मैंने कहा बहुत अकलमंदी वाली मूवी देख ली मैंने बहुत अकल वाली बातें कर ली अब हम कुछ घटिया देखेंगे तो आजकल जितना भी क्रिंज कंटेंट है इंटरनेट पर सब देख रहा हूँ मैं सब कुछ जो मेरे सामने क्रिंज आता देख लेता हूँ मैं है भाई अपने अपने चीप थ्रिल्स होते हैं भाई मेरा भी है क्या दिक्कत है तो खैर आप आ जाइए व्हाट्सएप पे 666-22107 नंबर है 666-22107 कुछ मैसेज मुसेज पढ़ देता हूँ मैं फलक साहब वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई क्या हाल है भाई के हुसैन साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई फिर से नया अंदाज मेरा भाई हिट है एनर्जी लादी भाई बहुत बढ़िया भाई प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम हुसैन भाई आपका शुक्रिया भाई हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम फैजल भाई लिखते हैं मास्टर जी हाजिर हैं किताबें निकालो मास्टर जी हाजिर हैं बताऊँ भी आते तो है नहीं क्लास में ये जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है गुड इवनिंग मेरा भाई क्या हाल है कृष्णा भाई और हमजा भाई कहना आलिया मेरा भाई जी मेरा भाई क्या हाल है भाई के और अमर यासिर भाई कहते हैं कैसे हैं मैं बढ़िया यूसुफ भाई कह रहे हैं कैसा वीकेंड आपको तो मेरा वीकेंड बताइए भाई मैं तो वीकेंड में फर्नीचर की तरह घर पर पड़ा होता हूँ जिसका कोई काम नहीं है बस पड़ा हुआ है वो अब्दुल करीम साहब वालेकुम अस्सलाम कॉल होगी क्या तला भाई थोड़ी देर में होया करेगी भाई अभी तो ना होया करेगी क्योंकि अभी क्या है इस घंटे अभी अधिकार के बाद इंशाल्लाह कॉल लेंगे मैसेज है कबीर वही सवाल क्या है वक्त कहाँ से लाते हैं इतना वक्त कहाँ से लाते हैं अगर मैंने आपको अपने गेमिंग आवर्स बता दिए ना यूसुफ भाई भाई भागते फिरोगे एक मैसेज जनाब कैसन बा मैं बढ़िया अमरिक बा एक ठो मैसेज कर दिया करें डेली अच्छा लगता है एक मैसेज है तुझे देखा पुराने मैसेज पढ़ा हूँ मैं पढ़ा इन्होंने लिखा तुझे देखा तो ये जैने से नेम सलाम भाई कौन सी गेम की एंड की भाई लिख के देता हूँ ना भाई प्रचार यहाँ कर नहीं सकते ना भाई प्रोटोकॉल है क्या ये मैसेज क्या है भाई स्टोरी लाए हो कि नहीं बढ़िया स्टोरी लाए हैं मौज आ जाएगी आपको भाई साहब ऐसी स्टोरी आज की एक मैसेज है डॉक्टर कबीर प्रेजेंट सर मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम प्रेजेंट हाजिर लगा तो मैं ज़रा आज की कहानी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आपको आज की कहानी बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया भाई मैं जितने आजकल कहानियाँ सुनने पढ़ने लगा हूँ तैयारी करते हुए मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचेगा एक टाइम बैक मुझे हर रोज़ घर जाके लगता है कि अब कल क्या होगा कल क्या होगा अभी कहानियां मैं नहीं ढूंढता कहानियां मुझे ढूंढने लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो आज कुछ ऐसे ही है बढ़िया सा है एक मैसेज है वक्त कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना खूब देने के लिए थोड़ा बताइए मैं भी वैसे ही करूं देखो भाई वक्त ना यूसुफ भाई निकालना पड़ता है भाई मैं अपने शौक नहीं मार सकता दुनिया में कुछ भी होता रहे भाई शौक नहीं ख़त्म कर सकता मैं अपने तो चाहे वो गेमिंग हो चाहे बढ़िया खाना हो चाहे मूवी देखना हो हर रोज़ डॉक्यूमेंट्री मूवी देखनी है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए हर रोज़ तो नहीं गेमिंग वीकेंड पे करनी है भाई पूरे हफ्ते नहीं करता आपका भाई ओबीडेंट चाइल्ड है लेकिन वीकेंड पे करनी है गेमिंग भाई रिमोट ना गिरेगा हाथों से अगर कुछ बहुत ही मल्टीपल रीजंस हो गए तो बात दूसरी है बट इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई भाई अगर कॉल खेलते हैं आप तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो अच्छा यूज़र नेम खेलेंगे भाई कभी टीम बना के बढ़िया भाई वसीम भाई क्यों नहीं खेलेंगे मेरे जान और अभी ये शाम के अधिकार इंशाल्लाह उसके बाद मुलाकात होगी 11 मिनट 2 सेकंड के बाद और ऑल द गेमर्स असेंबल प्लीज़ हो सकता है हम एक आध लोग ऐसे हों जो कंसोल पे जुड़ जाएंगे भाई वहाँ पे भी आईडी होती है सो 666-22107 पहले तो आ जाइए इवनिंग खेल लेते हैं उसके बाद शुरुआत करेंगे सवाल भी है जो पूछूंगा आपसे एंड कहानी तो 5:30 बजे कहानी शुरू होगी आपको मज़े ना आ जाए तो कहना पैसे वापस तो कह नहीं सकता पैसे वसूल भी नहीं कह सकता पर फिर भी एक मैसेज है तो मैंने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हो गया ऐसे कभी नहीं होगा कबीर भाई इंशाल्लाह हमेशा कहानियाँ मिलेंगी आपको मिलती रहती है बहन आप तो खुद चल के आती है मेरे पास एक मैसेज स्टोरी लाइव सुनाते हैं रिकॉर्डेड हो जाए भाई आपका भाई रिकॉर्डेड काम नहीं करता भाई वो तो कभी कभार

0: पैसे के लिए करना पड़ता है, लेकिन आपका भाई एकदम लाइव है। बिजली के वायर देखे आपने छिले हुए, वो है आपका भाई, करंट दौड़ लाइव, सब कुछ लाइव, कहानी भी लाइव। कुछ देर मिलेंगे, जाना नहीं है आपने, मैसेज करते रहना, स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: मी रॉन्ग.
1: सही बात.
0: हाँ तो असल में क्या है ना, लोगों ने खेला है भाई मोबाइल वाला, समझ रहे हैं आप, तो उसमें स्टोरी होता नहीं है. लोगों को लगता है ये फाइटिंग फाइटिंग करते रहते हैं, फाइटिंग फाइटिंग नहीं है. अगर आप स्टोरी वाला गेम खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में क्या है वो चीज़. तो लोगों ने खेला ही नहीं है तो पता कैसे होगा भाई. मैं तो फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से खेल रहा हूँ, लोग तो 50-60 साल की उम्र में गेमिंग कर रहे हैं, ट्रस्ट मी.
1: और वो पॉडकास्ट वाली जो बात थी भाई, वो तो मुझे पता ही नहीं क्या होती है, मैंने आज तक नहीं देखी.
0: क्या नहीं देखी?
1: सिर्फ सुना है.
0: क्या नहीं देखी? हेलो,
1: पॉडकास्ट.
0: पॉडकास्ट
1: क्या होता है, ये कोई ऐप है?
0: नहीं भाई, पॉडकास्ट होती है बेसिकली दो लोग बैठ के जो है दुनियादारी की बातें करते हैं, या कोई सब्जेक्ट मैटर होता है उस पर बातें करते हैं. तो
1: मैंने कहा दो लोग दुनियादारी की बातें, भाई हाँ. तो फिर हम लोग क्यों है दुनिया में?
0: तो उसमें क्या होता है, एक को एक्सपर्ट बनना पड़ता है और दूसरे वाले को सवाल जवाब करने पड़ते हैं, दोनों अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, वो होती है जी पॉडकास्ट. तो ऐसा है भी कतर में भी
1: ये तो भाई रोज ही करता हूँ भाई, ड्यूटी खत्म होने के बाद हम दोस्त लोग मिलके यही तो करते हैं.
0: हाँ एग्जैक्टली, वही पॉडकास्ट है मेरे भाई, वही दुनिया के सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट.
1: सुनने की जरूरत नहीं है, हमारे जो लाइफ में चल रहा है वही बहुत अच्छा है.
0: बढ़िया है, वही वही पॉडकास्ट है, बस कैमरा ऑन करके वो पब्लिक पे पहुंच जाती है, वरना है तो दोस्तों के बीच बैठना, वही असली पॉडकास्ट है. तो उससे फर्क नहीं पड़ता. पर आजकल क्या है, सबको फेम फेम चाहिए ना, सब फेम के भूखे हैं अभी. तो लगता है कि जो बोल रहे हैं क्यों ना हम इंटरनेट पे सुना दें, तो इसलिए वो जमाना आ गया है, तो कुछ नहीं कर सकते. इट्स अ पार्ट ऑफ टुडेज वर्ल्ड. और बताइए क्या एडवेंचर करना चाहोगे मेरे भाई, कभी ऐसा लगा कोई एडवेंचर?
1: मैं तो भाई वही, मैं स्काई डाइविंग करना चाहूंगा, मुझे उसका बहुत शौक है, कभी मौका मिलेगा तो करूंगा.
0: डर लगता
1: है? करते देखता हूं तो बस डर नहीं, मेरे बस बदन में कपकपी होती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं.
0: हाँ तो डर ही है ये तो डर के सिम्टम्स हैं.
1: तो अच्छा ये डर है, मुझे लगा है मुझे डॉक्टर से दिखाना होगा.
0: ऊंचाई से डर लगता है क्या, मतलब जनरली?
1: नहीं ज्यादा, हाँ ज्यादा ऊंचाई से डर लगता है. जैसे अब चले गए 30 फीट चला गया तो फिर मुझे चक्कर आने लगते
0: हैं. बेहतरीन, तो आपको करनी चाहिए स्काई डाइविंग भाई. एक बार कूदोगे चिल्लाते हुए, बस एक बार, उसके बाद सबसे हो जाएगा.
1: पता चला मैं कूद रहा हूँ नीचे और चला जाऊँ ऊपर तो?
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, बॉल थोड़ी हो टप्पा खा के ऊपर जाओगे. आपके साथ एक बंदा बना हुआ होगा जो ट्रेंड होता है, तो कोई मसला नहीं है, आपको खुद नहीं है ये कूद जाओ तो वो आपके साथ साथ कूदेगा.
1: वही करने का शौक है मेरा कि एक बार मैं स्काई डाइविंग करके देखूं.
0: करो
1: भाई, अच्छा लगता है लेकिन डर भी लगता है, बस वो डर जो है
0: एक बार में निकल जाएगा भाई. एक बार कूदोगे ना बस सारा डर गायब हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं. बहुत बढ़िया चीज है स्काई डाइविंग
1: भाई, कहीं मैं गायब ना हो जाओ कसम से.
0: नहीं नहीं नहीं भाई, नहीं हो गए गायब, नहीं हो गए गायब, करके देखो. बंजी जंपिंग करी कभी?
1: बंजी जंपिंग की है.
0: बंजी जंपिंग की
1: मैंने, हाँ मैंने घर पे ही करी है ये.
0: तो
1: और फिर मैं मतलब 30 फीट से ज्यादा ऊपर एक ग्लास ब्रिज है हमारे यहाँ, मतलब पहाड़ों पे बना हुआ है.
0: अच्छा,
1: तो उस पे मैं गया था वो ग्लास, और नीचे पूरा खाई, तो उसके ऊपर भी मैं चढ़ा था, तो वो ब्रिज हिल रहा था तो मुझे डर लग रहा था.
0: ओके ठीक है, तो फिर भाई एक बार करके देखो आप, कहीं ना कहीं मौका मिले तो छोड़ना नहीं.
1: बिल्कुल, ये तो है कि भाई मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी बचपन
0: में. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो वो खाते हैं ना वो सेरेलेक के, वो घूंट लगते हैं ना आपको. समझ रहा हूँ.
1: नहीं सेरेलेक से ऊपर हूँ मैं थोड़ा सा.
0: अच्छा थोड़ा ऊपर चले गए, चलो बढ़िया भाई. ठीक है, अब मैं आपसे ऐसी बात छोटा बाबू, चलो ठीक है. ठीक है मेरा भाई, ओके
1: मेरा
0: भाई, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. तो भाई ने तो अपनी कहानी बता दी है. एक और कॉल आ रही है मेरे पास, मैं जल्दी से वो कॉल उठा लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
0: अस्सलाम. ये इंटरनेट की तरह लैग आ रहा है भाई, कैसे चल रहा है दुनिया, कैसे चल रही है भाई की? सब बढ़िया
2: अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाओ यार, आज सरवर भाई नहीं थे.
0: सरवर भाई छुट्टी में, सरवर भाई छुट्टी में भाई, सरवर भाई मस्त छुट्टी मनाने गए.
2: हाँ वो तो मालूम है मेरे को, वो तो मालूम है मेरे को, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, अपना दिन जो ना वो मजे का नहीं गुजरा. अभी एनर्जी है ये, तो फिर इसलिए थोड़ा सा हैंगओवर उतर रहा.
0: अरे रे रे रे रे, ओके
2: सुनाओ.
0: बस भाई सब सब सब सब सब शानदार, आप सुनाए.
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपने किस्सा छिड़ा के
0: करने का सोचा मन में कुछ यार.
2: मैंने सुना आपका सवाल भी, मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता.
0: अच्छा बताओ तो
2: ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले आपसे ये पूछते ना, आपका पहली मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल तक का सफर कैसा रहा?
0: हाँ बिल्कुल,
2: कहाँ से स्टार्ट किया आपने?
0: बिल्कुल बहुत पूछते हैं भाई, और यहाँ वाले तो बहुत अलग अलग सवाल पूछते हैं.
2: कैसे आपने कदम बढ़ाए?
0: हाँ तो ये घिसे

0: चीज है यार, ये कभी ट्राई करेंगे मौका लगा तो। ऐसा कुछ है नहीं है
1: भाई, बहुत सारी चीजें मैंने नोट डाउन करके रखी हुई है कि ये भी करना है, ये भी करना है।
0: जैसे एक तो बता दो,
1: चाइना में या जापान में वो एक ब्रिज बना हुआ, ग्लास ब्रिज।
0: हाँ, ग्लास ब्रिज, यस, ग्लास ब्रिज। हाँ
1: ठीक है,
0: हाँ।
1: वहां पे जाके अपना फील लेनी है नीचे देख के पूरी।
0: अच्छा, डर लगता है ऊंचाई से? नहीं लगता?
1: डाउन देख के चलना भाई। है,
0: डर लगता है ऊंचाई से? नहीं लगता?
1: नहीं, ऊंचाई से नहीं लगता।
0: तो किससे लगता है डर?
1: पानी में जाना थोड़ा सा फोग।
0: अच्छा, पानी वाला फोबिया है, थैलेसोफोबिया है आपको?
1: नहीं, आपने बोला ना किससे लगता है।
0: हाँ, हाँ।
1: खैर मैं बता देता हूँ, सरेआम बता देता हूँ,
0: प्लीज।
1: वैसा मसला नहीं है क्योंकि मेरी वॉइस तो सुन नहीं रही है।
0: अच्छा, क्यों डर लगता है? मतलब आप पे कितना दबाव है आप बता सकते हैं हमें, क्योंकि वो तो सुन नहीं रही है तो आप बता सकते हैं।
1: भाई अभी तो सरेआम बता सकते हैं भाई,
0: बिल्कुल डरिए नहीं, बताइए।
1: सबसे ज्यादा जिस वक्त आगे बैठते हैं और बोलते हैं हाँ जी फला किस्सा यहाँ से शुरू किया जाए।
0: चलिए फिर शुरू करते हैं।
1: जब चट्टे कट्टे खुलने होते हैं ना, शुरू से शुरू किया जाए
0: तो
1: काम खराब हो जाता।
0: अच्छा, ओके, ठीक है, फिर तो ठीक है, समझ गया मैं। तो ये सबसे बड़ा एडवेंचर है आपके लिए, मैं समझ गया। पर जरूर जाना भाई, मौका लेके तो छोड़ना नहीं और सोचना है इस बारे में
1: इंशाल्लाह। और आप बोल रहे थे ना कि आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग की कहते हैं उसको?
0: हाँ, स्कूबा डाइविंग
1: पानी के अंदर होती है
0: जी भाई।
1: हाँ भाई, मैं पिछले दिन सुना था, मैंने दुबई में भी उन्होंने बनाया वो क्या कहते हैं उसको, कुआं टाइप जो है स्विमिंग पूल।
0: नहीं, यहाँ पे भी होती है, कतर में भी होती है, मैं जाने पाया। हाँ, वो कतर में भी होती है स्कूबा डाइविंग।
1: स्कूबा डाइविंग तो होती है, ठीक है।
0: हाँ।
1: लेकिन ना वो एक इससे रिलेटेड है।
0: अच्छा।
1: स्कूबा डाइविंग नहीं कहेंगे उसको।
0: अच्छा।
1: लेकिन वो उन्होंने कुआ बनाया है जो बहुत ज्यादा डीपस्ट है।
0: हाँ, राइट, वो अंडर वाटर का पूरा वो व्यू देने के लिए ना,
1: के अंदर नाम है।
0: हाँ, ऐसा कुछ नाम है। यस,
1: वहाँ जाना भाई एक बार अपने में।
0: बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि इससे पहले पोलैंड के अंदर था, तो जब से इन्होंने बनाया फिर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया पोलैंड वाले का।
0: ऑफ कोर्स,
1: ये फर्स्ट जो है वो पोलैंड वाला, दोनों देखने हैं भाई।
0: पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है भाई, ऐसी को थोड़ी छोटी
1: इंशाल्लाह बोलेगा,
0: बिल्कुल बोलेगा भाई। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, सारी इच्छा आपकी पूरी
1: हो। ख्वाहिशें बड़ी बड़ी रखनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: देखो ताकि आपके पूरे हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल देखो। और शुक्रिया मेरे भाई कि आपने शेयर किया, अपना ख्याल रखो और आज की कहानी जरूर सुनना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है,
1: इंशाल्लाह भाई, इंतजार है।
0: ठीक है,
1: शुक्रिया।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। के बाद हमजा भाई लिखते हैं, सैयद हमजा भाई लिखते हैं, आई वुड रिकमेंड यू टू डू स्कूबा, इट्स बेस्ट एक्सपीरियंस इन स्काई डाइविंग, आई हैव डन 4 times एंड आई वुड लाइक टू डू द फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड और जिप लाइन फ्रॉम बुर्ज खलीफा। मेरे को जिप लाइन में इतना इंटरेस्ट है नहीं, आप कह रहे हैं तो अभी देखूंगा मैं, आई थिंक ये बढ़िया बता रहे होंगे। पर 4 times किधर किथे मुझे करनी है स्कूबा डाइविंग, करने मेरा बहुत मन है। आई थिंक स्कूबा डाइविंग मुझे इसलिए भी करनी है क्योंकि मेरे को कोई फेयर नहीं है इसी का, बहुत सारे लोगों है। एक तब उसमें लगती है कबीर, मुझे वाटर एक्टिविटीज़ करनी है कतर की, जो सरफेस पे होती हैं, पानी के अंदर वाली नहीं, जो डेजर्ट एक्टिविटीज़ भी करो बहन। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मौके हैं वाटर एक्टिवेशन के, तो इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, बाप रे। एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद एनीथिंग, है ना, सब बढ़िया है एकदम चौकस। वालेकुम अस्सलाम फरद भाई। और एक और भाई लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, तो इधर ए कॉल गिर गई, एक कॉल और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया कमाल है शेख साहब, मुंबई में तो बरसात हो रही है जम के।
2: अरे जम के बरसात हो रही है,
0: करा जबरदस्त सावन गिरा है।
2: मैडम बुरी थी, 1 तारीख को चलेंगे।
0: हाँ,
2: अब कैंसिल हो गया, अब देखो 15-16 तक बोल रहे हैं जाने के लिए, क्या।
0: अरे रे रे, अभी तो गरज बरज सावन घिरायो हो रहा है वहाँ पे, बढ़िया एकदम, है ना, वार्निंग वार्निंग भी आती है शायद मुंबई में।
2: बारिश का मजा ही मुंबई में।
0: हाय, ये है मुंबई वाले, असली मुंबई वाले। नो आइडेंटिटी रिक्वायर्ड। बढ़िया भाई। तो आपके एरिया में वहाँ बारिश ज्यादा पड़ती है? मुंबई में कौन से इलाके में थे आपने बताया, कहाँ रहते हैं आप?
2: मैं पहाड़ पे, कुर्ला कसाई वाला पहाड़ पे हूं।
0: अच्छा, वहाँ पे रहते, ठीक है। तो वहाँ, अच्छा, वहाँ पे पानी वानी अपेरेंटली इतना ज्यादा नहीं आता होगा, ऐसा है क्या?
2: नहीं, हर जगह पानी फुल हो जाता है चारों बाजू। हम लोग पहाड़ में पानी नहीं होता ना, मतलब जो है।
0: हाँ, अच्छा।
2: हाँ, ये है दीवालों से पानी जो है इसके अंदर आ सकता है।
0: वाह,
2: लेकिन पानी जमा नहीं होता।
0: कितना कैजुअली कह दिया, हाँ इधर से पानी अंदर आ सकता है मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है।
2: तो पानी जमा नहीं होता ना।
0: हाँ, अच्छा,
2: हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो पूरा पानी पानी रहेगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर नहीं रहता है।
0: तो कब जा रहे हैं छुट्टी?
2: 26 जुलाई में हो सकता है, 15-16 तक। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन 15-16 तक की उम्मीद है
0: भाई। बारिश खत्म होने से पहले आप पहुंच जाएं, यही मेरी दुआ है आपके लिए।
2: मुंबई में बारिश तो भाई सितंबर अक्टूबर तक रहती है ना।
0: चलो वेरी गुड। तो कमाल भाई क्या एक्टिविटी करना चाहेंगे आप, कोई आपने कोई ऐसा देखा
2: है? ग्लाइडिंग करना है
0: आपको? कभी करीब पहुंचे, कभी ट्राई किया आंखों से देखा है या सिर्फ वीडियो में देखा?

0: नहीं आंखों से नहीं देखा भाई, वीडियो में देखा है बस, हाँ। करने का शौक है, बाकी तो जो है अपने यहाँ पे वो एसएल वर्ल्ड है।
1: हाँ वो तो है,
0: मुंबई के अंदर
1: घर घर नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं,
0: बड़े बड़े झूले हैं
1: उसी का
0: बहुत बड़े बड़े झूले हैं, सारे झूले मैंने उसके एंजॉय कर चुका हूँ।
1: उसी उसी का जिंगल था ना ये, उसी का म्यूजिक था ना ये, घर घर नहीं नहीं जाऊंगा मैं एसएल वर्ल्ड में रहूंगा,
0: एसएल वर्ल्ड में रहूंगा।
1: अच्छा नहीं आप करो भाई, आप ग्लाइडिंग करो, आई थिंक इंडिया में तो बहुत सारी जगहों पर होती है ग्लाइडिंग यार, बहुत सारी जगहों पर है, बतेरी जगह है यहाँ पे होती है।
0: पर होता क्या ना कभी भाई जाने की बात नहीं, जब से परदेश पकड़े ना वहां जाने के बाद जो है ना कहीं जाने का वही नहीं मिलता। एक बार हम लोग निकले थे लॉन्ग टूर पे, समझ लो 11 दिन के लिए फैमिली के साथ में, तो पूरा दिल्ली उल्ली राजस्थान सब घूम के आए थे।
1: अच्छा
0: आगरा उगरा
1: नहीं भाई, मैं आपको सजेशन दूंगा कभी छुट्टी पे प्लान करें भाई, बिकॉज ऐसे ना आदमी फिर वही है, इधर से उधर गया उधर से इधर आया बस, तो ऐसे फ्लाइट पकड़ने का नहीं, जाने का तो एक मकसद के साथ, समझ रहे हैं आपके, इस बार तो मैं ये करके रहूंगा, तो एक बार कोशिश करो, आई थिंक हो जाएगा। वो क्या ना आलस भी एक चीज होती है कमाल भाई, और कोई चीज नहीं है, कर लेंगे आप इंशाल्लाह।
0: आलस की बात नहीं है कभी भाई, यहाँ पे दो महीने की तीन जब तक ज्यादा छुट्टी मिलती नहीं है।
1: अंडरस्टूड, हम लोग यही हो जाती है। नहीं वक्त निकाले आप, मेरे दिल से दुआ है आपको जल्दी करना।
0: मालूम है आपको, यकीन नहीं करेंगे, मेरे को 10 साल के ऊपर हो गए अपने गाँव गए हुए।
1: अरे नहीं भाई ऐसा मत करो यार कमाल भाई, ये तो गलत बात है यार, ये गलत बात में आ जाता है।
0: दोनों घर में ताले लगे हुए, दोनों घर बंद पड़े गाँव के।
1: अरे ऐसा मत करो कमाल भाई, ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी, ये तो आपको जाना चाहिए मेरे भाई, यहाँ तो जाना चाहिए आपको,
0: जाना तो चाहिए। एक बार जो है गया था बेटी की शादी करने, टिकट उकट सब यहीं से ओपन करके गया था।
1: अच्छा
0: उस टाइम पे घर की रिपेयरिंग खोल दिया, टिकट कैंसिल करना पड़ा, उकर के वापस इधर आना पड़ा।
1: चूक हो गई भाई साहब, कोई बात नहीं कमाल भाई, मैं दुआ करता हूँ कि आपको मौका मिले और जल्दी मौका मिले, आपकी छुट्टी इस बार की सबसे बेस्ट छुट्टी हो, मेरे दिल से दुआ है मेरे भाई। और आज कहानी सुनिएगा, मजा आएगा आपको आज कहानी सुन के इंशाल्लाह।
0: बस भाई पता नहीं क्या, जब से आप सामने आए हैं ना
1: जी भाई,
0: तो मेरा भी जो है रेगुलर जो सामने ड्यूटी लग जा रही है, और अकेले ड्यूटी लग रही है।
1: अरे रे रे,
0: अभी भी गाड़ी में बैठा सुन रहा हूँ आपको।
1: अच्छा ठीक, ये मेरे खुश नसीबी भाई। ठीक है मैं शुरू करता हूँ, फिर कहानी शुरू करता हूँ। भाई के बाद एक और मैसेज, सलाम कबीर भाई कैसे हैं? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाएं क्या हाल है आपके। ये मैसेज क्या है जुमेरा तिरैन साहब ने, और एक सेकंड एक कॉल आ रही है उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम कबीर भाजी, की हाल चाल है?
1: बस जी बढ़िया। गावा जी क्या हाल है भाई के?
2: बढ़िया भाई, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड भाई का भी बढ़िया।
1: सिक्योरिटी गार्ड भाई एकदम बढ़िया चल रहा है भाई। ये तो बढ़िया था, मुझे लगा चिट्ठी लिख रहे, उम्मीद करता हूँ कि आप सह क्या होता है वो, कुछ हिंदी में बोलते ना, कुछ तो होता है, खैर एनीवे। गाबा जी कोई एडवेंचर बताओ यार, आप क्या करने का मन है आपका, इच्छा क्या है?
2: भाई कबीर भाई मैंने ना एक बार किया था रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में।
1: ओए होए, बढ़िया जगह पे जाके राफ्टिंग करी है भाई ने।
2: जी बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारी मूवीज भी हैं या सॉन्ग्स हैं जिनका शूट हो चुका है। एक्चुअली वो ट्रैक बहुत लंबा है ना पानी में।
1: हाँ
2: जी,
1: तो फिर करने की क्या इच्छा
2: तो
1: है?
2: बहुत मजा आया था कबीर भाई।
1: ये तो आपने कर लिया, करने की क्या इच्छा है और क्या रह गया है?
2: एक ना कबीर भाई मेरे को उस एक्टिविटी का नाम नहीं पता, वो ना पानी के अंदर एकदम से जाते हैं, जितना आप नीचे जाओगे ना जैसे स्प्रिंग होता है नीचे लगा हुआ, उतनी ऊपर आप दोबारा आ जाते हो पानी के ऊपर
1: है?
2: वो जो चीज है ना वो मैंने दोहा में भी देखी है, और जो बैंग बैंग मूवी थी ना ऋतिक रोशन की,
1: हाँ।
2: उसने लास्ट में भी सीन किया है समुंदर के अंदर।
1: अच्छा
2: मुझे उस एक्टिविटी का नाम नहीं याद आ रहा कबीर भाई।
1: ये कौन सी एक्टिविटी है यार, मैं तो स्कूबा डाइविंग पता है मेरे को, ये कुछ अलग बता रहे हो मुझे लग रहा है आप।
2: मैं आपको बताता हूँ शायद आपको समझ में आ जाए, मुंह के ऊपर ना कुछ अजीब सी चीज लगा रखी
1: होती है। ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा भाई मुंह के बाद, वही लगाया होगा।
2: ऑक्सीजन मास्क तो एक सिंपल हो गया ना, वो पूरी किट होती है वो।
1: ठीक है फिर क्या करते
2: तो
1: हैं उसमें?
2: एक चीज ऐसी होती है ना, आप जितना नीचे जाओगे
1: अच्छा
2: उतनी ही प्रेशर से आप ऊपर आते हो पानी के, दोबारा फिर आप जाते हो सिर के बल, ठीक है दोबारा फिर ऊपर आते हो। जब आप पानी के अंदर जाते हो सिर नीचे होता है, ठीक है जब आप ऊपर आते हो तो सिर ऊपर होता है आपका विद प्रेशर।
1: ये कौन सा है भाई, हमें क्यों नहीं पता लगा? अच्छा ये तो भाई देखना पड़ेगा,
2: ये दोहा में भी देखा है भाई।
1: अच्छा यार कभी सुना नहीं मैंने, चलो हो सकता
2: आज है। 10 साल पहले देखा है मेरे को कबीर भाई, नाम नहीं यार पकड़ में आ रहा। वो बैंग बैंग मूवी का आप सीन जरूर देखना लास्ट वाला, जो अच्छा। फाइटिंग सीन होता है डैनी के साथ
1: में। यार आपके चक्कर में बैंग बैंग का लास्ट सीन देखना पड़ेगा। क्या क्या दिन आ गया। अच्छा मैं देखूंगा डन, क्योंकि मुझे मुझे स्कूबा डाइविंग मैक्सिमम पता है, मुझे नहीं पता ऐसी भी कुछ है। अगर मुझे नाम पता लगे बताओ।
2: जंप करता है ना पानी में समुद्र में, तो मच्छी के जैसे करता है, ठीक है?
1: फ्लाई बोर्डिंग, फ्लाई बोर्डिंग हमारे एक संबुल बहन ने लिखा है, फ्लाई बोर्डिंग कह रहे हैं आप ऐसा कुछ ना?

0: आमेगा
1: फ्लाई, नहीं मेरे को नाम नहीं पता, मैं ऐसे ही आपको बोलूं, मेरे ना अभी पक्का मैं कंफर्म नहीं बता सकता, यानी कि वो एक एक्टिविटी टाइप ही है चीज।
0: अच्छा,
1: आप जाते हो मच्छी के जैसे पानी के अंदर,
0: हाँ,
1: और जब बाहर आते हो ना प्रेशर से मगरमच्छ के जैसे।
0: ओए होए, क्या अदाएं हैं। ठीक है, ये जरा देखना पड़ेगा भाई कि क्या है क्या नहीं है,
1: करनी है भाई मैंने।
0: करो भाई करो,
1: देखना ना भाई उसमें, देखना अभी थोड़ा
0: एंड का सीन है, गैंग वो
1: लास्ट का ना
0: फाइटिंग सीन
1: जो होता है।
0: ठीक है, मैं चेक करता हूँ, ये अभी चेक करना पड़ेगा।
1: बोट्स में लड़ाई होती है जो, बोट्स में।
0: डन हो गया भाई, ये मैं देखूंगा।
1: ठीक है भाई, आपने कुछ और पूछना हो मेरे से?
0: नहीं अब्बा जी, बस भाई दिन सेट कर दिया आपने, बस कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ भाई। मेरे कहानी तो सुन नहीं पाओगे, मुझे पता है सुनते तो हो नहीं आप, कई मरतब आपसे मिस हो जाती है।
1: भाई भाई भाई कबीर भाई सुनिए मेरी बात,
0: सुनिए ना।
1: मैंने ना एक दिन आपकी वो कहानी सुनी थी एविएशन वाली।
0: अच्छा,
1: यकीन मानिए भाई मेरे तो वो फीलिंग आ रही थी।
0: हाँ।
1: 65 इंची की एलईडी चल रही है, ठीक है, और होम थिएटर उससे कनेक्ट है।
0: हाँ।
1: और कमरे की लाइट ऑफ है भाई।
0: हाय हाय भाई, मेरा जांच में बोलिया
1: भाई। जी वो भाई आ रही थी ना, आप यकीन मानिए, एक ना प्रोग्राम आता था एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, यस यस, बहुत पहले आता था वो।
1: मेरे को यार कबीर भाई आपने यार उसकी याद दिलवाई,
0: मेरा भाई, मेरा भाई दिल जीत लिया भाई, आज शाम सेट कर दी भाई ने। भाई इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता काबा जी, अवार्ड है भाई।
1: एक बात और कबीर भाई, एक बात और, मेरे को ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता थी, ये साइंस या फिजिक्स के बारे में भी, हवा भी दो तरह की होती है
0: जी भाई,
1: जब जहाज में लैंड करना होता है और जो पीछे से प्रेशर देने वाली।
0: बिल्कुल भाई, टेल विंड और हेड विंड दोनों अलग अलग।
1: जी ये मुझे आपसे ही पता चला है भाई।
0: भाई पायलट बनने वाला है आपका भाई, लाइसेंस मिलने वाला, लाइसेंस वही लग रहा है भाई अभी तो।
1: हाँ। जिस दिन मेरा भाई पायलट बन गया ना,
0: हाँ।
1: उस दिन भाई ब्लैक बॉक्स का नाम क्या होगा मना बेरा नहीं है।
0: जाज तेरा भाई उड़ाएगा।
1: भाई हम लोग उड़ाते हैं कबीर भाई कभी कभी, आपको पता ही है शाम के बाद।
0: हाँ वो तो बनता है भाई, तभी तो धरती पे चलेगा आदमी अगले दिन, जब तक उड़ाएगा नहीं धरती पे कैसे आएगा, जरूरी है।
1: जी भाई ठीक है भाई, टाइम हो गया, मजा आया भाई,
0: थैंक यू सो मच मेरा भाई, बहुत प्यार का बाबूजी को, थैंक यू,
1: थैंक यू मेरा सिक्योरिटी गार्ड भाई,
0: ओके मेरा भाई,
1: लव यू भाई,
0: लव यू मेरा भाई, लव यू, थैंक यू सो मच भाई। तो भाई काबा जी ने तो बता दिया भाई, एक और कॉल करनी है, ये हमारे तला भाई है, जल्दी से इन्हें कॉल कर दें। चल है भाई, एक सेकंड, नंबर ही गलत मिला रहा हूँ मैं इनका। तला भाई देख रहे हो, ज़्यादा ब्रेक दोगे नहीं आओगे शो में तो ये हो जाता है, समझ रहे हैं तला भाई, ये बड़ी अजीब सी परेशानी है। एक सेकंड भाई, इनका नंबर तो मैंने मिलाया था, मिला क्यों नहीं, मिल जा भाई, शायद मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: हाँ जी पार्टी, क्या हाल है
2: भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सही है भाई, तुम नंबर ही गलत मिला होगा ना हमारा, तुम
0: सही है भाई, प्यार का दुश्मन, हाय हाय,
2: जहाज उड़ाने के लग गए तुमने तो कसम से, ये जब से तुमने क्रंच कंटेंट देखने शुरू करे ना, तुम करते जा रहे हो
0: भाई, बढ़िया एकदम थ्रिल आ रही है क्रंच कंटेंट वो कंज्यूम करने में, एकदम बढ़िया वाली।
2: मैं जो भी लाओ दिखलाना, जो देखो शेयर करना।
0: अब डन भाई, ऐसा ऐसा शेयर करूंगा ना, ऐसा लगा पूरी ऐसा भी मार दूं टीवी पे।
2: भाई बेहतरीन, और देखो अगर ये देखते हुए पकड़े जाओ और भाभी घर से निकाल दे या घर से निकाल दे, तो भाई का घर हाजिर है, फैमिली गई हुई है पाकिस्तान
0: भाई, तभी तो फोन पे देखता हूँ, तभी तो फोन पे देखता हूँ।
2: अच्छा
0: हाँ,
2: सही है,
0: सिक्योरिटी गार्ड को पता है सिक्योरिटी कैसे बनाए रखनी है।
2: बस बस भाई, मैंने कहा अगर फंस जाए तो मसला नहीं है भाई, यहाँ आ जाना, मौज करेंगे दोनों भाई मिलके, जहाज उड़ाएंगे।
0: और मेरा भाई बैचलर हो रहा, कति बैचलर जिंदगी चल रही है
2: बैचलर भाई, मैंने भी 3 गेम खत्म कर दिए, हम समझ जा रहे करूं मैं करूं क्या
0: भाई, तब तो बेरा में बहुत ज्यादा जला करूंगा ये ऐसे लोगों से। बैचलर, ये बैचलर जिंदगी कब तक है
2: भाई? अगस्त तक है, अगस्त
0: का। अरे मेरा भाई, ए क्या बात है,
2: गेम खत्म कर दी है, सीरीज खत्म कर दी, अब समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं का, रिपीट पे चल रहा हूँ,
0: दीवारों पर पेंटिंग चालू कर दो भाई अब तो।
2: भाई कर दी वो भी कर दी, एब्स्ट्रैक्ट तो आपके भाई ने ऐसे मना है, तुम जाने से पहले बता देना मैं पर्दा काट दूंगा।
0: ये बढ़िया है, ये बढ़िया है भाई, पता लग रहा है तला भाई की आवाज में ठहराव, सुकून, और ना जाने क्या क्या आ गया है। वाह
2: भाई बहुत मिली है यार, मैंने कल तो माशाल्लाह आपको भाई 14 घंटे सोया, अब समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। 14 घंटे सोने हैं, 2 घंटे लेगा वो, मैं सोच रहा हूँ उठूं नहीं
0: भाई, ये हाइबरनेशन में जा रहे हो, चक्कर क्या है, वेल वेल हो,
2: मैं फर्नीचर का हिस्सा हो जा रहा हूँ भाई तेरी तरह कसम से।
0: मुबारक हो, मुबारक हो, सेम पार्टी में।
2: जिस्म का पोर्ट्रेट बनना बन गया सोफे पे और बेड पे।
0: अब वो जो कुछ दिन बाद
2: बैठोगे आप जो बना हुआ है ना उसी पे बैठ रहे हो जाके,
0: 10-20 दिन बाद ये कहना पड़ेगा। अब ये है आनंद भाई।

0: आनंद भाई सोचने समझने की ताकत खो चुके
1: मैं सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, बता रहा हूँ
0: ये सब्जेक्ट अब सोचने समझने की ताकत
1: हाँ, वही कह रहा हूँ ये सब्जेक्ट है समझ नहीं आ रहा मुझे अब करना क्या यार, जो अगस्त तक क्या करना पड़ेगी, कोई दो रोड प्लान दो, कोई मैप दो
0: भाई, ये तो ये जिंदगी में मेरे हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं क्या करना है। वही ना, मैं एक तो आपको खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं समझ रहा हूँ पहली बात तो ये हो गई, उसमें आप मेरे से पूछ रहे हो रोड मैप कैसे बताऊं मैं, ये तो बड़ी दिक्कत है। नाखून बढ़ाओ, नाखून बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ, जब भाभी डर जाएगी क्या है?
1: अबे भाई छुट्टी पे गए घर वाले, कोई ताहयात नहीं चलेगा, तो कबीर सिंह बना रहा हूँ
0: जब भाभी आए घर में तो बिल्कुल बंदा केव मैन हो पड़ा है
1: अपने आप को, अभी तेरा नाम वाला सलमान खान सोचना शुरू कर दिया था, अल्लाह रहम करे
0: भाभी के गेट खोलते आते के साथ ही लगने लगने लग गई है
1: उसने दो महीने और दोबारा चले जाना दरवाजे से वापस का बच्चा बंद तब तक मैं नहीं आ रही
0: कि सॉरी भाई साहब गलत घर में आ गई
1: अरे मैं हूँ, मैं पहचाना नहीं पहचानो
0: अरे भाई चलो भाई
1: तुमसे तो मशवरे कसम में किससे ले रहा हूँ मशवरे यार,
0: आप बताओ बताओ भाई, लोग जो सुन रहे हैं जब तक मैं गाने सुनाऊंगा, तला भाई के लिए आप प्लीज कुछ सजेशन दें, बहुत खाली हैं ये
1: पानी। हाँ मैं आखिरी चीज बोलूंगा यार, मैंने रैप सुना जानू, मजा आ गया चस्ता आ गई कसम से।
0: अरे मेरा भाई बहुत प्यार तला भाई,
1: क्या जाने मन क्या रैप बनाया ले भाई,
0: मेरा भाई
1: क्या गा दिया भाई तुमने,
0: अरे मेरा भाई
1: आखिर रही है, इसके बाद गाने का नहीं समझा,
0: इसके बाद नहीं, मैंने छोड़ दिया भाई, खत्म खत्म, आखिरी है भाई, जेनिथ रीच कर लिया मैंने, इसके ऊपर नहीं भाई,
1: बर्बादी हो ना पाएगा,
0: डन है ये,
1: मोहल्ल पे अकेला बंदा रैप सुन रहा है, यकीन करो मेरा, मेरी तो दीवारें थरथरा गई, मेरा चल रहा है,
0: क्या बात है तला भाई, शाम सेट कर दी भाई ने, भाई को बहुत सारी दुआएं, बढ़िया जाए।
1: अबे सबको ये लाइन बोलता भाई तू,
0: अब भाई तो बोलनी तो पड़ेगी, जब लाइन ही यही है, दिल से बोल रहा हूँ,
1: ये बात बोलता यार तू, कोई नहीं ला, अभी पिछले वाले भाई को भी यही बात बोली, शाम सेट कर दी भाई,
0: तो शाम सेट हो गई भाई, शाम सेट हो गई है सच में,
1: चलो चलो तुम्हारा वीकेंड भाई, वीकेंड को टाइम निकालो, मुझे नहीं पता, मैं आ जाऊंगा गिले वो शीशे वाली बिल्डिंग के सामने, आ जाओ
0: डन डन डन डन,
1: एकदम पेस्ट तुम्हारी,
0: ठीक है तला भाई, चलो मैं कहानी सुना रहा हूँ, टाइम भी जा रहा है, कहानी सुना, ठीक है ओके मेरा भाई,
1: चलो भाई अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो भाई तला भाई की बात, कुछ कॉल्स मुझे मिस हो गई हैं, आई एम रियली सॉरी, करीम शाह साहब की भी कॉल मिस हो गई है, मैं कुछ देर में कॉल लगाऊंगा सबको भाई, ये बंदा नहीं, ये तो पीछे पड़ गए, एक मैसेज, सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, बढ़िया, ठीक है, तो मैं आप कहानी शुरू कर रहा हूँ कि तला भाई के लिए कुछ नया सीखें, वही तो मैं माजिद भाई इनसे कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं ये क्या होता है, क्रिंज कंटेंट जिसे देख के आपको लगता है अरे इन लोगों को तो गुद्दी बस एक धूम है, पर फिर भी आप देखते हैं, एक मैसेज है भाई, हमें भी अपने साथ शामिल करो, आपका वीकेंड कैसा रहा भाई, बढ़िया, उमर शहजाद भाई एकदम बढ़िया, वो भाई कह रहे हैं फ्लाइंग बोर्ड, ओके हाँ फ्लाइंग बोर्ड ही कह रहे हैं वो, ओके तो मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ बस एक प्रोमो के बाद, एंड लेट्स बिगिन विद द स्टोरी, आई थिंक एक काम करता हूँ, प्रोमो भी छोड़ो, मैं अपना जिंगल ही चला देता हूँ अपना वाला, उसके बाद जो है कहानी शुरू करते हैं, रेडी हैं आप, जो जो लाइव सुन रहे हैं प्लीज़ ज़रा हाथ खड़ा कर दीजिएगा इफ़ यू कैन, अगर आप ड्राइव करें तो प्लीज़ ड्राइव सेफली, डोंट बॉदर, ओके।

क्यों? खैर अभी तो मेरे एग्जाम देने का वक्त है, आपको कहानी सुनानी है, सो आई होप यू ऑल आर रेडी. सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है. कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है. फोन 7 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा. लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज भी, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. सो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई मैंने नहीं बताया एंड अब मैं कर रहा हूँ शुरू. सो वॉल्यूम बढ़ा ली जाए.

मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और जो लोग अभी इस कहानी को ट्यून इन कर चुके हैं वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसमें, मैं एक एक करके एक एक डिटेल पे जाऊंगा। ओके, तो आज का किस्सा शुरू करने के लिए जरा 6 साल वक्त में पीछे चलते हैं। आज का किस्सा शुरू होता है साल 2020 से, साल 2020 अप्रैल का महीना और अर्ली मॉर्निंग। इस वक्त एक 25 साल की औरत, एक 25 साल की लड़की औरत, वॉट एवर यू वांट टू कॉल, तो 25 साल की खातून जो थी जिनका नाम था रोजा सेंचेस, वो हॉस्पिटल के एक बेड पे थी, और ये हॉस्पिटल का बेड था नेशनल मेडिकल सेंटर लीमा पेरू में। कमरे में उनके इर्द गिर्द डॉक्टर्स और बहुत सारे स्ट्रेंजर्स थे उस जगह में मौजूद जहां पर ये थी, और उन्हें बहुत ही वेगली उनकी बातें और उसे समझ में आ रहा था, और वो लोग रोजा को ऐसे देख रहे थे जैसे ये कोई मेडिकल अनोमली हो, मतलब कुछ अजीब सा ही देख रहे हैं वो। और रोजा जो कि अभी हॉस्पिटल के बेड पे थी, वो उन्हें अटेंशन पूरी तरह से दे ही नहीं पा रही थी। उसके पीछे एक वजह थी, रोजा के पेट में बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और उसने कई मरतबा डॉक्टर को बोला कि आई फील लाइक आई एम रॉटिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से सब कुछ जो है वो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है। एंड शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, और ऊपर से इस दर्द के अलावा, फिजिकल पेन के अलावा, रोजा डिप्रेशन और गिल्ट में भी थी। उसके पीछे एक वजह थी, कुछ महीनों पहले रोजा सेंचेस एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी, एक हैप्पी कॉलेज स्टूडेंट थी और पढ़ाई कर रही थी फॉर अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कॉलेज में एक किस्म की बीमारी फैली, काफी मिस्टीरियस बीमारी, और वो फैलती चली गई, किसी के समझ में नहीं आया कि बीमारी है क्या, और ये बीमारी जो थी रोजा को भी हो गई, और रोजा को इस बीमारी ने सबसे ज्यादा बुरी तरह जकड़ लिया। इतनी बुरी हालत हो गई रोजा की कि रोजा को कॉलेज छोड़ना पड़ा, और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो अपने माँ बाप के साथ रहेगी और अपने दो छोटे भाई बहन के साथ, ताकि उसको दर्द कम महसूस हो और कोई उसका ख्याल रख सके। मगर वो जब घर आई तो यह बीमारी रोजा सेंचेस से हफ्ते भर के अंदर पूरे खानदान को लग गई, और विद इन 12 to 13 days पूरी फैमिली दुनिया से चल बसी, पूरी की पूरी फैमिली, दे ऑल डाइड, बट रोजा बच गई, रोजा सेंचेस वाज स्टिल अलाइव। इसीलिए डिप्रेशन में थी वो, उसे ये खुद पता था कि उसकी जान भी बस निकल ही रही है, लेकिन वो एक गिल्ट में थी कि उसकी वजह से उसके खानदान में भी कोई बचा नहीं है। तो रोजा खैर इस वक्त हॉस्पिटल की बेड पे गिल्ट में, फिजिकल मेंटल दोनों पेन में थी, एंड शी कुड बेयरली अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसे कोई भी कुछ बोल रहा था तो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस बुरी तरह से रोई जा रही थी। इनफैक्ट रोने की ताकत भी इतनी खत्म हो चुकी थी कि वो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, बट शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। एक डॉक्टर जो था, जो मेजर डॉक्टर थे यहाँ पे, वो आए आगे, उन्होंने चेयर सेट करी बेड के साइड में रोजा सेंचेस की, और फिर बात करना शुरू करी। उन्होंने बोला कि आपके ब्लड वर्क और स्कैंस जो है वो आ चुके हैं रोजा, एंड सब के सब नॉर्मल है, आई जस्ट डोंट नो कि क्या हुआ है। और वो बोल रही थी, डॉक्टर आई मीन पेन, आप समझ क्यों नहीं रहे, आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, प्लीज डू समथिंग। एंड डॉक्टर साहब वॉज कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस बीमारी ने जकड़ लिया। डॉक्टर साहब जो सोच रहे थे, तो उन्होंने एक लंबा पॉज लिया बात सुनने के बाद रोजा सेंचेस की, और फिर बोले कि आई थिंक हम एक और स्कैन कर सकते हैं, ये नॉर्मल स्कैन से हटके होता है, इससे कुछ एक्स्ट्रा पता लग जाएगा, जिसे कहते हैं स्पेक्ट स्कैन। सो डॉक्टर ने बोला कि स्पेक्ट स्कैन करेंगे, तो रोजा ने, इससे पहले रोजा पूछ पाती डॉक्टर साहब ये क्या होता है, तो डॉक्टर ने बताया कि स्पेक्ट स्कैन में होता ही है, स्कैन में कि एक रेडियो एक्टिव चीज होती है, सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक मशीन पर मरीज को लिटाया जाता है, और जो बॉडी के अंदर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गया है, वो जो चीज बॉडी के अंदर है, उसे ट्रैक किया जाता है कि वो किस तरफ जा रही है, उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। अब इससे

होता क्या है इस वाले स्कैन से, इसमें जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ कैसे किधर फंक्शन कर रहे हैं इन रियल टाइम, सब कुछ समझ में आता है. तो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट रिजॉर्ट. ये लास्ट चीज है जो डॉक्टर्स कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इट इज 2020, टेक्नोलॉजी इज नाउ वे फॉरवर्ड. और 6 साल पहले की ही बात है, तो तब भी पता नहीं लगा पाना वॉज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. और हाँ, करने के अलावा इस स्कैन के लिए रोजा सैंचेस के पास कोई और चॉइस नहीं थी, सो शी सेड यस. और फिर आंखें बंद करके लेट गई. 1 घंटे के बाद, तमाम तैयारियों के बाद, रोजा सैंचेस जो थी वो एक बड़े से लंबे से प्लेटफॉर्म पे उन्हें लिटाया गया. इस वक्त वो ठीक बाहर थी स्पेक्ट स्कैन की मशीन की, जो इस मशीन का शेप था ये डोनट की शेप में थी. तो उसके बाद उन्हें कहा गया, यू रेडी? उसने कहा, यस डॉक्टर, आई एम रेडी. डॉक्टर ने बहुत ही केयरफुल होने के लिए कहा और ये कहा कि सुनो रोजा, बॉडी में तुम्हारे वो सब्सटेंस हमने इंजेक्ट कर दिया है, इस पूरे स्कैन में 30 मिनट लगेंगे और तुम्हें कोशिश ये करनी है कि जब हम मशीन में तुम्हें भेजेंगे तो प्लीज हिलना डुलना नहीं है, कोशिश करना यू स्टे एज यू आर, कोई हाथ पैर नहीं चलाने वरना रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, तो मेक श्योर ज्यादा हिलने डुलना ना हो. रोजा ने अपने दर्द को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करी और फिर कुछ देर के अंदर शी वॉज इन द मशीन. उसकी आंखों के सामने सिर्फ व्हाइट कलर था चारों तरफ. कुछ मिनटों तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से वो दर्द जो सहा नहीं जा रहा था वो दर्द बहुत बुरी तरह उठा, और वो भी तब जब रोजा मशीन में थी. और ये एब्डोमिनल पेन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, हम सभी जानते हैं. और ये जब पेन उठा, शी कुडंट हेल्प और वो जोर से चिल्लाई. जब वो जोर से चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, तो उसे बाहर खींचने से पहले डॉक्टर ने सबसे पहले मशीन को बंद किया, मशीन ताकि पूरी तरह से बंद हो जाए. और फिर वो पैनिक अटैक आया उसको और फिर एवरीथिंग वाज जस्ट गॉन ऑल ब्लैक एंड शी डाइड. मगर एक चीज हुई इस दौरान कि स्कैन जो था उसमें एक मसला पता लग चुका था, और स्कैन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आई. स्कैन में जो चीजें पता लगी वो ये थी कि रोजा व्हेन शी वाज अलाइव, उसके साथ एक प्रॉब्लम थी लो ब्लड प्रेशर की, जिस वजह से हो ये रहा था कि ब्लड का जो फ्लो था वो ब्रेन से कई सारे हिस्सों में और ब्रेन तक इनफैक्ट नहीं पहुंच पा रहा था ठीक से, और काफी सारे सिम्टम्स सामने आ रहे थे. पर एक अच्छी खबर थी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा. अच्छी खबर यह थी कि अब डॉक्टर्स को पता था कि क्या हुआ है, तो जो मेन डॉक्टर थे वो गए पास में रोजा के, और रोजा को सिर्फ एक बात बोली, बल्कि सबने बोल दिया कि शी इज नॉट अलाइव. लेकिन डॉक्टर ने बोला, रोजा उठ के बैठिए. सबके सब जो कमरे में थे वो डर गए कि हैं डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, कि वो तो जिंदा ही नहीं है. डॉक्टर साहब ने फिर से बोला, रोजा उठ के बैठिए. एंड वो उठ के बैठ गई. रोजा को एक बहुत ही ज्यादा रेयर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था. इनफैक्ट एक नहीं दो थे. पहला था कथार्ड सिंड्रोम. ध्यान से सुनिएगा, कथार्ड सिंड्रोम में होता यह है कि इंसान को लगने लगता है कि उसके अंदर सब कुछ खराब हो रहा है, सड़ने लगा है, ऐसा उसको लगने लगता है. और उसे एक और चीज लगती है कि वो मर गया है, ऐसा इंसान को लगने लग जाता है. आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड पर यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट इट, जिसे कथार्ड सिंड्रोम कहते हैं. और दूसरा एक और सिंड्रोम था, एक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था रोजा को, जो था केप
कैपग्रास सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम में एक और परेशानी होती है, जो परेशानी रोजा को थी। रोजा को क्या लग रहा था कि उसके घर वाले उसकी वजह से, उसकी बीमारी की वजह से सेम बीमारी की चपेट में आए और मर गए, मगर कोई नहीं मरा। रोजा को यह भी लग रहा था कि घर वाले मर चुके हैं और अब उनके क्लोन्स हैं जो बनकर आए हैं, जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। ये सारे स्ट्रेंजर्स, ये सारे अजनबी हैं, इनमें से कोई भी इसके घर वाला नहीं है, सारे के सारे क्लोन हैं। एंड ये रोजा को बताना बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज रोजा का दिमाग जो है, ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, ना, शी इज नॉट एक्टिंग, इट इज अ वेरी रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैथार्ट सिंड्रोम और कैपग्रास सिंड्रोम। इन दोनों की वजह से उसको सच में यह लग रहा था कि उसके अंदर कोई परेशानी है, जबकि कुछ भी नहीं थी। रोजा फिजिकली एकदम ठीक थी, मगर अब शुरू करनी थी उसकी थेरेपी, एंड दिस वॉज द बिगेस्ट टास्क। एक होता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, इंसान झूठ बोल रहा है, और आप उसको शायद डांट के, सुना के, प्रॉपर्टी से बेदखल करके, घर से निकाल के, तमाम चीजें करके, हो सकता है उसे लाइन पे आप ला सकें, हो सकता है। मगर जब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, व्हेन इट इज लिटरली प्रूव्ड, तब आप क्या करेंगे। और ये परेशानी थी रोजा सांचेस के साथ। एंड रोजा सांचेस को एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही रेयर किस्म की एक चीज दी गई करने के लिए प्रैक्टिस, और वो थी मिरर प्रैक्टिस, खुद से बात करने की प्रैक्टिस। और कहा गया कि खुद से बात करते रहो। दिस बिकेम अ लिटरल स्टडी। ऐसा नहीं कि पहले इस बारे में किसी ने बात नहीं करी थी, मगर नाउ इट इज वेरी वेल प्रूवन कि अगर आप खुद से हेल्दी बात करते हैं, आप खुद से नेगेटिव बात करते हैं, दोनों ही बातों का असर आपके दिमाग पे डायरेक्ट पड़ता है। कुछ हफ्तों के बाद शी वॉज फाइन, शी स्लोली स्लोली रिकवरिंग। आज भी रोजा सांचेस इज अलाइव एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस, लेकिन अभी कम हो गया है, शी इज बेटर नाउ। ऐसा कुछ पेन नहीं उठ रहा है, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अभी भी है, बट शी इज डूइंग ओके। मगर इससे जो स्टडी सामने आई है वो पुरानी स्टडीज को एक्सटेंड करती है और कुल मिला के यही कहती है आपसे कि जो भी आप बात खुद से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वट एवर दैट यू टॉक अबाउट टू योर ओन सेल्फ, बाकियों से नहीं, बाकी तो गप्पे लड़ाइए, कुछ भी करिए आप, लेकिन जो बात आप खुद से करते हैं, खुद से कहते हैं, इससे दो चीजें होती हैं। एक तो यू कैनॉट लाई टू योर ओन सेल्फ, इट कैन नॉट हैपन। दूसरी चीज इसकी बिल्कुल ऑपोजिट, यू कैन लाई टू योर सेल्फ। दोनों ही चीजें, तो एक है खुद से सफेद झूठ बोलना और एक है खुद से झूठ ना बोलना। दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही चीजें आप पे असर करेंगे। सो आप ये नहीं कह सकते मैं खुद से कभी बात ही नहीं करता, ऑब्वियसली वी ऑल डू इट एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। कुछ लोग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग इंटरनल मोनोलॉग चल रहा होता है उनका दिमाग में, कुछ लोगों का नहीं चल रहा होता, विच इज ओके। पर अगर आप खुद से बात करते हैं, ये स्टोरी आपके लिए है। आई नो ये स्टोरी छोटी है, मगर ये केस बहुत रेयर है, और ऐसा केस पता नहीं इससे पहले या इसके बाद कभी आएगा, मुझे मिलेगा, मैं आपको सुना पाऊंगा कि नहीं, मगर क्योंकि सामने आया तो बता देना चाहता हूं। इफ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, प्लीज खुद से बात कीजिए और अच्छी बातें कीजिए, बिकॉज आई नो कि खुद से हम झूठ तो नहीं बोल सकते ब्रो। तो ये आज का छोटा सा किस्सा था, विच हैड समथिंग टू गिव टू यू एट द एंड, तो मैंने कहा क्यों ना इसी से शुरुआत की जाए। सो अगर आपकी ये चीज पल्ले पड़ी और कहानी आपको अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, ओके, 666-22-107 पर इंतजार रहेगा मुझे आपके मैसेज का, बिकॉज ये कहानी वो समथिंग स्पेशल।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जी, 6:04 हो लिए और आज की कहानी तो आपने सुन ली है, और आपने अगर सुन ली है तो मुझे बताइएगा कैसे लगी, बड़ा ज़रूरी है भाई। देखो ये कहानियाँ ना ऐसी नहीं मिलती है, मैंने तो शुरुआत में कह तो दिया मेरे को कहानी ढूंढनी नहीं पड़ती, कहानियाँ मुझे ढूंढती है, पर कहानियों को ढूंढना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। कॉल आ रही है, रुकिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम भाई, यो क्या हो रहा है भाई?
3: भाई यो वही हो रहा है, कति चाड़ा पड़ रखा भाई, और बताओ।
4: भाई मार के जिंदा कर दिया यार,
3: यहाँ तो
4: पहले जिस तरह कहानी आपने स्टार्ट की ना, सारे खानदान वाला सारा मार दिया मैंने, ये तो कोरोना का टाइम चल रहा भाई। और जिस वक्त आगे आपने जिंदा कर दिया ना, चला यार ये सिचुएशन क्या सिचुएशन, बाकी बड़ी डार्क चल रही।
3: क्योंकि पहले मैं सीधा सीधा सुनाने वाला था कहानी, मैंने कहा नहीं, ये काम करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से सुनाते हैं जो उसे लग रहा था, उसके पर्सपेक्टिव से सुनाया मैंने और फिर बाद में चेंज कर दिया, क्योंकि अगर मैं सीधी सीधी सुना देता तो फिर वो बड़ा अजीब सा जाता। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव लेते हैं, उस लड़की का
4: कहानी का मजा भी आया और उस बेचारी पे क्या बेहतरी होगी।
3: हाँ यार, मतलब
4: अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे लोग होते ना भाई, वो हम लोग वो झूठ को सच मान बैठते हैं।
3: हाँ,
4: उनके सामने जो चीजें वो लोग फील कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं हाँ बस यही है।
3: हाँ,
4: ठीक है।
3: हाँ,
4: और ऐसा एक केस मैंने बंदे को अपने आंखों के सामने अपने करते हुए देखा, बोलता यार मेरे को मेरी मम्मा बोल रही है अपना हाथ काट लो।
3: हाँ, ये भी होता है। हाँ, हाँ,
4: वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी इतना हुआ था।
3: हाँ,
4: कि आता कि सही यार, अराउंड 30+ एज का बंदा था।
3: अच्छा,
4: ठीक है।
3: हाँ,
4: और हमारे साथ मार्केट में उठता बैठता था, बस वल्ला आलम क्या हुआ उसको, कोई फैमिली का इश्यू चल रहा था उसका।
3: हाँ,
4: तो रात तकरीबन 1-2 बजे के टाइम वो घर से उठ के निकल गया।
3: हाँ,
4: अच्छा रात पूरी नहीं मिला, जिससे अगर सुबह हुआ तो मार्केट में वापस आया। ठीक है, सारों से ऐसे मिला जैसे वो आज करके आया हो। ठीक है। हाँ, मिलने के बाद किसाई की दुकान पे गया, उसको बोलता है भाई आपसे ही आपकी छुरी चाहिए, इतने तमीज से बात करा, कभी इसने तमीज से बात की नहीं भाई।
3: हाँ,
4: सारा पूरा मोहल्ला परेशान था कि हुआ क्या, मार्केट पूरी। खैर, जिस वक्त उसने छुरी मांगी, भाई आपसे छुरी चाहिए, अब वो बंदा देख रहा उसको, यार इसको छुरी से क्या काम, और मेरी किसाई वाली छुरी तेज है लग जाएगी फायदा। तो उसने पहले मना किया, बोला भाई आपको मैं प्यार से बोल रहा हूँ दे दीजिए। अब उसके मुंह की तरफ देखिए, वाकई प्यार से बोल रहा है कि इसको दे देनी चाहिए। खैर, उसने दूसरी छुरी उठा के दी, तो वो फटाफट अपना हाथ काटने लगा, तो साथ एक अंकल खड़े थे, उसने हाथ पकड़ लिए, बोला क्या बोलते, मेरी मम्मा खड़ी है यहाँ पे। आता उसकी वालदा को जिस वक्त वो मेरे ख्याल से 10-15 ईयर्स का था, उसकी वालदा फोत हो गई ना, लेकिन ये है कि इन चीजों को संभालना, बाकी वो डॉक्टर्स जो थे जिन्होंने बोला कि आप उठो, क्या नाम था लड़की का, नाम भूल गया, रोजा,
3: रोजा सेंचेस नाम था उनका।
4: हाँ, रोजा सेंचेस, जब उसने बोला ना रोजा आप उठो, उठ कर बैठो, तो बाकी जिस तरह हैरानी से देख रहे थे, मुझे लगता है कि हम लोग जो कहानी सुनने वाले सारे बाकी लोग वो भी क्यों हैरानी से मरे हुए बोल रहे
3: हैं भाई, भाई डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप। नहीं भाई, शुक्रिया भाई कि आपको
4: मजा आया भाई,
3: थैंक यू सो मच भाई,
4: थैंक यू आपका भाई, आप लेकर आते हो हमारे लिए कहानियों,
3: जजाकअल्लाह मेरे
4: भाई, बहुत शुक्रिया,
3: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू भाई, ओके भाई। और भाई की बात, एक जरा और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, कैसे हो?
3: बढ़िया भाई, आप सुनाएं क्या हाल है?
5: बंद नहीं हुआ क्या?

0: क्या बंद हो गया?
1: रेडियो,
0: रेडियो के बंद हो गया? अरे चल तो रहा है, क्या हो गया?
1: फोन पे था ना,
0: अच्छा
1: फ्रिक्वेंसी नेट पे बैठने में।
0: यूं? हाँ बोलो, अब बताओ।
1: अब समझे,
0: बोलो।
1: मैं पानी लेने के लिए गया, कहानी खत्म हो गई।
0: तो ये छोटी थी भाई।
1: हाँ यार, मैं डॉक्टर तक ही पहुंचा कि वो डॉक्टर उठा रहा है उसको, उसके बाद आके देखा आपका जिंगल बज रहा है।
0: ऐसे ही है भाई। नहीं आज आज ये कहानी ऐसी थी ना कि मुझे भी पसंद थी, छोटी थी, पर मैंने कहा नहीं यार छोड़ूंगा तो नहीं, मैं ये
1: आजकल
0: सब्जेक्ट ऐसा
1: कहानी
0: है
1: बहुत छोटी ला रहे हो आप।
0: भाई साहब। इससे पहले सारी कहानियां 30, 31 और 29 मिनट की हैं, आप आ जाए हैं ठीक है। ये वो वाली बात है पता है, वो जो कस्टमर स्कैम नहीं करता दुकान में जाके, भैया आप क्या सही लेते हैं, हम तो सामान और आए नहीं होंगे आज तक। ये वही वाले कस्टमर हो
1: सबसे
0: तुम।
1: कमीर भाई, मैं रोज एवरीडे प्रेजेंट हूँ, लेकिन ये है कि कॉल्स का कभी टाइम मिलता है नहीं
0: अरे
1: मिलता है।
0: पकड़े गए आज तुम, पकड़े गए।
1: सच में नहीं,
0: प्यारी समझ
1: एवरीडे
0: गई।
1: प्रेजेंट हूँ मैं। हाँ बाकी बल्कि आज मैंने एक शो मिस कर दिया, वो भी सर्वर भाई थे नहीं तो इसलिए वो मिस करना पड़ा।
0: हाँ सर भाई तो अभी छुट्टी में गए हैं, मौज कर रहे हैं, वो
1: तो
0: मौजे दरिया में हैं अभी वो।
1: हाँ बस आज वो शो मिस हो गया, अदरवाइज यार रेडियो हो नहीं रहता क्योंकि काम ही ऐसा है तो क्या कर सकते
0: नहीं
1: हैं,
0: भाई बहुत
1: थोड़ा
0: शुक्रिया,
1: कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना मेरे भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसी बात के तो पैसे हैं, सही बात है बिल्कुल, ये मिलता
1: बिल्कुल सच
0: रहेगा
1: बात है, इसी बात के पैसे हैं भाई।
0: मिलता रहेगा भाई, एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा, फुल मिलेगा शुभ भाई। पर कहानी कैसी लगी आपको वैसे ये बताएं।
1: कहानी यार मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा सस्पेंस है क्या है। फिर यार मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं वो वहां तक पहुंचा जहाँ तक तो वो डॉक्टर आता है, वो उठाता है, उसको पता चलता है उसके अंदर कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजी वाली। बस वहां तो बहुत जोर की प्यास लगी थी मुझे, मुझे वकालत दिखा, मैंने यार पहले पानी पी लेता हूँ। मैं
0: ओके।
1: अंदर गया और वहां बसाया तो आपका जिंगल बज रहा है। चलो
0: अरे रे रे बेचारे, चलो भेज देता हूँ मैं कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेजता हूँ।
1: कोई नहीं, आराम से भेजना, फिर उसके बाद
0: डन
1: देखता हूँ मैं क्या हुआ सीन, समझ
0: डन
1: में
0: है
1: नहीं
0: भाई,
1: आया मेरी।
0: डन डन, अच्छी बात है, यही मैं चाहता हूँ सुनना, अभी समझ में आ जाएगा ठीक है।
1: नहीं नहीं कोई चीज अगर सस्पेंस में रह जाती है ना तो पेट के अंदर से फिर मतलब वो होने लगता है, यार हुआ क्या, क्या हुआ यार,
0: वेरी
1: हुआ क्या
0: गुड,
1: होगा।
0: मैं अपने आपको शाबाशी दे रहा हूँ अगर ऐसा हुआ है तो, बढ़िया भेजता हूँ फिर
1: वो
0: मैं।
1: मूवी देखी आपने बॉबी देओल की गुप्त,
0: हाँ
1: उसमें पूरे मूवी में ये पता नहीं चलता किलर कौन है। मतलब हम लोग गैस करते रहते हैं यार ये किलर है वो किलर है, लास्ट में कौन निकलता है बताओ मुझे।
0: अब वो तो भाई देखो ऐसी ही मूवीज है ना, तो इसीलिए मैं इस अभी जो भेजूंगा ना ऐसे भी एंड ऐसे ही है। आपने जहां तक सुनी है ना, मुझे पक्का यकीन है कि आपने कहीं और सोचा होगा कहानी को, और कहीं और ही जाएगी, यही ब्यूटी है इसकी। अभी बताता हूँ मैं आपको ठीक है?
1: चलो भेजना मेरे को। हाँ
0: ठीक है डन मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके मेरे भाई, थैंक यू बॉस।
0: ओके भाई बॉस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शिव भाई के बाद एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, हुसैन बात कर रहा हूँ भाई,
0: जी
2: क्या हाल चाल।
0: हुसैन भाई, बढ़िया भाई एकदम, आप सुनाए मेरा भाई।
2: सब बढ़िया है भाई, मैंने कहानी सुन पूरी
0: हाँ
2: सुनी एकदम बढ़िया से, और
0: ठीक है।
2: मैं इस पे ये सोच रहा था कि ये आज के जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहानी बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई,
0: बिल्कुल
2: जो
0: है
2: लोग
0: भाई।
2: खास के अकेले रहते हैं
0: हाँ
2: क्योंकि उनपे ज्यादा असर करता है, ये जो सिंड्रोम वॉटरड्रॉप जो भी है
0: हाँ
2: वो असर करता है, क्योंकि लोग अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं बहुत ज्यादा।
0: हाँ आप भी तो खुद अकेले सोचते होंगे कुछ ना कुछ, हुसैन भाई आप भी तो कुछ ना कुछ सोचते होंगे।
2: बिल्कुल हम लोग बहुत सोचते ना, इसलिए अब जो है ना मैं अभी बस मार्केट से निकला निकला हूँ, मैं आईना खरीदने जा रहा हूँ जो मैं खुद से बातें करूंगा।
0: वैसे वैसे घर में तो आईना होगा भाई, कैसी बातें कर रहे हो, अब तो फोन का कैमरा आया, शुरू हो जाओ।
2: और दो दो बातें और, पिछले हफ्ते आपने एक कहानी सुनाई थी दो 10 दोस्तों वाली, तो उसमें फवाद भाई जा रहे थे यूरोप ट्रिप पे, बेचारे वो डर गए। आज तला भाई अकेले, आपने ये कहानी सुना दी, तला भाई अकेले में अब क्या सोच रहे होंगे, वो तो चले गए होंगे सबके खिलाने, अब मैं खाना ही बनाना सीखूंगा।
0: यही मैं चाह रहा था भाई, यही तो मैं चाह रहा था, इत्तफाकन तला भाई जो है हमारे झांसे में आ गए इस बारी
2: बहुत
0: तो।
2: इत्तेफाक हो जाते हैं भाई आपके साथ, लेकिन
0: अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी। चलो देखते हैं कि तला भाई क्या मैसेज
2: कहानी
0: करते हैं।
2: बहुत बहुत बढ़िया थी,
0: थैंक यू भाई,
2: मतलब देखा जाए तो इस पे सोचने वाली बात है,
0: जजाक अल्लाह भाई।
2: ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, अचानक कैसे आदमी थिंक कर लेता है ये सब के बारे में।
0: भाई ऐसे ही है, भेजा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मैं किसी दिन एक डॉक्यूमेंट्री है उस पर शो स्टोरी सुनाऊंगा, और फिर डॉक्यूमेंट्री बताऊंगा मैं, तभी बताऊंगा, तो वो पूरी ब्रेन पर है, सुनना आपको मजा आएगा।
2: चले भाई
0: थैंक यू सो मच
2: बिल्कुल
0: भाई,
2: बिल्कुल भाई
0: ठीक है
2: बिल्कुल,
0: हुसैन भाई,
2: चले भाई
0: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू भाई। और हुसैन भाई के बाद एक कॉल और आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वाला।

0: अस्सलाम
1: वालेकुम, सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये कौन सा स्टेशन है? ये भाई साहब मुशारिफ स्टेशन है, यहाँ से सारी बाकी ट्रेनें निकलती हैं अलग अलग जगहों की तरफ।
0: प्लेटफॉर्म नंबर कितना है?
1: प्लेटफॉर्म नंबर 107 है जी, प्लेटफॉर्म नंबर 107 है। आपकी ट्रेन इधर से आ रही है उधर से आ रही है, सामने वाले पे जाओगे क्या?
0: नहीं नहीं, मेरी ट्रेन तो इस पे आई थी 974 पे। सही जा रही थी
1: क्या? सही जा रही थी क्या? चलो ठीक है, बढ़िया। फिर और बताओ बाल बच्चे ठीक है?
0: मेरा सामान छूट गया।
1: सामान छूट, वो तो गया, छूटा थोड़ी है, वो तो गया। मेरे सामने से चोर भागा अभी अभी।
0: अगर आपके पास तलाशो मौजूद है तो भेज दो।
1: क्या खत्म हो जाए?
0: आपके पास तलाशो कहीं मौजूद हो तो भेज दो।
1: नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो भाई देखो खुद झोला छाप है, छोला छाप अगरबत्ती की तरह है।
0: मेरे सामान में सिर्फ एक कहानी थी।
1: अच्छा,
0: वो भी छूट गई।
1: अब तो गई, अब क्या कर सकते भाई, अब तो चिड़िया ले गई, चिड़िया चुग गई खेत। सामान आपको लौटा दूंगा, डोंट वरी, आपको मिल जाएगी कहानी।
0: शुक्रिया बहुत बहुत बहुत
1: शुक्रिया मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। बस खैरियत भाई, आप सुनाइए कैसे? ख्याल रखो भाई बस अपना, और इंशाल्लाह फिर मैं देता हूँ आपको, ठीक है? ओके मेरा भाई, चलो भाई ट्रेन आ गई आपकी, बैठ जाइए बैठ जाइए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई तो ट्रेन में जा रहे हैं, कमाल भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कबीर भाई? दिमाग की कहानी दिमाग से खेल गए अब तो।
1: जी भाई, कैसा लगा आपको?
2: अरे दिमाग हिला दिए, पूरा भेजा हिला दिए। मैं बोला यार वो बीमार थी, वायरस फैला था।
1: हाँ।
2: तो सबको मारने गई, क्यों अकेला रह जाती, कहीं क्वारंटीन हो जाती। लेकिन बाद में मालूम पड़ा है ना, कहानी को जो ऐसा मोड़ दे दिया भाई कि वो कहीं नहीं है, उसके दिमाग ही उसके साथ खेल रहा है।
1: हाँ जी।
2: और आप हमारे दिमाग से खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, एकता कपूर की चाल थी इसलिए मैंने कहा आज ये वाली कहानी सुनाएंगे। पर आप क्या सोच रहे थे, क्या होने वाला? आपके दिमाग में कुछ चल तो रहा होगा कि कहीं और ले जा रही है कहानी ये?
2: हाँ कहीं लेके जा रही है। मैं तो वही सोच रहा था कि जैसा भी बोला था अभी, तो एक तो आप वायरस का नाम नहीं बता रहे हैं, पूरी कहानी में सस्पेंस बना के रखे हैं, बस बीमारी फैली हुई है, इतना पता है कि पूरा जो है हो रहा है। मतलब यार वो आखिर कौन सी बीमारी हो गई उसको ही बोला है क्या है?
1: क्या बताना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो?
2: क्या बताना चाहते, कहना क्या चाहते हो? ये अब पूरा दिमाग से खेल गए भाई, लास्ट में सस्पेंस को खोल रहे हैं।
1: थैंक यू भाई,
2: भाई कुछ भी नहीं है, कोई नहीं मरा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस उसका दिमाग खराब है।
1: अरे बाबा बेचारे को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमाग ही खराब है इसका। नहीं ये पता, छोटी सी कहानी जरूर थी लेकिन मेरे इससे बहुत कुछ सीखा। वो जो खुद से बात करने वाला नेचर ना, बड़ा कमाल का है।
2: कभी
1: आप खुद से बात किए? भाई हर रोज नहीं करूंगा तो फिर मैं कंटेंट नहीं बना सकता भाई। बहुत जरूरी है खुद से बात करना, बहुत जरूरी है।
2: मेरे को बचपन से आदत है।
1: वेरी गुड, अच्छी आदत है ये, बहुत अच्छी आदत है। कुछ लोग, कोई ऐसा नहीं जो नहीं बात करता, हर कोई बात करता, कोई कम या कोई ज्यादा, बस है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई। काफ़ी अच्छा लगा कि आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी। इंशाल्लाह कल थोड़ी सी बड़ी कहानी आएगी, थोड़ी सी बड़ी, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है भाई? इंशाल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और कमाल भाई के बाद एक कॉल आ रही थी, आ गई। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है? ठीक है,
1: बढ़िया भाई, आप सुनाए क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, जान से बात कर रहा हूँ।
1: जी भाई कहिए।
3: हाँ। तो मैंने ये कहना था कि ये दिमाग का अगर मसला था तो ये मैडम रोजा जुटी हुई।
1: हाँ।
3: ये जब घर गई है, घर वालों को मतलब उसकी वजह से जो मरे है ना।
1: हाँ।
3: तो उनको भी दिमाग का मसला था कि कोई और मसला?
1: नहीं नहीं, आपने कहानी ध्यान से नहीं सुनी, ये उसको लगा के वो लोग मर गए, कोई नहीं मरा भाई कहानी में।
3: अच्छा, नहीं मरा फिर सही है,
1: कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा, सब उसके भेजे में आ रहा था मगर हुआ कुछ भी नहीं भाई।
3: अच्छा ये अच्छा, बीच में कुछ एक आध मिनट के लिए मैं ऑर्डर उतारने के लिए निकला,
1: बस यही है भाई इन कहानियों में, एक एक सेकंड भी इधर का उधर हुए तो पूरी कहानी चली जाएगी।
3: थोड़ी लंबी कहानी ले करो कबीर भाई, हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता
1: है। डन है भाई, डन है भाई, और लंबी कहानी लेके आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई?
3: अच्छा, और आपकी तबीयत सेट है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी तबीयत कैसी, सब सही है, सेट?
3: हाँ वो मैंने आपको जो सच एक चीज बतानी थी, इमेजिनेशन करते हैं ना लोग कि यार बंदा बात कर रहे तो दिखता कैसा होगा। मैंने इंस्टाग्राम में आप सबको देखा है और मेरे सारे इमेजिनेशन जो है वो दरी के दरी रह गई।
4: क्यों क्या सोचा था मुझे, क्या सोचा?
3: मैं आपको कैसा इमेजिन करता था पता है आपको?
4: हाँ, बताओ।
3: आपका शॉर्ट था, मतलब हाइट ऐसा नहीं है, माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं,
4: थैंक यू,
3: वो बात नहीं है, बहुत जबरदस्त अच्छे देखे हैं। लेकिन वो क्लियर शॉर्ट हेयर, मतलब क्लीन शेव और सैर का, ऐसा मैं आपको इमेजिन कर रहा था। फजील भाई को भी इस तरह, सरवर भाई का थोड़ा बॉडी मतलब मेरे हिसाब से मैच हो गई, लेकिन फेस को आंख की मैंने उनकी छोटी इमेजिन की थी, वो बड़ी लिख ली।
4: अच्छा, तो आपने मतलब
3: फुल भाई फुल चेंज, सब लोगों को मैंने बस वैसी ड्राइविंग पार्क की थी, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करने को तो देख लिया।
4: चलो शुक्रिया,
3: बहुत प्यारे माशाल्लाह आप लोग,
4: निकलवा मेरे भाई, आपकी मोहब्बत भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यार मेरे भाई को, थैंक यू मेरे भाई,
3: थैंक यू सर, थैंक यू,
4: ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ये होता है अक्सर लोगों को शौक लगता है जब वो इंटरनेट पे जाके ढूंढते हैं हमें, कह रहे मैं तो क्या सोच रहा था। अस्सलाम वालेकुम। लाओ जी, फोन उठाते ही काट दिया। ओके, तो एक गाना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। जाना आपने यानी बढ़िया एकदम गाना, हमारी टॉप 10 की लिस्ट में भी नंबर 1 पे चल रहा था और है। 619

0: टॉक्सिक 2 से गाना से बज गए 23 मिनट और फिर से कॉल आ रही है, रुकिए जरा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी वरा भाई।
1: यार सॉरी मैं कॉल की, इतने मैडम निकली तभी काटनी पड़ गई।
0: अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बताओ
1: आप तो अब से 7 साल पीछे जो पास था ना कोरोना वाला उसमें ले गए। मैं सोच रहा था कि मजा आएगा सुनने में कि क्या रहा, लेकिन वो तो बहुत शॉर्ट थी कि वो वहाँ डॉक्टर उसको देखते हैं, सब कुछ बताते हैं, वो अपना आपको मरा हुआ सोच रही है, अपने भी डॉक्टर आन की कहते हैं कि उठ के बैठ जाओ। मैं सोच रहा था हो सकता है ताली या थाली बजे तो उठ के बैठ जाए।
0: ताली और थाली की बुझवा रहे भाई। अरे भाई साहब ये देखिए देखिए, हर जगह देसी बनना चाहिए क्या? अंग्रेजी डॉक्टर कह रहा है भिंडी खाओ, बिना शोरबे की ठीक हो जाओगी, उठ के बैठ जाओ। नहीं भाई सब ठीक है, एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा चलो कि थोड़ी सी
1: थैंक यू यार कबीर भाई, वाकई में माशाल्लाह आपको अल्लाह और हिम्मत दे, हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहे
0: इंशाल्लाह मेरे भाई।
1: लेकिन मजा आता है सुनने में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी आधी थोड़ी सी सुनी फिर कहीं चले गए, फिर थोड़ी सुनी फिर यानी कि शॉर्ट में सुनी जाती है, थोड़े सा पता नहीं आता सस्पेंस रहता है कि आगे पता नहीं क्या हुआ होगा। लोग बोलते थे कि भेज दें आप, तो आज तो खैर मैंने पूरी सुनी।
0: चलो बढ़िया,
1: मैंने आपको मैसेज तो किया था, मैंने कहा कि कबीर भाई भेज देना, लेकिन पूरी सुनने को मिल गई।
0: नहीं वैसे तो मैं भेजूंगा।
1: कबीर भाई सब लोग ठीक ठाक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब बढ़िया।
1: आज सरवर भाई को भी आपने भेज दिया, हम तो आज तरस गए।
0: हाँ हमने कहा भाई बहुत मेहनत हो गई, चलो घर भागो। तो अभी घर गए हो?
1: चलिए चलिए अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह।
0: बहुत बहुत
1: और सब ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं, आप सुनाएं, सब ठीक है? और भाई के बाद फरद भाई ने मैसेज किया है, फरद भाई ने श्रद्धा कपूर मत भेजा करो मुझे, काम पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। फिर मैं श्रद्धा कपूर इतनी सबसे प्यारा अकाउंट में श्रद्धा कपूर का है पूरे सोशल मीडिया पे, सवाल ही पता नहीं होता। एक मैसेज है लिखते हैं, व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट माय सेल्फ। अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए भाई। एक मैसेज, वेकेशन ज़रूरी है, मारूफ था सुन नहीं सका, मसरूफ था। अच्छा मैं कहूँ मारूफ क्यों थे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू मेहसन साहब। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोले शेख कबीर सर जी, तनसीम भाई वालेकुम अस्सलाम। इकराम हसन साहब वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई मैं कहानी भेजूंगा, गुड स्टोरी सेंड मी। अबू साद साहब थैंक यू सो मच। एंड देन मुझे मैसेज किया है मुस्तफा भाई ने, कहा जब आपने स्टोरी सुना रहे थे तो मैं आपने कहा मुझे एक शेर याद आ गया, क्या है, बिछड़ गए तो ये दिल कहीं लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। अरे रे देखते हैं नहीं लगेगा उससे देखकर, मगर खुश है मैं खुश नहीं हूँ मगर देख के लगेगा नहीं। अरे भाई साहब, भाई क्या हो गया? इतना डेंजर शेर। नजीम साहब वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त कहानी। फलक साहब लिखा एक मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, इन्होंने मैसेज किया है मुझे स्टोरी अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह लिखी है, सुन के डर सा लगा, कह रहे हैं सेम तो नहीं कह सकता मगर कभी कभी मेरी छोटी सिस्टर को, उसको भी अचानक सीने में बहुत तेज पेन होता है, पता नहीं चलता कि क्या है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है, डॉक्टर्स चेक करते हैं, वो बोलते हैं सब ठीक है। दैट कैन बी समथिंग एल्स भाई, मगर आप चेक करा लीजिएगा, इफ़ इट इज़ दैट सीवियर प्लीज़ चेक कराइएगा, मेडिकल स्टोरीज़ का मकसद ही यही है। फराज भाई कहते हैं कि रोज़ा के दिमाग में केमिकल लोचा। जी भाई वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आई फॉलो यू ऑन टिकटॉक, लिसन टू योर स्टोरीज ऑन इट, नाइस नरेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर अहमद भट्ट साहब थैंक यू। अरे कबीर भाई क्या लिखा है? कबीर भाई वो वोट क्या, वो बोट वाली स्टोरी आपने सुनाई थी ना, मैं और दोस्त गाड़ी में सुनते जा रहे थे और उसका विला आ गया तो उतर गया स्टोरी के बीच में ही, और मैंने पूरा सुना और आपको स्टोरी भी सेंड कर दो बोला, आपने डाल दिया, खाना खाया सो गया। ठीक है, रात में मेरा मोबाइल में फ़ोन आया वही दोस्त का जो स्टोरी बीच में छोड़ के विला में गया था, और बोलता है भाई वो बोट समुंदर पर गिरा हुआ बंदा मर गया कि बच गया। अच्छा वाली स्टोरी जो बोट से गिर गया था, मैं फ़ोन रख दिया, उसको स्टोरी सेंड कर दिया, और दूसरे दिन बोलता है सॉरी भाई मेरे को बेचैनी हो गई थी इसलिए कल क्या कहानी वो सुनना बंद, बीच में छोड़ गई थी, सुकून मिल गया। देखो हमारे नेपाली भाई भी कितना बड़ा फ़ैन है आपकी स्टोरी का, पूरा नहीं सुना तो रह नहीं पाए। भाई भाई भाई मच लव भाई आपको और तमाम मेरे नेपाली भाइयों को। संतोष भाई ने, संतोष भाई थैंक यू सो मच यार, इससे बड़ी तारीफ कुछ नहीं हो सकती, तो आज यही तारीफ घर ले जा रहा हूँ। कबीर भाई, वो बीमारी का नाम क्या था? कैथार्ड सिंड्रोम और कैपग्रास सिंड्रोम। मैं लिख के भी दे सकता हूँ आपको, पर कैथार्ड सिंड्रोम और कैपग्रास सिंड्रोम। वैसे उमर

0: वजू करते हैं, उनके हकूक अदा करते हैं, तो वो भी इबादत में शामिल है। लोगों को भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना भी इबादत है। तो इससे ये मालूम हुआ कि एक मोमिन अपनी पूरी जिंदगी को दीन के इल्म की बदौलत इबादत बना सकता है। इस तरह उसका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हत्ता के सोना भी इबादत बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इन इबादत की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अजी एक भाई पूछ रहे हैं छुट्टी पे कब जा रहे हैं आप। भाई मैं नवंबर में जाऊंगा इंशाल्लाह, नवंबर दिसंबर में मन है भाई दिल्ली का कोहरा देखना है। तो हमने तो बेरा है बढ़िया एकदम मौसम पड़ा कराया वहाँ पे दिल्ली में कोहरे में एकदम शॉल वॉल ओढ़ के बढ़िया घूमेंगे भाई, बाइकों पे गेड़ियाँ मारेंगे। ओहो वो डुग डुग वाली बाइक लेंगे और निकल जाएंगे भाई लंबे लंबे सफ़र पे। ये प्लान आपके भाई ने प्लान बना लिया है दिमाग में, बिल्कुल कोहरा चाहिए भाई, बहुत टाइम से नहीं देखा, तो इसलिए जाएंगे आराम से दिसंबर में बढ़िया ठंड में, उस टाइम याद रखना बस मेरे को ठीक है। कहाँ गया हमारा म्यूज़िक, कहाँ गया है ये रहा।

0: होनी तब्दीलियां इतना ज्यादा कुछ नहीं है, गर्मी तो अभी पड़ रही है कुल मिला के, तो मैं नहीं भी बताऊंगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी सो 29 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट टेम्परेचर राइट नाउ और मैक्सिमम टेम्परेचर 46-47 तक जा सकता है राइट नाउ। अभी 37 है, बड़ी बात है भाई, 37 बहुत टाइम बाद हुआ है, अभी 37 है ट्यूजडे से, और ट्यूजडे से इनफैक्ट ट्यूजडे वेंसडे हवाओं का रुख थोड़ा तेज रहने वाला है, सो वी स्टिल हैव टाइम। तो कल का मौसम गर्म रहेगा, तापमान बढ़िया चलेगा, 45-46-47 जा सकता है, पर उसकी बात थोड़ी हवाएं ज्यादा चलेंगी और टेम्परेचर थोड़ा सा इतना से नाखून बराबर ड्रॉप होगा वेंसडे को जब 42 के करीब पहुंच जाएगा, बाकी तो ऐसी रहेगा, तो नो चेंज, गर्मी तो लगनी है उससे कहां से भागोगे भाई। अदर प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन की तरफ से खबर है, उन्होंने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, इसमें जो एलिजिबल पेशेंट्स हैं उनको चुना जाएगा जो कि अंडरगो जाएंगे, दे विल अंडरगो एनुअल हेल्थ चेकअप्स, और ये मकसद है प्रिवेंटिव जो चीजें हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसे स्ट्रेंथन करने का, ताकि पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस पर काम किया जा सके, सिर्फ कहने वाली बात नहीं, इस पर प्रॉपर काम किया जा सके और इसको एग्जीक्यूट किया जा सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो मैसेजेस है मैं पढ़ दूंगा, थोड़ा सा रिलैक्स करें, लेकिन फिलहाल रिलेटिवली अगर आप देखें तो ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, तो अभी आपके प्लान व्लान हैं तो आप देख लो भाई आपका क्या प्लान है, बीच बीच पे जाने का भी आप पूरे कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। इसके अलावा एक खबर है, अगर आपने नहीं पढ़ी और नहीं जानी तो बता देता हूँ, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक, उन्होंने अनाउंस किया है न्यू सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट व्हीकल्स प्लेट नंबर्स, जो कि सोम ऐप के जरिए आप देख सकते हैं, नंबर्स अवेलेबल हैं, और ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके जरिए डिपार्टमेंट ने बताया कि इसमें अगर आपको नंबर्स वगैरह लेने हैं तो आप खरीद सकते हैं, नंबर्स ओपन हो चुके हैं आज से, सो यू कैन गो टू योर मित्रा शॉप या फिर सोम ऐप के जरिए, इनफैक्ट सोम ऐप के जरिए जाइए, सोम ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, 5 जुलाई से यानी आज से विंडो ओपन है, सुबह के 8 बजे से ओपन हो चुकी है, और इसमें जो है कुछ चीज़ें बड़ी आउटलाइन की गई हैं, आप देख सकते हैं जब इसे ओपन करेंगे तो डिजायर्ड नंबर जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका, विद इन 72 आवर्स का एक विंडो दी गई है, तो ये सब कुछ उसमें है, तो आप एक बार अगर सोम ऐप देखने, अगर आपको कतई फैंसी नंबर या फिर अपने हिसाब से कोई नंबर चाहिए आप देख लो, कोई टेंशन नहीं है। खलील भाई ने मैसेज किया, खलील भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह भाई, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, कहीं पर आपको ट्रैफिक व्रैफिक मिल रहा हो तो हमें भी मिलाइए, 666-22-107 पर मैसेज करिए, 666-22-107, और जो लोग कह रहे हैं कहानी चाहिए मिल जाएगी, शो के बाद चलेगा, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम भाई।
0: जी भाई।
1: भाई मैं फिर से कॉल लगा रहा हूँ।
0: भाई बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल लगाइए, बताइए मेरी जान।
1: ये भाई बारिश का नहीं पता है भाई, आप
0: बारिश चाहिए आपको?
1: भाई मुझे तो बारिश चाहिए, बहुत गर्मी हो गई भाई, बहुत गर्मी गर्मी खेल ली है
0: भाई, बाल्टी भर के नहाने में जो मजा है वो बारिश में नहीं है।
1: कर रहा है कि बाल्टी गाड़ी में रखूं और उड़ाता हूं, ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है।
0: हाँ यही करना पड़ेगा अभी, यही है, दिमाग को ट्रिक करो, झूठ बोलो अपने दिमाग से कि हाँ बारिश हो रही है, बाल्टी पलट दो पूरी सर पे, यही एक तरीका है भाई अभी तो।
1: लेकिन वो क्या है ना कि मैं हॉलीवुड मूवी ज्यादा देखता हूँ तो मुझे मतलब डायरेक्ट बोलने वाली आदत है।
0: अच्छा
1: भाई तुम नहीं कर सकते।
0: भाई बारिश का तो नामो निशान नहीं है और अभी तो बहुत बहुत महीनों तक नहीं है तो।
1: अच्छा ये मेरी गाड़ी पुरानी है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन चाहिए?
0: रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, अगर आप नंबर खरीदना चाहते हैं, कोई नया नंबर आपको चाहिए, उस केस में आप सोम ऐप पे जा सकते हैं और उस पे देख सकते हैं, तो
1: पुराना ही नंबर है तो चलेगा ना?
0: हाँ दौड़ेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, पर आपको फैंसी वैंसी नंबर चाहिए होता है, किसी किसी को चाहिए होता है ना फैंसी नंबर, नहीं जी मैं तो 1993 पैदा हुआ हूँ तो मुझे 1993 चाहिए, तो उन लोगों के लिए है। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे लास्ट गाड़ी के 2 डिजिट अगर 30 होते ना तो आपका भाई नंबर बेचता कतई महंगा क्योंकि मेरी गाड़ी के नंबर में बस आखिरी के 2 डिजिट हैं, बस वो इधर के उधर हो गए, वरना तो बहुत महंगा नंबर होता, इत्तफाकन बल्कि मैंने लिया भी नहीं है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो हाँ होता है इत्तफाकन हो जाता है।
0: हाँ तो वही है, वो उनके लिए जिन्हें नंबर्स चाहिए जो खरीदना चाहते हैं तो जा सकते हैं सोम, बाकी बारिश तो सोचना भी नहीं, ये खामखा के ख्वाब निकालिए, चाय पीजिए बेहतर ही है।
1: चाहे तो पी रहा भाई, बस दुआ कर रहा हूँ कि बारिश हो जाए जैसे इंडिया में हो रही है।

0: चाहिए।
1: अब ये कोई कंपैरिजन हुआ, ये कोई बात है इंडिया में हो रही है भाई? नहीं यहाँ पे नूने वाली मैं क्यों खामखा
0: भाई होता हाँ। है ना भाई, वहाँ लोग खुश है तो यहाँ भी हो, थोड़ी बहुत खुशी हमें भी मिल जाए। अब अल्लाह के करिश्मे को कोई रोक थोड़ी ना सकता, हम तो दुआ कर सकते हैं
1: बेशक। बेस्ट ऑप्शन
0: क्या पता कल बारिश हो जाए।
1: बेस्ट ऑप्शन इज कानों में लगाओ हेडफोन, बढ़िया बारिश की साउंड 10 घंटे की मिलती है ऑनलाइन जाके, उसको सुनते हुए भाई जो कर रही नींद आती है उसके कोई जवाब नहीं भाई, ट्राई करके देखो।
0: सही बात है भाई, अब तो यही ऑप्शन है,
1: यही ऑप्शन है नहीं। अरे बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इससे बढ़िया वाइट नॉइज नहीं है मार्केट में भाई, ट्राई करके देखो ठीक है।
0: चलो भाई ये भी ट्राई करेंगे
1: जी मेरा भाई, जब असली बारिश आएगी तो इतना कर देंगे ठीक है।
0: ठीक है मेरा भाई,
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो भाई को चाहिए बारिश, कहाँ से दें हैं, कहाँ से दें, कुछ चीजें नहीं हो सकती बाबा।

इस गाने की वजह से सच बता रहा हूँ, मैं टोक्यो जाने का मन कर गया था मेरा. इतना बढ़िया वीडियो इस गाने का. एंड इसमें इतने सारे रेफरेंसेस हैं ना, कत्ल है इसमें, वो भी है जिन कजामा, जिन्होंने वीडियो गेम्स खेले उन्हें ही पता होगा जिन कजामा तो. और बहुत सारे रेफरेंसेज हैं. मैं कहता हूँ ना, रैप कोई ऐसी हल्की चीज़ नहीं है कि बस राइम कर दिया है ना, हुड़ुक से फुड़ुक को मिला दिया, वैसा नहीं है भाई, बहुत कुछ है. पर क्या है कि ठीक है, अब कुछ लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो नहीं माने, कोई बात नहीं. अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे. एंड काफी सारी बातें हमने कर ली हैं, पर एक दो मैसेज और आए हैं. अब फरद भाई, थैंक यू सो मच. फरद भाई रेफरेंस समझते हैं. फरद भाई, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू. क्या कुछ ऐसे दिन हैं जो आज के दिन मार्क किए जाते हैं इंटरनेशनली, तो वो आपको बताता हूँ. सबसे पहले आज है बिल्ड अ स्केयरक्रो डे. बिल्ड अ स्केयरक्रो डे, जो आप बना नहीं सकते. मैं तो अगर भाई बिल्कुल मतलब सलून ना जाऊं एक डेढ़ महीना, तो मेरे से बढ़िया स्केयरक्रो है ही नहीं मार्केट में. तो आज है बिल्ड अ स्केयरक्रो डे. इसके बाद है मैकेनिकल पेंसिल डे. मैंने कतर आके डिस्कवर किया है. आई नो यू कैन जज मी एज मच एज यू वॉन्ट, लेकिन मैकेनिकल पेंसिल किस चिड़िया का नाम है मुझे यहाँ के पता लगा, मुझे नहीं पता था. देसी लोग है भाई हम. इसके अलावा आज है वर्ल्ड वर्कहोलिक्स डे, जो कि कतर में हर कोई है. मतलब हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट्स तो कुछ ज़्यादा ही वर्कहोलिक्स हैं, होना भी चाहिए. इसके बाद है वर्क विदाउट योर हैंड्स डे. ये कैसे, ये अरे कौन सोचता है ये सब दिन यार, वर्क विदाउट योर हैंड्स डे, बिना हाथों के काम. हमारे काम में तो कर सकते हैं, ये दिन हम सेल,

इंटरप्रेट कर सकते, पर फिर भी मैं एक्सप्रेशन बिना हाथ इस तरफ उस तरफ किए नहीं दे सकता। इसके अलावा आज है वर्ल्ड सर्कल डांस डे, डांडिया तो नहीं कह रही। इसके बाद है हवाई डे, जो कि यहाँ से बहुत महंगी फ्लाइट है, दो तीन बार देखा है मैंने अपना खून जलाने के लिए पर्सनली हवाई डे, वो जगह जो है यूएस में। एंड इसके अलावा आज है पेट रिमेम्बरेंस डे, सो इफ यू हैड अ पेट, बिल्ली डॉगी कभी रखा हो तो उनको याद कर सकते हैं आप, इंडिया में कहीं पर भी हो, पाकिस्तान में हो तो उनके भी याद करने का दिन है। जीशान भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं भाई एटलीस्ट बारिश का गाना ही लगा दो। क्या हो जाएगा उससे, बारिश हो जाएगी? जीशान भाई ये झूठी हुई तसल्ली ना दिया करें आप, मैं बताऊं आपको मेरा भी मन था और मैंने कहा नहीं यार वो बारिश का गाना लगा कि क्या ही कर लेंगे जीशान भाई, अब क्या करें। एनीवे सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, एक मैसेज है पाकिस्तान में, क्या क्या पाकिस्तान में हो कबीर भाई, क्या पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में पेट है आपके पास, ऐसा कुछ कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। पाकिस्तान में हुआ है कबीर भाई, क्या हुआ है? अरे मेरे को कंफ्यूज मत करो, पूरी बात बताओ। अब इन्होंने ही सस्पेंस बांध दिया है, कहानी सुनाना मेरा काम है फरद भाई, ऐसा मत करो यार। अच्छा सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है। और अगर आपको आवाज़ से चेहरा मिलाने का शौक है, आप मुझे जज करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे भी ढूंढ सकते हैं, दोहा वाला कबीर FM 107, ठीक है। कुछ बोल के छोड़ देना है बस, वाह वाह वाह वाह फरद भाई, शेर का मतलब था ये, ठीक है। तो आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, याद करते रहिएगा, हिचके आनी चाहिए भाई, ठीक है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह शाम 5 बजे वापस से, भाई साहब उधम काट देंगे बढ़िया, जमा जहज बना देंगे शो को। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी 5 बजे एक बार फिर से, एक नए गाने के साथ, बहुत सारे किस्सों के साथ। 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, बट फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: Welcome to the world of technology.
1: काश मैं ये आवाज ढंग की और निकालता, पर आप समझ गए ना टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. काफी सस्ता साउंड इफेक्ट मैंने आपको सुनाया है. और क्या करूं. अस्सलाम वालेकुम दुनिया, मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड. और आज जो है हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में वापस चलते हैं, जहां पर हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ बदलता रहता है. एंड उनमें से मोती चुनकर मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं आज फिर से. तो आप जानते हैं फॉर्मेट बड़ा सिंपल है. सबसे पहले कुछ एप्स या फिर कुछ काम की चीजें इन एप्स दिस वीक, एंड देन गैजेट जो आपके काम आ सकते हैं, और फिर खबरें जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जलजला लाई हुई हैं. तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद एप्स दिस वीक, क्योंकि बहुत कुछ है आपको बताने के लिए. इस हफ्ते मैंने सोचा कि आपको वो AI टूल्स बताए जाएं जो आपके लिए इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल. मैं पहले बता दूं, दीज एप्स वर्क फ्री एज वेल, बट दे आर बेटर इन देयर पेड वर्जन्स. ओके, ज्यादा महंगे नहीं है. एक ऐप है थोड़ी सी, मगर आई विल एक्सप्लेन. लेट्स गो ऐप दिस वीक. ट्रेंडिंग एप्स. ट्रेंडिंग एप्स. तो नंबर वन ऐप जो है ऑन द लिस्ट जो मैं बताना चाहूंगा, AI तो है ही एंड अपना काम करने में बहुत आगे भाई. इसके जरिए अगर आप वीडियोस बनाने लगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया जो काम कर रही है आपको हैरान कर रही है. आप कुछ वीडियोस देखते हैं AI की और सोचते हैं बाबा इतना आगे निकल के AI. तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप अपने इमेजिनेशन को रन कीजिए इस AI पे एंड यू विल गेट द वीडियो. एंड द बेस्ट पार्ट इज इसको यूज करते करते यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसका नाम है C Dance 2.0 AI. इट लेट्स यू क्रिएट वीडियो एंड इमेज एज वेल. सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपको कैमरा एंगल से खेलना आता है तो अब बहुत ही बढ़िया है. नहीं आता है तो आपकी कोई भी दिमाग में स्टोरी है, मान लीजिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए आपकी स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा जो है वो अपने गांव गया है ट्रेन पकड़ के, या फिर वो यहां से एयरपोर्ट गया है, एयरपोर्ट से जहाज पकड़ के अपने होम टाउन गया है. तो इस पूरे सीन को आप किस तरीके से शूट करेंगे, अगर आप चाहते हैं इसका एक AI वर्जन बनाना, तो आप जो है ये सेम सीन ChatGPT को बताइए, वहां से प्रॉम्प्ट लीजिए, उसे प्रॉम्प्ट मांगिए, वो प्रॉम्प्ट C Dance 2.0 में डालिए, फिर आप देखिए कितना कमाल होता है आपको. क्योंकि एक्सप्लेन करना और सीखना है अगर AI मूवीज कैसे बन सकती हैं, तो दिस कैन बी योर स्टार्टर पैक C Dance 2.0. इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, पर पेड वर्जन में हाईली आपको रिकमेंड करूंगा इफ यू आर मेकिंग वीडियोस और मार्केटिंग वीडियोस ऑन डेली बेसिस एंड आपके काम आ सकता है. सो गो फॉर इट. मूविंग ऑन टू अनदर वन. अब अगला जो है ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइडली काम करता है, बहुत फ्लूइड ऐप है एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. ये है क्लिंग, KLING, Kling 3.0. इसके बारे में आपने बहुत सारे एड्स अपनी स्क्रीन्स पे देखे होंगे जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या आपने किसी से सुना होगा, आई डोंट नो, मगर क्लिंग AI works amazingly well. ये वैसा काम करता है जैसे किसी जमाने में ग्रॉक किया करता था. मैं ग्रॉक पे भी आऊंगा, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सिंपलर वर्जन हुआ करता था ग्रॉक एक टाइम पे, और वैसा ही क्लिंग काम करता है, मगर इसकी वीडियोज में जो क्रिस्प है वो कमाल का यार. इट कैन बी यूज फॉर shorter videos. अगर आपको एक शॉर्ट किसी किस्म का एक मार्केटिंग आइडिया इसको देना है, मार्केटिंग वीडियोस बनाने हैं, तो इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता. आज के ज़माने में जहाँ पे हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आएंगे आपका सामान बेचने के लिए, उस जमाने में यू कैन यूज दिस AI टू मेक अ लॉट ऑफ स्टफ मच मच ईजियर एंड मोर क्रिएटिव. तो अगर आप चाहते हैं कि AI भी इस बहाने सीख लें एंड यू गेट टू जनरेट वीडियोज एज वेल, दिस कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो क्लिंग 3.0 ये AI है, मैक्सिमम आउटपुट देता है. अगर आपको एक पेड ऐप से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, दिस कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्स दैट यू हैव यूज्ड. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. अगला, जैसे मैंने कहा मैं ग्रॉक की बात करूंगा, तो ग्रॉक की बात करी मैंने लास्ट में, क्योंकि ग्रॉक बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया इमेजिनेटिव वीडियो बनाता है. ग्रॉक इमेजिन जो फीचर है बहुत कमाल का है. ग्रॉक का कैजुअल वे ऑफ रिप्लाइंग थिंग्स, ग्रॉक का इमेज जनरेशन, Everything is wonderful. एक शिकायत है मेरी, ग्रॉक सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल highly प्रोफेशनल बन के यूज करना चाहते हैं, बिकॉज ग्रॉक चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी. ग्रॉक का एक महीने का सब्सक्रिप्शन इज 99 रियाल्स. अभी रिसेंटली उसका एक ऑफर आया था, बट आई थिंक दैट शुड बी लोअर डाउन, क्योंकि ग्रॉक 99 रियाल के बाद भी काफी लिमिटेड चीजें देता है और कहता है कि अब और जनरेट नहीं हो पाएगा. सो इफ दैट इज फिक्स्ड, ग्रॉग बहुत कमाल का है, बट स्टिल आप इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं। अभी भी इसका जो चैट वर्जन है, जो चैट करता है, वो बहुत अच्छे रिप्लाईज देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बाकी जो फॉर्मल रिप्लाईज मिलते हैं थोड़ा कैजुअली रिप्लाई करता है। एंड ग्रॉग इज अमेजिंग विद वीडियो एडिटिंग एज वेल। हाँ, वो ऑफ कोर्स लिमिटेड है, मगर आप एक दिन में कम से कम 3-4 फोटोज तो अपने एडिट कर ही पाएंगे। समटाइम्स पे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा आ जाता है, एटलीस्ट ये कहता है, क्योंकि पेड वर्जन नहीं है, बट स्टिल काफी काफी काफी काफी अमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ फोटो एडिटिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप फ्री वर्जन देख रहे हैं, पेड वर्जन सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल डेली वीडियोज बनाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग, दिस कैन बी रियली हेल्पफुल। तो ये थी एप्स दिस वीक। अब जरा आगे बढ़ेंगे towards the gadgets. Cool gadgets.

आई नंबर वन गैजेट ऑन द लिस्ट, नंबर वन एज इन रैंकिंग नहीं, सबसे पहले बात करूंगा मैं आमंड ओक बैकपैक की. आमंड बादाम ओक बैकपैक, ये बैकपैक ऐसा है कि आपने एक मर्तबा खरीद लिया दुनिया भर की छुट्टी, आपको इसके बाद कोई बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इस पे पानी फेंकने दें, कोई दिक्कत नहीं है. पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर रुकेगा, एकदम सूख जाएगा. ये बैग इतना कमाल का है. मैं जानता हूं मैं गैजेट में बैग की बात कर रहा हूं, मगर मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस. ये बैग सच में बहुत बढ़िया है भाई, आमंड ओक बैकपैक. मैं अभी इंशाल्लाह जब छुट्टी पे जाऊंगा तो मैं यही कतर लेके आने वाला हूं. एंड आई सजेस्ट कि आप इस बैग पे नजर बनाए रखें. अगर आपके बैग में भरी रहती हैं चीजें और आपको लगता है कहां क्या रखा है और आप हाथ डाल डाल के टटोल रहे हैं, दिस कैन बी वन बैग सिंपल सॉल्यूशन. एवरीथिंग कैन बी कैप्ड इन द बेस्ट वे पॉसिबल. आई लव्ड इट. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं. अगर आपको खुद एक बार देखना है, ऑफ कोर्स आंखों देखी बात की बात ही कुछ और होती है. तो आमंड ओक बैकपैक एक बार ले लिया आपने, फ्यूचर में बैगों की जरूरत ही नहीं है भाई, देख लो आपने आप. एंड नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. और हाँ, सॉरी, ये बजट में भी है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन. अगला जो है एक टैक बैग है. ये भी एक बैग है लेकिन एक छोटा वाला बैग है. आपके पास वायर्स हैं, चार्जर्स हैं, बहुत सारी चीजें होंगी. मैग सेफ चार्जर होगा या आपके पास पावर बैंक्स होंगे, यूएसबी होगी. ये सब जो है ना बैग में आप रख देते हैं, फिर आपको हाथ डाल लगे टटोलना पड़ता है अगेन वही चीज. ये छोटे से बैग में एवरीथिंग कैन बी कैप्ट नीटली. देखो क्या है कि वायरों में वायर जब उछल जाते हैं ना, उलझ जाते हैं, तो बहुत चिड़ छूटती है और सही करने का मन भी नहीं करता है. ये छोटा सा टैक बैग, इसके अंदर सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप रख सकते हैं. वायर्स को रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट है जो बहुत बहुत अच्छे से छोटे से बैग में बनाया गया है. एंड इसी के साथ यूएसबी के लिए अलग से जगह है, आपका पावर बैंक, आपके चार्जर्स, इवन आपके ग्लासेस. ये बैग आपने ले लिया तो काम हो गया. ये मैं जो बैग्स आपको बताए मैंने दोनों, आमंड ओक बैकपैक और ये, तो ये दोनों के दोनों बहुत कम बजट में. इस बैग का नाम, जो टैग बैग है, इसका नाम है यू ग्रीन. यू जो अल्फाबेट यू है, फिर ग्रीन GREEN, यू ग्रीन टैग बैग. ये दोनों आप देखिएगा, आई एम प्रीटी श्योर आपको एक बजट में लगेंगे दोनों के दोनों, पहली बात. और दूसरी बात, आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं. तो उन फैंसी बैग्स पर खर्च मत कीजिएगा जिनमें लगे होते हैं चार्जर, लगा दिए चार्ज कर लो. दे आर कॉस्टली एंड दे डोंट वर्क एज वेल दैट as well as compared to what you think ke wo aisa kaam kare waisa kaam karega. ye dono aap dekh sakte hain. now moving on to another one. agla jo gadget hai un logo ke liye jo smart watches ko leke bahut confused hote hain, kya sirf mehengi watches kaam karti hain? no bro, sirf mehengi watches kaam nahi karti hain. kuch watches aisi hoti hain jo budget mein hoti hain, smart watch hoti hain, अच्छा काम करती हैं, लैग्स भी नहीं होते. एक एग्जांपल है नथिंग की जो स्मार्ट वॉच है, मैं उसके हक में हूँ. आई थिंक 250-300 रियाल की अभी भी आ जाती है. एंड एक और है जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, वो है अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZFIT स्मार्ट वॉच, अमेज फिट स्मार्ट वॉच. चीपेस्ट बेस्ट वॉच अपने ग्रुप में, सबसे स्ट्रॉन्ग वॉच, कोई लैग नहीं, बढ़िया टच स्क्रीन है, बढ़िया फंक्शन करती है एंड वेरी वेरी एक्यूरेट एंड दिखती भी अच्छी है भाई, सस्ती भी नहीं दिखती है. सो अगर आप एक बजट में एक स्मार्ट वॉच देख रहे हैं, दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया. अमेज फिट स्मार्ट वॉच, AMAZFIT अमेज फिट स्मार्ट वॉच, गो फॉर इट. मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बजट पे ये कोई स्मार्ट वॉच देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग. तो आप ये जरूर इस पे नजर बनाए रखें. एंड ये हर जगह मौजूद है वैसे तो. अमेजोन पे मैंने देखा था, अमेजोन इंडिया पे अवेलेबल है, अमेजोन UAE पर भी अवेलेबल होगा और यहाँ भी लोकली आई एम नॉट श्योर. अगर किसी के पास है तो वो आप पर है, आप देखने जाए तो देख लीजिएगा. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द खबरें इन टेक न्यूज. तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो स्टीम की मशीन आ रही थी, आपको पता ना प्लेस्टेशन का कंपटीशन जो है वो बहुत हाई चल रहा है. एक्सबॉक्स कंसोल्स, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स, उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दिए. क्यों भाई? खैर वो एक कंपटीशन है. और स्टीम पे जो लोग गेम्स खेलते हैं पीसी वालों, अब इसका भी कंसोल आ रहा है. लेकिन स्टीम ने डिसाइड किया है, जो मेन पेरेंट कंपनी है वॉल्व, उन्होंने कहा है कि इसका प्राइस टैग होगा $1,050. बाप रे, $1,050 का कंसोल लॉन्च करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आई एग्री कि एक पीसी है, एक मुकम्मल पीसी है.

0: milestone next gen communication. उन्होंने successfully अभी एक recent event में demonstrate किया जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला field trial of hollow core fiber transmission system जिसकी capability इतनी जबरदस्त है कि 1.2 TB per second wavelength के internet को वो deliver कर सकता है आपको 1.2 TB समझ रहे हैं आप per second which is इतना fast के I don't think कि आपको पता भी लगेगा आप internet use करें it's like opening folders तो ये जो है बहुत बहुत बड़ी खबर है which is coming from China of course I have no doubt कि उन्होंने कर लिया होगा पर ये दुनिया तक कब तक पहुंचेगा कैसे होगा I don't know अभी हम इंटरनेट से खुश हैं क्या बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो ये जब आ जाएगा मार्केट में तब देख लेंगे नाउ मूविंग ऑन टू द गेमिंग न्यूज
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट
0: जो गेम की दुनिया में हलचल एक गेम ने बना रखी है और बहुत ही ज्यादा हलचल बना रखी है सो रिसेंटली GTA 6 का प्री ऑर्डर जो मैंने कर दिया है मजबूर मेरे हाथ नहीं रुके घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हैं $100 का इन लोगों ने गेम जो है अल्टीमेट एडिशन रखा है और एक स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि $80 का है प्री ऑर्डर्स आर ऑन यू कैन बुक नाउ क्योंकि नवंबर के 19 तारीख को गेम रिलीज हो जाएगा एक जो बड़ी खबर रही वो ये रही कि अल्टीमेट एडिशन के पीछे बहुत सारे फीचर्स छुपा दिए हैं पता नहीं क्यों रॉकस्टार ने ऐसा किया एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रॉकस्टार ने कहा कि कोई भी फिजिकल कॉपी यानी डिस्क नहीं मिलेगी अगर आप इसकी फिजिकल कॉपी खरीदेंगे तो एक बड़े से रॉकस्टार के डब्बे में आपको अंदर कोड मिलेगा और इसका मजाक उड़ाते हुए इंसोमनियाक जो गेम्स हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाया है जिन्होंने वुल्वरिन अभी उतारना है मार्केट में उन्होंने मजाक बनाते हुए ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि हमसे गेम खरीदिए हमारे बड़े से बॉक्स में आपको फिजिकल कॉपी भी मिलेगी तो आई डोंट नो इफ इट इज अ डायरेक्ट डिस एट रॉकस्टार गेम्स या फिर वो ऐसी फ्रेंडली बेंटर है आई डोंट नो मगर ये CD ना रखने की चॉइस रॉकस्टार की बहुत गलत है बिकॉज उनकी वजह से अगर ये ट्रेंड सेट हो गया फिजिकल कॉपीज मिलना ही बंद हो जाएंगी मी माई सेल्फ एज अ गेमर आई वॉन्ट अ फिजिकल कॉपी इन माई हैंड एंड अगर वो नहीं होती है जस्ट किल्स द वाइब यू नो वी ऑल वॉन्ट टू कलेक्ट थिंग्स वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल हमें चाहिए भाई पर ठीक है रॉकस्टार गेम खर्चा का तो करवाने ही वाला है इस साल तो देखते हैं क्या होता है बाकी ऑन दैट नोट सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर FM107 कतर इस नाम से हर जगह मौजूद हैं एंड दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है मसला
2: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
4: Absolute Cinema
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
5: दोस्तों गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से जब तक मदद आए आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है

0: FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: FM 107
3: दिल से देसी।
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड।
5: सन एंड साउंड
4: आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक को बहुत अहमियत दी गई है। एक अच्छा पड़ोसी वो होता है जो दूसरों के सुकून का ख्याल रखता है और हर मुमकिन मदद करता है। आज की जिंदगी में लोग अपने पड़ोसियों को मुश्किल से जानते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रखें। छोटी छोटी बातें जैसे सलाम करना, ख्याल रखना या किसी मुश्किल में मदद करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। आज का अमल ये है कि अपने पड़ोसी से अच्छे तरीके से मिलें, उनका हाल पूछें या किसी भी छोटी सी चीज़ में उनकी मदद करें। ये रवैया सोसाइटी में सुकून और भरोसा पैदा करता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं एवरीडे लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की। तो भाई आज का टॉपिक है इको ट्रैवल टिप्स, यानी जब हम ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्कूल ट्रिप हो, फैमिली वेकेशन हो या वीकेंड आउटिंग हो, तो भाई हम अपने ट्रैवल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। साथियों ट्रैवल का मतलब होता है क्या कह लें, एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन और एक्सप्लोरेशन। लेकिन इसी के साथ साथ कार्बन इमिशंस, फ्यूल कंजम्पशन और वेस्ट प्रोडक्शन भी तो होता है भाई। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल CO2 इमिशंस का लगभग, आप कह लें, मैंने कितना पढ़ा था, लगभग 8% सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म से आता है। मतलब हर जर्नी का एक एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता ही है। जरा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है, कार फुल एसी पर चल रही है, स्नैक्स पैक्ड हैं और हर स्टॉप पर प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स यूज होते हैं। ट्रिप खत्म होता है तो भाई कार के अंदर से छोटा छोटा वेस्ट कलेक्शन आपका शुरू हो जाता है। मतलब ये कि वेस्ट कलेक्शन बॉक्स बन चुका होता है कार के अंदर ही। अब इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि अगर हम सेम ट्रिप को थोड़ा स्मार्ट बना दें तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हाफ हो सकता है। जैसे कि रियूजेबल वाटर बॉटल्स यूज करना, स्नैक को मिनिमल पैकेजिंग में लाना और कार एसी को बैलेंस्ड टेम्परेचर पर रखना। सिर्फ ये छोटी छोटी चेंजेस फ्यूल एफिशिएंसी और वेस्ट दोनों को कम कर देते हैं भाई। अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ जो ट्रैवल को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे आपको। देखिए भाई, एक एवरेज कार 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप कह लें कि 2.3 किलोग्राम CO2 इमिट करती है, ठीक है। एयर ट्रैवल सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव ट्रांसपोर्ट मोड्स में से आता है। तो भाई एक लॉन्ग ह्यूल फ्लाइट पर पैसेंजर लगभग आप कह लें कि 900 केजी CO2 इमिट कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबली हर साल 5 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स यूज करती है होटल्स और ट्रैवलिंग सर्विसेज में। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक इंसान अपने ट्रैवल की हैबिट्स में इको फ्रेंडली चेंजेस करता है ना, तो वो साल भर में अपना कार्बन फुटप्रिंट 20% तक कम कर सकता है। अच्छा भाई, अब आप कहेंगे हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई स्मार्ट ट्रैवल लेस इंपैक्ट। यानी देखें इको स्विच का आइडिया सिंपल है, ट्रैवल बंद नहीं करें, ट्रैवल स्मार्टर बने भाई। जब हम इको ट्रैवल अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम फ्यूल कंजम्पशन कम करते हैं, हम वेस्ट रिड्यूस करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 4 लोग एक ही कार में ट्रैवल करें इंस्टेड ऑफ 2 कार्स तो क्या होगा, तो भाई फ्यूल यूजेज ऑलमोस्ट 40% तक तो कम हो ही जाएगा ना। इसी तरह होटल्स में टॉवल्स और लाइनिंग्स को डेली रिप्लेस ना किया जाए, जब जरूरत हो उन्हें तभी रिप्लेस किया जाए, तो भाई वाटर और डिटर्जेंट यूजेज सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अच्छा अब जरा सोचिए कि आप एयरपोर्ट पर हैं, वाह क्या तो मजा आता है ना, ये सिर्फ सोच ही रखकर कितना मजा आ जाता है। आप एयरपोर्ट पर हैं और हॉलीडे मोड आपका फुल ऑन है, आप बॉटल वाटर लेते हैं, स्नैक्स पैक करते हैं और बोर्डिंग के बाद हर चीज डिस्पोजेबल यूज होती है, ठीक है। अब अगर इको स्विच माइंडसेट में हो तो आप अपनी रिफिलेबल बॉटल लेकर जा सकते हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद उसे रिफिल कर सकते हैं, डिजिटल बोर्डिंग पासेस यूज कर सकते हैं और अननेसेसरीली पैकेजिंग अवॉइड की जा सकती है। इसी तरह से देखिए भाई, सिर्फ एयरपोर्ट लेवल पर ही ना इको चॉइसेस से ही काफी वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, ठीक है। देखिए पहली टिप तो ये है कि लाइट पैकेजिंग रूल्स रखें अपने पास, इन्हें अडॉप्ट करें, लाइट पैकेजिंग रूल्स। जितना कम लगेज उतना ही कम फ्यूल कंजम्पशन, स्पेशली फ्लाइट्स में वेट मैटर करता है भाई। तो भाई जितना आपका लगेज कम होगा उतना कंजम्पशन कम होगा। दूसरा, रियूजेबल वाटर बॉटल्स और कॉफी मग्स को जरूर कैरी करें। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग प्रेफर कर लें आप जब पॉसिबल हो। चौथा, इको फ्रेंडली होटल्स चूज करें जो वाटर सेविंग और एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. फिफ्थ यानी कि पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लास्टिक बैग्स और सिंगल यूज आइटम्स अवॉइड करें. अपने पास आप कुछ ऐसे रीयूजेबल बैग्स कैरी करें जिनको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं. साथियों, इसमें हमारा बिहेवियर शिफ्ट है ट्रैवल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट लग्जरी. यानी कि इको ट्रैवल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ट्रैवल को सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी की नजर से नहीं देखें बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की नजर से भी देखें. देखिए भाई, हर जर्नी एक अपॉर्चुनिटी होती है एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करने की. जब हम इको चॉइसेस अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इम्प्रूव नहीं कर रहे होते बल्कि फ्यूचर डेस्टिनेशंस को भी परफेक्ट करते हैं साथियों. तो भाई, बात बड़ी सिंपल सी है. आखिर में इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है, ट्रैवल रुकना नहीं चाहिए लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए. भाई देखिए, हर इको फ्रेंडली चॉइस, चाहे वो कारपूल हो, रियूजेबल बॉटल्स हो या प्लास्टिक हो, इसे अवॉइड करना चाहिए. ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो भाई ये स्टेप्स जाते हैं क्लियर प्लैनेट की तरफ. सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल प्लान करें, एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा खुद से, इस ट्रिप को मैं थोड़ा ग्रीनर कैसे बना सकता हूँ. तो भाई मेरे साथ यानी सफा के साथ आप सुन रहे थे इको स्विच FM 107 पर, जहाँ हर जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी तक भी जाती है. नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
2: Maximum music, maximum fun
0: on FM 107, दिल से देसी.

चढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है इस प्यार को खोने नहीं दूंगा तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा खुशी के आंसू और बात है लेकिन तुझको मैं वैसे कभी

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतरी जिमनास्ट अहमद नबील अल दयानी के बारे में। अहमद नबील कतर के उभरते हुए इंटरनेशनल जिमनास्ट में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी की है। बहुत छोटे से उम्र से ही उन्हें आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स का शौक था और उन्होंने रोजाना सख्त ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्किल्स को निखारा। फ्लोर एक्सरसाइज, पैरल बार्स और वॉल्ट जैसे इवेंट्स में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। जिमनास्टिक्स एक ऐसा खेल है जहां बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अहमियत रखते हैं और अहमद इन तमाम पहलुओं पर मुसलसल काम करते हैं। दोहा की जदीद ट्रेनिंग फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अहमद का मकसद सिर्फ फर्दी कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि कतर के लिए मेडल्स जीतना और नए खिलाड़ियों को इंस्पायर करना भी है। उनकी मेहनत और डिसिप्लिन ने साबित किया है कि लगातार प्रैक्टिस से मुश्किल रूटीन भी कामयाबी से मुकम्मल की जा सकती है। आने वाले सालों में उनसे मजीद बेहतरीन नतायज की उम्मीद की जा सकती है और वो कतर की जिमनास्टिक्स प्रोग्राम को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कल्चर मीट्स टेक्नोलॉजी। देखिए, हर सोसाइटी की ना अपनी पहचान होती है, उसकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस। लेकिन जब टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही हो तो एक फियर भी आ जाता है, क्या हम अपने कल्चर्स को खो रहे हैं या ये ट्रेडिशंस धुंधले पड़ रहे हैं। आज इस टॉपिक के थ्रू हम कोशिश करेंगे इस बैलेंस के बारे में बात करें, क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे फ्यूचर के साथ जोड़ भी तो सकते हैं। देखिए, आजकल म्यूजियम्स सिर्फ विजिट करने की जगह नहीं है, अब वहाँ AI और वर्चुअल रियलिटी यूज होती है, जहाँ आप हिस्ट्री को फील कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप एक ट्रेडिशनल पथरी विलेज को VR के जरिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक पावरफुल तरीका है कल्चर को जिंदा रखने का। अरबिक लैंग्वेज भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। डिजिटल टूल्स और AI एप्स के जरिए लैंग्वेजेस को या लैंग्वेज को प्रिजर्व और प्रमोट किया जा रहा है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा है। यूथ का रोल यहाँ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नौजवान सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने कल्चर को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, चाहे इंस्टा के थ्रू हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो। कल्चरल स्टोरीज एक नया ट्रेंड बन रही हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो और कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाए तो आइडेंटिटी वीक हो सकती है। इसीलिए तो बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे कतर जैसे मुल्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस मुल्क की खूबसूरती ये है, यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्न कस्टम्स को साथ में एक साथ एम्बेड करके लेकर चलना जाता है। ये टॉपिक हमारे यहाँ इस मुल्क के हवाले से और भी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी। देखिए, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन दिखा सकते हैं आज और कल का, एक ट्रेडिशनल लाइफ और एक डिजिटल लाइफ, या फिर एक यंग क्रिएटर को हाईलाइट किया जा सकता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए कल्चर को प्रमोट कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल है डिजिटल म्यूजियम्स, AI स्टोरी टेलिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी एग्जिबिशंस जो लोगों को एंगेज करती हैं। एंड मैसेज क्लियर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी, हाँ, टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। अगर सही यूज हो तो ये कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है, उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं या अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बनाएं, क्योंकि अगर पहचान ही मिट जाएगी, खो जाएगी, तो ऐसे में हमारा फ्यूचर शायद अंधेरे में हो, है ना। चलिए जी, अभी उजाले की तरफ आ जाते हैं, मेरा मतलब है जाने की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपसे ले रही हूँ यहाँ पर इजाजत। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते हो संतरी FM 107। और हाँ, शकीब अहमद और नाजिया, हम दोनों को दुआ में भी याद रखिए। अपना ख्याल रखिए, 107 के साथ जुड़े रहिए, कहते हुए दिल से देसी।
1: One step to 2030. FM 107 पर हर गाना हिट।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में।
4: एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में
3: वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
4: सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, हर इंसान किसी न किसी दर्जे में जिम्मेदार है। कोई अपने घर का जिम्मेदार है, कोई अपने बच्चों का, कोई दफ्तर में एक टीम का, कोई उस्ताद है, कोई इदारे का सरबरा है और कोई सिर्फ एक छोटे से काम की निगरानी कर रहा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी एक अमानत है, सिर्फ एजाज नहीं। इस अमानत का सबसे खूबसूरत वस्फ है लोगों के साथ नरमी, आसानी और रहमत का बर्ताव। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना कि अल्लाह मेरी उम्मत के जिस शख्स को किसी जिम्मेदारी पर मुकर्रर किया जाए फिर वो लोगों पर सख्ती करे तो तू भी उस पर सख्ती फरमा, और जो उनके साथ नरमी करे तो तू भी उसके साथ नरमी फरमा। सामने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात नरमी का रवैया इख्तियार करने वालों के लिए दुआ है और जुल्म और सख्ती करने वालों के लिए तंबीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी रहमत और आसानी का नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को बिला वजह मशक्क़त में नहीं डाला। सहाबा नमाज में मौजूद होते तो अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो नमाज मुख्तसर कर देते ताकि माँ परेशान न हो, और अगर कोई गलती करता तो उसे नरमी से समझाते। तो सामिन किराम, चलें कोशिश करते हैं अगर हमारे पास कोई जिम्मेदारी है तो उसे अमानत समझें, लोगों के साथ आसानी और नरमी का बर्ताव करें, गुस्से के बजाय हिकमत से काम लें और हर मामले में अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त को अपना नमूना बनाएं। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है, और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करने वाले हैं कि बालिग अफराद के लिए सेहतमंद स्नैक्स के बारे में। मसरूफ हमारी ज़िंदगी है और मसरूफ ज़िंदगी में अक्सर खाने के औकात के दरमियान भूख महसूस होती है और ऐसे वक्त में हम जल्दी से कोई भी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन अगर स्नैक्स का इंतखाब दानिशमंदी से किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि स्नैक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान काफ़ी वक्फा हो तो जिस्म को तवानाई की ज़रूरत महसूस होती है। सेहत पर जो स्नैक्स हैं ना सिर्फ हमारी भूख कम करते हैं बल्कि जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा भी फराहम करते हैं। फल बेहतरीन कुदरती स्नैक हैं, उनमें सेब, पियर्स, अमरूद, माल्टा और संतरा ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बेहतर बनाते हैं। कम चिकनाई वाला दही प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है। अगर इसमें ताज़ा फल शामिल कर लिए जाएँ तो ये मज़ीद ग़िज़ाइयत बख्श हो जाता है। इसी तरह से बादाम, अखरोट और कैशियो जो हैं वो दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। ये जिस्म को सेहत बख्श चिकनाई और प्रोटीन फ्राहम करते हैं। एक छोटी मुट्ठी भर जो नट्स हैं वो बेहतरीन स्नैक साबित हो सकते हैं। भुने हुए चने फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं। गैर सेहत बख्श जो चीज़ें हैं उनकी ख्वाहिश को भी कम करते हैं। बाज़ औक़ात हम प्यास को भूख समझ लेते हैं और दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी को मत भूलिए। लिसनर्स, सेहत बख्श हेल्दी स्नैक्स सिर्फ और सिर्फ भूख कम करने के लिए नहीं है बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। फल, दही, नट्स, भुने हुए चने जैसे इंतखाब को आप ज़्यादा तवानाई और बेहतर सेहत फराहम कर सकते हैं।

0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये वो प्रोग्राम है जहां खेलों की दुनिया के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स और उनके पीछे छुपी कहानियां आप तक हम पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स और दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स उसेन बोल्ट के बारे में। उसेन बोल्ट क्या रिकॉर्ड है, उसेन बोल्ट के नाम और वो दुनिया के सबसे तेज इंसान है। This is more important, a global icon, जिनकी बिजली जैसी रफ्तार और बड़ी शख्सियत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आज हम इसी लेजेंड के बारे में बात करेंगे, उसेन बोल्ट, वो इंसान जिन्होंने ट्रैक और फील्ड को दोबारा डिफाइन किया। 1986 में शेरवुड कंटेंट जमैका के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ उसेन बोल्ट, नंगे पांव पहाड़ों में भागता हुआ वो बच्चा जिनकी एनर्जी कह रही थी ये लड़का कुछ और ही है। 2002 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने 200 मीटर गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को हिला दिया। उनकी 6 फुट 5 इंच लंबी कद और लेड बैक स्माइल उन्हें सबसे अलग बनाती थी, लेकिन असली बात थी उनकी बिजली सी रफ्तार। 21 साल का उसेन बोल्ट स्टेज पर छाया हुआ था। 100 मीटर तूफानी रेस, 200 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड, 4x100 मीटर रिले, गोल्ड मेडल दोबारा और सब कुछ मुस्कुराहट के साथ, स्टाइल के साथ। और उनका लाइटनिंग बोल्ट का जो वो पोज था एक निशान बन गया फतेह का। वो सिर्फ जीता नहीं, वो डोमिनेंट था। कभी कभी तो फिनिश लाइन से पहले सेलिब्रेट करना शुरू कर देता था। बेजिंग हो, लंदन 2012 या रियो 2016 ओलंपिक गेम्स, वही तीन इवेंट्स, वही डोमिनेशन। 8 ओलंपिक गोल्ड्स और बन गया एक ही स्प्रिंटर जिनका नाम है ट्रिपल ट्रिपल चैंपियन उसेन बोल्ट। नाम तो सुना होगा, लेकिन हर चमक के पीछे दोस्तों कुछ अंधेरे भी होते हैं। इंजरीज ने उन्हें बड़ा ही परेशान किया और क्रिटिक्स कहना शुरू कर दे, क्रिटिक्स का काम क्या है, क्रिटिक्स हमेशा बोलते रहते हैं क्या वो अपनी स्पीड बरकरार रख पाएगा। लेकिन बोल्ट ने कब हार मानी, उन्होंने हार्ड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और अपनी खुशी भरी एनर्जी के साथ हर चैलेंज का सामना किया। ट्रैक से हटकर भी वो बन गया एक ग्लोबल एम्बेसडर, जमैका के नए रनर्स के लिए एक रोल मॉडल। और फिर 2009 बर्लिन, जर्मनी के शहर, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन, उन्होंने बनाया वो रिकॉर्ड जिसको आज भी हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मुमकिन है ये रिकॉर्ड बनाना। 100 मीटर रेस इन 9.58 सेकंड्स, यानी 9.58 सेकंड में ये जीत। 100 मीटर रेस समझ लीजिए आप, क्या तेज, क्या तूफानी रेस हो। 17 साल के बाद भी आज तक कोई उस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं आया। दैट इज द डोमिनेशन ऑफ उसेन बोल्ट। 2017 में उसेन बोल्ट ने रिटायरमेंट तो ले ली, लेकिन उनका असर आज भी जिंदा है। आज भी लोग महसूस करते हैं उसेन बोल्ट था, कुछ दिन पहले था, ट्रैक पर दौड़ता था। आज भी उसेन बोल्ट इज अ लिविंग लेजेंड। इसके बाद उन्होंने काफी कुछ ट्राई किया। अब एथलीट हैं और एथलेटिक्स को छोड़ने के बाद कोई खिलाड़ी चुप कैसे बैठा रह सकता है, तो उन्होंने फुटबॉल ट्राई किया और एक स्कूटर कंपनी भी लॉन्च की, एक रेगे एल्बम तक ड्रॉप किया। ये है उसेन बोल्ट, ये है उसेन बोल्ट। जमैका जो जजीरा नुमा जो मुल्क है, एक कलरफुल आइलैंड है, एक कलरफुल आइलैंड है क्योंकि यहाँ से कई ऐसे कलरफुल कैरेक्टर्स निकले हैं। अब क्रिकेट की बात करूँगा तो ये प्रोग्राम काफ़ी आगे तक खिंच जाएगा, म्यूज़िक की बात करूँ तो काफ़ी आगे तक खिंच जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आप लोग सोशल मीडिया में उसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि टू ऑफ द बेस्ट नोन जमैकन लेजेंड्स दैट हैव कम फ्रॉम दिस आइलैंड, और वो उसेन बोल्ट से काफ़ी पहले, एंड आज भी वो लेजेंड्स हैं। तो जमैका बेसिकली एक कलरफुल आइलैंड है, लोग बड़े खुश मिजाज टाइप रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इसके बाद उन्होंने जब रेगा एल्बम लॉन्च किया तो बोल्ट ने सोचा कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए, तो उन्होंने अपनी उस इन्वॉल्व फाउंडेशन के जरिए बच्चों के फ्यूचर को सपोर्ट करना चालू किया। आज वो एक वालिद हैं, एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं और एक इंस्पिरेशन है। स्टेडियम्स में आज भी उनकी रोशनी महसूस होती है और उनके रिकॉर्ड्स अब भी अनबीटेबल हैं। दोस्तों, उसेन बोल्ट सिर्फ भागा नहीं, वो उड़ा और पीछे छोड़ी इंस्पिरेशन की एक ट्रेल। जी हाँ दोस्तों, जो आने वाले जनरेशन के लिए रास्ता दिखा रही है। जैसे मैंने बताया कि आज भी उसेन बोल्ट को याद किया जाता है कि हु इज द फर्स्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। अगर क्लासरूम में कोई टीचर पूछे, शायद कोई बच्चा जवाब दे पाए, तो ये एक जनरल नॉलेज है। नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, दुनिया सबसे तेज तरीन इंसान उसेन बोल्ट ही है। बर्लिन में बनाया गया वो रिकॉर्ड आज भी कायम है और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बोल्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड, लंबी स्ट्राइड और बेमिसाल कॉन्फिडेंस ने उन्हें दुनिया का सबसे मशहूर स्प्रिंटर बना दिया। इस कारकर्दगी ने स्प्रिंटिंग के मायार को ही बदल दिया और दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक नया बेंचमार्क मुकर्रर कर दिया। उसेन बोल्ट एक स्प्रिंटर, एक शोमैन, एक लेजेंड जिन्होंने गेम को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा दोस्तों, एक बात यह है कि लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं कि उसेन बोल्ट क्यों सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, बात यह है कि हमेशा सिर्फ टैलेंट से नहीं होते, कभी कभार होता है कि कॉन्फिडेंस, यू नो, यू नीड दैट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस और टैलेंट दोनों का ही कॉन्कॉक्शन था विद उसेन बोल्ट। उनको रोकना मुश्किल इसलिए था कि क्योंकि उनके पास कुदरती सलाहियतों और ट्रेनिंग का बेमिसाल कॉम्बिनेशन था। ताकि उनकी हाइट, जैसे मैंने बताया, काफ़ी यू नो लंबे कद के, जो आम एलीट स्प्रिंटर से काफ़ी ज़्यादा थी, और इस वजह से वो कम कदम लेकर ज़्यादा फासला तय करते थे, यू नो लॉन्गेस्ट स्ट्राइड्स। बर्लिन में उन्होंने रेस सिर्फ 41 स्ट्राइड्स में मुकम्मल की, जबकि उनके अक्सर मुकाबल रनर्स को 45 या उससे ज़्यादा कदम चाहिए होते थे। तो आप समझ रहे हैं, बिग स्ट्राइड्स मीन्स फास्टेस्ट रन, मतलब आपके अगर पैर थोड़ा से लंबे हैं तो आपके स्ट्राइड्स थोड़ा सा लंबा ही पड़ेगा ना। तो उसेन बोल्ट के साथ कुछ ऐसा ही था। तो उसेन बोल्ट वाज अनबीटेबल। उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनको मतलब उसेन बोल्ट को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। सबसे खास बात ये थी कि बोल्ट सिर्फ लंबी स्ट्राइड ही नहीं रखते थे, बल्कि उनकी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज थी। अक्सर लंबा एथलीट रफ्तार में पीछे रह जाता है, लेकिन बोल्ट ने दोनों क्वालिटीज को एक साथ जोड़ दिया। अच्छा, हैरान की बात यह कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के मुताबिक उनकी मैक्सिमम स्पीड 12.3 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा थी, और वो रेस के आखिरी हिस्सों में भी इस रफ्तार को बरकरार रख सकते थे। तो देयर इज अ साइंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड, तो टैलेंट हर किसी में नहीं होता दोस्तों, हर किसी में नहीं आता है, ये तो कुदरती है, ये अल्लाह का देन है। बोल्ट को तारीख का अजीम तरीन स्प्रिंटर इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, बल्कि उन पर हुक्मरानी की डोमिनेंट, ही वाज अ डोमिनेंट एथलीट, ही डोमिनेटेड देम। वो ओलंपिक 100 मीटर और 200 मीटर टाइटल्स तीन लगातार मुसलसल ओलंपिक्स में जीतने वाले वाहिद स्प्रिंटर हैं, और उनके नाम 100 मीटर और 200 मीटर दोनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आज भी मौजूद हैं। So that makes him a very special athlete right now in modern sports. बर्लिन की वो जो रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, 9.58, ये याद रखिएगा, 9.58 9.58 सेकेंड वाली दौड़ को आज भी एथलेटिक्स की सबसे परफेक्ट परफॉर्मेंसेस में से शुमार किया जाता है। कई एक्सपर्ट्स और फैंस के नज़दीक ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इंसानी रफ्तार की इंतहा का नुमाया मिसाल है। दैट इज उसेन बोल्ट। डिफरेंट थे, और आज भी अगर कई ऐसे एथलीट्स गए हैं, कई एथलीट्स गुजरे हैं, कई एथलीट्स आज भी हैं, लेकिन उसेन बोल्ट जैसे कैरेक्टर आई डोंट थिंक कि कोई आसपास कोई नज़र आ रहा होगा, बिकॉज ही वाज और ही इज रादर आज भी वो इतने एनर्जेटिक हैं, वो इतने एनर्जेटिक थे, और आज भी एथलीट्स को वो मुतासिर कर सकते हैं। वो रन आज भी कोई देख ले, 2009 में बर्लिन में वो रेस, इसका जो अगर कोई फुटेज देख ले, इस फुटेज को देखकर कोई भी यंगस्टर बड़ा ही इंस्पायर हो सकता है। एंड फॉलोड बाय द बीजिंग ओलंपिक्स 2008, बीजिंग ओलंपिक्स एंड फॉलोड बाय द अदर ओलंपिक्स, 2014 के ओलंपिक्स जो रियो में हुआ था, 12 में जो लंदन में हुआ था, इस तीनों ओलंपिक गेम्स की गेम्स के जितने भी फुटेजेस हैं वो आप लोग देख सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका बच्चा अगर एथलेटिक्स में शौक रखता है और उसे ये महसूस होता है कि भाई वो कुछ अच्छा कर सकता है, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग उन बच्चों को थोड़ा सा वो दिखा सकते हैं, उनके उसेन बोल्ट के जो फुटेजेस हैं फ्रॉम ऑल दिस ओलंपिक्स और बर्लिन, ये है सोशल मीडिया में मौजूद है, ये फुटेजेस ये क्लिप्स मौजूद है, उसको दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द वे दे यू नो द वे यू नो इट्स अ लेसन फॉर द ऑल द यंग जनरेशन ऑफ एथलीट्स, कि वो देखने के बाद ही उनको समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली, आई मीन पूरा तो नहीं समझ आएगा बट एक्चुअली यू कैन लर्न फ्रॉम दोज यू नो स्टार्टिंग ब्लॉक से, किस तरह से वो उनका स्टार्ट लेना, किस तरह से यू नो बेंड होना, किस तरह से यू नो फिनिशिंग लाइन पे वो जो डैश है वो किस तरह से वो मुकम्मल करते थे। ये थोड़ा सा ना ये टिट बिट्स जो है ये आप लोग जो है अपने बच्चों को थ्रू द फिल्म्स दिखा सकते हैं। एंड आई फील दैट उसेन बोल्ट आज मॉडर्न जनरेशन मॉडर्न स्पोर्ट्स में एक नुमाया एथलीट हैं, और आज भी हर कोई उसेन बोल्ट का नाम लेता है, चाहे वो कोई भी हो, क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे कोई भी बास्केटबॉल प्लेयर हो, उसेन बोल्ट का नाम हमेशा रेस्पेक्ट के साथ दिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, और आज 9.58 सेकेंड का जो रिकॉर्ड है वो आज भी अनब्रोकन है। दोस्तों ये तो थी उसेन बोल्ट के रिकॉर्ड के बारे में, रेस के बारे में मैंने बात की, और अभी एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद और भी रिकॉर्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।
0: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: वेलकम बैक टू दिस शो जिसका नाम है स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन, और ब्रेक से जाने से पहले हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया था उसेन बोल्ट से। उसेन बोल्ट दुनिया का नंबर वन, ऑब्वियसली ही इज द फास्टेस्ट मैन, नॉट नंबर जस्ट नंबर वन बल्कि फास्टेस्ट मैन, दुनिया का तेज तरीन इंसान है। 9.58 सेकेंड का जो टाइम है वो टाइम आज भी अनब्रोकन है। नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर रिकॉर्ड, जहां हम देख सकते हैं कि किस किस यू नो डिसिप्लिन में, द रेस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में क्या क्या रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। लेट्स टॉक अबाउट जोनाथन एडवर्ड्स। जोनाथन एडवर्ड्स एथलेटिक्स से ही हैं, और जोनाथन एडवर्ड्स का ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड एथलेटिक्स की दुनिया में सबसे पुराने और मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक है। और ब्रिटिश एथलीट जोनाथन एडवर्ड्स का ये ट्रिपल जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही वाज द फर्स्ट मैन टू डू दैट। एडवर्ड्स ने 1995 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 18.29 मीटर की छलांग लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। ट्रिपल जंप में एथलीट को हॉप, स्टेप और जंप के तीन मराहिल मुकम्मल करने होते हैं। तो अच्छा लगता है देखने में, इट्स वेरी नाइस टू वॉच, यू नो रादर देन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ट्रिपल जंप, इतनी लंबी छलांग लगाना गैर मामूली ताकत, बैलेंस और टेक्निक का मुतालबा करता है। तीन दिहाइयों के करीब गुजर जाने के बावजूद यह रिकॉर्ड कायम है, और दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि कब एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन कुछ रिकॉर्ड होते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ना टूटने के लिए। आई मीन दैट इज अमेजिंग। जस्ट लाइक इन क्रिकेट, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का जो बैटिंग रिकॉर्ड है 99.96 एवरेज, आज भी वो अनब्रोकन है। आई मीन सेंचुरी हो गया है, सेंचुरी आई मीन मोर देन 100 ईयर्स नाउ, और आज भी इस बात को हम सोचते पड़ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि कौन इस रिकॉर्ड को, कौन बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। देखिए कितने महान बल्लेबाज आए, कितने मारूफ बल्लेबाज आए गए, सुनील गावस्कर कह लीजिए, जहीर अब्बास, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम, जितने भी पुराने बैट्समैन थे आज नए दौर के बैट्समैन हैं, आज भी वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। वैसे ही उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड, वैसे ही एडवर्ड्स का रिकॉर्ड आज भी कोई तोड़ नहीं पाया। हो सकता है कि फ्यूचर में हो, कब हो किसी को नहीं पता। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल, और फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है दोस्तों, और फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर हम एक रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पे ना जिक्र करूँ तो सही नहीं बैठता है। और रिकॉर्ड किसका है वो भी बता दूँ, ईरान के वन ऑफ द लीडिंग स्ट्राइकर्स ड्यूरिंग हिज टाइम अली दाई। 1990s के दौर में वन ऑफ द लीडिंग स्ट्राइकर्स थे एशिया के, और आज भी उन्हें बहुत माना जाता है विद रेस्पेक्ट। अली दाई ने इंटरनेशनल फुटबॉल में 109 गोल स्कोर करके कई सालों तक दुनिया का रिकॉर्ड अपने नाम रखा। अली दाई टॉप स्कोरर ऑफ गोल्स इन इंटरनेशनल मैचेस। दाई ने ये गोल्स ईरान के लिए एशियन कप्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और दोस्ताना मैचेस में किए। उनकी हेडिंग एबिलिटी और फिनिशिंग बहुत मशहूर थी। ही वॉज टॉल, बड़े लंबे थे और यू नो ही वॉज अ क्विक फिनिशर inside the penalty box, inside the 18-yard box. जब उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया तो इंटरनेशनल फुटबॉल में 100 गोल्स का सोचना भी मुश्किल समझा जाता था। But he broke that mark. 100 goals for Ali Dai and 100 goals for any player in international football. Ali Dai ने Asian football को दुनिया भर में पहचान दिलाने में अहम किरदार अदा किया और उनका रिकॉर्ड फुटबॉल हिस्ट्री का एक यादगार बाब रहा। And that is what we talk about. Aaj Cristiano Ronaldo is the highest goal scorer. Agar, you know, international matches ko lekar hum baat kar rahe hain yahan par. All international matches. International matches mein friendly matches bhi hote hain. To Ali Dai was the first international player jinhone 100 se zyada goals score. And today, Iran mein Ali Dai is an idol. Is an idol for all the footballers जो कि striker बनना चाहते हैं। Now moving on to tennis, अभी हाल ही में French Open खत्म हुआ और French Open में हमने देखा कि अंद्रीवा, एक 19-year-old Russian teenager, वो Grand Slam title जीतती हैं and it was her first Grand Slam, maiden Grand Slam। और अगर men singles की बात करूँ तो Andrei Zverev German के player हैं। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये सब ने पढ़ा तो नहीं होगा बट मैं आप लोगों को बता दूं, ज़ेवरेव ये जीत 10 साल से लगातार कोशिश के बाद आई है। और एक बात सबसे अहम है कि ज़ेवरेव इज़ अ डायबिटिक पेशेंट। 6 साल की उम्र से वो डायबिटिक हैं और टेनिस कोर्ट में बैठकर वो अपना जो इंजेक्शन है, जो लगाने वाला जो इंजेक्शन, जो डायबिटिक शॉट्स लेते हैं वो लगाते हुए नजर आए और लोगों ने हैरान होकर ये नज़ारा देखा कि क्या ये बंदा, आई वुड से बीमार नहीं बट फिजिकल एबिलिटी में थोड़ी सी कमी हो जाती है, यू बिकम स्लो, यू बिकम टायर्ड। और ज़ेवरेव ने ये सब को करके, आई मीन जीत कर, फ्रेंच ओपन टाइटल जीत कर सबको चौंका दिया कि किसी को भी नहीं पता था कि इतने छोटे से उम्र से वो डायबिटिक पेशेंट है। एनीवे कांग्रेचुलेशंस टू ज़ेवरेव एंड कांग्रेचुलेशंस टू अंद्रीवा। लेकिन आज हम बात करेंगे मार्गरेट कोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टेनिस लेजेंड मार्गरेट कोर्ट के नाम टेनिस में सबसे ज्यादा 24 सिंगल्स यानी 24 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का रिकॉर्ड है। और यहीं अगर मेंस की बात करूं तो नोवाक जोकोविच का भी ये रिकॉर्ड है, 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल। और आज भी नोवाक जोकोविच कोशिश कर रहा है कि कहीं तरह से कोई एक ग्रैंड स्लैम टाइटल मिल जाए, तो ही बिकम्स 25th विनर ऑफ ग्रैंड स्लैम। और मार्गरेट कोर्ट, अगर हम यहाँ पे यू नो डोंट टॉकिंग अबाउट वीमेंस और मेन सिंगल्स, बट अगर हम सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी की बात करूँ तो मार्गरेट कोर्ट के साथ नोवाक जोकोविच का भी नाम है। और अगर यहाँ पे मैं आज मार्गरेट कोर्ट के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज शी इज़ अ वुमेन प्लेयर। उन्होंने 1960 और 1970 में टेनिस पर हुक्मरानी की और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में कई खिताबात जीते। कोर्ट की फिजिकल स्ट्रेंथ और अटैकिंग स्टाइल ने उन्हें अपने दौर की सबसे कामयाब खिलाड़ी बना दिया। आज भी उनका ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड टेनिस की तारीख के सबसे अजीम रिकॉर्ड में शुमार होता है और नए खिलाड़ी इस मकाम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। Let's move on to swimming. Swimming में देखते हैं आज किनका नाम है। जी हाँ दोस्तों, आज है मार्क स्पिट्स का नाम। जी मार्क स्पिट्स 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल चैंपियन और ये रिकॉर्ड हुआ था 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में और अमेरिका से वो बिलोंग करते हैं और अमेरिकन यू नो टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया द ओलंपिक्स। एक ही ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीत कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। हर रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, बात है। और उस दौर में ये अचीवमेंट नामुमकिन सी लगती थी। मार्क स्पिट्स की परफॉर्मेंस ने स्विमिंग को नई बुलंदियों तक पहुंचाया और वो कई सालों तक ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो रहे। उनका रिकॉर्ड 36 साल तक कायम रहा और आज भी ओलंपिक स्पोर्ट्स की सबसे यादगार कामयाबियों में से एक माना जाता है। मूविंग ऑन टू बास्केटबॉल और बास्केटबॉल में विल चेम्बरलेन के 100 पॉइंट्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बास्केटबॉल की तारीख का सबसे मशहूर रिकॉर्ड इनके नाम है, विल चैम्बरलेन, अमेरिका के हैं। चैम्बरलेन ने 1962 में एक एनबीए मैच में 100 पॉइंट स्कोर किए थे। ये कामयाबी आज तक किसी भी खिलाड़ी ने हासिल नहीं की। उस मैच में उनकी स्कोरिंग इतनी जबरदस्त थी कि हर क्वार्टर में वो बास्केट पे बास्केट करते रहे। बास्केटबॉल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिकॉर्ड स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक है। आज भी जब स्कोरिंग रिकॉर्ड्स की बात होती है तो विल चैम्बरलेन का 100 पॉइंट गेम सबसे पहले याद किया जाता है। और लेट्स मूव ऑन टू मोटर स्पोर्ट। मोटर स्पोर्ट जिसको हम देखते ही हमारे अंदर में जितनी भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वो आई थिंक मल्टीपल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सेबेस्टियन वेटल की कंसेक्यूटिव विंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जर्मन फॉर्मूला वन ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने 2013 सीजन में लगातार 9 ग्रां प्री रेसेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वेटल ने अपनी रेडबुल कार के साथ पूरे सीजन में गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाई। फॉर्मूला वन में हर रेस मुख्तलिफ ट्रैक और हालात में होती है, ये तो आप लोगों को पता है। एक ही सेंटर में नहीं, एक ही कंट्री में नहीं, मुख्तलिफ रेसेस होती हैं और ये हर जगह के रेस ट्रैक डिफरेंट होते हैं और इसलिए लगातार जीतना बहुत मुश्किल माना जाता है। वेटल की कंसिस्टेंसी, स्पीड और स्ट्रैटेजी ने उन्हें मोटरस्पोर्ट हिस्ट्री में खास मकाम दिलाया। उनका ये रिकॉर्ड आज भी फॉर्मूला वन के सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट्स में से एक समझा जाता है। अब बढ़ते हैं कैमल रेसिंग। जी हाँ, इस खत्ते में हम बैठे हुए हैं और कैमल रेसिंग के बारे में ना बात करूं तो ये तो सही नहीं है। तो दोस्तों, कैमल रेसिंग में आज हम बात करेंगे महालियत कैमल का रिकॉर्ड। कैमल रेसिंग में मशहूर रेसिंग कैमल महालियत ने गल्फ रीजन के मुकाबलों में कई स्पीड रिकॉर्ड्स कायम किए और अपने दौर की सबसे कामयाब रेसिंग कैमल्स में शुमार हुई। महालियत ने कई बड़ी रेसेस जीतकर कैमल रेसिंग के फैंस की तवज्जो हासिल की। इस कैमल की रफ्तार, ये ऊंट की बात हो रही है, ये नाम जो है महालियत एक ऊंट नाम है और ऊंट का नाम ये है महालियत, और इस ऊंट की रफ्तार और स्टैमिना और ट्रेनिंग ने उन्हें दूसरे मुकाबल ऊंटों से अलग बनाया। कैमल रेसिंग में रिकॉर्ड सिर्फ स्पीड का नहीं बल्कि मुसलसल फतुहात का भी होता है। महालियत की कामयाबी ने ब्रीडिंग और ट्रेनिंग के मायार को मजीद बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेगमेंट एंड द लास्ट सेगमेंट, कतर एंगल। एंड कतर एंगल में हम हमेशा बात करते आए हैं स्टेडियम्स के बारे में, तो आज हम बात करेंगे लुसेल स्टेडियम। लुसेल स्टेडियम फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन, आप लोगों को पता होगा कि फुटबॉल स्टेडियम में ये नाम तो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी कॉमन है, क्योंकि 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल यहां पर ही मुनक्की किया गया था एंड ये फाइनल अर्जेंटीना ने जीता था और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। ये तो फैक्ट सबको पता है। अर्जेंटीना और फ्रांस का ये मुकाबला जो है टाई ब्रेकर तक पहुँचा और 3-3 गोल के बाद, और उसमें कई रिकॉर्ड्स भी हुए जिसमें किलियन एम्बापे ने हैट्रिक किया और ये दूसरी मर्तबा ये हैट्रिक हुआ था इसी मैदान पर 1966 वर्ल्ड कप के बाद एक फाइनल में किसी खिलाड़ी ने हैट्रिक किया, और इसके साथ साथ 1994 के बाद किसी फाइनल में टाई ब्रेकर में फैसला किया गया मैच का। तो ये तो सब कुछ पता है और लुसेल स्टेडियम इसीलिए काफ़ी पॉपुलर और फेमस है। आज 4 साल के बाद जब फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है, तो आज भी हम यहाँ बैठ के लुसेल स्टेडियम को थोड़ा उनके बारे लुसेल स्टेडियम के बारे में सोच में हम अगर सोचें थोड़ा सा बैठ के हम सोचें कि द मोमेंट द द द जो जश्न जो उस टाइम हमें देखने को मिला था 18 दिसंबर 2022, वो लुसेल स्टेडियम वन ऑफ द आई थिंक इज अ प्राइज पोजिशन ऑफ स्टेट ऑफ कतर। लुसेल स्टेडियम ने पूरे कतर को दुनिया भर में वो मकाम दिलाया है कि यू नो कतर कैन बिल्ड अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनमैच्ड। और लुसेल स्टेडियम ने वो साबित कर दिखाया कि एंड इनफैक्ट ये मैच हुआ, एक तरह की बात ही है कि लुसेल स्टेडियम को इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसी में ये सब चीज़ें होनी थी, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स, अर्जेंटीना की जीत, एम्बापे की हैट्रिक, टाई ब्रेकर होना। तो वेल, लुसेल स्टेडियम के नाम फुटबॉल दुनिया का एक यादगार रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप 2022 के दौरान लुसेल स्टेडियम में अर्जेंटीना और मेक्सिको के दरमियान एक मैच खेला गया था, नॉट द फाइनल, एक मैच खेला गया था जिस मैच में 88,966 फैंस ने देखा। दैट्स द रिकॉर्ड जो 1994 के बाद वर्ल्ड कप के किसी भी मैच की सबसे बड़ी अटेंडेंस थी, 88,966 अटेंडेंस। दैट वाज द रिकॉर्ड दैट वाज एंड दैट वाज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग दैट मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड मेक्सिको। और इसी अटेंडेंस का रिकॉर्ड बाद में अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया सेमीफाइनल और अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस फाइनल में भी बराबर रहा। दिस इज इंटरेस्टिंग। यह रिकॉर्ड लुसेल स्टेडियम को वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे यादगार स्टेडियम्स में शामिल करता है। कतर के इस शानदार स्टेडियम ने दुनिया को अपनी कैपेसिटी, डिजाइन और फुटबॉल के जुनून का बेहतरीन नमूना पेश किया। दोस्तों देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जब कतर में हुआ था तो ये सारे स्टेडियम्स नए थे, ठीक है, बिकॉज जब कतर ने बिडिंग स्टार्ट की थी 2010 में, बिडिंग जीतने के बाद आई थिंक इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन यानी जो फीफा हम कहते हैं, फीफा ने कतर से कहा था कि वी नीड न्यू स्टेडियम्स। कतर के पास स्टेडियम्स तो थे, द क्लब्स के स्टेडियम्स जो अल वक्रा है, अल अरबी है, असद है, बट फीफा वर्ल्ड कप तो फीफा वर्ल्ड कप है, यू नीड बेटर, बिगर अटेंडेंस, यू नीड बिगर कैपेसिटी। तो कतर ने इस तरह के स्टेडियम्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सबको चौंका दिया था। द लुसेल स्टेडियम इज वन ऑफ दोज स्टेडियम्स जो कि आज भी लोग जब उस तरफ से जब जाते हैं अलखोर के तरफ, दाएं तरफ ज़रूर घूमते हुए देखते हैं, और अगर आप खोर से दोहा की तरफ आते हैं तो बाएं तरफ अब अपना मोबाइल फ़ोन हल्का सा निकल के एक एक शॉट लेने की कोशिश करते हैं, एक क्विक वीडियो लेने की कोशिश करते हैं। यू नो दैट इज़ द आई वुड से द ब्यूटी ऑफ लुसेल स्टेडियम। लुसेल स्टेडियम मुख्तलिफ हैं। लुसेल स्टेडियम एक सॉसर जैसा दिखता है बाहर से, तो इस स्टेडियम को मतलब इसकी लोकेशन, अगर इसकी लोकेशन भी देखिए तो बहुत ही लाजवाब है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाकी स्टेडियम्स कतर के जो वर्ल्ड कप स्टेडियम्स बने हैं वो बुरे हैं या कुछ और है, बट लुसेल स्टेडियम के लोकेशन अगर देखें कि अगर दोहा से अगर आप ड्राइव करके यू आर गोइंग टूवर्ड्स अलखोर या लुसेल की तरफ जा रहे हैं तो एक सडनली आपके सामने यू नो इट जस्ट जट्स आउट, इट ओपन्स अप अ बिग सॉसर पैन। So that is the beauty of Lusail Stadium. Aur record aap logon se share kar chuka hu main, 88,966. Ye largest football stadium hai Qatar ka, balki in Asia ka. Aur ise 40,000 kar diya jayega in the future. Aise ki Qatar ka ek plan hai, is stadium se kuch hisse jo hai wo donate kar diya jayega to some of these countries jahan pe football kheli jati hai and football is equally popular. ये स्टेडियम की अगर लोकेशन बताऊं तो दोहा से अराउंड 20 किलोमीटर दूरी पर है और ये लुसेल सिटी में है। एंड लुसेल स्टेडियम को इनॉग्रेट किया गया था 9 सितंबर 2022 में एक छोटा सा, अभी नॉट से छोटा सा, बट एक पॉपुलर मैच के साथ, सुपर कप गेम के साथ। सिंस दैट डे अंटिल नाउ लुसेल स्टेडियम, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक स्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इट इज़ अ लीगेसी, एक इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन for Qatar football's glorious days that happened during the 2022 World Cup football. दोस्तों इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आज हमने बात की अबाउट उसेन बोल्ट के बारे में जो कि दुनिया के सबसे तेज तरीन इंसान हैं और उन्होंने 9.58 सेकेंड का जो टाइमिंग है न रेस ऑफ 100 मीटर्स

0: Instagram at FM107Qatar. Dil se Desi.
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं. पर reviews वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: हम भी वो हैं जो कभी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तफहीमुल कुरान के एक और ईमान अफरोज हलके में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सामने किराम, आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी आयत पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं जिसके बारे में मुतअद्दिद अहले इल्म मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी आयत में से है। इस आयत के नुजूल के कुछ ही दिन बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए। गोया ये आयत उम्मत के लिए एक आखिरी नसीहत, एक आखिरी तंबीह और एक आखिरी पैगाम बनकर नाजिल हुई थी। इरशादे खुदावंदी है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: The app QMC now.
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: मेत्राश ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेत्राश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: हम भी वो हैं जो कभी

0: सुनना ऑफ द डे में हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े-बड़े आमाल लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं हालांकि कभी-कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी-छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं लेकिन इंसान की रूह आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं सामिन किराम हर इंसान किसी न किसी दर्जे में जिम्मेदार है कोई अपने घर का जिम्मेदार है कोई अपने बच्चों का कोई दफ्तर में एक टीम का कोई उस्ताद है कोई इदारे का सरबराह है और कोई सिर्फ एक छोटे से काम की निगरानी कर रहा है इस्लाम हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी एक अमानत है सिर्फ एजाज नहीं इस अमानत का सबसे खूबसूरत वस्फ है लोगों के साथ नरमी आसानी और रहमत का बर्ताव उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते हुए सुना कि अल्लाह मेरी उम्मत के जिस शख्स को किसी जिम्मेदारी पर मुकर्रर किया जाए फिर वो लोगों पर सख्ती करे तो तू भी उस पर सख्ती फरमा और जो उनके साथ नरमी करे तो तू भी उसके साथ नरमी फरमा सामने किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात नरमी का रवैया इख्तियार करने वालों के लिए दुआ है और जुल्म और सख्ती करने वालों के लिए तंबीह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी रहमत और आसानी का नमूना थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को बिला वजह मशक्कत में नहीं डाला सहाबा नमाज में मौजूद होते तो अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो नमाज मुख्तसर कर देते ताकि माँ परेशान न हो और अगर कोई गलती करता तो उसे नरमी से समझाते तो सामिन किराम चलें कोशिश करते हैं अगर हमारे पास कोई जिम्मेदारी है तो उसे अमानत समझें लोगों के साथ आसानी और नरमी का बर्ताव करें गुस्से के बजाय हिकमत से काम लें और हर मामले में अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त को अपना नमूना बनाएं। सामिन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वह सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मासलामा
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नियत से और हर अच्छी नियत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद सुनिए हदीद टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीस एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीस टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतरी जिमनास्ट अहमद नबील अल दयानी के बारे में। अहमद नबील कतर के उभरते हुए इंटरनेशनल जिमनास्ट में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी की है। बहुत छोटे से उम्र से ही उन्हें आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स का शौक था और उन्होंने रोजाना सख्त ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्किल्स को निखारा। फ्लोर एक्सरसाइज, पैरल बार्स और वॉल्ट जैसे इवेंट्स में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। जिमनास्टिक्स एक ऐसा खेल है जहां बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन बहुत अहमियत रखते हैं और अहमद इन तमाम पहलुओं पर मुसलसल काम करते हैं। दोहा की जदीद ट्रेनिंग फैसिलिटीज और प्रोफेशनल कोचिंग ने उनकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अहमद का मकसद सिर्फ फर्दी कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि कतर के लिए मेडल्स जीतना और नए खिलाड़ियों को इंस्पायर करना भी है। उनकी मेहनत और डिसिप्लिन ने साबित किया है कि लगातार प्रैक्टिस से मुश्किल रूटीन भी कामयाबी से मुकम्मल की जा सकती है। आने वाले सालों में उनसे मजीद बेहतरीन नतायज की उम्मीद की जा सकती है और वो कतर की जिमनास्टिक्स प्रोग्राम को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करने वाले हैं कि बालिग अफराद के लिए सेहतमंद स्नैक्स के बारे में। मसरूफ हमारी ज़िंदगी है और मसरूफ ज़िंदगी में अक्सर खाने के औकात के दरमियान भूख महसूस होती है और ऐसे वक्त में हम जल्दी से कोई भी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन अगर स्नैक्स का इंतखाब दानिशमंदी से किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि स्नैक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जब नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान काफ़ी वक्फा हो तो जिस्म को तवानाई की ज़रूरत महसूस होती है। सेहत पर जो स्नैक्स हैं ना सिर्फ हमारी भूख कम करते हैं बल्कि जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा भी फराहम करते हैं। फल बेहतरीन कुदरती स्नैक हैं। उनमें सेब, पियर्स, अमरूद, माल्टा और संतरा ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे बेहतर बनाते हैं। कम चिकनाई वाला दही प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है। अगर इसमें ताज़ा फल शामिल कर लिए जाएँ तो ये मज़ीद ग़िज़ाइयत बख्श हो जाता है। इसी तरह से बादाम, अखरोट और कैश्यू जो हैं वो दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। ये जिस्म को सेहत बख्श चिकनाई और प्रोटीन फ्राहम करते हैं। एक छोटी मुट्ठी भर जो नट्स हैं वो बेहतरीन स्नैक साबित हो सकते हैं। भुने हुए चने फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखते हैं। गैर सेहत बख्श जो चीज़ें हैं उनकी ख्वाहिश को भी कम करते हैं। बाज़ औक़ात हम प्यास को भूख समझ लेते हैं और दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी को मत भूलिए। लिसनर्स, सेहत बख्श हेल्दी स्नैक्स सिर्फ और सिर्फ भूख कम करने के लिए नहीं है बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। फल, दही, नट्स, भुने हुए चने जैसे इंतखाब को आप ज्यादा तवानाई और बेहतर सेहत फराहम कर सकते हैं।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं एवरीडे लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की। तो भाई आज का टॉपिक है इको ट्रैवल टिप्स, यानी जब हम ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्कूल ट्रिप हो, फैमिली वेकेशन हो या वीकेंड आउटिंग हो, तो भाई हम अपने ट्रैवल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। साथियों ट्रैवल का मतलब होता है क्या कह लें एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन और एक्सप्लोरेशन, लेकिन इसी के साथ साथ कार्बन इमिशंस, फ्यूल कंजम्पशन और वेस्ट प्रोडक्शन भी तो होता है भाई। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल CO2 इमिशंस का लगभग आप कह लें लगभग 8% सिर्फ ट्रैवल और टूरिज्म से आता है। मतलब हर जर्नी का एक एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता ही है। जरा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ वीकेंड रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, ठीक है, कार फुल एसी पर चल रही है, स्नैक्स पैक्ड हैं और हर स्टॉप पर प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स यूज होते हैं। ट्रिप खत्म होता है तो भाई कार के अंदर से छोटा छोटा वेस्ट कलेक्शन आपका शुरू हो जाता है। मतलब ये कि वेस्ट कलेक्शन बॉक्स बन चुका होता है कार के अंदर ही। अब इको स्विच अप्रोच ये कहती है कि अगर हम सेम ट्रिप को थोड़ा स्मार्ट बना दें तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हाफ हो सकता है। जैसे कि रियूजेबल वाटर बॉटल्स यूज करना, स्नैक को मिनिमल पैकेजिंग में लाना और कार एसी को बैलेंस्ड टेम्परेचर पर रखना। सिर्फ ये छोटी छोटी चेंजेस फ्यूल एफिशिएंसी और वेस्ट दोनों को कम कर देते हैं भाई। अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ जो ट्रैवल को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे आपको। देखिए भाई एक एवरेज कार 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप कह लें कि 2.3 किलोग्राम CO2 इमिट करती है, ठीक है। एयर ट्रैवल सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव ट्रांसपोर्ट मोड्स में से आता है। तो भाई एक लॉन्ग ह्यूल फ्लाइट पर पैसेंजर लगभग आप कह लें कि 900 केजी CO2 इमिट कर सकते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबली हर साल 5 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स यूज करती है होटल्स और ट्रैवलिंग सर्विसेज में। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक इंसान अपने ट्रैवल की हैबिट्स में इको फ्रेंडली चेंजेस करता है ना, तो वो साल भर में अपना कार्बन फुटप्रिंट 20% तक कम कर सकता है। अच्छा भाई अब आप कहेंगे हाउ इको स्विच हेल्प्स, तो भाई स्मार्ट ट्रैवल लेस इंपैक्ट, यानी देखें इको स्विच का आइडिया सिंपल है, ट्रैवल बंद नहीं करें, ट्रैवल स्मार्टर बने भाई। जब हम इको ट्रैवल अडॉप्ट करते हैं ना तो हम फ्यूल कंजम्पशन कम करते हैं, हम वेस्ट रिड्यूस करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग एक ही कार में ट्रैवल करें इंस्टेड ऑफ 2 कार्स तो क्या होगा, तो भाई फ्यूल यूजेज ऑलमोस्ट 40% तक तो कम हो ही जाएगा ना। इसी तरह होटल्स में टॉवल्स और लाइनिंग्स को डेली रिप्लेस ना किया जाए, जब जरूरत हो उन्हें तभी रिप्लेस किया जाए, तो भाई वाटर और डिटर्जेंट यूजेज सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अच्छा अब जरा सोचिए कि आप एयरपोर्ट पर हैं, वाह क्या तो मजा आता है ना, ये सिर्फ सोच ही रखकर कितना मजा आ जाता है। आप एयरपोर्ट पर हैं और हॉलीडे मोड आपका फुल ऑन है, आप बॉटल्ड वाटर लेते हैं, स्नैक्स पैक करते हैं और बोर्डिंग के बाद हर चीज डिस्पोजेबल यूज होती है, ठीक है। अब अगर इको स्विच माइंडसेट में हो तो आप अपनी रिफिलेबल बॉटल लेकर जा सकते हैं, सिक्योरिटी चेक के बाद उसे रिफिल कर सकते हैं, डिजिटल बोर्डिंग पासेस यूज कर सकते हैं और अननेसेसरीली पैकेजिंग अवॉइड की जा सकती है। इसी तरह से देखिए भाई सिर्फ एयरपोर्ट लेवल पर ही ना इको चॉइसेस से ही काफी वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिकल

0: टिप्स की, ठीक है। देखिए पहली टिप तो ये है कि लाइट पैकेजिंग रूल्स रखें अपने पास, इन्हें अडॉप्ट करें, लाइट पैकेजिंग रूल्स। जितना कम लगेज उतना ही कम फ्यूल कंजम्पशन, स्पेशली फ्लाइट्स में वेट मैटर करता है भाई, तो भाई जितना आपका लगेज कम होगा उतना कंजम्पशन कम होगा। दूसरा, रियूजेबल वाटर बॉटल्स और कॉफी मग्स को जरूर कैरी करें। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग प्रेफर कर लें आप जब पॉसिबल हो। चौथा, इको फ्रेंडली होटल्स चूज करें जो वाटर सेविंग और एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। फिफ्थ यानी कि पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लास्टिक बैग्स और सिंगल यूज आइटम्स अवॉइड करें। अपने पास आप कुछ ऐसे रियूजेबल बैग्स कैरी करें जिनको आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। साथियों, इसमें हमारा बिहेवियर शिफ्ट है, ट्रैवल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट लग्जरी। यानी कि इको ट्रैवल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ट्रैवल को सिर्फ कंफर्ट और लग्जरी की नजर से नहीं देखें, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की नजर से भी देखें। देखिए भाई, हर जर्नी एक अपॉर्चुनिटी होती है एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करने की। जब हम इको चॉइसेस अडॉप्ट करते हैं तो हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, बल्कि फ्यूचर डेस्टिनेशंस को भी परफेक्ट करते हैं साथियों। तो भाई बात बड़ी सिंपल सी है, आखिर में इको स्विच का सिंपल सा मैसेज ये है, ट्रैवल रुकना नहीं चाहिए लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होना चाहिए भाई। देखें, हर इको फ्रेंडली चॉइस, चाहे वो कारपूल हो, रियूजेबल बॉटल्स हो या प्लास्टिक हो, इसे अवॉइड करना चाहिए। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो भाई ये स्टेप्स जाते हैं क्लियर प्लैनेट की तरफ। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल प्लान करें, एक छोटा सा सवाल जरूर पूछिएगा खुद से, इस ट्रिप को मैं थोड़ा ग्रीनर कैसे बना सकता हूँ। तो भाई मेरे साथ यानी सफा के साथ आप सुन रहे थे इको स्विच FM 107 पर, जहाँ हर जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी तक भी जाती है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक को बहुत अहमियत दी गई है। एक अच्छा पड़ोसी वो होता है जो दूसरों के सुकून का ख्याल रखता है और हर मुमकिन मदद करता है। आज की जिंदगी में लोग अपने पड़ोसियों को मुश्किल से जानते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा रवैया रखें। छोटी छोटी बातें जैसे सलाम करना, ख्याल रखना या किसी मुश्किल में मदद करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। आज का अमल ये है कि अपने पड़ोसी से अच्छे तरीके से मिले, उनका हाल पूछें या किसी भी छोटी सी चीज में उनकी मदद करें। ये रवैया सोसाइटी में सुकून और भरोसा पैदा करता है। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे महावंश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कल्चर मीट्स टेक्नोलॉजी। देखिए हर सोसाइटी की ना अपनी पहचान होती है, उसकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस। लेकिन जब टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही हो तो एक फियर भी आ जाता है, क्या हम अपने कल्चर्स को खो रहे हैं या ये ट्रेडिशंस धुंधले पड़ रहे हैं। आज इस टॉपिक के थ्रू हम कोशिश करेंगे इस बैलेंस के बारे में बात करें, क्या हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे फ्यूचर के साथ जोड़ भी तो सकते हैं। देखिए आजकल म्यूजियम्स सिर्फ विजिट करने की जगह नहीं है, अब वहाँ AI और वर्चुअल रियलिटी यूज होती है जहाँ आप हिस्ट्री को फील कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप एक ट्रेडिशनल कतरी विलेज को VR के जरिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये एक पावरफुल तरीका है कल्चर को जिंदा रखने का। अरबिक लैंग्वेज भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। डिजिटल टूल्स और AI एप्स के जरिए लैंग्वेजेस को या लैंग्वेज को प्रिजर्व और प्रमोट किया जा रहा है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि आइडेंटिटी का हिस्सा है। यूथ का रोल यहाँ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नौजवान सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने कल्चर को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे इंस्टा के थ्रू हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो। कल्चर स्टोरीज एक नया ट्रेंड बन रही हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। अगर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो और कल्चरल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाए तो आइडेंटिटी वीक हो सकती है। इसीलिए तो बैलेंस बड़ा जरूरी है। वैसे कतर जैसे मुल्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इस मुल्क की खूबसूरती ये है, यहाँ ट्रेडिशन और मॉडर्न कस्टम्स को साथ में एक साथ एम्बेड करके लेकर चलना जाता है। ये टॉपिक हमारे यहाँ इस मुल्क के हवाले से और भी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अपने रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी। देखिए आप एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन दिखा सकते हैं आज और कल का, एक ट्रेडिशनल लाइफ और एक डिजिटल लाइफ, या फिर एक यंग क्रिएटर को हाईलाइट किया जा सकता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए कल्चर को प्रमोट कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल है डिजिटल म्यूजियम्स, AI स्टोरी टेलिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी एग्जीबिशंस जो लोगों को एंगेज करती हैं। एंड मैसेज क्लियर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हाँ टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, अगर सही यूज हो तो ये कल्चर को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है, उसके लिए खतरा नहीं बन सकती। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ फ्यूचर बना रहे हैं या अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बना रहे हैं। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपनी पहचान के साथ फ्यूचर बनाएं, क्योंकि अगर पहचान ही मिट जाएगी, खो जाएगी, तो ऐसे में हमारा फ्यूचर

0: टीचर शायद अंधेरे में हो, है ना? चलिए जी अभी उजाले की तरफ आ जाते हैं, मेरा मतलब है जाने की तरफ आ जाते हैं। अब मैं आपसे ले रही हूँ यहाँ पर इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 और हाँ शकीब अहमद और नाजिया हम दोनों को दुआ में भी याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, 107 के साथ जुड़े रहिए, कहते हुए दिल से दी सी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: यार फ्री का वाईफाई मिल जाए दिल खुश हो जाता है ना, घंटों चलाते रहो अपना पैसा भी नहीं खर्च होता, क्या अपना जीबी बच रहा होता है पर्सनल वाला और डेटा किसी और का इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन ऐसा होता का है।
4: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे मैं हूँ फजील इस्तकबाल, है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, और हम बात कर रहे हैं उन फ्रॉड्स के बारे में, उन स्कैम्स के बारे में जो स्कैम्स आप तक नहीं पहुंचते, जो फ्रॉड आप तक नहीं पहुंचते, आप उन फ्रॉड तक पहुंच जाते हैं। वेल, ये है वाईफाई स्कैम। दोस्तों, आप कई जगह जाते होंगे जहां पर आपको वाईफाई मिल जाते हैं, आप वाईफाई कनेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ये वाईफाई कई ऐसी जगहें हैं जो कि गलत भी होती हैं, कुछ ऐसी वाईफाई हैं जो सही भी हैं, लेकिन सही और गलत का फर्क कैसे समझे। मिसाल के तौर पे आप किसी एक ऐसी ब्रांड के करीब खड़े या किसी एक ऐसे ब्रांड स्टोर में हैं जहां पर आपको उसी का वाईफाई मिला, आपने उसे कनेक्ट किया और आपने उसे आराम से चलाया, उसने उसका डेटा इस्तेमाल किया, आपको लग रहा है ये नॉर्मल है, लेकिन क्या पता कि उसी स्टोर में या उस स्टोर के आसपास कोई स्कैमर हो जिसने अपने सिस्टम का नाम उस

0: ब्रांड पर रखा हो और आपने फ्री में उस ब्रांड को कनेक्ट कर लिया हो, वाईफाई को कनेक्ट कर लिया हो, वाईफाई स्कैम को कनेक्ट कर लिया हो, तो आप क्या करेंगे? क्यों, आपको तो लग रहा है कि आप डेटा चला रहे हैं उसका, लेकिन सच बात यह है कि हो सकता है कि वो आपका डेटा चुरा रहा हो और इस डेटा में सब कुछ आता है। वो आपके फेसबुक का पासवर्ड, वो आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड, वो आपके बैंक के डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, जो आपने लॉगिन किया या फिर जो आपका कार्ड सेव है आपके ही मोबाइल पे, हो सकता है उसकी सारी डिटेल उस शख्स के पास जा रही हो। और ये बहुत ही एक आसान तरीका है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जहां पर स्कैमर्स आपके पास नहीं आते, आप स्कैमर्स के पास जाते हैं। तो ऐसे में बचा कैसे जाए? बचने का आपको पता है, आपको हमेशा अपना वाईफाई बंद रखना है। बंद क्यों रखना है? देखिए, वाईफाई जनरली जब हम घर जाते हैं हमारा डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट हो जाता है इजीली, और ये इससे पता चलता है कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्ट के ऑप्शन को ऑन रखे हुए है, या हो सकता है इस ऑप्शन को आपने रखा हो ऑन। अगर आप ऑन रखते हैं कहीं पर भी जाते हैं ऐसी जगह जहां पर स्कैमर्स ने अपना वाईफाई ऑन रखा है ऑटोमेटिक कनेक्ट होने के लिए, तो इजीली आप चपेट में आ जाएंगे स्कैमर्स के, क्योंकि आपका मोबाइल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये कि कौन सा वाईफाई अवेलेबल है और आपको उससे ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा और आपके मोबाइल की, आपके बैंक की, आपकी सारी डिटेल्स। देखिए, अब जब मैं सारी डिटेल्स की बात करता हूँ, इसमें आपके फ्रेंड्स के नंबर, फोन नंबर भी हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ से भी उनको भी स्कैम किया जा सकता है, या फिर उनका इस्तेमाल करते हुए भी, हो सकता है पर्सनल चैट करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए उनको स्कैम किया जा सकता है जहाँ पर आपके नाम का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे में बिल्कुल होशियार रहने की ज़रूरत है, आपको अपने वाईफाई को बंद रखना चाहिए, ऑटोमेटिक कनेक्ट ना रखें, किसी भी फ्री वाईफाई को ऑटोमेटिक, या फिर जब तक वो वाईफाई पर आपको भरोसा ना हो, उस वाईफाई पर आपको भरोसा ना हो, रजिस्टर्ड वाईफाई ना हो, तो आप कनेक्ट ना करें। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में इसी शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस, और हम बात करेंगे तमाम उन स्कैम्स के बारे में जहां आप इन नए स्कैम से बच सकते हैं, जहां रोज डेली कई लाख रियाल या कई लाख रुपए लोगों से फ्रॉड के जरिए वसूल कर लिए जाते हैं। सुनते रहे FM 107, दिल से दैसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
1: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स और मैं हूँ आपके साथ आपकी

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: वक्त के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत और वालिद की मोहब्बत भाइयों के लिए नाकाबले बर्दाश्त होती गई। वो आपस में कहने लगे, यूसुफ और उसका भाई बिन्यामिन हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। बेशक हमारे वालिद खुली हुई गलती में है। उन्होंने मंसूबा बनाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वालिद की तवज्जो सिर्फ उन पे हो जाए। एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो, लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं, उन्हें किसी कुएं में डाल देते हैं ताकि कोई काफला आए और उन्हें ले जाए। ये शैतानी मशवरा भाइयों को भाग गया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का इरादा किया। भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आके कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ कल सैर के लिए भेज दीजिए, वो खेलेगा और मजे करेगा, हम उसके खैर ख्वाह हैं, आप फिक्र ना कीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दिल में खतरा महसूस किया और फरमाया, मुझे अंदेशा है कि तुम यूसुफ को ले जाओगे और उसे भेड़िया खा जाएगा जबकि कि तुम उसकी तरफ से काफिल होगे। भाइयों ने कसम खाई, ऐसा कभी नहीं होगा, हम मजबूत हैं और यूसुफ की हिफाजत करेंगे। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजबूरी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजने की इजाजत दे दी, लेकिन वालिद के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने जंगल की तरफ ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जबरदस्ती एक अंधेरे कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खौफजदा थे, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखते हुए सबर किया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही के जरिए तसल्ली दी, हम तुझे खबर देंगे कि ये लोग ये काम कर रहे हैं और एक दिन तू उन्हें उनके इस अमल की खबर देगा जबकि वो तुझे पहचान नहीं पाएंगे। ये इल्हाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून देने के लिए था

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107.
1: चलिस्टर्स वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स और आज हम बात कर रहे हैं हजरत याकूब अली सलाम और हजरत यूसुफ अली सलाम की. जब हजरत यूसुफ अली सलाम कुएं में डाल दिए गए तो वो अंधेरे और तन्हाई में अल्लाह से दुआ करते रहे. कुछ ही दिनों बाद अल्लाह का वादा पूरा हुआ. एक काफला वहां से गुजरा. काफले वाले ने प्यास बुझाने के लिए पानी निकालने को डोल कुएं में डाला. जब डोल खींचा तो उसमें एक हसीनो जमील लड़का मौजूद था. वो हैरान रह गए और कहने लगे, क्या खुशखबरी है, ये तो एक लड़का है. लेकिन चूंकि वो गुलामों और कैदियों की खरीदो फरोख करने वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने यूसुफ अली सलाम को कीमती खजाना समझा और छुपाने की कोशिश की ताकि कोई और उन पे दावा ना करे. काफले ने हजरत यूसुफ अली सलाम को मिस्र ले जाकर बेचने का फैसला किया. मिस्र उस वक्त एक बड़ी तहजीब का मरकज था, जहां बाजार गुलामा में गुलाम और लौंडियां बेचने का रिवाज था. हजरत यूसुफ अली सलाम को जब वहां पेश किया गया तो लोग उनकी नूरानी सूरत और बेमिसाल हुस्न को देखकर हैरान रह गए. कुरान कहता है, उन्होंने यूसुफ को मामूली कीमत के एवज बेच दिया और वो उनकी कदर ना पहचान सके. यूसुफ अली सलाम को एक मौजूद मिस्री शख्सियत ने खरीदा, जिसे कुरान अजीज मिस्र कहता है. अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अली सलाम को अपने घर ले आया और अपनी बीवी, जो तारीख में जुलैखा के नाम से मशहूर है, से कहा, इन्हें इज्जत के साथ रखो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम इन्हें अपना बेटा बना लें. यूं हजरत यूसुफ अलैहि सलाम एक गुलाम से अजीज मिस्र के घर के फर्द बन गए. अल्लाह ने वहां भी यूसुफ अलैहि सलाम को हिकमत, अकल और हुस्न अखलाक अता फरमाया ताकि लोग उनकी नेकी और बुजुर्गी को पहचान सकें. वक्त गुजरता गया. हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बचपन से जवानी की उम्र में दाखिल हो गए. उनकी शख्सियत और हुस्न ऐसा था कि देखने वाले दीवाने हो जाते. जुलैखा, जो अजीज मिस्र की बीवी थी, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की पाकी

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स में आज हजरत याकूब अलैहि सलाम और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा। वक्त गुजरा, 7 साल खुशहाली के गुजरने के बाद वही कहत आया जिसकी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने पेश गोई की थी। इस कहत ने मिस्र के साथ साथ आस पास के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई भी अल्लाह लेने के लिए मिस्र आए। वो यूसुफ अलैहि सलाम के सामने खड़े हुए लेकिन पहचान ना सके। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने उनको गल्ला दिया और कहा, अगली बार जब आओ तो अपने सबसे छोटे भाई को भी साथ लाना। ये भाई हजरत बिन यामिन थे जो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के सगे भाई थे। भाई घर जाकर हजरत याकूब अलैहि सलाम को मनाने लगे कि बिन यामिन को भी साथ जाने दें। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने बहुत सोच विचार के बाद शर्त रखी, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि तुम उसे हर हाल में वापस लेकर आओगे। उन्होंने वादा किया और बिन यामिन को साथ ले गए। जब भाई

को कुएं में डाला गया, जब जेल में डाला गया, हर मौके पे उन्होंने अल्लाह पे भरोसा रखा और अल्लाह ने उन्हें सुरखुरू किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में डाला, लेकिन आखिरकार उन्हें खुद झुकना पड़ा। हसद इंसान को गुनाह और जिल्लत में गिरा देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, हालांकि वो जब आसानी से इंतकाम ले सकते थे। ये आला इखलाक हमें भी सिखाता है कि दूसरों को माफ करना चाहिए। इंसान कुछ भी मंसूबा करे, लेकिन अल्लाह की तकदीर और तदबीर ही खालिब आती है। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खत्म करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत और इक्तदार अता फरमाया। ये किस्सा कुरान का अहसनुल किसस कहलाता है, क्योंकि इसमें सबर, तवक्कुल, पाकदामनी, माफी, हिकमत और अल्लाह की कुदरत के बेशुमार पहलू मौजूद हैं। ये कहानी ना सिर्फ ईमान को मजबूत करती है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करती है। तो लिसनर्स, आज का शो आपने सुना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया पे @FM107 और 666-22107 हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीद। सुनिए हदीद टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे, आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए, और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं, तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।